0: की खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।

0: लौंग का प्रयोग करके अपनी कामनाएं कैसे पूरी कर सकते हैं? लौंग के प्रयोग से शत्रु और विरोधियों को कैसे शांत कर सकते हैं? क्या चांदी के लौंग से भी कोई लाभ हो सकता है? क्या है लौंग के चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: एवरेस्ट तीखा ला, सही तीखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, आज तपस्या और साधना की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना, मंदिरों में तड़के हुई मंगला आरती। कोलकाता में वंदे मातरम की थीम पर सजा शानदार पूजा पंडाल, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, आजादी के नायकों को किया गया है याद। नवरात्रि के अवसर पर गुजरात में गरबे की धूम, वडोदरा में थिरके विदेशी मेहमान, पोरबंदर में 102 साल पुराने पारंपरिक तरीके से मां अंबा की आराधना। बेंगलुरु में धूमधाम से शुरू हुआ 10 दिनों का दशहरा उत्सव, श्री गोकर्णनाथ मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा, दिखे पारंपरिक टाइगर डांस के अनोखे रंग। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, मध्य प्रदेश के 5 जिलों से होकर गुजरेगी 500 किलोमीटर की यात्रा। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, कहीं देर रात बारिश तो कहीं पड़ी ओले, राजस्थान हरियाणा और तमिलनाडु में भी झमाझम बारिश। इंदौर में T20 के रोमांचक मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 14 रनों से हराया, सीरीज में बनाई 2-1 से बढ़त, खुशी से झूम उठे फैंस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना।
3: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

0: सदा अपने बच्चों का हित चाहता। मेरे पागलो, इस बार तो वो थोड़े भावुक थे। हमने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, बहुत दिन बाद आए। कभी कभी गुरु भी बहुत मिस करता। और याद रखना मेरे पागलो, कभी तुम्हें तुम्हारे गुरु का टेलीफोन आए अब पूछे कि तुम बहुत दिन से दिखे नहीं, समझना तुम्हारा गुरु मिस कर रहा है। हाँ, मिस कर रहा है। दर्शन लेने ना जाना तो दर्शन देने चले जाना, और चले जाना। यहां बद्रीनाथ जी के पट बंद रहते कपाट 6 महीना, जितना हम लोग ललायत रहते कि पट खुले तो दर्शन करें, उतना वो भी अंदर बैठा बैठा सोचता कि कब पट खुले, कब हम अपने पागलों के दर्शन। वो भी तो सोचता है। बागेश्वर धाम पर बालाजी भी तो सोचते कब मेरा पागल आएगा, वो भी तो सोचते। जितना तुम मिस करते ना उतना वो भी मिस करते। ऐसा हमने इस यात्रा में महसूस किया 21 दिन में, गुरु भी मिस करता, गुरु भी याद करता। गुरु तो गुरु होता है, किसी को श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन बदलते टाइम ना लगेगा। और मेरे पागलो, जीवन बदलने का मतलब वैभव मत समझना, धन मत समझना, जीवन बदलने का मतलब तुम्हारी जिंदगी में सदैव खुशियां आने लगे, मुस्कुराहट आने लगे। समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पर बहुत लाड़ लड़ाया, तुम्हारी जिंदगी मस्त होने लगे और तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट होने लगे। समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पे बहुत लाड़ लड़ाया और तुम भगवान के बहुत प्यारे बन चुके हो। जितनी खुशी उतने नजदीक भगवान के, जितनी खुशी होगी, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में होगी उतने तुम भगवान के नजदीक रहोगे, उतने तुम ठाकुर जी के नजदीक रहोगे। और मेरे पागलो, भक्त के 3 लक्षण है हमारी, हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है, ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना, सूत्र है। आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर 3 गुण होते हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अभाव है, भरोसा है और भोलापन है। समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा। और भरोसा और भाव और भोलापन, तीनों पर यदि विस्तार करें तो भाव हो तो कर्माबाई जैसा, कर्माबाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्माबाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती, क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी। बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को, जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती, अरे बाबरी, शर्म नहीं आती? पाप पड़ेगा पाप, नर्क जाएगी नर्क। उसने कहा, भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो। भगवान ने जा, कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई। उसकी आदत थी, भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया, और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा, ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा, क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला, इधर जल्दी आने की जल्द थी जिद थी तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया करना। हमको तो वही प्रिय।
1: मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता।
0: सच बोले ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं, जैसे ही साधना करने आए तो 3 दिन तो हमने भी नहीं नहाया। महाराज जी को ये बात पता है और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाते हैं। हाँ, और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, 3 दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती, उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। 3 दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को, छू लिया मतलब हमने नहा लिया। स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं, 3:30 बजे ही ये नहा लेते, तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत 3 दिन ठोके। राम भगवान बता भी दिया कि वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। सामने शास्त्र में पढ़ा है अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है, और कोई और ये करते थे यहां। हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे,
1: क्या नाम था उनका बाबा?
0: पूज्य परमानंद अवधूत जी। आह, क्या अद्भुत महात्मा, अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे। महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे, भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए।
1: अच्छा, जा रहे बाबा?
0: इशारे, बहुत कम, कभी कभी बोलते थे, और बोलते भी कब थे, कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी, तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना, तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा करके। कल हवेली पे आ जाना है। तो महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे, अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे, 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम है भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। तो यहां अलकनंदा जी में स्नान करने का ये बात हमने क्यों सुनाई थी, याद है किसी है? क्या सुना रहे थे इसके पहले? भाव, भक्त के 3 लक्षण सुना रहे थे। तो भक्त के 3 लक्षण है, भाव, भरोसा और भोलापन। तो भाव कैसा हो? कर्मा भाई के जैसे। और भरोसा कैसा हो? एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए। भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए। जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है, समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को, वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाएं। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदम खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा। उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी। तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे, सुलझाई नहीं, बैठ गए भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो। ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कोई पूछे कि किसने उलझाई? बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले ने ही उलझाई। तो बोले सुलझाएगा कौन? बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेपिजुली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे, काहे को बेपिजुली में पागल बन रहे, चलो मैं हूं सुलझा दे हूं। ना, जाओ। और सुनो, छूना लेना, पाप पड़ेगा, पाप। सबको भगा दिया और वहीं पर बैठकर राधा कीर्तन गाने लगे, कृष्ण कीर्तन गाने लगे। एक दो रात नहीं, कई महीने बीत गए, बाबा ने जटाएं नहीं उलझाए। ध्यान रखना, जिनका भरोसा जल्दी टूटता, ध्यान से सुनना मेरे पागलो, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई। बोले जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। ठाकुर जी ने देखा कहीं ये मर ना जाए बाबरा, तो हमारे गोविंद छोटा सा बालक का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके आ गए, और बड़ी तोतली वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी, बाबा ला मैं तोरी जटाएं सुलझा दू। तू कौन है भैया? बाबा मुंह को ना पहचानो, मैं हूं तो ब्रज को छोरा, नंद को छोरा हूं, मैं ही तो कृष्ण कन्हैया हूं, जाको तू कीर्तन गा रहा। बाबा बोले छूना लेना। क्यों? बेपिजुली की बातें बतावे, हम जानते हैं। का जानते हो? तू अकेलो नहीं ब्रज में डोले, जब तक किशोरी जू ना रहे तू अकेलो डोले ही ना, हमको उल्लू बनाने के चक्कर में तू आयो है, बहाने बनाने। हम ना मानेंगे, हम कैसे माने कि तू ठाकुर है, हम कैसे माने कि कृष्ण कन्हैया है? भगवान जी बोले हमका आधार कार्ड दिखाएगा, कैसे मानोगे कि हम ठाकुर जी हैं? बाबा बोले अब तुम्हारी पहचान को तो एक ही उपाय है, साथ में किशोरी जू आ जाए और वो कह दें यही ठाकुर जी हैं, तो हम मान लेंगे तुम ठाकुर जी हैं।
1: ठाकुर जी बरसाने गए, किशोरी जी विराजमान थी, सखियां अष्ट सखियां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में विराजमान थी। दोपहरी का समय था, सभी सखियां बैठ करके श्री किशोरी जी को मधुर मधुर वार्तालाप सुनाए रही थी, पान को बीड़ा खिलाई रही थी। भाई समय पर ठाकुर जी तपती दोपहरी में जून के महीने में पहुंच गए। अरे ओ देवी, तो किशोरी जी ने देखा, अरे आप? ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी जल्दी चलो, नहीं तो वो बाबा निपट जाएगा। कौन बाबा? पूरी घटना बताई। एक बाबा है, बाकी जटाएं लताओं में उलझ गई कीर्तन करते करते। अब वो कह रहे हो तभी सुलझाएंगे जब ठाकुर जी सुलझाने आएंगे। तो किशोरी जी बोली, हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले, हम गए थे, वो मान ही नहीं रहे कि हम ठाकुर जी। तो बोले, मानेंगे कैसे? बोले, वो कह रहे जब तक तो किशोरी जी ना आएंगी राधा जी, तब तक हम ना मानेंगे तुम ठाकुर जी हो। बाबा बोले, इसलिए तुम हमारी प्रमाण पत्र के लिए साथ में चलो। ठकुरानी बोली, गजब है। और ठाकुरानी जी ने कहा, ऐसा भगत है तब तो हमें भी देखना है। तो ठाकुरानी भी गई, और जैसे ही गई तो ठाकुर जी बोले, ले ओ बाबा, इनते पूछ लो हम हैं ठाकुर जी के नहीं। तो जैसे ही किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा, यही
2: लौंग का प्रयोग करके अपनी कामनाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। लौंग के प्रयोग से शत्रु और विरोधियों को कैसे शांत कर सकते हैं। क्या चांदी के लौंग से भी कोई लाभ हो सकता है? क्या है लौंग के चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, आज तपस्या और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, मंदिरों में तड़के हुई मंगला आरती। कोलकाता में वंदे मातरम की थीम पर सजा शानदार पूजा पंडाल, माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, आजादी के नायकों को किया गया है याद। नवरात्र के अवसर पर गुजरात में गरबे की धूम, वडोदरा में थिरके विदेशी मेहमान, पोरबंदर में 102 साल पुराने पारंपरिक तरीके से माँ अंबे की आराधना। बेंगलुरु में धूमधाम से शुरू हुआ 10 दिनों का दशहरा उत्सव, श्री गोकर्णनाथ मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा, दिखे पारंपरिक टाइगर डांस के अनोखे रंग। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा का आज दूसरा दिन मध्य प्रदेश के 5 जिलों से होकर गुजरेगी 500 किलोमीटर की यात्रा।

रात तक बारिश होती रही। राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु में झमाझम बरसात। इंदौर में T20 के रोमांचक मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया। सीरीज में बनाई 2-1 से बढ़त, खुशी से झूम उठे फैंस।

0: नमस्कार, जेएनटी पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। शारदीय नवरात्रि के महापर्व का आज दूसरा दिन है और आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर सहित तमाम मंदिरों में आधी रात से ही लोग माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आज तड़के मां की मंगला आरती भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय और देवी मैना के घर पर हुआ था। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। बचपन में ऋषि नारद से भगवान शिव की कथाएं सुनकर उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। शुरुआत में उन्होंने सीमित भोजन किया और फिर फल और पत्तों पर निर्भर रहीं। बाद में उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। उनकी कठोर साधना और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी तपस्वी स्वरूप के कारण उन्हें मां ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, संयम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। तो वहीं दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह किस तरह से पूजा अर्चना की गई है। मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना, मंगला आरती की गई है। दूर दूर से श्रद्धालु उमड़े हुए नजर आए। फिर चाहे दिल्ली का झंडेवालन मंदिर हो या देश भर के तमाम मंदिर, लोगों की कतारी लग रही है मां की पूजा अर्चना के लिए। झंडेवालन मंदिर की तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। मंगला आरती की गई है सुबह से ही। आज माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। तो वहीं भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर माता की महा आरती सुबह सुबह की गई है। हैदराबाद में ये मंदिर स्थित है। तो वहीं देवी की पूजा विद्यार्थियों और साधना करने वालों के लिए विशेष फलदायी मानी गई है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उन्हें भी मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। मां को संयम का, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उन्होंने कठोर तपस्या की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और यही वजह है कि उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज जो भी उनकी पूजा करता है, उनका मंगल ग्रह का दोष का प्रभाव जो है वो कम होता है, ये भी मान्यता है।
1: आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है। द्वितीय दिन भगवती ब्रह्मचारिणी का है। भगवती ब्रह्म माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए यह ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती हैं। ब्रह्मा का आचरण करती हैं, इसलिए ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती हैं। आज के दिन साधक जन अपने मन को स्वादिष्ठान चक्र में स्थित कर योग साधना में प्रविष्ट होते हैं। आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे भक्त जो है अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें इस चीज़ का पूर्ण विश्वास है कि माँ भगवती जगदम्मा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और करती हैं। इसी आस्था और इसी विश्वास से भक्त आते हैं। आप देख भी पा रहे हैं, भक्त यहाँ पर द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का दर्शन करने के लिए अपने परिवार के सहित, बच्चों के सहित माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम माँ भगवती से प्रार्थना करें, हम सब कुशल मंगल रहें, हम सबकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय माता की, जय माँ झंडेवाली।
2: ज़्यादा इमोशनल भी फील हो रहा है और दूसरा माता रानी के दरबार में हमने आरती भी ले ली, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं ऐसी फीलिंग हो रही है, मैं बोल रही हूँ अभी, मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं। हम छतरपुर गए थे, छतरपुर के भी अच्छे से हमने दर्शन करे, हम यहाँ आए।

0: अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही है, समझो आप, इतनी अच्छी मुझे फीलिंग आ रही है।
1: मैं कल ही दुबई से आया हूँ और आज मेरा सडनली प्लान बना यहाँ पर आने का, और मेरा कोई भी प्लान नहीं था। माता रानी की कृपा से मैं आया हूँ और यहाँ पर बारिश हुई, इतना अच्छा लग रहा, दर्शन इतने अच्छे हुए, मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और दुबई से आके अपने घर आके माता रानी के दर्शन कर लिए, झंडे वाले दर्शन कर लिए, मैं ऑलमोस्ट 6-7 बार आ रहा हूँ, मतलब इमोशनल फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर आके। बस जय माता रानी, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
2: नवरात्रि का दूसरा दिन है, दूसरा दिन होने के बावजूद इतनी बारिश हो रही है, होने के बावजूद जो है अपना भक्त लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जो भी भक्त लोग आते हैं उनको सबकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। हर साल पूरा उत्साह से यहाँ पे झंडे वाले मंदिर में नवरात्रों का त्यौहार मनाया जाता है। पूरा
3: हम सुबह 12 बजे के आए हुए यहाँ पर दर्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा पानी में, बहुत मुश्किल से बस माता से मिलना था इसलिए आए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पर आकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा कि बस बयां भी नहीं हो पा रही हमारी खुशी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है GNT एक्सप्रेस का।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: नवरात्रि के दूसरे दिन आज देश भर में माता ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा, देवी के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। नवरात्रि के दूसरे दिन मां को अर्पित किया जाता है गुड़हल के फूल और मिश्री का भोग, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में दिख रहा है भक्तों का खासा उत्साह। बेहद शांत, सौम्य और मोहक है मां का ब्रह्मचारिणी का रूप, माता के सीधे हाथ में जप की माला और उल्टे हाथ में कमंडल है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें कहा गया है ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हर प्रकार की सिद्धियां और ज्ञान का मिलता है वरदान। संयम, साधना और आत्मबल की मूर्ति है मां ब्रह्मचारिणी। मां के इस स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का भी हो जाता है निदान। वडोदरा में दिखे गरबा के रंग, विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास गरबा में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चनिया चोली और कुर्ता पजामा जैसे पारंपरिक परिधानों में सजे दिखे विदेशी मेहमान, गुजराती लोक संगीत की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। गुजरात के पोरबंदर में नवरात्रि उत्सव में दिखा दिवेचा कोली समुदाय का बेहद प्राचीन अनुष्ठान, 102 साल पुरानी भद्रकाली माताजी गरबा में पुरुषों ने किया पारंपरिक गरबा। गरबा के दौरान पुरुष पहनते हैं विशिष्ट और भव्य पारंपरिक पोशाक, जिसमें मोतियों से जड़ी विशेष टोपियां पहनकर माताजी की भक्ति में लीन होकर खेलते हैं गरबा। ढोल की थाप और हारमोनियम की धुन पर लोग गीत गाते और नाचते हुए नजर आए पुरुष, लोगों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है यह आयोजन। नवरात्रि के रंग में रंगा अजमेर, अजमेर नगर निगम की ओर से आजाद पार्क में भव्य दांडिया और गरबा रास का आयोजन। गरबा की धुन पर नाचते दिखे पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग, 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। दक्षिण भारत में भी नवरात्रि की रौनक, मंगलुरु के कुद्रोली श्री गोकर्णनाथ मंदिर में 10 दिवसीय मंगलुरु दशहरा समारोह का शुभारंभ हुआ। देवी नवदुर्गा और शारदा की प्रतिमाएं की गई स्थापित, स्थापना से पहले पारंपरिक पीली वेश यानी कि टाइगर डांस का प्रदर्शन। दस दिनों के इस महोत्सव के दौरान देवता के लिए किए गए विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान, कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं प्रस्तुत। कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का भव्य उद्घाटन, वंदे मातरम की थीम पर आधारित है ये पंडाल। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर तैयार किया गया है पंडाल, जो बना आकर्षण का केंद्र, इतिहास, देशभक्ति, लाइट एंड साउंड और आधुनिक तकनीक के अनोखे मेल। पंडाल में लाल किला, सेलुलर जेल और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। अलग अलग दृश्यों के जरिए दिखाई गई है

0: गुलामी से लेकर आजादी तक के संघर्ष की कहानी। मंडप में प्रवेश करते ही सामने विराजमान है मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा। दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है स्वतंत्रता की गाथा के बीच आस्था का यह अनोखा संगम। संतोष मित्र स्क्वायर के इस भव्य पंडाल को तैयार करने में लगा है करीब 2 महीने का समय। पंडाल में देखने को मिल रहा है लाइटिंग और तकनीक का खास इस्तेमाल। कोलकाता में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल का सीएम सुवेंदु अधिकारी ने उद्घाटन किया। जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल की थीम पर तैयार किया गया पंडाल। लगभग 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा और भव्य है ये पंडाल। हवा महल की बारीक कारीगरी और डिटेलिंग को जीवंत करने के लिए राजस्थान से बुलाए गए हैं विशेष कारीगर। पंडाल के अंदर राजस्थानी संस्कृति और भव्य लाइटिंग की विशेष व्यवस्था। पंडाल में हर तरफ दिखती है राजस्थानी संस्कृति की झलक। मुख्यमंत्री ने पूरे पंडाल का दौरा किया, दुर्गा मां का भी आशीर्वाद लिया। दरबार में विराजमान मां की प्रतिमा का किया गया है भव्य श्रृंगार। बारीक नक्काशी और सुंदर आभूषणों से सजी है मां की मूर्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: लौंग का प्रयोग करके अपनी कामनाएं कैसे पूरी कर सकते हैं? लौंग के प्रयोग से शत्रु और विरोधियों को कैसे शांत कर सकते हैं? क्या चांदी के लौंग से भी कोई लाभ हो सकता है? क्या है लौंग के चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, देवी तो माँ है ही, माँ का स्वरूप है उनका, और अपने भक्तों की, अपने बच्चों की रक्षा वो हर स्थिति में करती हैं। अगर आपको जीवन में अपनी रक्षा का भय है, आपको अपनी रक्षा करनी है, रोग और बीमारी से बचना है, तो इसका एक बड़ा अमोघ उपाय है देवी कवच का पाठ करना। आज हम आपको बताएंगे देवी कवच की महिमा के बारे में। अब जान लेते हैं दिनांक 12 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान है कन्या राशि में, चंद्रमा, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में, और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, भगवती की, माता की बहुत सारी स्तुतियां पाई जाती हैं, तंत्रोक्त भी और सरल भी। देवी की एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली स्तुति है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो है देवी कवच। देवी कवच का महत्व क्या है? देखिए, देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने श्री मार्कंडेय ऋषि को किया था। ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को देवी कवच के बारे में बताया था। इस कवच में अपूर्व शक्ति है। इसमें देवी के विभिन्न नामों का और विभिन्न शक्तियों का उल्लेख किया गया है, और जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से, श्रद्धा और भक्ति से देवी कवच का पाठ करता है तो हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे और जीवन के बड़े रोग बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर देवी कवच का पाठ करते हैं। यहां तक कि देवी कवच का पाठ करने से मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यानी अगर आप देवी कवच का ईमानदारी से पाठ करें तो आपको मनचाही वस्तुएं भी मिलेंगी। मुख्यतः रोग के मामले में, बीमारी के मामले में और सुरक्षा के मामले में अगर देवी कवच का पाठ किया जाए, जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्तियों से आप सुरक्षित बने रहेंगे। देवी कवच पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। वैसे तो कोई भी भक्त, कोई भी साधक देवी कवच का पाठ जब चाहे कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें देवी कवच का पाठ करने से
आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर स्वास्थ्य की समस्या निरंतर बनी रहती है, आप हमेशा थोड़ा बहुत बीमार रहते हैं, तो देवी कवच का पाठ आपको करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बीमारियां हैं आपको, किडनी में भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी है, लीवर भी गड़बड़ है, एक से ज्यादा अगर बीमारियां हैं तो भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। आप अपनी बीमारियों का तमाम इलाज करवा रहे हैं, तमाम दवाइयां खा रहे हैं, तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह रोग का निवारण नहीं हो पा रहा है, बीमारी दूर नहीं हो पा रही है, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है, तो भी देवी कवच का पाठ करने से आपको लाभ होगा। अगर आप मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, खतरा है, मुश्किल है, मुकदमा हार सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आपके शत्रु और आपके विरोधी लगातार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आपको नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करना चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि देवी कवच का पाठ कैसे करेंगे, देवी कवच का प्रयोग कैसे करेंगे। रोज सुबह के समय या तो इसका पाठ करिए या मध्य रात्रि में देवी कवच का पाठ करना अच्छा होगा। मां दुर्गा के सामने घी का एक दीपक जलाएं और एक जल का पात्र लोटे या गिलास में शुद्ध जल भर करके रख लें। इसके बाद दुर्गा कवच का श्रद्धा पूर्वक इत्मीनान से बोल बोल कर पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। पाठ के थोड़ी देर बाद सामने जो जल रखा है उसको अपने ऊपर छिड़क लें। अगर किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर आपको जल लगाना चाहिए। घर में कोई बीमार है, आप उसके लिए भी दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं और जल का छिड़काव उसके ऊपर भी नियमित रूप से कर सकते हैं। घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी अगर इस जल का छिड़काव करेंगे तो वो रोग बीमारियों और समस्याओं से सुरक्षित बने रहेंगे। दुर्गा सप्तशती को आप भोजपत्र पर लिख करके अपने गले में धारण कर लें, ये बड़े अचूक यंत्र की तरह काम करेगा। याद रखिए, अगर आप दुर्गा कवच का पाठ नियमित रूप से कर रहे हैं तो सात्विक रहिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप।
नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को लौंग की एक माला अर्पित करिएगा और इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करिएगा, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 12 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल मां दुर्गा को, देवी को सफेद फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, आज तपस्या और साधना की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना, मंदिरों में तड़के हुई मंगला आरती। कोलकाता में वंदे मातरम की थीम पर सजा शानदार पूजा पंडाल, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, आजादी के नायकों को किया गया है याद। नवरात्रि के अवसर पर गुजरात में गरबे की धूम, वडोदरा में थिरके विदेशी मेहमान, पोरबंदर में 102 साल पुराने पारंपरिक तरीके से मां अंबा की आराधना। बेंगलुरु में धूमधाम से शुरू हुआ 10 दिनों का दशहरा उत्सव, श्री गोकर्णनाथ मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा, दिखे पारंपरिक टाइगर डांस के अनोखे रंग। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, मध्य प्रदेश के 5 जिलों से होकर गुजरेगी 500 किलोमीटर की यात्रा। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, कहीं देर रात बारिश तो कहीं पड़ी ओले, राजस्थान हरियाणा और तमिलनाडु में भी झमाझम बारिश। इंदौर में T20 के रोमांचक मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 14 रनों से हराया, सीरीज में बनाई 2-1 से बढ़त, खुशी से झूम उठे फैंस।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो आज के इस खास शो में हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि में लौंग के क्या कुछ चमत्कारी प्रयोग होते हैं, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाए जिससे आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएं, इस बारे में आज के इस शो में पंडित जी से हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
4: नवरात्रि में अगर आप केवल दीपक जलाकर, ज्योति जलाकर, उस पर एकाग्र होकर मंत्र का जप करें, तो ऐसा करने से आपकी मनोकामना ज्यादा जल्दी पूरी होगी। देवी की जो शक्ति है, देवी का जो स्वरूप है, वो मूर्ति या चित्र में नहीं है। देवी का स्वरूप और उनकी शक्ति उस दीपक की ज्योति में है। इस पर एकाग्र होकर पूजा करें, आपको लाभ ज्यादा होगा।
3: तो चलिए आज के विषय के बारे में बात करें, उससे पहले सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 12 अक्टूबर 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या रहेगा।
4: दिनांक 12 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:13 तक, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र रात के 11:52 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम के खास विषय के साथ, जो है नवरात्रि में लौंग का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि लौंग का ज्योतिष में आखिर महत्व क्या होता है।
4: जी देखिए, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और नवरात्रि के पावन समय में हम अपनी नियमित पूजा में देवी को लौंग अर्पित करते हैं। लौंग का ज्योतिष में क्या महत्व है और चमत्कारी प्रयोग क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। देखिए, वैसे तो लौंग एक मसाला है, लेकिन ये एक अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। अपने रंग की वजह से, अपने गुणों की वजह से ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। लौंग सामान्यतः कफ नाशक है और पाचन में सहायता करता है। लौंग जो मसाला है, इसका प्रयोग छोटे छोटे उपाय करने में, तंत्र साधना में विशेष रूप से किया जाता है। और आप सामान्यतः देखेंगे कि देवी की पूजा में लौंग का प्रयोग काफी ज्यादा किया जाता है। अगर कोई भोग ना मिले तो देवी को लौंग और बताशे का भोग लगाया जाता है।
3: और चलिए, वक्त हो चला है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
4: मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जान लेते हैं कि नवरात्रि में लौंग का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए जिससे हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं।
4: आपकी कोई बड़ी मनोकामना है, कोई जेन्युइन मनोकामना है और आप इसको पूरा करना चाहते हैं, तो मनोकामना को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, लौंग का कैसे प्रयोग करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें। मान लिया उम्र 25 साल है तो 25 लौंग साबुत हो, टूटे हुए ना हो, ले लें। इसको काले या लाल धागे में बांध करके एक माला बना लीजिए और नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को पहना दीजिए, देवी को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करिए। आप ये प्रयोग अगर नवरात्रि में करें तो अगले 3 से 6 महीने में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब इस लौंग की माला को जल प्रवाह कर दीजिएगा। आप चाहें तो नवरात्रि के अलावा भी लौंग की माला देवी को पहना सकते हैं और 6 महीने बाद उसको जल प्रवाहित कर सकते हैं।
3: आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में।
4: कर्क राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खरीदारी में व्यस्त रहेंगे, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल ले लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी पहला सवाल किसका रहेगा?
4: जी आज का पहला प्रश्न हिना जी ने हमें लिखा है और हिना जी हमें मेल लिखती हैं पंजाब से। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1994, दोपहर 2:35 गुरदासपुर पंजाब। हिना कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने का क्या योग है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? हिना आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 में आपके विवाह के योग बनते हैं मई से लेकर के दिसंबर के बीच में। विवाह आपका कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। विवाह आपका आसपास ही होगा, बहुत दूर जाने की वर्तमान स्थान से आपकी संभावना नहीं बनती है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
3: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी आप दूसरा सवाल किसका लेंगे?
4: जी अगला प्रश्न हमें अभिज्ञान जी ने लिखा है और अभिज्ञान जी हमें प्रयागराज से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 1998, जन्म का समय रात में 11:35, जन्म स्थान है वाराणसी। अभिज्ञान कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? अभिज्ञान आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए तैयारी करें, तो आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से 2027 का अंतिम समय और 2028 पूरा, ये आपके लिए बहुत अनुकूल है और अगर इस समय में तैयारी करेंगे तो आप सफल होंगे। एक मूंगा बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
3: तो आज के इस शो में बात हो रही है लौंग के प्रयोग की। नवरात्रि में लौंग का प्रयोग करके शत्रु और विरोधियों को कैसे शांत करें, कैसे दूर करें, इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
4: आप लौंग का प्रयोग करके अपने शत्रु और विरोधियों को भी शांत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लगातार 27 दिनों तक 2-2 लौंग मां दुर्गा को अर्पित करते जाइए। नवरात्रि में शुरुआत कर सकते हैं या किसी भी मंगलवार से शुरुआत करिएगा। जब 27 दिन हो जाएं तो 28वें दिन सभी लौंग को इकट्ठा कर लीजिएगा और 28वें दिन इन सारे लौंगों को अग्नि में जला लीजिएगा। लौंग जलाते समय मां दुर्गा का स्मरण करते रहिएगा, मन में प्रार्थना करते रहिएगा कि मेरे शत्रु और विरोधी शांत हों। जब लौंग पूरी तरह से जल जाए, जब उसकी राख हो जाए, तो उसकी राख को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा 28वें दिन ही। आपके जो शत्रु और विरोधी आपके लिए समस्या का कारण बन रहे हैं, वो निश्चित रूप से लंबे समय तक शांत हो जाएंगे।
3: और चलिए अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
4: तुला राशि, इस समय अगर आप प्रयास करें तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में नई शुरुआत होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से अब ये जान लेते हैं कि तंत्र मंत्र के असर को काटने के लिए लौंग का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए।
4: बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है, निगेटिव ऊर्जा का प्रयोग कर दिया है, मैं बीमार रहता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। तो तंत्र मंत्र के असर को काटने के लिए लौंग का कैसे प्रयोग करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। जितना जल्दी जल अर्पित करेंगे उतना बेहतर होगा। इसके बाद लौंग को पत्थर पर घिस करके अपने माथे या कंठ पर तिलक लगाएं। लौंग का घिसा हुआ तिलक लगाने से आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। घर से निकलते समय एक लौंग अपने शर्ट, टी शर्ट या कुर्ते के ऊपर वाले जेब में रख करके जाइएगा। ऐसा करने से भी आप नजर दोष से, नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। नवरात्रि में चांदी की दो लौंग बनवाइए, आराम से बन जाती है। दो लौंग चांदी की नवरात्रि में बनवाइए और देवी को मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा नवरात्रि में किसी भी दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर का तंत्र मंत्र बड़ी आसानी से समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग चांदी के लौंग बनवा करके डिबिया में रख करके पूजा स्थान पर रखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी।
3: और चलिए अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
4: मकर राशि, करियर की समस्या दूर होगी, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

रहे हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: के योग हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है। दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका तीसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मेल आईडी दी गई है, उस पर आप मेल करिए, पंडित जी तक अपना प्रश्न आप पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं तीसरा प्रश्न किसका लेके।
0: जी अगला प्रश्न पीयूष जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। पीयूष जी की जन्म की तारीख है 4 मार्च 1988। जन्म का समय सुबह के 7:35। जन्म स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। पीयूष कह रहे हैं कि मेरा एक विवाह पहले हुआ था, वो विवाह ब्रेक हो चुका है, आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावनाएं बनती हैं? पीयूष, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी दूसरी शादी साल 2027 के शुरुआती समय में दिख रही है और आपका ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा और सेकेंड मैरिज आपकी कुल मिला जुला के सफल रहेगी। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए वक्त हो चला है आज के आपके चौथे सवाल का, पंडित जी चौथा सवाल किसका रहेगा?
0: जी अगला प्रश्न राहुल जी ने बरेली उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1985। जन्म का समय दोपहर में 1:55। जन्म स्थान है बदायूं, में लिखते हैं बरेली से। ये कह रहे हैं कि काफी समय से मेरे पास एक जमीन है और मैं उस पर अपना मकान बनवाना चाहता हूं, लेकिन मकान नहीं बनवा पा रहा हूं, बार बार उसमें अड़चने और रुकावटें आ जा रही हैं। तो मैं अपना मकान कब तक बनवा पाऊंगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? राहुल, आप अगले साल के अप्रैल के बाद, अप्रैल 2027 के बाद मकान बनवाने की कोशिश करिएगा, आप निश्चित रूप से अपना मकान बनवा सकेंगे और आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उसको ले करके बेवजह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 12 अक्टूबर को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 12 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

0: करेंगे पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि देवी की पूजा करते समय किस तरह के तिलक का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, देवी की पूजा शाक्त तंत्र की पूजा मानी जाती है। इसमें हमेशा लाल रोली या लाल चंदन के तिलक का प्रयोग करना चाहिए और ये तिलक मस्तक पर और कंठ पर गोलाकार होना चाहिए। तो देवी की जब भी आप पूजा करें लाल रंग का तिलक लगाकर पूजा करें, आपको लाभ ज्यादा होगा।
1: और चलिए आप जान लेते हैं पंडित जी से 12 अक्टूबर 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 12 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को सफेद फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा में सफलता का वरदान मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 12 अक्टूबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज की गुडलक राशि कौन सी है इस बारे में जान लेने का।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिक्षा में कैसे होते हैं। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। वृश्चिक वाले स्टूडियस होते हैं, काफी उम्र तक 35-40 साल तक या कभी कभी वृद्धावस्था में भी ये लोग पढ़ाई करते रहते हैं, निरंतर पढ़ते रहते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए इनको बृहस्पति देव की उपासना करनी चाहिए।
1: और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं सबसे जरूरी प्रश्न के बारे में, जो है आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: बताते हैं कि अगर आप मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 रातों को करिएगा। प्रत्येक रात को देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करिएगा। लगातार 3 रातों को नवरात्रि में ऐसा करें, आपको बेहतर और मनचाही नौकरी मिल जाएगी।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में मेरे साथ पंडित जी के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिहार के कटिहार जिले में, जहां के जिला अधिकारी अपने काम से काफी चर्चा में हैं। वो अचानक से जिले के एक स्कूल में पहुंचे और लगे बच्चों को पढ़ाने, उसके बाद उनके साथ खाना खाया, उनके साथ ही अपनी थाली भी धो डाली।
7: जिला अधिकारी यानी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, यानी जिले के लिए जो भी काम होंगे इसी अधिकारी के जरिए होंगे। लेकिन जब यही अफसर बच्चों के बीच पहुंचकर उनका दोस्त बन जाए, उनका टीचर बन जाए, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाए और अपनी जूठी थाली भी खुद धोए, तो तस्वीरें एक बड़ी सीख दे जाती हैं। बिहार के कटिहार जिले के DM आशुतोष द्विवेदी का कुछ ऐसा ही अंदाज सबको भा रहा है। स्कूलों का मुआयना करने के क्रम में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी कोढ़ा प्रखंड के रोतारा मिडिल स्कूल अचानक पहुंच गए और 10वीं क्लास में जाकर बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने लगे, सवाल पूछे, जवाब लिखवाए और उनके आत्मविश्वास को भी परखा।
8: बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो अपना उनको जो पेपर भी पूरा डिस्कशन हुआ और उसके अलावा भी हमने ह्यूमन आई से रिलेटेड उनसे डिस्कशन किया, क्वेश्चंस पूछे, बच्चे बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग बता रहे थे और हम लगभग 80% बच्चे ऐसे थे जो सवालों के जवाब दे ले रहे थे। शेष जो 20% बच्चे उनके लिए हमने निर्देश दिया कि उनको रिमेडियल का सजेशन दे।
7: डीएम साहब यही नहीं रुके, अब बारी थी बच्चों के साथ भोजन करने की तो जमीन पर बैठकर मिड डे मील भी खाया, बच्चों से बातचीत भी की, लेकिन जब खाना खत्म हुआ तो डीएम आशुतोष द्विवेदी ने अपनी जूठी थाली खुद उठाई और धो भी दी। उनका ये अंदाज सभी को काफी पसंद आया।
8: ये मुझे हमेशा से लगता है कि हम लोगों को आत्मनिर्भरता के क्रम में बचपन में जो हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं वो ये है, कम से कम अपना काम स्वयं से करें और बच्चे हम लोग को देख करके सीखते हैं। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, सिर्फ उनको बोलेंगे कि तुम ऐसे करो, तो उससे बच्चे नहीं सीखते हैं। इसलिए अपनी थाली धोनी चाहिए, उठा के रखनी चाहिए सबको। तो हमें भी बहुत सारे बच्चे थे, उनमें संदेश जाएगा कि अपना सारा काम खुद से करने में कोई हर्ज नहीं है।
7: चलते चलते डीएम साहब ने बच्चों की पढ़ाई में सुधार के लिए रेमेडियल क्लास चलाने का निर्देश स्कूल प्रशासन को दिया, ताकि कमजोर बच्चों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। क्लासरूम में पढ़ाई से लेकर जमीन पर बैठकर भोजन करने और अपनी थाली खुद धोने तक डीएम का यह अंदाज बच्चों को पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की सीख भी दे गया। कटिहार से विपुल राहुल, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब बात करते हैं फिल्म दृश्यम 3 की। दृश्यम द कंक्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। सिनेमा हॉल्स में इसका शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहले दिन 62 करोड़ के कलेक्शन के साथ धमाका करने वाली अजय देवगन की फिल्म ने 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है।
9: अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की दहाड़, 9वें दिन कमाई पहुंची 450 करोड़ के पार। हालांकि दृश्यम 3 शुक्रवार को ही 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी, लेकिन शनिवार को इसने 42 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके नया रिकॉर्ड बना दिया। दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने देश के साथ ओवरसीज में भी जमकर कमाई कर रही है। फिल्म को विदेशों में भी शानदार रिएक्शन मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 9 दिनों में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 ने विदेशी कमाई को मिलाकर 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आने वाले दिनों में कलेक्शन 500 करोड़ के पार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि दृश्यम 3 का बजट 110 करोड़ बताया जा रहा है। ओपनिंग डे पर 62 करोड़ के कलेक्शन के साथ दृश्यम द कंक्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, जबकि दूसरे दिन इसका कलेक्शन 53 करोड़ 50 लाख रुपए था। सेक्निल के मुताबिक दृश्यम 3 की कमाई में दूसरे शनिवार को 10 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 14,000 के पार शूज के साथ 26 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। वहीं पर दूसरे शुक्रवार को कमाई सिर्फ 14 करोड़ 5 लाख रुपए रही, यानी दूसरे शुक्रवार के मुकाबले 72% की जबरदस्त बढ़त है। इसके साथ ही फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 452 करोड़ 14 लाख पहुंच चुका है, जिसमें विदेशों से भी हुई 100 करोड़ की कमाई शामिल है। दृश्यम द कंक्लूजन की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। फिल्म का तूफान दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा रही कि फिल्म की कमाई की रफ्तार यूं ही बनी रहती है तो फिल्म सिर्फ 10 दिनों में दुनिया भर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। आज रविवार को भी जबरदस्त उम्मीद है। दर्शकों में दृश्यम के इस फ्रेंचाइज के लिए जबरदस्त प्यार बना हुआ है, जो सिनेमाघरों में बढ़ती भीड़ से साफ दिख रहा है। लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया और विजय सालगांवकर के आखिरी दांव को देखने का रोमांच, और इसी के चलते दृश्यम द कंक्लूजन काफी पसंद की जा रही है। दृश्यम 3 ने अपने पहले ही हफ्ते की कमाई से साल 2026 की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, इसलिए आज रविवार को भी बड़ी कमाई की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: क्या है देवी कवच का रहस्य? देवी कवच के पाठ के क्या हैं लाभ? और देवी कवच के पाठ के क्या हैं नियम, जानिए दुर्गा कवच की महिमा सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: क्या है देवी कवच का रहस्य, देवी कवच के पाठ के क्या हैं लाभ, और देवी कवच के पाठ के क्या हैं नियम, जानिए दुर्गा कवच की महिमा सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, तपस्या और साधना की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर जारी। नागपुर में शारदीय नवरात्रि की धूम, दुर्गा पूजा पंडाल में विराजी माता रानी, पारंपरिक परिधान में लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े।

0: कोलकाता में वंदे मातरम की थीम पर सजा शानदार पूजा पंडाल, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, आजादी के नायकों को किया गया याद।
1: देवभूमि उत्तराखंड में कुंजापुरी मेले का शुभारंभ, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति, अलग अलग झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र।
2: गौरा देवी बसंत।
0: राजस्थान का धौलपुर में धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन की जयंती, शोभा यात्रा में दिखे संस्कृति के रंग, कलाकारों ने बांधा समा।
1: दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट से सर्दी में हाहाकार।
0: रशिया पहुंचा आईएनएस सहयाद्री, कल से दोनों देशों की नौसेना मिलकर करेगी युद्धाभ्यास, इंद्र 2026, समुद्री क्षेत्र में बेहतरीन तालमेल बनाना है लक्ष्य।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा, नई सुबह और नई गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग डोज लेकर।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन पांच खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
0: शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे शारदीय नवरात्रि के साथ, शक्ति उपासना के महापर्व का आज दूसरा दिन है, आज मां की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है, तमाम मंदिरों में तड़के से ही लोग माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, आज तड़के मां की मंगला आरती भी हुई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, आपको तमाम शहरों में मां दुर्गा की आराधना की तस्वीरें और भक्तों का उत्साह दिखाएंगे।
1: इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे कोलकाता के ऐतिहासिक संतोष सुमित्रा स्क्वायर में, जहां पर इस बार भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का अनूठा रंग देखने को मिल रहा है। पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसका लाइट एंड साउंड शो है, यहां पर लेजर लाइट्स के माध्यम से भारत की आजादी की लड़ाई के सफर को दिखाया गया है, इसकी झलक भी आगे दिखाएंगे। साथ ही वंदे मातरम की थीम पर बने लाल किले के भव्य प्रांगण में किस तरह से हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, ये भी दिखाएंगे।
0: शुभ समाचारों में आपको बाबा केदारनाथ के धाम भी लिए चलेंगे, देवभूमि में पवित्र केदार घाटी में बाबा केदार के जयकारों की गूंज लगातार तेज होती जा रही है, कठिन पहाड़ी रास्ते हों या फिर आसमान से बाबा के धाम तक पहुंचने का सफर, हर ओर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, सबसे खास बात यह है कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 17 लाख के पार पहुंच चुकी है।
1: आपको मौसम का बदला तेवर भी दिखाएंगे, दरअसल दिल्ली हरियाणा पंजाब समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में मौसम ने पलटी मारी है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, आसमान बादलों से ढका हुआ है, बूंदाबांदी हो रही है, पॉल्यूशन और जो थोड़ी बहुत गर्मी थी वो गायब हो चुकी है, कई राज्यों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो आज के कूल कूल मौसम को देखकर यही लग रहा है कि सर्दी अब ज्यादा दूर नहीं है।
0: बात करेंगे कैम्बोडिया की, जहां पर भारत की तरह ही पितरों को याद किया जाता है और उनकी मुक्ति के लिए धार्मिक आयोजन होता है, कैम्बोडिया की बौद्ध संस्कृति का ये अहम हिस्सा है, कैम्बोडियाई लोगों का ये मानना है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर लौटती हैं और इसलिए जीवित वंशज अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें भोजन अर्पित करते हैं, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
1: नवरात्र के दूसरे दिन देशभर में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना हो रही है, माता की भक्ति में मंदिर रंग उठे, देशभर के मंदिरों में भक्तों का मेला लगा हुआ है, मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में जप माला कमंडल है, तपस्या और ज्ञान की मानी जाती है प्रतीक।
0: दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं और भक्तों की कतारें लगी हैं, तमाम लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो वहीं झंडेवालन मंदिर में मां दुर्गा की आरती उतारी गई और साथ ही श्रद्धालुओं ने जय माता दी के जयकारे लगाए।
1: तो वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, नवरात्र को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है, सुबह से भक्त मां मुंबा देवी की पूजा कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
0: जम्मू कश्मीर के कटरा में शारदीय नवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ गया है। मां वैष्णो देवी और अर्धकुंवारी माता गुफा में मां के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्त मां के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं।
1: तो वही नवरात्र के दूसरे दिन हैदराबाद के प्रसिद्ध भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। चार मीनार के पास स्थित मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद महाआरती की गई। मां के जयकारे और आरती की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा।
0: वडोदरा में दिखा गरबा का रंगारंग अंदाज। विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास गरबा में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चनिया चोली और कुर्ता पजामा जैसे पारंपरिक गुजराती परिधानों में सजे विदेशी मेहमान गुजराती लोक संगीत की धुन पर जमकर थिरके। गरबा के जरिए विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति और गुजरात की समृद्ध परंपरा को करीब से जाना।
1: तो वहीं गुजरात के पोरबंदर में नवरात्रि उत्सव के दौरान दिखी अनूठी परंपरा। दरअसल 102 साल पुरानी भद्रकाली माताजी गरबी के दिवेचा कोली समुदाय ने निभाया प्राचीन अनुष्ठान। यहां पर पुरुषों ने पारंपरिक अंदाज में गरबा कर मां की आराधना की। खास पोशाक और मोतियों से जड़ी आकर्षक टोपियां पहनकर पुरुष गरबा करते नजर आए।
0: कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का भव्य उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास अंदाज में पंडाल सजाया गया था। लाल किला, सेलुलर जेल और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं के जरिए गुलामी से आजादी तक के संघर्ष की कहानी दिखाई गई।
1: तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी, शिंकुला दर्रे पर बर्फ के बीच फंसे पर्यटकों के लिए पुलिस या मददगार बनी है। दरअसल बर्फबारी के चलते करीब 40 गाड़ियां, 25 बाइक रास्ते में फंस गई। शिंकुला टॉप पर सड़क पर जमी बर्फ और ब्लैक आइस के कारण फिसलन भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

0: शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर घर और मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना हो रही है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है तो विधि विधान से माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जा रही है।
1: नवरात्र में आज हम आपको बताएंगे मां ब्रह्मचारिणी की महिमा क्या है, नवरात्र में कैसे करनी है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, किस भोग से मां को करना है प्रसन्न और मां की साधना से कौन से वरदान पाए जा सकते हैं।
0: लेकिन उससे पहले आपको देश भर में नवरात्रि पर्व के उत्साह की तस्वीर दिखा देते हैं जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सामने आई है। कोलकाता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मैंगलुरु हो, महापर्व यहाँ पर नवरात्र के रंग देखने को मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली के छतरपुर में स्थित कात्यायनी मंदिर की तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था नजर आ रही है। वहीं कटरा के श्री माता वैष्णो देवी धाम में भक्त जयकारों के साथ माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं।
1: और गुजरात के बनासकांठा में अंगाजी धाम में उत्साह उल्लास का माहौल है। वहीं कोलकाता में वंदे मातरम की थीम पर सजा दुर्गा पूजा पंडाल देशभक्ति और भक्ति के अनूठे संगम को दिखा रहा है। इसी बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दशहरा महोत्सव का शुभारंभ को लेकर भी उत्सव की रौनक दिखाई दे रही है।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों की रौनक, भक्तों की श्रद्धा और सांस्कृतिक आयोजनों की भव्यता नवरात्रि के इस पर्व को और भी ज्यादा खास बना रही है। 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। देश भर से तमाम मंदिरों से पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं, सुबह मंगला आरती के साथ शुरुआत हुई।

0: कटरा से कामाख्या तक, दिल्ली से गुजरात तक, शहर शहर दुर्गा पूजा की दिव्य छटा देखने को मिल रही है। मंदिरों में माता का भव्य दरबार सजा हुआ है। तड़के से ही दर्शन पूजन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई है। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज नवदुर्गा के ब्रह्मचर्णी स्वरूप की आराधना हो रही है। आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा माता के ब्रह्मचर्णी स्वरूप का संबंध तपस्या, त्याग, संयम और साधना से माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए इस स्वरूप में उनकी उपासना की जाती है।
1: माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी और जिस तपस्या के बाद भगवान शिव के प्राप्ति के लिए उन्होंने लंबे समय तक पत्तों का, फल का, सब का त्याग करके केवल वायु धारण करके तपश्चर्या की, इसलिए इनको तपस्विनी के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में इनकी पूजा की जाती है।
0: वैसे तो माता का हर स्वरूप अनुपम है और उनके हर रूप की अपनी विशेषता है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है ये भी जान लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। इनका स्वरूप पूर्ण आभा मंडित और सुंदर है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला तो बाएं हाथ में कमंडल है। वे ध्यान मग्न स्वरूप में है और उनके चेहरे पर परम आनंद का भाव है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। कहते हैं कि जैसा तप माँ ब्रह्मचारिणी ने किया, वैसा तप करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। माना जाता है कि नवरात्र के दूसरे दिन देवी माँ के इस स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का भी निदान हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इनकी पूजा से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से बल, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जानकार मानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मन से सारे विकार दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। उनकी उपासना से आत्मबल, धैर्य और एकाग्रता में वृद्धि होती है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है। आपको बताते हैं कि उनकी पूजा का विधान क्या है। आसन पर बैठकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल चढ़ाएं। माँ को दूध, दही, घी और मधु से अभिषेक करें। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध से बने व्यंजनों और मिश्री का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को शुद्ध घी का भोग अर्पित करें। माँ को भोग लगाने के बाद मंत्रों का जाप करते हुए उनकी आरती करें। माँ दुर्गा के 9 रूपों का क्रम मानव चेतना के विकास, आत्मिक उन्नति और माता पार्वती की आध्यात्मिक यात्रा की क्रमिक कहानी है। माँ ब्रह्मचारिणी को नवरात्र के दूसरे दिन ही पूजे जाने और उन्हें माता का दूसरा स्वरूप मानने के पीछे गहरे कारण है, जिनका संबंध लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उन्हें पाने के लिए कठिन परिश्रम से है, तो साथ ही आध्यात्मिक चेतना के दूसरे चरण से भी है। यही कारण है कि सृष्टि और साधना के नियम में माँ ब्रह्मचारिणी को द्वितीय स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से तमाम कष्ट कट जाते हैं, साथ ही माँ के आशीर्वाद से विशेष कामनाओं की पूर्ति भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर, जहां पर नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया, फिर मंगला आरती हुई और आरती में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे, मां का आशीर्वाद लिया गया।

ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। तपस्या की देवी मानी जाती हैं, संयम की देवी मानी जाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। और सुबह से ही तमाम मंदिरों में देशभर में पूजा अर्चना जारी है। मंगला आरती के साथ शुरुआत की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जहाँ पर भव्य रूप से माता का श्रृंगार किया गया है, मंदिरों की सजावट की गई है, दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं।

0: आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है। द्वितीय दिन भगवती ब्रह्मचारिणी का है। भगवती ब्रह्म माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए यह ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती हैं। ब्रह्मा का आचरण करती हैं, इसलिए ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती हैं। आज के दिन साधक जन अपने मन को स्वादिष्ठान चक्र में स्थित कर योग साधना में प्रविष्ट होते हैं। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे भक्त जो है अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें इस चीज़ का पूर्ण विश्वास है कि माँ भगवती जगदम्मा उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं और करती हैं। इसी आस्था और इसी विश्वास से भक्त आते हैं।
1: तो देश भर से नवरात्रि के अद्भुत रंग हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुंबई से धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और अकोला से धनंजय सांबले हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपके पास आते हुए किस मंदिर में आप मौजूद हैं और किस तरह के रंग नवरात्रि पर देखने को मिल रहे हैं?
2: बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि नवरात्रि का दूसरा दिन है और जय माता दी, जय भवानी, जय अंबे की गूंज इस समय मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में देखी जा रही है। सबसे पहले आप भी थोड़ा सा मुंबा देवी मंदिर के दर्शन करें। माफ करिए, भीतर तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर मुंबा देवी माता का दर्शन करा देंगे। तमाम भीड़ इस समय पहुंची हुई है, हर राज्यों से लोग यहां पर आ रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए। जहां तक भी आपकी नजर जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे, देवी भक्त ही नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई पर ही मुंबा देवी मैया का नाम यहां पर पड़ा हुआ है। खास बात यह है कि लोग अपने बच्चों के मुंडन करने के लिए यहां पर आते हैं। कुछ देर पहले उड़ीसा से एक परिवार आया था, उनसे हमारी बातचीत हुई और स्पेशली दर्शन करने के लिए आइए। देखिए माताएं जितनी हैं इस समय थाली बकायदा सजाकर दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और इस तरफ देखें, अच्छी खासी एक लंबी कतार मंदिर के परिसर में देखी जा रही है और मंदिर के बाहर भी लोग खड़े हैं। लगभग 2-2.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद देवी मैया के पास पहुंचे जा रहे हैं। बकायदा बाजार भी सजा हुआ है और थोड़ा सा चलते हैं मंदिर की तरफ। ये देखें, यहाँ से मैया का दर्शन हम थोड़ा सा कर सकते हैं। मुंबा देवी मैया है और जब भी कोई नया काम शुरू करता है तो यहाँ पर आकर के पहले माता का दर्शन करता है, उसके बाद काम शुरू होता है। आम खास सब यहाँ पहुँचते हैं, सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं सभी पहुँचते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोग अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं, सबसे पहले मुंडन करवाते हैं, उसके बाद में सीधे माता का दर्शन करने आते हैं। क्या भाई, कहाँ से आए हैं?
3: वड़ाला से।
2: तो मुंडन करना मुंबा देवी में जरूरी?
3: हाँ, जरूरी है। आजमगढ़ यूपी से।
2: देखा आपने किस तरीके से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हर कोई माता तक पहुँचना चाह रहा है। जाहिर है सुबह की एक बार 7 बजे आरती हो जाती है, उसके बाद 1 बजे की आरती होती है, फिर शाम की आरती होती है और फिर रात को 9 बजे की आरती होती है। हमेशा ही इस तरह से मैया का आरती भजन कीर्तन भी यहाँ पर लगातार चल रहा है, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। खास बात यह है कि बाजार देखिए किस तरीके से सजाया गया है। मैया को चढ़ाने वाली एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग, डिमांडिंग और स्टाइलिश जो चुनरी है वो है और थाली किस तरीके से सजाई गई है ये भी आप देख सकते हैं। कतार पे आते आते लोग ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर अपने घरों से ही माता के लिए मिठाइयां बना करके यहाँ पर लाया जाता है। और इस तरीके से मुंबा देवी मंदिर का परिसर है और भी यहाँ पर लोग परिवार संग पहुँचते हैं, सेल्फीज लेते हैं।
1: बिल्कुल लंबी लंबी कतार यहाँ पर है और माता के दर्शन के लिए धर्मेंद्र यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। और भी तस्वीरें आगे दिखाइएगा। एक बार अमरावती लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। धनंजय साबले वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, अमरावती के अभी किस मंदिर में आप मौजूद हैं और आज जो नवरात्रि का ये त्योहार, वहां पर कितनी भीड़ देखने को मिल रही है दूसरे दिन?
4: दीपाली और पूजा जी, आपको सबसे पहले जय माता दी, माता जी का जय जयकार करते हुए हम फिलहाल अकोला के सबसे बड़े रानी सती मंदिर में है, जहां आप देख सकते हो कि रानी सती माँ के इस सुंदर प्रतिमा को कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। ये राजस्थान के झुंझुनू के मंदिर, मुख्य मंदिर जो है वहां पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी अकोला में देखिए आपकी यहाँ पर जो है भक्त बड़े आस लगाए आते हैं क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और 9 दिन के बाद जो है भक्त बड़े आस्था के साथ माता के मंदिर में आते हैं। और सबसे अहम बात यही है कि यहाँ पर देखिए आप दिए लगाए हैं, जो मन्नत के दिए हैं और ये दिए जो लगाए हैं ये पूरी तरीके से घी के हैं, तेल के नहीं है। लगभग 441 दिए जो है पूजा जी यहाँ पर लगाए गए हैं और हर किसी की मन्नत माता रानी ने पूरी की है, जिसके बाद ही जो है यहाँ पर माता रानी के श्रृंगार और माता रानी की पूजा के लिए। माजी आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं, कितनी मन्नत मांगी है आपने, क्या कहा है?
5: बस यही दादी जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे हैं, हमारे परिवार पे बना रहे हैं, ये सब आशीर्वाद होना माता रानी से।
4: अगले 9 दिन के लिए क्या नियोजन है पूरा, पूजा पाठ किस तरीके का होगा?
5: मंगल पाठ करते हैं रानी सती दादी जी का, और घर पे पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, और बस जो भी अपने पितेश्वर के इनके उनके सब करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं।
4: तो देखिए भक्त बड़े आस लगा के आते हैं, क्योंकि भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए जो है यहाँ पर माता रानी जो है उनके दर्शन के लिए आते हैं। हमारे पास हमारे साथ और एक भक्त है, क्या कहेंगे माता रानी के इस पूरे परिसर में 9 दिन के लिए क्या नियोजन किया गया है?
6: यहाँ ये जो मंदिर है ये श्री रानी सती दादी जी का शक्ति का स्वरूप के रूप में मंदिर है, यहाँ जो भी आता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। हम यहाँ पे 500 दीपक लगाते हैं मनोकामना के, और यहाँ पे साल भर दादी जी का भक्ति चलती है, लोगों की सहायता के लिए हम यहाँ साल भर उन्हें बैसाखी कुबड़ी सब देते हैं, साल भर अन्नदान होता है, और साल भर जोत जलती है, अखंड जोत जलती है साल भर, उसी के कारण दादी जी का यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। बहुत 50 साल पुराना मंदिर है रानी सती दादी जी का यहाँ पे।
4: इसका क्या महत्व है, रानी सती का क्या कहानी क्या है?
6: ये रानी सती दादी जी महाभारत में उत्तरा हुई थी, अभिमन्यु जी की पत्नी थी, अब इनके गर्भ में ही आखिरी ये जो पांडव का आखिरी अंश था, इसीलिए ने वहाँ जब सती होने का मौका नहीं मिला, बाद में कलयुग में श्री रानी सती दादी जी के नाम से हुई, भगवान श्री कृष्ण जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया था, उसी के बाद में सती होके एक यहाँ पे देवी के शक्ति के रूप में है।
4: तो देखिए पूजा जी यहाँ पर देवी के शक्ति के रूप में जो है रानी सती दादी जी यहाँ पर है, और ये सुंदर प्रतिमा जो है आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से ये फूलों से सजाया है, और साल भर इस पूरे मंदिर और उनके ट्रस्टी की ओर से जो है लोगों के लिए सहायता के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जाता है कि किसी को अगर बैसाखी चाहिए, किसी को अगर स्ट्रेचर चाहिए, तो वो निशुल्क यहाँ पर वो प्रोवाइड करते हैं। तो
1: मैं बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मुंबई लिए चलते हैं अब दर्शकों को। धर्मेंद्र आप बेहद खास मुंबा देवी मंदिर में मौजूद हैं, जरा इस मंदिर के इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में दर्शकों को बताइएगा।
2: देखिए इस मंदिर के बारे में जहां तक हमारे पास जानकारी है, आसपास सभी व्यापारी हैं और मछुआरों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया कि बिजनेस बहुत ज्यादा ठप हो गए थे, और उसके बाद देवी को यहां पर लाया गया और लोग पूजने लगे, धीरे धीरे जो भी मन्नतें मांगी जा रही थी वो पूरी होने लग गई, मुंबई को संभाल लिया, साउथ मुंबई समुद्र के बीचों बीच इस मंदिर की स्थापना की गई है, और फिर मुंबा देवी नाम से इस मंदिर का नामकरण हो गया। हर कोई अब यहाँ पर आता है दर्शन करने के लिए, खास तौर से मुंडन लोग बच्चों का कराने आते हैं, बहुत ही सुंदर प्रसाद भी मिलता है। थोड़ा सा मैं करीब ले चलता हूँ, जो खास प्रसाद है ये देखिए, आपको बताएं कि इस तरह से लोग आते हैं, खोवा खरीदते हैं, और खोवे का ये प्रसाद होता है, देवी को भी चढ़ाते हैं, उसके बाद लोग घर पर जाते हैं, और खास बात ये है कि जिस तरीके से पूजा के बाद लोग बाहर निकलते हैं और मीठा पानी करा जाता है, जलपान जिसे कहते हैं, बाकायदा बैठने की जगह होती है यहाँ पर, जो भी मिठाई की दुकानें हैं वहां लोग जाते हैं, बैठ करके मिठाई खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं, क्या नाम है साहब आपका?
7: अच्छे लाल मौर्य।
2: मौर्य साहब कितने साल से आपकी दुकान है ये?
7: यहाँ 45 साल हो गए।
2: 45 साल से। थोड़ा सा बताएं ये कितना ज्यादा जरूरी है मिठाई, लोग बहुत
7: फेमस है यहाँ का, और अगर पब्लिक को नहीं मिलता तो नाराज होते हैं, ये मिठाई यहाँ का फेमस है, माई के प्रसाद है, इसको जरूर चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए।
2: अच्छा ये थोड़ा मंदिर के बारे में बताएं, मुंबा देवी मंदिर बहुत ज्यादा प्रख्यात है, पौराणिक कथाएं हैं इसकी, आप कितना जानते हैं, क्योंकि 45 साल से आप इधर हैं।
7: ये माता जी का मंदिर जो कोली लोग को देवी थी, ये जब कोली लोग जो है इनको गिरवी रख दिया मामा मारिज के पास, तो मामा मारिज के पास से जब छुड़ाने के लिए आए तो माता जी गई नहीं, इनकी पूजा मामा मारिज करता था, इसके लिए इनका नाम मुंबा देवी पड़ा, और मुंबा देवी के नाम से बम्बई पड़ा है।
2: अच्छा जी, तो ये देखिए बड़े ही 45 साल से अंकल यहाँ पर हैं और इस तरह की बहुत सारी मिठाई की दुकानें यहाँ पर।
1: चलिए ठीक है धर्मेंद्र, और भी तस्वीरें दिखाइएगा आप, आपके पास लौटेंगे और अकोला भी चलेंगे। लेकिन देखिए देश भर के शक्तिपीठों में माँ के दर्शन पूजन के लिए भक्त तो पहुंच रहे हैं, हर तरफ उत्सव और उमंग का माहौल है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कोई परिवार के सुख समृद्धि की कामना लेकर आया है तो कोई जीवन में सुख शांति और सफलता का आशीर्वाद मांग रहा है,
8: और हर चेहरे पर भक्ति का भाव और हर जुबा पर माता रानी का नाम गूंज रहा है। देखिए तस्वीरें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है, उनके स्वरूप के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना को लेकर दर्शक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।

0: कन्या देवी मंदिर में सुबह सुबह भक्त बड़ी संख्या में मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। मां का ये धाम 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नवरात्रि पर यहां मां की कृपा पाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं।
1: हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सुबह सवेरे नवरात्र की रौनक हर मंदिर में नजर आ रही है। मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु

0: तो इन्हीं तस्वीरों के साथ मुंबई और अकोला की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, तपस्या और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, GNT पर शक्ति उत्सव दिन भर जारी। नागपुर में शारदीय नवरात्रि की धूम, दुर्गा पूजा पंडाल में विराजी माता रानी, पारंपरिक परिधान में लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े। कोलकाता में वंदे मातरम की थीम पर सजा शानदार पूजा पंडाल, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, आजादी के नायकों को किया गया याद। देवभूमि उत्तराखंड में कुंजापुरी मेले का शुभारंभ, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति, अलग अलग झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। राजस्थान के धौलपुर में धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन की जयंती, शोभा यात्रा में दिखे संस्कृति के रंग, कलाकारों ने बांधा समा। दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: रखते हुए मां की आराधना कर रहे हैं और राजधानी दिल्ली में आस्था और उल्लास के रंग रामलीला में देखने के लिए मिल रहे हैं। दिल्ली के तमाम शहरों में उत्सव भक्ति के रंग की अलग अलग तस्वीरें आप देखें। वहीं गुजरात के वडोदरा में भक्ति शक्ति उत्सव की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ जहां पर सैकड़ों लोगों ने माता रानी की भव्य आरती की, तो वहीं दूसरी तरफ गरबा का भी आयोजन किया गया। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ लोग माता रानी की पूजा आराधना में जुटे हैं, तो वहीं रंगारंग गरबा का भी आयोजन किया गया है।
1: तो वहीं विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास गरबा में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। चनिया चोली और कुर्ता पजामा जैसे पारंपरिक गुजराती परिधानों में सजे विदेशी मेहमान गुजराती लोक संगीत की धुन पर जमकर थिरके। गरबा के जरिए विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति और गुजरात की समृद्ध परंपरा को करीब से जाना। और इसी बीच मुंबई से और अकोला से खास तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय और धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस बार पिछली बार के मुकाबले क्या खास देखने को मिल रहा है और गरबा के लिए क्या कुछ आयोजन, किस तरह से पंडालों को सजाया गया?
2: देखिए, सबसे पहले तो के दर्शकों को मुंबई देवी मंदिर में जो आरती इस समय चल रही है उसके भी दर्शन कराते हैं। किस तरीके से हर कोई भक्ति मोह हुआ हुआ है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है, इस वजह से क्योंकि मुंबई देवी मैया की आरती जैसे ही शुरू हुई है ये सभी मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरीके से घंटियां बजाई जा रही है, तमाम लोग इस समय माता रानी के दरबार में मौजूद हैं और आरती का समय है। बहुत ही शुभ माना जाता है इस घड़ी को जो कोई इस तरह से आरती में सम्मिलित हो जाता है। कुछ देर पहले मैंने ये भी बताया था कि आम खास हर कोई यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचता है। कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उनकी भाभी शालिनी ठाकरे आई हुई हैं और भीतर अपनी सिक्योरिटी के साथ इस समय माता रानी की आरती उतार रही हैं। ये इस समय आरती का समय चल रहा है, 3 टाइम की आरतियाँ होती हैं। अब इसके बाद सीधे दोपहर को 1 बजे आरती होगी। मंदिर परिसर में एक कड़ी सुरक्षा के साथ लोगों को भीतर भेजा जा रहा है, बकायदा चेकिंग होती है, मशीनें लगाई गई हैं कि किसी भी तरीके का कोई अफरा तफरी ना हो। सुरक्षा आप देख ही रहे हैं कि अच्छा खासा एक संख्या पुलिस की भी यहां पर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं हर कोई नवरात्रि के उत्सव में मुंबई देवी मंदिर में पहुंचना चाहता है। मुंबई में मुंबई देवी मंदिर के अलावा महालक्ष्मी मंदिर भी है, वहां भी लोग यहां से दर्शन करने के बाद तुरंत जाते हैं और इस तरह से जो तीसरे मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रख्यात है वो वेस्टर्न लाइन मुंबई में जीवदानी मंदिर है। 1800 सीढ़ियां चढ़नी होती है, उसके बाद माता रानी का दर्शन होता है और शाम को हर कोई गरबा करता है। साथ ही साथ घर गुरुजी यानी घरों पर भी लोग देवियों की स्थापना किए हैं और साथ ही साथ बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गणेश उत्सव में गणेश जी की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं पंडालों ने स्थापना कर रखी थी, स्थापित की थी, उसी तरीके से मुंबई में भी तमाम बड़े पंडाल हैं जहां पर 30 फीट ऊंची देवी 40 फीट से ऊंची देवी की स्थापना की गई है, पूजा पाठ किया जाता है, वहां भी लोग पहुंचते हैं और देवी माँ का दर्शन करते हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से सब भक्ति मोह हुआ है, बच्चों को लेकर के लोग यहाँ पहुँचते हैं स्पेशली दर्शन कराने के लिए। देखिए लोग जो हैं माता रानी तक पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए, मिन्नतें उनकी पूरी हो जाए इस मांग के साथ लोग यहाँ पहुँचते हैं और वाकई में नवरात्रि।
0: मुंबई में तो अभी आरती चल रही है जैसा कि धर्मेंद्र आप दिखा रहे हैं। एक बार धनंजय के पास चलते हैं, अकोला। धनंजय, अभी जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ खास हो रहा है और इस बार के नवरात्रि में आपको मंदिरों में किस तरीके से तैयारी कुछ अलग पहले से दिख रही है ये भी बताइएगा।
3: बिल्कुल पूजा जी और दीपाली जी, इस वक्त जो है इस साल जो है नवरात्रि में बहुत अनोखी चीज ये दिखाई जा रही है कि लोगों की मनोभावना जो है मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। माता रानी जो है अपनी जो भक्तों की जो भी मनोकामना है वो पूरी करती है। सुंदर सजाई है माता रानी, रानी सती की ये प्रतिमा आप देख सकते हो। दूसरी ओर जहाँ पर मनोकामना पूरी होती है, पूरी होने के बाद जो है यहाँ पर जो दीप जलाए जाते हैं वो अखंड दीप ज्योत जो है वो उसे निरंतर जो है दिन भर हर भक्त जो है कि अपना खुद का दिया है, अपनी खुद की मनोकामना पूरी हुई इसलिए अपने ही दिए में नहीं घी डालते हैं। तो जो भी उनसे होता है, जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, वो खुद होकर यहाँ पर अपने दीप में दीपकों के साथ यहाँ पर जिस तरीके से ये दीप लगाए गए हैं, वो हर दीप में जो है घी डालने का काम निरंतर चलता है। मानो इस वक्त की तस्वीरें, इस वक्त इस साल की तस्वीरें इतनी सुंदर ये है कि लोगों में इसके प्रति जो है वो बड़ी श्रद्धा यहाँ पर देखी जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर भक्त जो है माता रानी से कुछ ना कुछ मांगते रहता है। माता रानी का आज दूसरा दिन है, क्या मांगा है माता रानी से, कितना भरोसा है माता रानी पर?
4: भरोसा तो है ही ना
5: है।
4: बहुत भरोसा है माता पे, 9 दिन तो पूरी श्रद्धा से आते हैं भैया, करते ही है ना।
3: दीप जलाए हैं यहाँ पर?
4: हाँ नहीं, दीप तो हम पहले इकट्ठा दे देते ना, भैया देते हैं हमारे देवर।
3: तो देखिए यहाँ पर पूजा जी की भक्त में जो है 9 दिन का ये दृश्य रहता है उनके मन में कि माता रानी जो है सुंदर सजाई है यहाँ पर, सुंदर जो चांदी और सोने के जो आभूषण है उससे माता रानी के इस मूर्ति को यहाँ पर सजाया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पूजा अर्चा भी यहाँ पर की गई है, कल जो नवरात्रि की घट स्थापना है वो भी यहाँ पर की गई है, और साथ ही इस तरीके से मंदिर परिसर को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए ये छोटी ये बच्चा है या आका है, लड़का है। देखिए यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए छोटे से बच्चे को लाया गया है, मानो माता रानी के
0: जी बिल्कुल। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, उमंग है नवरात्रि के इस पर्व को लेकर। आप बने रहिए धनंजय और धर्मेंद्र हमारे साथ। इसी बीच जरा दर्शकों को दिखा देते हैं गरबा की रौनक।

0: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि पर्व का मतलब है माँ की आराधना, माँ की भक्ति और उपासना। जीएनटी पर दिन भर आज हम आपको अद्भुत रंग नवरात्रि के दिखाने वाले हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं, तमाम जानकारियां देने वाले हैं। कोई मंदिर जाकर माँ के चरणों में शीश नवाता है तो कोई गरबा और दांडिया रास के जरिए माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाता है।
1: गुजरात से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा की धूम देखने को मिल रही है, जहाँ रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग पारंपरिक संगीत की धुन

0: गुजरात में इन दिनों नवरात्र के महापर्व की धूम दिखाई दे रही है। राज्य का कोना कोना गरबा उत्सव के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। आस्था, शक्ति की उपासना और लोक संस्कृति का यह अनूठा संगम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिख रहा है।
1: हजारों थिरकते कदम माँ अम्बा की भक्ति से सजे गीतों पर झूम उठते हैं। वडोदरा से पोरबंदर तक गुजरात का ये उत्सव केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि सामूहिक ऊर्जा, उमंग और जीवन सांस्कृतिक धरोहर का सबसे भव्य उत्सव बन चुका है। आपको दिखाते हैं गुजरात में गरबा के रंग।

0: गरबे की धुन पर झूम रहे हजारों लोग। हर हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट और गरबे की ताल पर थिरक रहे पांव। ये तस्वीरें बड़ोदरा की है। नवरात्र के अवसर पर यहाँ लक्ष्मी विलास पैलेस के प्रांगण में गरबे का यह आयोजन खास हो गया है, क्योंकि आम लोगों के साथ साथ कुछ स्पेशल मेहमान भी इसमें बड़े उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक गुजराती रंग में रंगे इन मेहमानों के लिए यहाँ पर गरबे में भागीदारी यादगार बन गई।
1: Absolutely wonderful. Tens of thousands of people. We got the aarti prepared behind us. Garba in the center. First night of Navratri here in Vadodara, Gujarat. The ultimate place in the world to experience this. Lakshmi Villas with the family. Amazing.
0: गरबा खेल रहे ये मेहमान हैं यहाँ आए 25 देशों के कलाकार और कला प्रेमी, जो यहाँ सांस्कृतिक समारोह एकम 2026 में भाग लेने पहुँचे थे। कार्यक्रम के आखिरी दिन इन्हें गरबे के इस पारंपरिक उत्सव में शरीक होने का शानदार मौका मिला।
2: बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने देशों से डेलीगेट्स आए हैं और हमारा गरबा में पार्टी किया है। उन्होंने हमारे बड़ौदा की कल्चर की एक झलक साथ ले जा रहे हैं, यादें साथ ले जा रहे हैं, तो माँ की कृपा है कि सब यहाँ आ सके जी। वो बहुत खुश हैं और उन्होंने कभी इतने सारे लोगों को एक साथ एक जगह पे इतने प्रेम से नाचते और माँ की श्रद्धा में नहीं देखा है, तो एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा है।
0: नवरात्र का महापर्व चल रहा है तो माता की आराधना के लिए शहर शहर गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में गुजरात के पोरबंदर में 102 साल पुरानी भद्रकाली माताजी गरबी महोत्सव में भी लोग बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।
3: हम गरबा महसूस करते हैं कि हम ये गरबी पुरानी परंपरा से चली आ रही है, जिसमे सिर्फ पुरुष ही माता सर पर टोपी धारण करके खेल सकते हैं और जो गरबा लिखे गए हैं वो ही गरबा हम यह गाते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं उस तरह से सभी पुरुषों जो खेल रहे होते हैं वो हमारा गरबा का माता गरबा वो सामने गाते हैं। और ये इस बात का हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारी ये छठी बेटी यहाँ खेल रही है।
0: छोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग तक तमाम उम्र और तबकों के लोग इस उत्सव में शामिल होकर त्योहार मनाते हैं। खास बात यह है कि इस उत्सव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है।
4: यहाँ पे जो गरबी हम सब पुरुषों ही यहाँ से सब मेल पर्सन ही हम खेलते हैं और जो साउंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ नो साउंड पे, और यहाँ पे हारमोनियम रहता है, तबला रहता है और मंजीरा रहता है, तो उसी पे ही हम खेलते हैं। और यहाँ पे खेलने के लिए भी एक शिस्तबद्ध है कि हम लोग जो एक पुराने हमारे जो भी हमारे जितने वडील लोग हैं उसने सब जो सिखाया है वही हमें खेलना होता है, वही स्टेप में खेलना है।
0: गरबे का ये उत्सव केवल अंबे माँ की उपासना की धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए अपनी परंपरा और जड़ों से जुड़े रहने का भी माध्यम है। यही वजह है कि आधुनिक बदलावों के बावजूद समाज में ये सांस्कृतिक धरोहर अभी तक लगभग उसी रूप से बची हुई है जिस तरह सैकड़ों साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो वहीं गुजरात के जामनगर में अंगारा रास लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। शक्ति पर्व में नौजवानों का अंगारा सबको लुभा रहा है। नौजवान हाथ में मशाल लेकर अंगारा रास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरबा और रास उत्सवों में किया जाने वाला ये एक साहसिक और अद्भुत नृत्य होता है। इसमें नृत्य करने वाले कलाकार अपने हाथों में जलते हुए अंगारे या जलते हुए अंगारों से भरे पात्र लेकर सधे हुए अंदाज में डांडिया या रास नृत्य प्रस्तुत करते हैं।

और चलिए अब आपको दिखाते हैं कर्नाटका की मैंगलुरु में दशहरा उत्सव के शुभारंभ की तस्वीरें। मैंगलुरु दशहरा को कर्नाटक में आम आदमी का उत्सव भी कहा जाता है। ये मैसूर दशहरा की तरह ही अपनी भव्यता, अद्भुत रोशनी और अनूठी परंपराओं के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से कुडरोली श्री गोकर्णनाथ क्षेत्र और मंगला देवी मंदिर में आयोजित होने वाले इस 10 दिनों के उत्सव में धार्मिक अनुष्ठान और लोक कला के शानदार रंग देखने को मिलते हैं। उत्सव के पहले दिन कुडरोली मंदिर में ज्ञान की देवी माँ शारदा की विशाल और सुंदर प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसके साथ ही माता के 9 रूपों यानी कि नव दुर्गा और भगवान गणपति की मूर्तियां भी स्थापित की जाती हैं। हर दिन देवी माँ का अलग अलग रूपों में भव्य श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा मंगलुरु दशहरे की सबसे अनूठी और ऊर्जावान पहचान यहाँ का बाघ नृत्य है। स्थानीय युवा अपने पूरे शरीर पर बाघ जैसी पेंटिंग करवाते हैं और ढोल नगाड़ों की तेज थाप पर सड़कों पर पारंपरिक नृत्य करते हैं। दूर दूर से सैलानी इस उत्सव के नजारे को देखने के लिए मैंगलुरु आते हैं।

और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पहाड़ों में बदले मौसम की। इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी महसूस होने लगा है। सुबह शाम की ठंड बता रही है कि सर्दियां धीरे धीरे करीब आ रही हैं, लेकिन पहाड़ों पर तो कुदरत ने अभी से सफेद चादर बिछानी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में शिंकुला दर्रे पर हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ से ढक दिया। खूबसूरत नजारे के बीच मौसम ने सफर को भी मुश्किल बना दिया है। कई गाड़ियां और बाइक सवार रास्ते में फंस गई, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।

0: अभी अक्टूबर का महीना ही है, लेकिन पहाड़ों ने सर्दी की सफेद चादर ओढ़ ली है। ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। वक्त से पहले बर्फबारी ने जहां हर किसी को हैरान किया, वहीं बर्फ से ढकी वादियों का नजारा लोगों को रोमांचित भी कर रहा है। श्रृंखला दर्रे पर अचानक हुई बर्फबारी ने सफर मुश्किल कर दिया। बर्फ की मोटी परत और ठंडी हवाओं के बीच कई गाड़ियों और बाइक सवार रास्ते में फंस गए।
1: बाइक आगे आई नहीं रहती, सब गिर रही थी।
2: किनारे पार
1: ब्लैक गाइस और इतनी स्नो आ रही है वहाँ पे, तो
2: किनारे पार भी नहीं कर पा रहे थे।
0: सड़क पर जमी बर्फ ने सफर को और मुश्किल बना दिया। गाड़ियों के पहिए थमने लगे तो फिसलन के चलते बाइक सवारों के लिए भी संभल कर चलना चुनौती बन गया।
1: चौक स्टॉप से आ रहे थे सारे बाइकर्स थे, वहाँ फंस गए, सब गिरे एक एक करके बाइक से, और फिर ये जनाब आए हमारे सर लोग आए, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया वहाँ से।
0: बर्फबारी की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए बाइकर्स को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया।
1: जनाब ने हेल्प की दोनों ने, और फिर हम लोग इस गाड़ी से रेस्क्यू करके आए यहाँ पर। अब जाएंगे वापस ऊपर टॉप पे जाएंगे, वहाँ से बाइक लेके आएंगे भैया के साथ में।
0: मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक हिमाचल में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अक्टूबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना है। अक्टूबर में ही बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। सर्दियों ने इस बार वक्त से पहले दस्तक देकर मौसम को और दिलकश बना दिया है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब वक्त उछला है इंस्टा स्टोरी का। इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए शिल्पा शेट्टी की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: तुम पूरी दुनिया में खोजोगे तब भी मेरे जैसी नहीं मिलेगी।
5: वाह, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं दोबारा तुम्हारे जैसी ही खोजूंगा।

0: इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, तपस्या और साधना की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर जारी। नागपुर में शारदीय नवरात्रि की धूम, दुर्गा पूजा पंडाल में विराजी माता रानी, पारंपरिक परिधान में लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े। कोलकाता में वंदे मातरम की थीम पर सजा शानदार पूजा पंडाल, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, आजादी के नायकों को किया गया याद। देवभूमि उत्तराखंड में कुंजापुरी मेले का शुभारंभ, कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, अलग अलग झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली, कई इलाकों में जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, देवी तो मां है ही, मां का स्वरूप है उनका, और अपने भक्तों की, अपने बच्चों की रक्षा वो हर स्थिति में करती हैं। अगर आपको जीवन में अपनी रक्षा का भय है, आपको अपनी रक्षा करनी है, रोग और बीमारी से बचना है, तो इसका एक बड़ा अमोघ उपाय है देवी कवच का पाठ करना। आज हम आपको बताएंगे देवी कवच की महिमा के बारे में, बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 अक्टूबर 2026, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:13 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, रात के 11:52 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 अक्टूबर 2026, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं कन्या राशि में, चंद्रमा, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में, और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, भगवती की, माता की बहुत सारी स्तुतियां पाई जाती हैं, तंत्रोक्त भी और सरल भी। देवी की एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली स्तुति है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो है देवी कवच। देवी कवच का महत्व क्या है? देखिए, देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने श्री मार्कंडेय ऋषि को किया था। ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को देवी कवच के बारे में बताया था। इस कवच में अपूर्व शक्ति है। इसमें देवी के विभिन्न नामों का और विभिन्न शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से, श्रद्धा और भक्ति से देवी कवच का पाठ करता है तो हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे और जीवन के बड़े रोग बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर देवी कवच का पाठ करते हैं। यहां तक कि देवी कवच का पाठ करने से मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यानी अगर आप देवी कवच का ईमानदारी से पाठ करें तो आपको मनचाही वस्तुएं भी मिलेंगी। मुख्यतः रोग के मामले में, बीमारी के मामले में और सुरक्षा के मामले में अगर देवी कवच का पाठ किया जाए, जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्तियों से आप सुरक्षित बने रहेंगे। देवी कवच पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वैसे तो कोई भी भक्त, कोई भी साधक देवी कवच का पाठ जब चाहे कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें देवी कवच का पाठ करने से आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर स्वास्थ्य की समस्या निरंतर बनी रहती है, आप हमेशा थोड़ा बहुत बीमार रहते हैं, तो देवी कवच का पाठ आपको करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बीमारियां हैं आपको, किडनी में भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी है, लीवर भी गड़बड़ है, एक से ज्यादा अगर बीमारियां हैं तो भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। आप अपनी बीमारियों का तमाम इलाज करवा रहे हैं, तमाम दवाइयां खा रहे हैं, तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह रोग का निवारण नहीं हो पा रहा है, बीमारी दूर नहीं हो पा रही है, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है, तो भी देवी कवच का पाठ करने से आपको लाभ होगा। अगर आप मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, खतरा है, मुश्किल है, मुकदमा हार सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आपके शत्रु और आपके विरोधी लगातार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आपको नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करना चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खरीदारी में व्यस्त रहेंगे, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, हर काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में नई शुरुआत होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि देवी कवच का पाठ कैसे करेंगे, देवी कवच का प्रयोग कैसे करेंगे। रोज सुबह के समय या तो इसका पाठ करिए या मध्य रात्रि में देवी कवच का पाठ करना अच्छा होगा। मां दुर्गा के सामने घी का एक दीपक जलाएं और एक जल का पात्र लोटे या गिलास में शुद्ध जल भर करके रख लें। इसके बाद दुर्गा कवच का श्रद्धा पूर्वक इत्मीनान से बोल बोल कर पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। पाठ के थोड़ी देर बाद सामने जो जल रखा है उसको अपने ऊपर छिड़क लें। अगर किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर आपको जल लगाना चाहिए। घर में कोई बीमार है आप उसके लिए भी दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं और जल का छिड़काव उसके ऊपर भी नियमित रूप से कर सकते हैं। घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी अगर इस जल का छिड़काव करेंगे तो वो रोग बीमारियों और समस्याओं से सुरक्षित बने रहेंगे। दुर्गा सप्तशती को आप भोजपत्र पर लिख करके अपने गले में धारण कर लें। ये बड़े अचूक यंत्र की तरह काम करेगा। याद रखिए अगर आप दुर्गा कवच का पाठ नियमित रूप से कर रहे हैं तो सात्विक रहिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या दूर होगी, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को लौंग की एक माला अर्पित करिएगा और इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करिएगा। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 12 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल मां दुर्गा को देवी को सफेद फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गुरु सदा अपने बच्चों का हित चाहता, मेरे पागलो इस बार तो वो थोड़े भावुक थे। हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा बहुत दिन बाद आए कभी कभी गुरु भी बहुत मिस करता है, बहुत मिस करता है। और याद रखना मेरे पागलो, कभी तुम्हें तुम्हारे गुरु का टेलीफोन आए अब पूछे कि तुम बहुत दिन से दिखे नहीं, समझना तुम्हारा गुरु मिस कर रहा है। हाँ, मिस कर रहा है। दर्शन लेने ना जाना तो दर्शन देने चले जाना, पर चले जाना। यहां बद्रीनाथ जी के पट बंद रहते कपाट 6 महीना, जितना हम लोग ललायत रहते कि पट खुले तो दर्शन करें, उतना वो भी अंदर बैठा बैठा सोचता कि कब पट खुले हो, कब हम अपने पागलों के दर्शन, वो भी तो सोचता, वो भी तो सोचता है। बागेश्वर धाम पर बालाजी भी तो सोचते कब मेरा पागल आएगा, वो भी तो सोचते। जितना तुम मिस करते ना उतना वो भी मिस करते, ऐसा हमने इस यात्रा में महसूस किया 21 दिन में। गुरु भी मिस करता, गुरु भी याद करता। गुरु तो गुरु होता है, किसी को श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन बदलते टाइम ना लगेगा। और मेरे पागलो, जीवन बदलने का मतलब वैभव मत समझना, धन मत समझना, जीवन बदलने का मतलब तुम्हारी जिंदगी में सदैव खुशियां आने लगे, मुस्कुराहट आने लगे, समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पर बहुत लाड़ लड़ाया। तुम्हारी जिंदगी मस्त होने लगे और तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट होने लगे, समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पे बहुत लाड़ लड़ाया और तुम भगवान के बहुत प्यारे बन चुके हो। जितनी खुशी उतने नजदीक भगवान के, जितनी खुशी होगी, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में होगी उतने तुम भगवान के नजदीक रहोगे, उतने तुम ठाकुर जी के नजदीक रहोगे। और मेरे पागलो, भक्त के 3 लक्षण है हमारी, हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है, ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना, सूत्र है। आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर 3 गुण होते हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अभाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा। और भरोसा और भाव और भोलापन, तीनों पर यदि विस्तार करें तो भाव हो तो कर्मा बाई जैसा, कर्मा बाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्मा बाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती, क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी, बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती, अरे बाबरी, शर्म नहीं आती, पाप पड़ेगा पाप, नरक जाएगी नरक। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने जा कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा, क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला, इधर जल्दी आने की जल्द थी, जिद थी, तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी, तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया करना। हमें तो वही प्रिय, हमको तो वही प्रिय। मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता। सच बोले ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं, जैसे ही साधना करने आए तो 3 दिन तो हमने भी नहीं नहाया। महाराज जी को ये बात पता है और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाते हैं। हाँ, और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, 3 दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती, उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। 3 दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को छू लिया, मतलब हमने नहा लिया।

0: ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए।
1: अच्छा जा रहे बाबा,
0: इशारे बहुत कम, कभी कभी बोलते थे,
1: और बोलते भी कब थे, कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो,
0: बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे।
1: सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी, तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना, तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा कर, कल हवेली पे आ जाना। महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे, 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम है भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता,
0: पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए।
1: तो यहां अलकनंदा जी में स्नान करने का ये बात हमने क्यों सुनाई थी, याद है किसी है? क्या सुना रहे थे इसके पहले? भाव, भक्त के 3 लक्षण सुना रहे थे। तो भक्त के 3 लक्षण हैं, भाव, भरोसा और भोलापन। तो भाव कैसा हो? कर्मा भाई के जैसे। और भरोसा कैसा हो?
0: एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए।
1: भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए।
0: जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को, वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाएं। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदंब खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा।
1: उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी, तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे, सुलझाई नहीं, बैठ गए भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो, ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कोई पूछे कि किसने उलझाई, बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले ने ही उलझाई। तो बोले सुलझाएगा कौन? बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेपिजुली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे, काहे को बेपिजुली में पागल बन रहे, चलो मैं हूं सुलझा दे हूं। ना ना ना, जाओ जाओ, और सुनो छू ना लेना, पाप पड़ेगा पाप।
0: सबको भगा दिया और वहीं पर बैठकर राधा कीर्तन गाने लगे, कृष्ण कीर्तन गाने लगे। एक दो रात नहीं, कई महीने बीत गए, बाबा ने जटाएं नहीं उलझाई। ध्यान रखना, जिनका भरोसा जल्दी टूटता,
1: ध्यान से सुनना मेरे पागलो, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
16: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
22: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
23: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
25: शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन, तपस्या और साधना की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर। नागपुर में शारदीय नवरात्र की धूम, दुर्गा पूजा पंडाल में विराजी माता रानी, पारंपरिक परिधान में लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालु का जोश है। दिल्ली एनसीआर ने मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
25: नवरात्र के दूसरे दिन आज देशभर में माता ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा, देवी के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। नवरात्र के दूसरे दिन मां को अर्पित किया जाता है गुड़हल के फूल और मिश्री का भोग, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में दिख रहा है भक्तों का विशेष उत्साह। बेहद शांत सौम्य और मोहक है मां का ब्रह्मचारिणी का रूप, माता के सीधे हाथ में जप की माला और उल्टे हाथ में कमंडल है। वही कठोर साधना और ब्रह्मलीन रहने के कारण इन्हें कहा गया है ब्रह्मचारिणी, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हर प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान का मिलता है वरदान। संयम साधना और आत्मबल की मूर्ति है मां ब्रह्मचारिणी, मां के इस स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का भी हो जाता है निदान। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का भव्य किया गया है श्रृंगार। मां की उतारी गई है आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। माया देवी मंदिर में मां की उतारी गई महाआरती, श्रद्धालुओं ने लगाए जय माता दी के जयकारे। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन महर शक्तिपीठ में मां की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने की विधि विधान से पूजा। महर शक्तिपीठ में श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी, ड्रोन से रखी जा रही है भक्तों पर नजर। कर्नाटक के कलबुर्गी में दूसरे दिन भवानी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। हैदराबाद में नवरात्र के दूसरे दिन भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मां की उतारी गई महाआरती, भक्तों ने लगाए जयकारे। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में नवरात्र पर दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। महेंद्रगढ़ में शारदीय नवरात्र की धूम, शीतला माता मंदिर में दूसरे दिन भी लगी भक्तों की लंबी कतार। शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी किया गया है आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया प्रसाद ग्रहण। कठुआ में महाकाली मंदिर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। आगर मालवा के सिद्धिपीठ मां बगलामुखी में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। दूसरे दिन भी मां बगलामुखी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अब तक 1,00,000 से अधिक भक्तों ने लगाई हाजिरी। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना की, बड़ी संख्या में भक्तों ने हवन अनुष्ठान किए। रामनगरी अयोध्या में शारदीय नवरात्र की धूम, प्रसिद्ध बड़ी देवकाली मंदिर में मां के दर्शन और पूजन के लिए लग रही है लंबी कतार। अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में भक्तों का तांता, मान्यता है कि मां बड़ी देवकाली भगवान श्री राम की कुलदेवी। संतरा नगरी नागपुर में शारदीय नवरात्रि का आगाज, ढोल ताशों की गूंज और मां दुर्गा के जयकारों के बीच सार्वजनिक पंडालों में हुई मां की स्थापना। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु माता रानी के आगमन जुलूस में झूमते नजर आए। माँ दुर्गा की भक्ति में डूबे संतरा नगरी और नागपुर के भव्य पंडालों में विधि विधान से विराजी माता रानी। रंग बिरंगी सजावट से सजे माँ दुर्गा के पंडाल, श्रद्धालुओं में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। शारदीय नवरात्र को लेकर नागपुर में उत्साह चरम पर, शहर के अलग अलग इलाकों में सजे आकर्षक दुर्गा पंडाल, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
25: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
25: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
11: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है। ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ। फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, तपस्या और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर। नागपुर में शारदीय नवरात्रि की धूम, दुर्गा पूजा पंडाल में विराजी माता रानी, पारंपरिक परिधान में लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालु का जोश हाई। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट। पहाड़ों पर भी मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज बात करेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कहानी की। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, संयम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भक्तों को धैर्य, आत्मबल और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। सफेद वस्त्रों में सुशोभित, एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधना और शांति का संदेश देता है। नवरात्रि के इस पावन दिन भक्त विधि विधान से मां की पूजा करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और फल मिष्ठान का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
1: नवरात्रि का आज दूसरा दिन मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है और आज के दिन भी दिल्ली का हर एक भक्त झंडेवालान मंदिर में पहुंचने की कोशिश करता है। इस वक्त हम भी झंडेवालान मंदिर में हैं और भक्तों की भारी भीड़ आज भी यहां आने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही है। कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं। हालांकि देर रात से जिस तरह से बारिश शुरू हुई और सुबह तक बारिश बनी रही, उसने ज़रूर थोड़ा सा लोगों को डीमोटिवेट किया है। लोग थोड़ा सा निकलने से बच रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से चारों तरफ जाम भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो भक्तों के उत्साह में कोई कमी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। दिल्ली का कोई भी नागरिक हो, वो ज़रूर कोशिश करता है कि झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि में कम से कम एक बार तो ज़रूर पहुँचे। यहाँ आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सालों साल से लगातार इस मंदिर में आते रहे हैं और दावा यही कि जो भी यहाँ आप मांगिए वो सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो लगातार दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद वो माँ से वो सब कुछ ही मांगना चाहते हैं जो फिलहाल उनकी लिस्ट में है। क्या नाम है आपका?
2: शबनम।
1: कब से आप इस झंडेवालान मंदिर में आ रही हैं?
2: जब से नवरात्रि आए होते हैं ना शुरू, तब आते हैं हम।
1: अच्छा।
2: हाँ जी।
1: नहीं, अभी कितने साल से आ रही हैं?
2: दो तीन साल हो गए।
1: यहाँ ही क्यों आना होता है?
2: ये मन्नत पूरी होती है और वैष्णो माता का नाम है इनका, तो उनके भी दर्शन हो जाते हैं।
1: आप कब से आ रहे हैं?
3: राधे राधे। 5-6 साल हो गए।
1: 5-6 साल।
3: हाँ, माता कृपा है। तब
1: कृपा है, मांगा सब
3: पूरा हुआ। सब माता, सबको दिया माता रानी, सब दिया माता रानी ने।
1: क्या नाम है आपका?
4: बिंदु।
1: कहाँ से आई हैं आप?
4: अशोक विहार।
1: अशोक विहार से हैं। कितने सालों से आ रही हैं मंदिर?
4: 15 साल।
1: 15 साल हो गए।
4: हाँ जी।
1: आज अकेले या परिवार के साथ?
4: नहीं, बच्चों के साथ आए हैं।
1: नवरात्रि में मंदिर पहुंचना कितना ज़रूरी समझते हैं आप?
4: बहुत ज़्यादा। अब मंदिर तो आना चाहिए, हाँ, पूजा करने के लिए मंदिर आना चाहिए, हम लोग की भक्ति है।
1: सालों साल से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कतार आप देखेंगे तो अभी भी कतार लगी हुई है, लेकिन

0: पहुंच जाते हैं और इस तरह से व्यवस्था को संभालने में लगे रहते हैं। तो कुल मिलाकर भक्ति और आस्था का सैलाब, उनकी भीड़ लगातार भक्तों की यहाँ बढ़ती जा रही है। और फिर से वही बात कि जो भी दिल्ली का नागरिक है वो कम से कम एक बार तो कोशिश जरूर करता है कि झंडे वालान मंदिर में जाए और माता के दर्शन नवरात्रि में तो जरूर कर पाए। कैमरामैन मनीष झा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
1: माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ संकल्प से जीवन की हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व क्या है और वो पूजा विधि क्या है जिससे कि माँ का आशीर्वाद मिलेगा।

0: साधना में लीन करने वाली देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। माना जाता है कि माँ की उपासना से आत्मबल, धैर्य तथा एकाग्रता में वृद्धि होती है। नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, जिनके उपासना से साधक की कुंडलिनी जागृत होने की मान्यता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली, ब्रह्म यानी तप और चारिणी यानी आचरण करने वाली, यानी वो देवी जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली है। जप तप और साधना को सर्वोपरि मानने वाली है। हम सभी जानते हैं कि नवरात्र शक्ति की उपासना का महापर्व है। माता से वरदान और सिद्धियां पाने के हैं ये नवरात्र। माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से ज्ञान, विद्या, सिद्धि और तप और बल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये वही देवी हैं जिन्होंने देवाधिदेव महादेव को पाने के लिए सहस्त्र वर्षों तक घोर तप किया था।
1: ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी, और जिस तपस्या के बाद भगवान शिव के प्राप्ति के लिए उन्होंने लंबे समय तक पत्तों का, फल का, सब का त्याग करके केवल वायु धारण करके तपश्चर्या की, इसलिए इनको तपस्विनी के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में इनकी पूजा की जाती है।
0: चलिए आपको वो कथा भी सुनाते हैं जो माँ ब्रह्मचारिणी को लेकर कही जाती है। माना जाता है कि माता पार्वती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय और देवी मीना की पुत्री के रूप में हुआ। पर्वत देवता की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा था। कथा है कि बचपन से ही उन्होंने ऋषि नारद से भगवान शिव की अनेक कथाएं सुनी थी। इन कथाओं से प्रभावित होकर उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कथा कहती है कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया। शुरुआत में वो बहुत कम भोजन ग्रहण करती थीं, बाद में फल खाकर ही तप को जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना भोजन केवल पत्तों पर आश्रित कर दिया। उन्होंने भोजन और पानी पूरी तरह त्याग दिया। कथा कहती है कि सहस्त्रों साल तक इतनी कठोर साधना करने के बाद उनकी भक्ति और दृढ़ता से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। ज्ञान, तपस्या, सिद्धि और वैराग्य की देवी मानी जाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। माना जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी उपासना से हर प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान का वरदान मिलता है।
1: ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है जो ब्रह्मचर्य से युक्त हो, ब्रह्म का, जो ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाली के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। और इनके तप, संयम, तपश्चर्या के स्वरूप को प्रकट करता है, इसलिए ब्रह्मचारिणी है। इनका स्वरूप साधना और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है।
0: मान्यता है कि जो भी भक्त सन्यासी होना चाहता हो और वो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है तो उनकी योग और कर्म की

0: साधना सफल होती है। चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को लेकर क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। जिनके कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ा जाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मन से सारे विकार दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है, रजोगुण समाप्त हो जाता है और साधक के जीवन में सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि धर्म ग्रंथ और पुराणों में माता के स्वरूप की कैसी व्याख्या की गई है।
1: ब्रह्मचारिणी का स्वरूप इनके ध्यान के बारे में कहा जाता है, कराभ्याम पद्माभ्याम अक्षमालाम कमंडलुम देवीम प्रसदितमयी ब्रह्मचारिणी उत्तमा। इनके एक हाथ में कमंडलू है और एक हाथ में माला है। ये पूर्ण तपश्चर्या की मूर्ति हैं। ये शांतिमती हैं, बुद्धिमती हैं, ज्ञानमती हैं। इनका जो स्वरूप तेज से युक्त आभा मंडली भगवती का जो है वो साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है।
0: ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योति स्वरूप और सुंदर है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जबकि माला तो बाएं हाथ में कमंडल है। ये माता देवी पार्वती का ही अविवाहित रूप है। ये विध्यान मग्न स्वरूप में है और उनके चेहरे पर परमानंद का भाव है। तेज और आभा माता की कठोर तपस्याओं का प्रमाण है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जैसा तप माँ ब्रह्मचारिणी ने किया वैसा तप करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस प्रकार माँ ने अथक प्रयासों और विचलित हुए बिना लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञान दिया। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन देवी माँ के स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का भी निदान हो जाता है। मन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चंद्रमा को बहुत सरलता से बलवान किया जा सकता है। चंद्रमा संबंधी अशुभ योगों को समाप्त किया जा सकता है। मानसिक कमजोरी और मानसिक रोग दूर किए जा सकते हैं। एकाग्रता को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। भावुकता से जुड़ी समस्या भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से दूर होती है। नींद न आने और तनाव की समस्या से भी मुक्ति दिलाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। माँ के साथ संबंध और माँ की सेहत दोनों बेहतर होता है। माँ की कृपा से साधक सभी सांसारिक सुखों का भोग करता है।
1: तपश्चर्या की ओर बढ़ते हैं, तपस्या की ओर बढ़ते हैं। हमारे जीवन में संयम होता है, हमारे जीवन में धैर्य होता है, हमारे जीवन में सहनशीलता होती है। तो स्वाभाविक है जब हम मन से स्थिर रहेंगे, हम धैर्यवान रहेंगे, हम प्रगतिवान रहेंगे, हम आशावादी रहेंगे, वैसे में ब्रह्मचारिणी का जो तेज होता है, जो भक्त इनकी आराधना करता है और भगवती के द्वारा जो तेज प्राप्त होता है उस तेज से उसकी बुद्धि निर्मल होती है और जब निर्मल होती है तो नाना प्रकार से वह धनोपार्जन हो, परिवार का उपार्जन हो, जीविकोपार्जन हो, सबके लिए मार्ग प्रशस्त कर लेता है।
0: माना जाता है कि तप और संयम का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। माँ की कृपा से आपके तमाम कष्ट कट जाते हैं, साथ ही माँ के आशीर्वाद से विशेष कामनाओं की पूर्ति भी हो सकती है। आगे हम आपको बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की कैसे करें उपासना और कौन से प्रसाद से माँ को कर सकते हैं प्रसन्न, साथ ही जानेंगे मनोकामना पूर्ति के उपाय भी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।
2: माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा क्या है, आइए जानते हैं झंडेवाला मंदिर के पुजारी तारा प्रसाद जोशी से।
3: माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा आराधना की जाती है। इनका नाम ब्रह्मा चारणी का अर्थ होता ब्रह्म, तप करने वाले, तप का आचरण करने वाले भगवत के रूप में इनका पूजन आराधना अर्चना की जाती है। सभी भक्त लोग अपने अपने मनोरथ, अपनी कामना, अपनी इच्छाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के रूप में माँ झंडे वाले मंदिर में दर्शन के लिए सैकड़ों लाखों लोगों में यानी दर्शन के लिए आते हैं। और माँ भगवती झंडे वाली आज के दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी को आशीर्वाद प्रदान करती है, जो इनकी अनन्य उपासना, पूजा, आराधना, अर्चना करता है अपने भाव से, तन मन से, तो माता रानी उनकी निश्चित तौर पर मनोरथ पूर्ण करती है। इन्होंने यानी कि ब्रह्मा चारिणी मतलब भगवान शिव को प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के, कल जैसे शैलपुत्री थी, आज दूसरा रूप में ब्रह्मचारिणी है। उन्होंने क्या कि अपने आप में ब्रह्मचारिणी का एक ऐसा आचरण किया था कि स्वयं अपने अंदर सिद्ध करने के लिए एक हाथ में कमंडलू त्रिशूल वेशभूषा धारण करके माता रानी ने अपने सभी शक्ति को अपने अंदर समावेश करके भक्तों को आशीर्वाद दिया, प्रार्थना करी, जिन लोगों ने उनकी मनोरथ पूर्ण करी।
2: धर्म ग्रंथों में माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। माता रानी का स्वरूप योगिनी तपस्विनी की तरह है। उनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला रहती है। चलिए आपको बताते हैं कि माता का प्रिय भोग कौन सा है, किन मंत्रों के जाप से माता प्रसन्न होंगी और वो कौन सा महाउपाय है जो आपकी धन की किल्लत के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी जीवन से दूर कर सकता है।

0: ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम अनंत में विद्यमान और गतिमान है। माँ संयम, अनुशासन और तप और वैराग्य की देवी है। कहते हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने मात्र से ज्ञान और तप की शक्ति मिलने लगती है। जीवन में अंधियारा छटने लगता है, मकसद साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन इसके लिए करनी होगी माँ ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना। मन में लाना होगा भक्ति का निर्मल भाव और साथ ही आचरण में भी रखना होगा माँ की ही भांति ब्रह्मचर्य का भाव। फिर देखिए आपकी सारी कामनाएं माँ कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। चलिए पहले आपको बताते हैं कि माँ की कैसे करें आराधना।
1: जिस प्रकार का जिस देवी का आवाहन हो, ध्यान हो, पंचोपचार पूजन तो सभी को करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यह जो पंचोपचार पूजन हमारे यहाँ बताया गया है ये सर्वोत्तम है। और पूजन में करने के समय आपके मन में स्थिरता हो, और किसी पूजा के समय जब तक हम कोई धूप दीप नहीं जलाते तब तक हमारी तपस्या पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कर्म का साक्षी दीपक होता है। तो घी का दीपक जला करके, धूप जला करके और भगवती को गंध, पुष्प, दीप नैवेद्य से पूजा करके इनकी आराधना करनी चाहिए।
0: माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने, माँ को मिश्री, शक्कर या पंचामृत जैसी सफेद वस्तुएं अर्पित करें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र ओम एं नमः का जाप करें। हालांकि इस दिन ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान दें। नवरात्र में हर देवी माँ की पूजा उपासना में विशेष भोग का बहुत महत्व होता है। कहते हैं प्रसाद अर्पित किए बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि प्रसाद अर्पित करना समर्पण के भाव को दर्शाता है। देवी के हर रूप को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग चढ़ाने का विधान है। तो क्या है माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग, ये भी आपको बताते हैं।
1: नैवेद्य में भगवती को श्वेत वस्तुओं का जो नैवेद्य है, सफेद रंग की वस्तुएं, खोए की मिठाई है और दूध से बनी और जो मिठाइयां हैं, श्वेत फल है, ये सब चीजें भगवती को विशेष प्रिय हैं। और आप चाहें तो खीर बना करके भी भोग लगा सकते हैं। श्वेत वस्तु का भगवती को विशेष बताया गया है कि इनको भोग नैवेद्य प्रिय है, और नैवेद्य जब हो जाता है तो उसको हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं।
0: माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय है शक्कर का भोग। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में शक्कर का प्रसाद बांट दें। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों की उम्र बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया गया भोग का प्रसाद ग्रहण करना अद्भुत परिणाम देता है, इसका अनंत फल मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माँ की कृपा उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार की वृद्धि होती है। मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन विशेष और सरल प्रयोग करके सारे बुरे योग को दूर किए जा सकते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस शुभ तिथि पर कुंडली के चंद्रमा को बलवान करने के अचूक उपाय भी किए जाते हैं।
1: हमारे यहाँ चंद्रमा को मन का कारक कहा गया, और मन हमेशा चंचल होता है, चलायमान होता है। तो मन को स्थिर करने के लिए अगर हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य हो, हमारी तपस्या हो, हमारी साधना हो, और ब्रह्मचारिणी की तपस्या से मन उन भोग विलासों से दूर होता है और ब्रह्मचर्य का जीवन जीने की स्थिति जीवन में ला देता है। इसलिए इनके तपस्या से चंद्रमा को हम अपने मन के अनुकूल करके जीवन को अनुकूल बना सकते हैं।
0: चंद्रमा मन का स्वामी ग्रह है, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से चंद्रमा संबंधी हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन कुंडली के चंद्रमा को कैसे करें बलवान, आइए जानते हैं। देवी को सफेद पुष्प अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। देवी को चांदी का अर्धचंद्र भी अर्पित करें। इसके बाद ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। अब अर्धचंद्र को लाल धागे में पिरोकर गले में धारण कर लें। आपकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी और चंद्रमा भी बलवान होगा। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना अमोघ मानी गई है, जो हर मनोकामना पूरी करने वाली मानी गई है। नवरात्रि का दूसरा दिन बेहद खास है, जब माँ ब्रह्मचारिणी जागृत होती हैं और उनकी साधना का फल भी शीघ्र मिलता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ की कृपा से आपकी धन की बाधा भी दूर हो सकती है। एक पानी वाला नारियल लें, उसे अपनी गोद में रख लें। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। धन की कमी और दरिद्रता से छुटकारा मिलेगा। माना जाता है कि नवरात्र के आगमन के साथ ही सृष्टि में नकारात्मकता का नाश होने लगता है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करने वाले भक्त के जीवन से सभी बाधाओं का अंत माँ की कृपा से हो जाता है। साथ ही माँ की उपासना करने से मन स्थिर होता है। नवरात्रि में घर के दोनों वेला कपूर से माँ की आरती करें और आरती की अग्नि को पूरे घर में घुमाएं। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी।
1: इनकी साधना से क्या होता है कि मन स्थिर होता है, और जब मन हमारा स्थिर होगा तभी हम किसी प्रकार का अनुष्ठान, कोई धार्मिक पूजा पाठ, कोई तपश्चर्या, कोई तपस्या कर सकते हैं। तो इनका जो स्वरूप है, इसका अनुष्ठान करने से, इनका ध्यान पूजन करने से मनुष्य के मन की स्थिति स्थिर होती है, और जब मन की स्थिति व्यक्ति की स्थिर होगी तो व्यक्ति अपने जीवन के सारे मनोरथों को पूर्ण कर लेता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ के मंत्रों की शक्ति अमोघ है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो महाशक्तिशाली मंत्र, जिसके जाप से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। ददनाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलम देवी प्रसिद्ध मई ब्रह्मचारिण्य मुत्तमा।
1: ओम ऐम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्य नमः। जो ऐम ह्रीम क्लीम बीज है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का स्वरूप है, और यह तीनों बीज जब जुड़ जाते हैं तो उसके बाद जब हम किसी विशेष देवी, नव देवियां जो हैं उनका नाम जोड़ देते हैं तो विशेष फलदायी होता है। तो यह तीनों शक्तियों के साथ ब्रह्मचारिणी के जप को करना चाहिए। मूल मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः।
0: माना जाता है कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, वो अगर माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना मंत्रोच्चार के साथ पढ़ते हैं तो उनका विवाह होना निश्चित है। जानते ही ज्योतिष में बताया वो महामंत्र, ओम दुम ब्रह्मचारिणी ह्रीं नमः। कहते हैं कि अगर माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप कर लिया जाए तो असंभव से असंभव मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर नवरात्र में आपने भगवती के बीज मंत्र और नरवाण मंत्र का जाप कर लिया तो आपकी चाहे कैसे भी कामना हो वो पूर्ण होकर रहेगी। तो शक्ति के महापर्व में आप भी विधि विधान से कीजिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना, ताकि आपके जीवन में बनी रहे माँ शेरावाले की कृपा और हो जाए आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन, तपस्या और साधना की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर जारी।
8: चलो चलो,
7: सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति आराधना। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ, बीएसएफ के जवानों का भजन कीर्तन। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई। पहाड़ों पर भी मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: सच गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लंच टाइम में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नई हैं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: दिल्ली के झंडे वालन मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का भव्य श्रृंगार किया गया, श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा कर मां का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने मां की पूजा की। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन पूजन। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मेहर शक्तिपीठ में मां की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की। गुजरात के जामनगर में गरबा की धूम देखने को मिली, बड़ी संख्या में भक्तों ने गरबा किया। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वडोदरा में दिखे गरबा के रंग, विश्व प्रसिद्ध महाविलास गरबा में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सूरत में नवरात्रि उत्सव का गरबा का आयोजन, तो वहीं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए। पोरबंदर में नवरात्रि उत्सव में दिखा देवेचा, कोली समुदाय का बेहद प्राचीन अनुष्ठान। 102 साल पुरानी भद्रकाली माता जी गरबे में पुरुषों ने पारंपरिक गरबा किया। उज्जैन में नवरात्रि के दूसरे दिन महाकाल के दरबार में पहुंचे कुलदीप यादव और तिलक वर्मा, विधि विधान से की बाबा भोलेनाथ की पूजा। पहाड़ों पर भी मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में चंबा पहुंचे पर्यटक सैलानी, उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, कहीं देर रात बारिश तो कहीं पड़े ओले। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ, आवाजाही प्रभावित हुई। गाजियाबाद में भी जमकर बरसे बादल, कई इलाकों में जलभराव। फिनलैंड में ओरोरा तूफान से जगमगाया आसमान, रोवा नियमी में दिखा रंगीन रोशनी का अद्भुत नजारा, हरे और लाल रंगों से चमका रात का आसमान। चाइना में गुलाबी घास से सजा पार्क, दिखा जादुई नजारा। अनहुई प्रांत में पिंक मोहली घास पूरी तरह से खिली, गुलाबी फूलों से ढका नाइनान लेक पार्क। चाइना के अनोखी बेकरी में बदली 60 से ज्यादा दिव्यांगों की किस्मत, ताइवान की शोहुआ में मुफ्त बेकिंग ट्रेनिंग देकर उन्हें बनाया आत्मनिर्भर। डेनमार्क में मैग्नस बाक क्लारस बने पुरुष वर्ग में ग्रेवल वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया के नैनूप में जीती चैंपियनशिप। चाइना के गुइयांग एयरपोर्ट पर दो ड्राइवरलेस मिनी बस की एंट्री हुई, यात्रियों को मिलेगी ड्राइवरलेस शटल की सुविधा, टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 तक मुफ्त सफर। एनिमेटेड फीचर फिल्म महादेवी आदि शक्ति की पहली झलक जारी की गई, फिल्म अगले साल फरवरी में रिलीज होगी। 4 दिसंबर यानी इंडियन नेवी डे पर रिलीज होगी कजिन ईशा, फिल्म में विक्रांत राय, सुरभि तलोदिया, रिया कपूर का अहम रोल है। फिल्म गणेश डस्ट टू स्टार्स का ट्रेलर जारी किया गया, फिल्म 11 दिसंबर को दस्तक देगी। फिल्म द डर्टी पिक्चर 2 का सीक्वल का ऐलान, एकता कपूर ने पुष्टि की, कहा मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रही हूं। महावीर जैन की फिल्म लंबोधरा 2.0 का ऐलान किया गया, 20 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, विधि विधान से हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। नवरात्र के अवसर पर गुजरात में गरबे की धूम देखने को मिली, वडोदरा में थिरके विदेशी मेहमान। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड बना, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किए। देवभूमि उत्तराखंड में कुंजापुरी मेले का शुभारंभ हुआ, कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। दिल्ली एनसीआर में हुई जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट।

तो शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। पूरे देश में शक्ति उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना हो रही है और सुबह से ही श्रद्धालु देश भर में माता के मंदिरों में उमड़ रहे हैं और पूरी श्रद्धा उल्लास और विधि विधान से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर कटरा, नागपुर से लेकर बनासकांठा तक महापर्व नवरात्र के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के छतरपुर में स्थित झंडे वालन और कात्यायनी मंदिर में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने को मिल रही है। वहीं कटरा के श्री माता वैष्णो देवी धाम में भक्त जयकारों के साथ माता के दरबार में हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर और गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी धाम में उत्साह और उल्लास का माहौल है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों की रौनक, भक्तों की श्रद्धा और सांस्कृतिक आयोजनों की भव्यता नवरात्रि के इस पर्व को और भी खास बना रही है। पूरे देश में शक्ति की उपासना और महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्साह उल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। 7 तस्वीरें आपके सामने हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, किस तरह से नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा अर्चना हो रही है और श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं अपने मनोकामना की पूर्ति की कामना लिए हुए, वो तस्वीरें आपके सामने। तो वहीं नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं और हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में देश की शक्ति पीठों में आस्था का समंदर उमड़ता है। वैसे तो मां के हर मंदिर में नवरात्र में भक्तों से यहां पर हुजूम लगा रहता है और शक्ति पीठों की महिमा तो अपरंपार है। इन शक्ति पीठों की महिमा का कई पौराणिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद ये शक्ति पीठ आस्था का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी केंद्र है। हरिद्वार में मां मनसा देवी, सतना में मां शारदा देवी, आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर और असम में कामाख्या देवी माता के शक्तिपीठों में पहले दिन से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे 9 दिनों तक श्रद्धालुओं का ऐसा ही सैलाब शक्तिपीठों में उमड़ता रहेगा। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध बड़ी देवकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। माता के दर्शन और पूजन के लिए सुबह 4 बजे से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरे 9 दिनों तक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का क्रम जारी रहने वाला है। बड़ी देवकाली मंदिर का धार्मिक और पौराणिक महत्व बेहद खास माना जाता है। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक मां बड़ी काली भगवान श्री राम की कुल देवी मानी जाती हैं। यहाँ पर कैसे पूजा अर्चना की जा रही है वो तस्वीरें आप देखिए। अयोध्या की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर घंटियों की गूंज, माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है।

0: भगवान श्री राम जी की कुलदेवी हैं। राजा रघु जो थे दिलीप अर्ज मानधाता इनके पूर्वज थे। राजा रघु को कहीं युद्ध पे जाना था, माता जी ने इनको स्वप्न दिखाया यहाँ करके सचंडी यज्ञ कीजिए, युद्ध में आपको विजय श्री प्राप्त होगी। राजा रघु आए सचंडी यज्ञ किए, युद्ध में उनको विजय श्री प्राप्त हुई, उन्होंने स्थापना कराई थी। देवी भागवत के 7वें अध्याय 11वें स्कंद में महारानी का विवरण है। त्रिगुणा, त्रिगुणा माने श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती महारानी यहाँ पे विराजमान है। और भगवान का जन्म हुआ था, महारानी कौशल्या उनको दर्शन कराने के लिए यहाँ पे लाई थी। ये वही आज हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में जब किसी को भी पुत्र रथ की प्राप्ति होती है तो 1.25 माह पे महारानी का दर्शन लोग आकर के कराते हैं। तो
1: इस वक्त हम हैं माँ जगत जननी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के दरबार में, जिसको कहते हैं माँ बड़ी देवता। ये भगवान श्री राम की कुलदेवी मानी जाती है, तीनों भवानी ही मौजूद है। और नवरात्र का दिन की शुरुआत हो चुकी है, लगातार यहाँ भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। ये राम मंदिर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये मंदिर, और भगवान राम की कुल देवी कहते हैं। और यहाँ श्रद्धा के साथ श्रद्धालु हमारे साथ खड़े हैं। कहाँ से आ रहे हैं?
2: मैं यही देवकाली का बगल में ही रहने वाला हूँ।
1: वर्ष कितने वर्षों से आप आ रहे इस मंदिर?
2: 20 साल तो हो ही गया।
1: 20 साल ऐसे मंदिर है।
2: मंदिर में कुछ चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन माता की शक्ति तो वैसे की वैसे ही है।
1: आप कहाँ से आ रही है?
3: हम तो यही के।
1: और आपकी शुरुआत हो चुकी है, आप माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान राम की कुलदेवी भी आई है। क्या मांगा है माता से?
3: क्या मांगे माता, जो कुछ दो सबको दे।
1: क्या मांगा है माता?
4: मांगना क्या है, दर्शन के लिए आए हैं।
1: दर्शन करने आती है पूरे नवरात्रि में?
4: पूरे नवरात्रि नहीं, कभी कभी बीच बीच में।
1: आपने दर्शन किए माता?
4: हाँ, हम तो बगल में ही रहते हैं।
1: नवरात्र में क्या मांगा माता?
4: माता जी सब कुछ दी है, बगल में घर दी है, रोज आते हैं।
1: तो ये भक्त है, उनकी श्रद्धा है। और आपको इस मंदिर का अगर हम दृश्य दिखाएंगे तो माँ भगवती, माँ भवानी अंदर है, साक्षात तीनों देवियां यहाँ पे अंदर मौजूद हैं। और अभी कुछ ही पहले यहाँ पे आरती हुई है, आरती के बाद जो है ऊपर जो ऊपर ही राम दरबार है, यहाँ पे साक्षात माँ सीता के साथ रामलीला विराजमान है। तो इस मंदिर की भव्यता ही अलग है, क्योंकि माँ ये भगवान राम की कुल देवी है। और लगातार यहाँ पे भक्तों का जो सैलाब है वो 4:15 बजे से ही देखने मिलता है। भोर में 4:15 बजे यहाँ पे भीड़ हो जाती है, शाम की आरती होती है, लोग इसको अच्छे से देखते हैं। और भगवान राम ने भी यहाँ पे आके पूजा की थी, वही अब यहाँ उनके जो अयोध्यावासी हैं वो भी यहाँ पे आके पूजा करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मैं शिला।
5: प्रदेश भर में शक्ति उत्सव किस प्रकार से मनाया जा रहा है वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच दिल्ली आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। मनीष, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं, जरा दर्शन करवाइएगा।
6: देखिए, दिल्ली का झंडे वालान मंदिर है ये, और ये नवरात्रि भक्तों के लिए सिर्फ 9 दिन का पर्व नहीं है बल्कि उत्सव है, महोत्सव है। और इस उत्सव महोत्सव में भाग लेने के लिए तमाम लोग आपको यहाँ मंदिर में कतार में दिखाई पड़ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की यहाँ भारी भीड़ है, 5 बजे से लोग यहाँ कतार में खड़े होकर पूरे समय के साथ पूरे संतोष के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। झंडे वालान मंदिर दिल्ली के सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है, और हर दिल्ली वाला ये कोशिश जरूर करता है कि नवरात्रि में कम से कम एक बार माता रानी के दर्शन जरूर कर लिए जाएं। दावा यही कि यहाँ से जो कुछ भी आप मांगेंगे वो जरूर पूरा होगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बस मन में भाव रखकर आए थे, कुछ मुंह से बोला नहीं था, शब्दों में कुछ जाहिर नहीं किया था, लेकिन माँ ने सब कुछ समझा, सब कुछ सुना और सब कुछ वो हमारे हाथों में देती चली गई। वही धन्यवाद करने के लिए, या फिर आपको उनकी नई मांग अपनी रखने के लिए, नई मुराद रखने के लिए तमाम सारे भक्त यहाँ कतार में खड़े हुए हैं। मौसम कल रात से थोड़ा सा बदला था, बारिश बहुत हुई है। सुबह उसका असर ये था कि मंदिर जो प्रांगण है यहाँ पर आपको भीड़ कम दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी जैसे जैसे मौसम ठीक होता जा रहा है, हल्की धूप बाहर निकली है, वैसे ही आप देखिए कि जो कतार है वो और लंबी होती जा रही है और लोग लगातार मंदिर पहुँच रहे हैं। झंडे वालान मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ जब आप आते हैं और जब भक्तों से बात करते हैं तो आपको बहुत
5: जी जी मनीष बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच धनंजय हमारे साथ महाराष्ट्र के अकोला से बने हुए हैं। धनंजय, आपने इससे पहले तस्वीरें हमें दिखाई थी, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर, जरा अपडेट दीजिएगा और तस्वीरें दिखाइएगा।
7: देखिए जो ग्राम दैवत है क्योंकि यहाँ पर माता के यहाँ पर माता का स्वयं रानी ये मंदिर है और अकोला का जो है ग्राम दैवत है माता रानी और कहते हैं अमनी का माता नाम से संस्थान से इस पूरे परिसर में जो है माता रानी की है ये यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी।
8: ग्राम देवता करके मानी जाती है और इसी प्रतिमा को इसी देवी माँ को आशीर्वाद लेने के लिए उनकी आराधना पूजा साधना करने के लिए जो भक्त है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है माता के दर्शन के लिए जो है महिला खासकर भक्त जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर आते हैं। सबसे अहम बात यही है कि नवरात्रि का दूसरा दिन है, माता रानी की पूजा आराधना साधना करने के लिए जो है भक्त बड़े आस लगाए आते हैं कि ये नौ दिन जो है ये भक्तों के लिए खास होते हैं, खासकर महिलाओं के लिए होते हैं। और सबसे अहम दूसरी बात ये है कि ये नौ दिन में जो है उपवास किया जाता है और बहुत से लोग जो है वो पूरी तरीके से नंगे पैर से जो है ये नौ दिन रहते हैं ताकि जो अपनी पूजा आराधना साधना है ये जो है वो माता रानी सुन ले और अपनी मनोकामना जो है पूरी कर ले। इस सुंदर स्वरूप जो माता रानी का जो है वो आप यहाँ पर जिसे दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं और कुछ भक्त हमारे साथ है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। काका मुझे बोलिए कि माता रानी का दर्शन करने कितने सालों से तुम यहाँ पर आते हैं?
9: इकड़े बोलता हाँ
5: जी। धनंजय आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच मनीष के पास वापस लौटते हैं। मनीष, जो नौ दिन पूजा अर्चना की जाने वाली है, नवरात्रि का पर्व मनाया जाने वाला है, शक्ति उत्सव को लेकर क्या कुछ आयोजन यहाँ पर किए गए हैं खास तरह से?
6: देखिए यहाँ का हर दिन खास है, हर तस्वीर खास है। मंदिर प्रांगण अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस बार बिल्कुल पिंक थीम पर तैयार किया गया है और जो सजावट है वो इस मंदिर की USP है। सजावट के साथ साथ व्यवस्था इतनी शानदार रहती है कि आप भले ही बाहर कितनी लंबी लाइन हो, जो यहाँ सेवादार है उन पर कितना भी प्रेशर हो, लेकिन कोई भी आपसे गलत तरीके से बात नहीं करेगा। सब हाथ जोड़कर प्यार से आपको लाइन में इस तरह से आगे बढ़वाते रहते हैं और यही इस मंदिर को खास बनाती है कि इस मंदिर में जब आप पूरी आस्था के साथ आते हैं तो आपकी आस्था मेंटेन रहती है, कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मंदिर में हर रोज़ अलग अलग कार्यक्रम है। जिस तरफ हम खड़े हैं हमारे सामने दरबार है और दरबार के ठीक दाईं तरफ हर रोज़ एक नया बैंड आता है, वो अपनी परफॉर्मेंस देता है, माता के भजन सुनाता है, गीत गाता है और इसी के साथ साथ जो माहौल है वो संगीतमय भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दरबार की दिखा रहा हूँ, माता के भक्तों की दिखा रहा हूँ। कई भक्तों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें ये देखते हैं कि हर उम्र के लोग आपको इस कतार में दिखाई पड़ेंगे, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों। जेंजी की आजकल बहुत बात चलती है, जेंजी भी अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ लगातार यहाँ पहुँचते रहते हैं। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आए और भक्तों से बात ना करें तो अलग ही बात है। क्या नाम है आपका?
10: दुर्गा जोशी।
6: कब से आ रही हैं आप इस मंदिर?
10: मैं तो काफ़ी टाइम से आई लेकिन आप काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ।
6: बीच में क्या हो गया था, ब्रेक कैसे लग गया?
10: ब्रेक तो ऐसे ही जरा बच्चे बच्चों के मारे नहीं आ सके।
6: आज इतने दिनों बाद आप आई हैं, कैसा लग रहा है?
10: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने साथ बहुत सारे जने को लेकर आई हूँ, हम सब इधर आए हैं, बहुत श्रद्धा है हमारी, बहुत अच्छा लग रहा है।
6: कोई दिक्कत तो नहीं हुई बाहर लाइन?
10: बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल दिक्कत, बहुत अच्छा लग रहा है।
6: अब देखिए परिवार
5: तो काफी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और झंडे वालान माता का मंदिर काफी प्रसिद्ध है जो दिल्ली में स्थित है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और आज तो वहां पर खासी रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु काफी आनंदित नजर आ रहे हैं। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को लिए चलते हैं माँ बगलामुखी के दरबार में, जहाँ आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में मौजूद माँ बगलामुखी मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। आम दिनों में तो भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगा ही रहता है, नवरात्र पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ बगलामुखी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। करीब 80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माँ के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। माँ बगलामुखी 10 महाविद्यालयों में 8वीं महाविद्या मानी जाती है। मंदिर में शक्ति उपासना, तंत्र साधना और हवन अनुष्ठान का विशेष महत्व है। यही वजह है कि सामान्य दिनों के साथ नवरात्रि में भी देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन और पूजन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
0: आज सुबह से ही आरती के पश्चात यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लग गया, लगा हुआ है। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी लाइन में खड़े हुए हैं। शासन प्रशासन ने भी यहाँ पर टाइम बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है।
11: बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमने दर्शन किया अभी माँ देवी का। मैं एक्साइटेड थी आने के लिए क्योंकि मुझे यहाँ का वो जो एनर्जी है वो एक्सपीरियंस करना था, और एक्चुअली मुझे फील हुआ क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक 1.5 घंटे का हवन था जिसमें बहुत सारी चीजें थी।
12: इस टाइम हम लोग यहाँ पे आए हैं बगलामुखी माता के दर्शन के लिए। हर साल आते हैं महाकाल के लिए, लेकिन यहाँ पे पहली बार आए। माता के बारे में बहुत सुना है, तो पहली बार आए, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा हमें।
5: और चलिए अब आपको हरिद्वार लिए चलते हैं और वहां पर मनसा देवी मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जहां पर सुबह सुबह भक्त बड़ी संख्या में पहुंच गए मां का आशीर्वाद लेने के लिए। यहां पर पहुंचे मां का ये धाम 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। नवरात्रि पर यहां मां की कृपा पाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और ऐसी मान्यता है कि मनसा मां का जन्म भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में हुआ। कुछ पुरातन ग्रंथों के मुताबिक मनसा माता कश्यप ऋषि की पुत्री थी और मनसा माता को नागों के राजा नागराज वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। मनसा का शाब्दिक अर्थ है मनोकामना, अर्थात जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा भाव से मां मनसा की पूजा अर्चना करते हैं, मां उनकी सभी मुरादें सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और कहा जाता है कि मां मनसा नागराज की बहन हैं और इसलिए वो भक्तों की काल सर्प दोष से भी रक्षा करती हैं।
13: बहुत प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पहले आपने देखा होगा जहाँ मनसा देवी में जो जिसमें सिंदूर वाली मूर्ति है वही माँ मनसा देवी है। और बगल में आपने देखा होगा एक काली मूर्ति है, राक्षस की मूर्ति है, वो राक्षस नहीं वो भस्मासुर महिषासुर था। और ऐसी मान्यता है जब माँ भगवती ने मनसा जो महिषासुर का वध किया था उसके बाद माँ भगवती ने यहाँ पे ध्यान किया, तपस्या यहाँ पे की है। इसीलिए माँ भगवती जो है यहाँ जो ये पर्वत है ये जो मंदिर है इसमें निवास करती है। और हमने देखा हरिद्वार के जितने भी हमारे भक्त है हमारी माताएं बहनें हर साल नवरात्रि में यहाँ पे आती है। और हमने स्वयं देखा है कि कहीं लोग मेरे पास आते बोले गुरुजी जो हमने मन में इच्छा रखी थी मनोकामना रखी थी वो पूर्ण हो गई है।
14: मैं खुश नसीब हूँ कि यहाँ आई हूँ मेरे बच्चे के लिए, बच्चे के बच्चे के लिए और अपने आप के लिए और सब परिवार के लिए, और इसके लिए भी कि वह जल्दी से अच्छा हो जाए,
15: सब अच्छे से रहे, सबकी फैमिली अच्छे से रहे और जो भी है सबको खुशियां मिले। ये सब सारा पूरा
16: हम भी अपने दर्शन करने के लिए माँ मनसा देवी के हमने दर्शन करे हैं और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। हमारी मनोकामना यही है कि सुख समृद्धि बनी रहे। मेरे को मतलब माता ने पहले ही दिन पे बुला लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा यहाँ पे बहुत आने का मन था और तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी आई हैं, तो मतलब यहाँ पर जो भी आप मांगते हो हमेशा आपको मिलता है, मेरी तो यही श्रद्धा है।
17: हरिद्वार की लोकल तीर्थ पुरोहित है, यहाँ पे मनसा देवी आते रहते हैं। हमें कम से कम 5 साल तो मुझे हो गए, मेरे पिताजी को कम से कम 30-35 साल हो गए आने के लिए। तो ट्रॉली भी है, स्कूटी भी लोग आते हैं, पर पैदल आने में जो है मनोकामना दिल को तसल्ली मिलती है। पैदल आना चाहिए, मन की जो भी मनोकामना है जरूर पूरी करती है मनसा देवी।
5: अब आपको मध्य प्रदेश के मेहर लिए चलते हैं और यहाँ पर माँ शारदा शक्तिपीठ के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। भोर की पहली किरण के साथ ही माँ शारदा के दर्शन और मंगला आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। ये शक्तिपीठ है, मंदिर परिसर में माँ के जयकारों से यहाँ पर गूंज उठा है मंदिर और हर ओर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दूर दराज से आए भक्त माँ शारदा के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। कठिन चढ़ाई और लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। तो सुबह हुई मंगला आरती की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।

0: तो चलिए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली में हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं, तो वहीं अकोला से धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र, मुंबई में मौजूद हैं। सबसे पहले मुंबई आपको लिए चलते हैं। मुंबई में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? सुबह आपने मंगला आरती की तस्वीर दिखाई थी, अब क्या यहाँ पर हो रहा है?
1: देखिए, मैं बता दूं कि इस समय माता रानी के श्रृंगार का समय चल रहा है। कुछ देर पहले ही उन्हें बकायदा स्नान कराया गया है और अब श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार के तुरंत बाद ही आरती शुरू हो जाएगी, इसलिए माता रानी का दर्शन करने वाले जितने भी श्रद्धालु इस समय यहां पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, वो सभी रुके हुए हैं, उन्हें रोका गया है। और जैसे ही श्रृंगार और आरती हो जाएगा, फिर से सभी के सभी मुम्मा देवी मैया का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मुम्मा देवी मैया साउथ मुंबई में स्थित एक ऐसी माता रानी जिनका नाम ही मुंबई पर रखा गया है। कहते हैं मिन्नतों की माई है ये, हर कुछ यहाँ पर मांगा जाता है, सब कुछ पूरा हो जाता है। देखिए, कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बताएं आप कितनी देर से यहाँ खड़ी हैं?
2: मेरे को हो गया है एक घंटा। जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है और माँ का तेज एकदम यहाँ लहरा रहा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली है इस मंदिर में दर्शन लेने के लिए, और माता रानी की कृपा बरसती रहे। जय माता दी।
1: जय माता दी। कहाँ से आई है माता रानी?
3: घाटकोपर।
1: घाटकोपर से आई। क्या क्या थाली में आपके सजा हुआ है?
3: हाँ, ले लो सब, फोटो ले लो इसका।
1: ये देखिए फोटो। जय माता दी।
3: जय माता दी।
1: मुम्मा देवी आती रहती
3: है? हाँ, आते हमेशा।
1: ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चों के मुंडन भी यहाँ पर लोग आकर करवाते हैं, लोगों के मिन्नतें होती हैं, और न केवल मुंबई महाराज बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग पहुँचते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं। मुम्मा देवी मैया जिनकी बहुत ही ज्यादा पौराणिक कथा है, सालों पहले इतिहास है। मुंबई के मछुआरे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं अपने कामों को लेकर के, उन्होंने कोली समाज ने माता रानी की स्थापना यहाँ पर की थी। धीरे धीरे इनका चमत्कार इस तरीके से होने लग गया कि पूरे विश्व में ही इनका नाम हो गया। हर कोई अब यहाँ पर आकर के स्पेशली नवरात्रि में माता रानी का दर्शन करना चाहता है। न केवल मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर है, बल्कि ये पूरा परिसर भी देखिए, बहुत ही पवित्र में धर्मस्थल की तरह पूरा तब्दील हो चुका है। माता रानी को चढ़ाए जाने वाले सारी चुनरियां एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग, डिमांडिंग और स्टाइलिश यहां पर लगाई गई हैं। साथ ही साथ थालियां भी यहां पर सजाई गई हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी है नजर आ रही, और हर कोई आया है। कहां से आई हैं आप वैसे?
4: कांदिवली से।
1: जय माता दी।
4: जय माता।
1: बोल से बोलो।
4: जय माता दी।
1: जोर से बोलो। आवाज नहीं आई।
5: जय माता दी।
1: जय माता दी।
5: जय माता दी।
1: जय भवानी।
5: जय भवानी।
1: जय अम्बे।
5: जय अम्बे।
1: देखिए, इस तरीके से लगातार ग्रुप है, हर कोई यहाँ पर मौजूद हो जाता है। थोड़ा सा तस्वीरें देखें, यहाँ पर एक से बढ़कर एक चुनरिया यहाँ पर लगी हैं, और माता रानी को चढ़ाए जाने वाले फूल, हार, मिठाइयाँ, जो कुछ उन्हें पसंद है वो भी यहाँ लगा हुआ है। खास बात यह है कि सेवाकार भी यहाँ जुटे हुए हैं। इस समय 37 डिग्री सेल्सियस गर्मी जो है वो मुंबई में है, और इसके
0: धर्मेंद्र यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो देखते ही बनती है। खासा रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद चुनरी वगैरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है उनके लेने के लिए, ये सजावट देखते ही बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, दिल्ली में झंडे वालन मंदिर में भोग प्रसादम की क्या व्यवस्था है?
6: तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखा दूं पहले, और एक बार मैं बोलता हूं मनीष से भी कि वो आपको पास से जाकर दर्शन कराएं। भोग प्रसाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनके हाथों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाना कुछ भी आपको इमिडिएटली परमिशन नहीं देते हैं। जो भोग प्रसाद है वो सिर्फ मंदिर ही अपनी तरफ से जो माता को भोग लगता है वही चीज़ें यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। भक्तों को सिर्फ यहाँ पर आना है, लाइन में खड़े होना है और पूरे सब्र के साथ खड़े होना है, क्योंकि वक्त लगता है यहाँ, कतार बहुत लंबी होती है। भक्तों को आप फिर भी जब भी यहाँ देखेंगे, हर चेहरे पर एक संतोष का भाव होता है, एक श्रद्धा का भाव होता है। खासकर वो भक्त जो दर्शन करके जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ज़रूर जीवन में कुछ पा लिया है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से वो लगातार मंदिर पहुँचते हैं हर नवरात्रि। क्या नाम है आपका?
7: मंजू।
6: आप कितनी देर बाहर कतार में रहीं?
7: आधे घंटे हो गया अभी, मैं तो घर से आई थी।
6: आधा घंटा हो?
7: हाँ।
6: बहुत दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पर?
7: नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं।
6: कितने सालों से आप यहाँ आ रही?
7: मुझे हो गए 16-17 साल।
6: 16-17 साल हो गए।
7: हाँ।
6: व्रत है आपका?
7: नहीं सर, बस 2 ही दिन रखते हैं।
6: कोई बात नहीं। तो आप अकेले ही आई हैं, बच्चे परिवार?
7: नहीं, बच्चे हमारे घर पे आ जाते हैं, बच्चे मेरे पास ही में है घर।
6: तो आप देख रहे हैं कि कई लोग जो 16-17 साल से लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, उनके लिए मंदिर को लेकर क्या भाव होते होंगे जब वो यहाँ पहुंचते हैं। आज सोमवार का दिन है, तो कई लोग के परिवार में लोग कोई ऑफिस गया होगा, बच्चे स्कूल गए होंगे, लेकिन ऐसे में भी वो खुद अकेले ही चल के यहाँ मंदिर पहुँच रहे हैं, किसी को
0: बिल्कुल श्रद्धालु में अपरंपार आस्था है, काफी सालों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये उनकी भक्ति उनका उनकी आस्था ही है। और अब धनंजय के पास चलते हैं अकोला में। धनंजय, अकोला में यहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले मौसम को लेकर भी बात हुई थी कि बारिश हो रही है, तो वहां पर किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता तपस्या तप की प्रतीक मानी जाती है, यहाँ पर श्रद्धालु कितनी परीक्षा दे रहे हैं पहुंचने के लिए?
8: देखिए यहाँ पर मौसम की बात आपने की तो मौसम एकदम साफ सुथरा है, कड़ी धूप है, जिस तरीके से अक्टूबर हीट जो यहाँ पर देखी जाती है वो हर साल से जो है अधिक है, बावजूद जो है इस पर जो है भक्ति लोगों की जो है भारी पड़ रही है, क्योंकि शक्ति की माँ जो है वो भक्ति में लीन हो जाती है और इसी भक्त जो है वो अपनी माँ को आराधना साधना करने के लिए एक मराठी में जो आरती कहा जाता है जो दुर्गा माता की है वो कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भक्त आए हैं और भक्तों ने माता की आराधना की है, कौन सी आरती कहेंगे मुझे बोलिए जरा तुम। हाँ बोलिए बोलिए।
0: जी धनंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इससे पहले अब दर्शकों को लेकर चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की जैसलमेर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर तनोट माता मंदिर में माता तनोट की पूजा उपासना धूमधाम से की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनोट गाँव स्थित है। आपको बता दें करीब 1200 साल पुराना तनोट मातेश्वरी मंदिर पूरी दुनिया में बमों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है और साल 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों से जुड़ी मान्यताओं के चलते उन्हें जवानों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान ने यहां पर बमों की बारिश कर दी थी, करीब 450 साल यहां पर आपको बता दें 450 बम बरसाए गए थे लेकिन एक भी बम फटा नहीं और तभी से चमत्कारिक मंदिर में आस्थावानों की श्रद्धा और बढ़ गई। खासकर BSF के जवान इस मंदिर में सालों भर यहां पर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, नवरात्र पर यहां पर रौनक देखते ही बनती है। BSF के जवान आपको दिख रहे होंगे यहां पर पूजा अर्चना करते हुए, आरती करते हुए, तो सरहद की सुरक्षा करने वाले जवान यहां पर नवरात्र पर शक्ति उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं।
9: इस तरह से इस मंदिर प्रांगण की पहले भी एक अद्भुत महिमा और व्याख्या चलती आ रही है, वैसे ही आज भी देखेंगे तो आप भक्तों का ये सैलाब और ये भीड़ इस बात की उत्सुकता करती है और

0: आरती होती है, सभी देव देवताओं को उसमें शामिल किया गया है।
1: हर साल नवरात्रा स्थापना दिवस पर हम यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं और देवी का बहुत परचा है। और जो 1965 71 की लड़ाई थी उसमें जो अपने फौज के लिए बहुत साथ दिया था और जो पाकिस्तान की ओर से बमबारी हुई थी उसको जितने भी गोले गिरे उस सबको हटने से रोक दिया था। और देवी का बहुत यहाँ परचा है और हम आई साल नवरात्रा स्थापना के दिवस पे या देवी के दर्शन पे आते हैं।
2: तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से यहाँ पर पूजन अर्चना की गई है। इसी बीच जो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष धर्मेंद्र जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
0: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, तपस्या और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर जारी. सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति आराधना. जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ, बीएसएफ के जवानों का भजन कीर्तन. बिहार से कटिहार से आई अनोखी भक्ति की तस्वीर, श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल के लड्डुओं का भोग, दर्शन पूजन को भक्तों की कतार लगी. बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड बना, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किए. मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई. पहाड़ों पर भी मौसम की मेहरबानी बरकरार है. हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ.

तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से जीएनटी पर लंच टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। गुजरात में इन दिनों नवरात्र के महापर्व की धूम है और राज्य का कोना कोना गरबा उत्सव के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। आस्था, शक्ति की उपासना और लोक संस्कृति का यह अनूठा संगम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हजारों थिरकते कदम माँ अम्बा की भक्ति से सजे गीतों पर झूम उठते हैं। वडोदरा से पोरबंदर तक गुजरात का ये उत्सव केवल एक नृत्य नहीं बल्कि सामूहिक ऊर्जा, उमंग और जीवन सांस्कृतिक धरोहर का सबसे भव्य उत्सव बन चुका है। आपको दिखाते हैं गुजरात में गरबा के रंग।

0: गरबे की धुन पर झूम रहे हजारों लोग। हर हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट और गरबे की ताल पर थिरक रहे पांव। ये तस्वीरें बड़ोदरा की है। नवरात्र के अवसर पर यहाँ लक्ष्मी विलास पैलेस के प्रांगण में गरबे का यह आयोजन खास हो गया है, क्योंकि आम लोगों के साथ साथ कुछ स्पेशल मेहमान भी इसमें बड़े उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक गुजराती रंग में रंगे इन मेहमानों के लिए यहाँ पर गरबे में भागीदारी यादगार बन गई।
1: Absolutely wonderful. Tens of thousands of people. We got the aarti prepared behind us. Garba in the center. First night of Navratri here in Vadodara, Gujarat. The ultimate place in the world to experience this. Lakshmi Villas with the family. Amazing.
0: गरबा खेल रहे ये मेहमान हैं यहाँ आए 25 देशों के कलाकार और कला प्रेमी, जो यहाँ सांस्कृतिक समारोह एकम 2026 में भाग लेने पहुँचे थे। कार्यक्रम के आखिरी दिन इन्हें गरबे के इस पारंपरिक उत्सव में शरीक होने का शानदार मौका मिला।
2: बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने देशों से डेलीगेट्स आए हैं और हमारा गरबा में पार्टी किया है। उन्होंने हमारे बड़ोदरा की कल्चर की एक झलक साथ ले जा रहे हैं, यादें साथ ले जा रहे हैं, तो माँ की कृपा है कि सब यहाँ आ सके। जी वो बहुत खुश हैं और

0: नवरात्र का महापर्व चल रहा है तो माता की आराधना के लिए शहर शहर गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में गुजरात के पोरबंदर में 102 साल पुरानी भद्रकाली माताजी गरबी महोत्सव में भी लोग बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।
1: हम गरबा महसूस करते हैं कि हम ये गरबी पुरानी परंपरा से चली आ रही है, जिसमें सिर्फ पुरुष ही माथा सर पर टोपी धारण करके खेल सकते हैं और जो गरबा लिखे गए हैं वो ही गरबा हम यह गाते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं उस तरह से सभी पुरुषों जो खेल रहे होते हैं वो हमारा जो गरबा माँ का गरबा वो सामने गाते हैं। और ये इस बात का हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारी ये छठी बेटी यहाँ खेल रही है।
0: छोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग तक तमाम उम्र और तबकों के लोग इस उत्सव में शामिल होकर त्योहार मनाते हैं। खास बात यह है कि इस उत्सव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है।
2: यहाँ पे जो गरबी हम सब पुरुषों ही यहाँ से सब मेल पर्सन ही हम खेलते हैं और जो साउंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ नो साउंड पे और यहाँ पे हारमोनियम रहता है, तबला रहता है और मंजीरा रहता है, तो उसी पे ही हम खेलते हैं। और यहाँ पे खेलने के लिए भी एक शिस्तबद्ध है कि हम लोग जो एक पुराने हमारे जो भी हमारे जितने वडील लोग हैं उसने सब जो सिखाया है वही हमें खेलना होता है, वही स्टेप में खेलना है।
0: गरबे का ये उत्सव केवल अंबे माँ की उपासना की धार्मिक रस्म नहीं है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए अपनी परंपरा और जड़ों से जुड़े रहने का भी माध्यम है। यही वजह है कि आधुनिक बदलावों के बावजूद समाज में ये सांस्कृतिक धरोहर अभी तक लगभग उसी रूप से बची हुई है जिस तरह सैकड़ों साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो वहीं गुजरात के जामनगर में अंगारा रास लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें शक्ति पर्व में नौजवानों का अंगारा सबको लुभा रहा है। नौजवान हाथ में मशाल लेकर अंगारा रास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरबा और रासोत्सव में किए जाने वाले ये एक साहसिक और अद्भुत नृत्य है। तो वहीं इसमें नृत्य करने वाले कलाकार अपने हाथों में जलते हुए अंगारे या जलते हुए अंगारों से भरे पात्र लेकर सधे हुए अंदाज में दांडिया या रास नृत्य प्रस्तुत करते हैं। जामनगर में ये रास नृत्य हुआ है जिसकी तस्वीरें आप देख

0: नवरात्रि के पावन अवसर पर हैदराबाद की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर स्थित ऐतिहासिक श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की अपार आस्था देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मां भाग्यलक्ष्मी की आरती में शामिल होकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मान्यता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्तों को नई ऊर्जा और विश्वास प्रदान करती है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में उमड़ी ये आस्था दिखाई दे रही है और ये दर्शाती है कि भक्तों के मन में माँ के प्रति श्रद्धा कितनी गहरी है।
1: कष्ट कभी नहीं पाता है जो कोई माँ की करे आरती, कष्ट कभी नहीं पैया तोरी मैया आरती।
0: और अब आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर दुर्गा पूजा पंडाल सजने लगे हैं। ऐतिहासिक संतोष मित्रा स्क्वायर में इस बार शक्ति के साथ साथ देशभक्ति का एक ऐसा अनूठा रंग देखने को मिल रहा है, जिसकी गूंज पूरे देश में है। वंदे मातरम के थीम पर बने लाल किले के भव्य प्रांगण में किस तरह से हो रही है माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
2: भारत माता की जयकार और वंदे मातरम की गूंज, लाल किला के शानदार पृष्ठभूमि, अखंड भारत और देश की अखंडता की भावना को उजागर करता तिरंगे में रंगा मातृभूमि का नक्शा। ১৯৪৭ में देश के विभाजन के समय लाखों विस्थापित लोगों के दर्दनाक पलायन और उनके सफर की ऐतिहासिक यादों को समेटे हुए विंटेज सिस्टम इंजन और मूविंग ट्रेन की रेप्लिका देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारियों और नेताओं की प्रतिमाएं, कोलकाता की ऐतिहासिक पहचान हावड़ा ब्रिज की प्रतिकृति। ये तस्वीरें कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल की है। इस साल इस पंडाल को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की थीम पर तैयार किया गया है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन जोरदार आतिशबाजी के बीच इस पंडाल का धूमधाम से उद्घाटन किया गया।
3: खुशी का माहौल है और हमारी सनातनी संस्कृति को मानते हुए दुर्गा पूजा इस बार होगा। आज यहाँ वंदे मातरम का थीम है, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, वंदे मातरम के ऊपर इस लोग यहाँ आयोजन किया है। ये कलकत्ता की सबसे बड़ा पूजा है।
2: इस पंडाल में 1947 में हुए भारत के विभाजन के ऐतिहासिक दर्द, लोगों के विस्थापन, पलायन और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की कहानियों को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसका विशेष लाइट एंड साउंड शो है। यहाँ पर लेजर लाइट के माध्यम से भारत की आजादी की लड़ाई के सफर को दर्शाया गया है, जिसके केंद्र में है वंदे मातरम की प्रेरणा।
4: वंदे मातरम ये हमारा सारा देश का नारा है। एक टाइम जब आंदोलन हुआ था, वंदे मातरम नारा सारा देश को हिला के रख दिया था इंग्लैंड को भगाने में। आज वही चीज कुछ भारतीय लोग भूल गया था, उसी को दोबारा लाने के, लोगों को याद दिलाने के लिए इस साल वंदे मातरम को ये थीम तैयार किया गया है। और इस साल सनातनी मूर्ति पूजा हो रहा है और वंदे मातरम ये यंग जेनरेशन को नारा दे रहा है कि देश के लिए जो लोग बलिदान दिया है उन लोग सब भूल गया था, उसको जागृत करने के लिए एक थीम बना।
2: अवसर माँ दुर्गा की आराधना का है तो पंडाल में माता की प्रतिमा को ट्रेडिशनल लुक में भी पेश किया गया है, ताकि देशभक्ति की थीम के साथ माता की भक्ति की मूल भावना बरकरार रहे। पंडाल का भारी ढांचा दिल्ली के लाल किले जैसा है, लेकिन इसके भीतर प्रवेश करते ही अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा की प्रतिमा के दिव्य दर्शन होते हैं। कोलकाता के कुमार तुली के मशहूर कलाकारों ने तकरीबन 4 महीने लगातार कड़ी मेहनत के बाद इस पूजा पंडाल और प्रतिमा के निर्माण का काम पूरा किया। जितना भव्य पंडाल है उसमें स्थापित की गई मां की प्रतिमा भी अपने आप में उतनी ही खास है।
4: बंदा फुट ऊंची मूर्ति है और पीछे का बैकग्राउंड लेके 21 फीट है। इस मूर्ति का खास यह है, ये देवी मिन्मोई रूप है जो साबे की ढंग का पूजा है, जो सनातन धर्म इसको मानते हैं, और देवी का रूप जो है वो देवी का ही है।
2: कोलकाता का संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल पूरे पश्चिम बंगाल और भारत में सबसे प्रसिद्ध और भव्य पूजा पंडालों में से एक है। ये पंडाल हर साल की तरह इस बार भी अपनी अनूठी और रचनात्मक थीम, शानदार लाइट शो और भव्य प्रतिमा के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
5: थीम देखिए, खुद बात करेंगे, ये भारत माता की फ्लैग है, हम लोग इंडिया का फ्लैग है, और हम लोग इससे अच्छा क्या माहौल हो सकता है। हम लोग का जो ऐतिह्य है, जो हम लोग पहले छोटे से जो पढ़ के बड़े हुए हैं, वो आंखों हम लोग देख रहे हैं।
2: दुर्गा पूजा के दिव्य उत्सव का शुभारंभ हो चुका है तो कोलकाता वासियों में उत्साह देखते ही बनता है। इसकी एक झलक तो इस पूजा पंडाल में देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में यहाँ के एक और भी पंडाल में पूजा की शानदार रौनक आपको GNT पर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और अब तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, जहां पर पुरुलिया जिले के जयपुर राजबाड़ी की दुर्गा पूजा अपनी अनोखी परंपरा, इतिहास और स्वर्ण प्रतिमा की वजह से खास पहचान रखती है। यहां मां दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा साल की लगभग 360 दिन बैंक लॉकर में सुरक्षित रहती है। दुर्गा पूजा के अवसर पर छठी के दिन कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच माँ की स्वर्ण प्रतिमा को बैंक लॉकर से निकालकर जयपुर राजबाड़ी लाया जाता है, और पूजा के दौरान राजबाड़ी में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद दशमी के दिन पुलिस सुरक्षा के बीच इस स्वर्ण प्रतिमा को दोबारा बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कर्नाटका के मैंगलुरु में दशहरा उत्सव के शुभारंभ की तस्वीरें। मैंगलुरु दशहरा को कर्नाटका में आम आदमी का उत्सव भी कहा जाता है। ये मैसूर दशहरा की तरह ही अपनी भव्यता, अद्भुत रोशनी और अनूठी परंपराओं के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से कुडरोली श्री गोकर्णनाथ क्षेत्र और मंगला देवी मंदिर में आयोजित होने वाले इस 10 दिनों के उत्सव में धार्मिक अनुष्ठान और लोक कला के शानदार रंग देखने को मिलते हैं। उत्सव के पहले दिन कुडरोली मंदिर में ज्ञान की देवी माँ शारदा की विशाल और सुंदर प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही माता के 9 रूपों यानी नव दुर्गा और भगवान गणपति की मूर्तियां भी स्थापित की जाती हैं। हर दिन देवी माँ का अलग अलग रूपों में भव्य श्रृंगार होता है। इसके अलावा मंगलुरु दशहरे की सबसे अनूठी और ऊर्जावान पहचान यहाँ का बाघ नृत्य है। स्थानीय युवा अपने पूरे शरीर पर बाघ जैसी पेंटिंग करवाते हैं और ढोल नगाड़ों की तेज थाप पर सड़कों पर पारंपरिक नृत्य करते हैं। दूर दूर से सैलानी इस उत्सव के नजारे को देखने के लिए मैंगलुरु आते हैं। और यहां वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लंच टाइम में खबरें जारी हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: ब्रेक के बाद लंच टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको भगवान बद्री विशाल के धाम में ले चलते हैं, जहां पर इस वर्ष आस्था ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। खास बात यह है कि कपाट बंद होने में अभी करीब 1 महीने का समय बचा हुआ है, और ऐसे में इस बार यात्रा के नए रिकॉर्ड के साथ सम्पन्न होने की उम्मीद की जा रही है।
7: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार ऐतिहासिक बनती नजर आ रही है। हर तरफ गाड़ियों की कतार, लगातार सड़कों पे जो जाम की स्थिति है वो अभी भी सड़कों पे देखने को मिल रहा है। जो तीर्थयात्री हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। तो वहीं मौसम की बात करें, भले ही मौसम लगातार करवट बदल रहा हो, बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त ठंड का एहसास देखने को मिल रहा है, वहीं अब तक बद्रीनाथ धाम में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। तो वहीं इस बार जो पितृपक्ष अभी बीता है, सिर्फ पितृपक्ष में पहली बार 2.25 लाख तीर्थयात्री जो बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। इसी के साथ 20 लाख का आंकड़ा पहली बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा में देखने को मिला है। वहीं अभी भी 1 महीने से अधिक का समय बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने में समय शेष है। ऐसे में देखना होगा इस बार कौन सा नया रिकॉर्ड बद्रीनाथ धाम की यात्रा में बनता है, क्योंकि पहली बार 20 लाख श्रद्धालु जो है अक्टूबर के शुरुआती दौर में ही बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुके हैं, और अब 1 महीने का लगभग समय शेष है। ऐसे में देखना होगा इस बार का नया आंकड़ा क्या रहता है, नया रिकॉर्ड क्या रहता है, क्योंकि मानसून, मौसम अलर्ट और कड़ाके की ठंड के बीच भी यात्रा का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। कमल एन सिलोरी, चमोली।
6: और इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, तपस्या और साधना की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर जारी। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति आराधना, जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनूट माता मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ हुआ, बीएसएफ के जवानों का भजन कीर्तन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने शानदार प्रस्तुति दी। बिहार के कटिहार से आई अनोखी भक्ति की तस्वीर, श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल लड्डू का भोग, दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड बना, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: नवरात्र के दूसरे दिन आज देश भर में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, देवी के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। नवरात्र के दूसरे दिन मां को अर्पित किया जाता है गुड़हल के फूल और मिश्री का भोग, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में दिख रहा है भक्तों का विशेष उत्साह। बेहद शांत सौम्य और मोहक है मां का ब्रह्मचारिणी का रूप, माता के सीधे हाथ में जप की माला और उल्टे हाथ में कमंडल है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें कहा गया है मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हर प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान का वरदान मिलता है। संयम साधना और आत्मबल की मूर्ति है मां ब्रह्मचारिणी, मां के स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का निदान होता है। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का भव्य श्रृंगार किया गया। माता की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने लगाई जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा कर मां का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने मां की पूजा की। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। नवरात्र के दूसरे दिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मां की भव्य महाआरती हुई, हैदराबाद में भक्तों ने लगाए जमकर जयकारे। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में नवरात्र पर दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। महेंद्रगढ़ में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिली, शीतला माता मंदिर में दूसरे दिन भी लगी भक्तों की लंबी कतार। शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी किया गया आयोजन, तो वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कठुआ में महाकाली मंदिर में दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विधि विधान से पूजा पाठ किया गया।

0: हैदराबाद में नवरात्र के दूसरे दिन भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मां की आरती उतारी, कई भक्तों ने लगाए जमकर जयकारे। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में नवरात्र पर दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। महेंद्रगढ़ में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिली, शीतला माता मंदिर में दूसरे दिन भी लगी भक्तों की लंबी कतार। शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कठुआ में महाकाली मंदिर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। आगरमालवा के सिद्धपीठ मां बगलामुखी में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा पाठ किया। दूसरे दिन भी मां बगलामुखी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, अब तक 1,00,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना की, बड़ी संख्या में भक्तों ने हवन अनुष्ठान भी किए। रामनगरी अयोध्या में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिली, प्रसिद्ध बड़ी देवकाली मंदिर में मां के दर्शन और पूजन के लिए लग रही है लंबी कतारें। अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में भक्तों का तांता लगा, मान्यता है कि मां बड़ी देवकाली भगवान श्री राम की कुलदेवी हैं। संतरा नगरी नागपुर में शारदीय नवरात्रि का आगाज हुआ ढोल ताशों की गूंज और मां दुर्गा के जयकारों के बीच सार्वजनिक पंडालों में मां की स्थापना हुई। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ हुआ मां का भव्य स्वागत, पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु माता रानी के आगमन जुलूस में झूमते नजर आए। मां दुर्गा की भक्ति में डूबी नगरी, नागपुर के भव्य पंडालों में विधि विधान से विराजी माता रानी। रंग बिरंगी सजावट से सजे मां दुर्गा के पंडाल, श्रद्धालुओं में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। शारदीय नवरात्रि को लेकर नागपुर में उत्साह अपने चरम पर, शहर के अलग अलग इलाकों में सजे आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा की, जय माता दी के लगाए जयकारे। अयोध्या में नवरात्र पर पंडालों में विराजी मां दुर्गा, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मुजफ्फरपुर में नवरात्र पर सामूहिक आरती का आयोजन, लोगों के बीच बांटे गए फलाहार। असम के कोलाघाट में मां की प्रतिमाओं का निर्माण तेज हुआ, अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। पुरी में नवरात्र के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ की उतारी गई भव्य आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रयागराज के गांव में शारदीय नवरात्रि की अनूठी परंपरा देखने को मिली, पंडालों में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमाएं, सामूहिक पूजा अर्चना और आरती में जुट रहे हैं लोग। प्रयागराज ग्रामीण अंचलों में नवरात्रि पर आस्था का मिनी मेला देखने को मिला, श्रद्धा सहयोग और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है मां की आराधना का पर्व। बागेश्वर में शारदीय नवरात्रि की धूम, प्राचीन कोट भ्रामरी माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, मां के जयकारों से गूंजा कोट भ्रामरी मंदिर, 9 दिनों तक मां की दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा होगी। उज्जैन में नवरात्र के दूसरे दिन महाकाल के दरबार में पहुंचे कुलदीप यादव और तिलक वर्मा, विधि विधान से की बाबा भोलेनाथ की पूजा। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति आराधना, जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ हुआ, बीएसएफ के जवानों का भजन कीर्तन। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन की गई विशेष आरती, सुबह सुबह श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। अकोला के अंबिका देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां की पूजा की। कोटा में दशहरा को लेकर तैयार किया जा रहा है रावण का पुतला, 5,000 से लेकर 20,000 तक के बिक रहे हैं पुतले। वाराणसी में भी दशहरा को लेकर कारीगरों में जबरदस्त उत्साह, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बनाए जा रहे हैं पुतले। कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का भव्य उद्घाटन वंदे मातरम की थीम पर आधारित है ये पंडाल। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर तैयार पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, इतिहास, देशभक्ति, लाइट एंड साउंड और आधुनिक तकनीक के अनोखा मेल। पंडाल में लाल किला, सेलुलर जेल और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं तैयार की गई, अलग अलग दृश्यों के जरिए दिखाई गई है गुलामी से लेकर आजादी तक के संघर्ष की कहानी। मंडप में प्रवेश करते ही विराजमान है मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा, दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है स्वतंत्रता गाथा के बीच आस्था का यह अनोखा संगम। संतोष मित्र स्क्वायर के इस भव्य पंडाल को तैयार करने में लगा है करीब 2 महीने का समय, पंडाल में देखने को मिल रहा है लाइटिंग और तकनीक का खास इस्तेमाल। कोलकाता में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल का सीएम सुवेंद्र अधिकारी ने उद्घाटन किया, जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल की थीम पर तैयार किया गया है पंडाल। लगभग 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है भव्य ये पंडाल, हवा महल की बारीक कारीगरी और डिटेलिंग को जीवंत करने के लिए राजस्थान से बुलाए गए हैं विशेष कारीगर। पंडाल के अंदर राजस्थानी संस्कृति और भव्य लाइटिंग की विशेष व्यवस्था, पंडाल में हर तरफ दिखती है राजस्थानी संस्कृति की झलक। मुख्यमंत्री ने पूरे पंडाल का किया दौरा, दुर्गा मां का भी आशीर्वाद लिया। दरबार में विराजमान मां की प्रतिमा का किया गया है भव्य श्रृंगार, बारीक नक्काशी और सुंदर आभूषणों से सजी है मां की मूर्त। गुजरात के जामनगर में गरबा की धूम देखने को मिली, बड़ी संख्या में भक्तों ने गरबा किया। गरबा रास में जलती मशालों के साथ रास करते हुए नजर आई युवा, 80 साल से चली आ रही है परंपरा। जामनगर में आस्था और साहस का अनोखा संगम, नंगे पैर दहकते अंगारों पर रास कर रहे हैं युवा। सूरत में नवरात्र उत्सव पर गरबा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए। गरबा से पहले देवी दुर्गा की उतारी गई आरती, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। वडोदरा में दिखे गरबा के रंग, विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास गरबा में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चने चोली और कुर्ता पजामा जैसे पारंपरिक परिधानों में सजे दिखे विदेशी मेहमान, गुजराती लोक संगीत की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। पोरबंदर में नवरात्रि उत्सव में दिखा देवेजा कोली समुदाय का बेहद प्राचीन अनुष्ठान, 102 साल पुराने भद्रकाली माता जी गरबा में पुरुषों ने पारंपरिक गरबा किया। गरबा के दौरान पुरुष पहनते हैं विशिष्ट और भव्य पारंपरिक पोशाक, इसमें मोतियों से जड़ी विशेष टोपियां पहनकर माता जी की भक्ति में लीन होकर गरबा खेलते हैं। ढोलक की थाप और हारमोनियम की धुन पर लोग गीत गाते और नाचते हुए नजर आए पुरुष, लोगों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है यह आयोजन। रामनगरी अयोध्या की रामलीला में 151वें साल में प्रवेश किया, स्थानीय कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं भगवान श्री राम की लीला के मंचन की परंपरा। अयोध्या की 151 साल पुरानी रामलीला की अनोखी परंपरा देखने को मिली, हनुमान जी के प्राचीन मुकुट की रोजाना होती है पूजा। अयोध्या में रामलीला के जरिए सहेजी जा रही है सांस्कृतिक विरासत, बचपन से ही रामलीला से जुड़ते हैं स्थानीय बच्चे, बड़े होकर निभाते हैं रामायण के पात्र, पीढ़ियों से जारी है परंपरा। रामनगरी की रामलीला में हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले कलाकारों के लिए खास नियम बनाए गए, प्राचीन मुकुट धारण करने से साथ मर्यादित आचरण और शुद्ध विचारों पर जोर है। अयोध्या की रामलीला बनी आस्था और संस्कारों की मिसाल, कोई अभिनय से तो कोई भजन और वादन से दे रहा है योगदान। प्रयागराज में रामलीला की रौनक देखने को मिली, श्री बाल रामलीला समिति में नारद मोह लीला का हुआ मंचन। प्रयागराज में नारद मोह लीला के साथ रामलीला का आगाज हुआ, भगवान विष्णु की भूमिका में नजर आए अभिनेता गौतम त्रिपाठी। रामलीला के जरिए जीवंत हो रही है प्रभु श्री राम की गाथा, श्री बाल रामलीला समिति में नारद मोह लीला के साथ शुरू हुआ मंचन, पूरे शहर में रामलीला की धूम। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में नवरात्रि और दशहरे की धूम देखने को मिली, घरों में सजाए जा रहे हैं रंग बिरंगे गुल। विशेष पूजा अर्चना के साथ मां दुर्गा की आराधना की जा रही है, आकर्षक सजावट और भक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है पर्व। देवभूमि उत्तराखंड और कुंजापुरी मेले का शुभारंभ हुआ, सीएम धामी शामिल हुए। कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, अलग अलग झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। राजस्थान के धौलपुर में धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन की जयंती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में दिखे संस्कृति के अनूठे रंग, कलाकारों ने बांधा समा। महाराजा अग्रसेन जयंती पर महिलाओं ने बैंड बाजों की धुन पर जमकर डांस किया, शोभा यात्रा में चॉकलेट आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थों का वितरण।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, तपस्या और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, GNT पर शक्ति उत्सव दिन भर जारी। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति आराधना, जैसलमेर से भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ हुआ, BSF के जवानों का भजन कीर्तन। शारदीय नवरात्रि पर गुजरात में गरबा की धूम देखने को मिली, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने शानदार प्रस्तुति दी। बिहार के कटिहार से आई अनोखी भक्ति की तस्वीर। श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल के लड्डुओं का भोग। दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार लगी। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड। अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी।
8: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक यहां मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
9: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए शिवाय और लिली की बढ़ेंगी नजदीकियां, जगधात्री बनेगी जग का जासूस। घर छोड़कर जाएगी राध्या, परेशान होगा प्रथम, कामयाब होगी दादी और अंतरा की चाल।

और जी कुटुम्ब मनाएगा नवरात्रि का त्योहार, होगा नाच गाना और खुशी खुशी जी परिवार मिलकर नवरात्रि के त्योहार की धूम मचाएगा। देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: रियल मन अति सुंदर में राधिया घर छोड़कर जा चुकी है और इसके पीछे दादी और अंतरा की चाल है। अब प्रथम निकल पड़ा है अपनी राधिया को ढूंढने के लिए। तो क्या राधिया प्रथम को मिल पाएगी? आइए देखते हैं सीरियल में क्या तमाशा हो रहा है।
1: खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था।
2: राधिया ने लिया घर छोड़कर जाने का फैसला।
1: ओ तेरा
2: कामयाब हुआ दादी का षड्यंत्र।

0: मंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में मेरी दादी ने इन दिनों राध्या को इतना परेशान किया है, इतना तंग किया है कि भाई वो बेबस हो चुकी है। और इन सब षड्यंत्रों में अगर दादी का कोई साथ दे रहा है तो वो है अंतरा। ऐसे में देखिए कैसे भाई अंतरा ने राध्या को इतना ब्लैकमेल किया कि भाई राध्या ने घर छोड़कर जाना मुनासिब समझा। ऐसे में भाई वो घर ऐसे ही नहीं छोड़कर गई है, बल्कि बेहद ही भावुक और टूटे हुए दिल के साथ वो अपने ससुराल को अलविदा कह रही है।
1: आपकी दी हुई हर कसौटी पर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस हमारे परिवार और हमारे बच्चे को अपनी छाया में रखिए। हम घर से दूर, हमारा बच्चा कभी भी आपकी हिफाजत से दूर ना हो।

0: गुम हो।
1: ऐसे में वैराध्या की सासू माँ उसे घर से जाते हुए देखकर रोक नहीं जा रही होती है कि भाई आफत की दुकान यानी कि दादी फिर एक बार आकर प्रथम की माँ को रोक लेती है और राध्या बिना किसी को कुछ बताए घर से चली जाती है।

भाई देखिए तो कैसे प्रथम अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं, भाई उनकी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही और उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी पीठ के पीछे कितने खेल रचे जा रहे हैं। ऐसे में जब दादी को ये बात पता चलती है कि अंतरा ने कमरे में एक लेटर रखा है राध्या के नाम से, देखिए कैसे फौरन दौड़ती भागती दादी प्रथम और राध्या के कमरे में पहुँच जाती है और करना चाहती है लेटर की फेर बदल। ऐसे में वो नया लेटर भी लिखती है जिसमें वो ये बात कहती है कि राध्या अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने घर छोड़कर जाने का फैसला किया। तो ये लेटर लिखकर पूरा होता ही है कि प्रथम की नींद खुल जाती है और देखिए कैसे घबराई हुई दादी कमरे में ही छिपने की कोशिश करती है। हालांकि प्रथम को इस बात का एहसास तो होता है कि कमरे में कोई है, लेकिन भाई वो जान ही नहीं पाता।

0: और देखिए कैसे जब वो नहा धोकर कपड़े पहनकर फिर एक बार बाहर आता है तब उसे मिलता है लेटर। और लेटर पढ़कर तो भाई प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो निकल जाता है अपनी राध्या को खोजने के लिए।
1: आखिरकार मेरी दिल की इच्छा पूरी होने जा रही है और राधे इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दादी ने यही लिखा है कि वो राधे बन के उसने लेटर लिखा है कि राधे इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही। दादी ने अंतरा को इस खेल का मोहरा बनाया और अंतरा के थ्रू इमोशनली ब्लैकमेल करा गया है राधे को और राधे से कहा गया कि खबरदार ये बात किसी को कही और इस बच्चे की खाते तुम्हें जाना ही होगा।

बनाया जा रहा है। ऐसे में रिया और बंटी की जोड़ी बन गई है, तो वहीं सूरज और ईशा भी त्योहार की खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सीरियल में कोई ट्विस्ट नहीं आया है और सभी के चेहरे पर छाई हुई है खुशियां ही खुशियां।

0: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में जोरों शोरों से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और देखिए आज सभी सफेद और गोल्डन रंग के रंग में रंगे हुए हैं। भाई थीम के हिसाब से ये सभी चल रहे हैं और आज तो स्पेशल दिन भी है क्योंकि रिया और बंटी की जोड़ी जो बनने वाली है। वैसे बात करें लुक की तो आज बहुरानी ईशा देखिए कैसे सजी धजी है, तो सबसे पहले उनसे उनके लुक के बारे में ही जान लिया जाए।
1: तो ये लुक हमारा व्हाइट थीम में जा रहा है, व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन है थोड़ा थोड़ा सा, एंड ये रेड चूड़िया है एंड व्हाइट पूरा गोल्डन ड्रेप है, गोल्डन कह सकते हैं बाल ज्वेलरी एक्सेसरीज जो ईशा के रहते हैं, एंड आज थोड़े से खुले बाल है, एंड ऑफकोर्स ईशा घर की बहू है सो पल्लू।
0: भाई बात करें रिया और बंटी की तो इस नवरात्रि इन दोनों की जोड़ी बन चुकी है, तभी तो देखिए कैसे दोनों एक दूसरे से खुसर खुसर कर रहे हैं। तभी वहाँ पर सूरज पहुँचते हैं। भाई अपने दिल की बात रिया और बंटी सूरज से कह नहीं पाते, तभी आती है ईशा जो बताती है कि रिया और बंटी चाहते हैं कि डांडिया की शुरुआत ये दोनों करें, और सूरज इस बात पर मान भी जाता है।
2: क्या बोलना, क्या बोलना है?
3: ये हाँ जो बोलना है बोल जल्दी।
2: कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो आज के डांडिया की शुरुआत इन दोनों को माता रानी का आशीर्वाद
3: से कहना है। क्या बात है आज डांडिया डांस की शुरुआत तुम दोनों।
0: तो बस फिर क्या, डांडिया रास शुरू हुआ, बन गई बंटी और रिया की जोड़ी और सभी लोग डांडिया करने लगे।

पर माता रानी की पूजा भी हुई और सूरज ने आज पूजा करने का मौका दिया काव्या और रिया को और यहाँ दिखा हैप्पी फैमिली मोमेंट जहाँ पर बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।

0: नाचने के लिए तैयार रहती है, घर के काम के लिए बोलो तो मौत आ जाती
1: है। कम से कम घर में एक तो है जो बिना सोचे समझे हर मोमेंट एंजॉय करता, करना तो
2: यही ब्रह्मचारी में। इस बार नवरात्रि हम भी इस बार थीम वाइज जा रहे हैं जैसे हर जगह होता है, तो हम एक्चुअली आई गेस 5 दिन तो हम दिखा ही रहे हैं एंड बाकी ये दिन तो ये भी सबके लाइक कैसे होता है ड्रेस कोड वाइज सब कलर थीम में, एंड इसलिए आज हमारा शायद ये वाइट डे है, सब वाइट में है नजर आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली आज का दिन जो गरबा है वो रिया और बंटी के लिए हो रहा है, रिया और बंटी दोनों एक साथ हो गए बिकॉज इससे पहले ईशा सूरज और बाकी सारी चीज़ें भी हुई बट तब हम ट्राई कर रहे थे कि रिया और बंटी को मिला दे, एंड जो वो तीनों तीन जिंदगियां एक साथ बर्बाद हो रही थी, एक साथ दुखी थे, वो सब सॉर्ट हो जाए। तो अब फाइनली हो चुका है इसलिए अब खुशी से सब नवरात्रि बना रहे हैं। डिफिकल्ट था बट एक्चुअली फिर काव्या ही बोल रही थी सूरज को कि मैं ऐसे नहीं रह सकती बंटी के साथ बिकॉज मैं अपनी बहन का प्यार मार के मैं कैसे खुश रह पाऊंगी वहाँ पर। तो जब काव्या ने ये चीज़ें बोली तो सूरज माना बिकॉज ईशा की बातें तब सूरज नहीं समझ रहा था, तो जब काव्या ने बोली फिर ईशा और सूरज ने एक प्लान बनाया कि हम ये करेंगे वो सब करेंगे एंड प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ कि एट दी एंड ईशा और सूरज जब मिल जाते हैं तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, पहले वो दोनों ही अलग अलग माइंडसेट में रहते तो हो नहीं पाती।
3: ऐसे में रिया और बंटी की जोड़ी तो बन गई है और सब कुछ हैप्पी हैप्पी भी है। अब देखना होगा कि इन खुशियों में कौन से ट्विस्ट का ब्रेक लगता है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सीरियल कैसी तेरी दिल लगी में आकाश के सामने सिद्धार्थ का सच आ गया है। अब आकाश चाहता है कि कजरी को भी सिद्धार्थ की सच्चाई पता चले, लेकिन कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। आइए देखते हैं आखिर क्या है ये ट्विस्ट और आगे कहानी में क्या होने वाला है।
3: आकाश के सामने आया सिद्धार्थ का सच। सिद्धार्थ पर फूटा आकाश का गुस्सा। क्या होगा कजरी के सामने सच का खुलासा? दंगल टीवी के सीरियल कैसी तेरी दिल लगी में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर आकाश देखिए कैसे सिद्धार्थ पर भड़क रहा है, क्योंकि आकाश को ये पता चल चुका है कि बीमार होने का और चोट लगने का सिद्धार्थ ड्रामा कर रहा है। ऐसे में वो उसे खरी खोटी भी सुना रहा है, साथ ही कॉलर पकड़कर आकाश सिद्धार्थ को कजरी के पास ले जा रहा है ताकि कजरी के सामने सारा सच आ जाए।
5: जो तेरी सच्चाई नहीं देख पाए, पर तुझे कैसा लगा कि मैं भी तेरी सच्चाई नहीं देख पाऊंगा? मुझे तुझ पे तभी शक हो गया था सर, जब उस रूम में तेरा था मैंने कंप्यूटर एक अवसर बचते हुए देख लिया। तू स्मार्ट है पर इतना भी स्मार्ट नहीं जितना तू खुद को समझता।
6: छोड़ मुझे, तू कजरी को अपनी सच्चाई नहीं बताएगा ना? मत बता,
3: लेकिन इससे पहले कि आकाश सिद्धार्थ को कजरी के पास ले जाता, सिद्धार्थ की माँ ने खेल कर दिया और देखिए कैसे फिसल गया सिद्धार्थ। ऐसे में सही समय पर वहाँ पर कजरी भी आ गई और कजरी को लगा कि आकाश ने सिद्धार्थ को नीचे गिराया है। हालांकि आकाश ने कजरी को सच बताने की कोशिश की लेकिन कजरी कुछ सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में वहाँ माँ आ जाती है और कजरी को वहाँ से भेज देती है। आकाश के सामने तो सिद्धार्थ और उसकी माँ का असली रूप सामने आ गया है लेकिन कजरी सच से अनजान है।
7: क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? तो बता। ये बस मुझे परेशान करना चाहता है।
5: मैं तो
8: ये क्या हो रहा है यार? सिद्धार्थ तुम ऐसे जमीन पर, और तुम क्या कर रही हो यहाँ? मंदिर के लिए तैयार नहीं हुई? मंदिर जाना है ना, पूजा का महारत लेकर जाएगा तो पूजा नहीं हो पाएगी। जाओ जाकर तैयार हो जाओ। मैंने कहा जाओ।

0: सच्चाई सामने ट्राई तो मैं यही कर रहा हूँ कि इसकी सच्चाई सामने आ जाए, बट वही है कि ये बहुत ही मास्टरमाइंड टाइप का इंसान है और इसके साथ एक और मास्टरमाइंड है, गायत्री देवी। तो ये जो दो इकट्ठे हुए हैं साथ में, ये मिलके पूरा ट्राई कर रहे हैं कि कजरी के सामने इसकी सच्चाई ना आ पाए एंड कजरी के सामने इसकी इमेज क्लीन रहे। मैं कितना उसको समझाता हूँ, वो नहीं मानती है, नहीं मानती है, नहीं मानती है। सो अभी तक तो यही है कि अभी तक वो नहीं मान रही है, बट आगे देखते हैं क्या होगा।
1: ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अभी तक जो चल रहा था, मतलब 70 एपिसोड्स तक सिद्धार्थ वॉज प्लेइंग पॉजिटिव, तो अच्छा खासा इमेज बना रखा था उसने। जो अभी ट्विस्ट आया है कि सिद्धार्थ टर्न्ड ग्रे, इट्स नॉट कम्प्लीटली विलन वाला, बट जो वो ग्रे वाला पार्ट आया है, ये काफ़ आगे जाके बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं इन दोनों के लिए, कि इनके लिए मैं बहुत मुश्किलें खड़ा करूँगा, जिसमें कजरी को बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी, ये आके बचाएगा। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि मेरे लिए ये चैलेंजिंग है, क्योंकि आई एम शिफ्टिंग द रोल्स, आई एम शिफ्टिंग टू द नेगेटिव पार्ट या ग्रे वाला पार्ट। तो बट आई एम ग्लैड दैट आई वॉज एबल टू मेक इट एंड आई एम स्टिल ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू यू नो शिफ्ट इट टू दैट शेड, बिकॉज नेगेटिव करना इज नॉट ईजी।
2: भाई जहाँ प्यार का त्रिकोण चल रहा है, वहीं पर एक और लव स्टोरी की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये है एक तरफा मोहब्बत जो कि है इशिका की, जो आकाश से बेइंतहा प्यार करती है। तभी तो देखिए कैसे आकाश जब उसे अपनी शर्ट देकर गया तो उसे पहनकर झूम रही है और आकाश के प्यार में खो गई है।

भाई कैसे तेरी दिल लगी में रिश्तों की उलझने काफी है, तभी तो देखिए कैसे नजदीकियां बढ़ रही हैं सिद्धार्थ और अधीरा की। भाई सिद्धार्थ की बीमारी का फायदा उठाकर अधीरा भी उसके पास आने की कोशिश कर रही है।

0: फॉन्डली इन लव विद सिद्धार्थ. सो हमारी शादी टूट जाती है बट स्टिल अधीरा तो बाज नहीं आएगी. तो वो शुरू से ही उसके पीछे लगी हुई है. अभी उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे किसी क्लोज्ड वन ने किया है, तो मैं उसको लेके थोड़ा पिटी फील कर रही हूँ, सैड हूँ कि क्या हो गया है. और अब मुझे मौका भी मिल रहा है उसकी लाइफ में घुसने का एंड वो लव केयर दिखाने का कि हाँ उसको भी समझ आए कि हाँ अधीरा बहुत प्यार करती है मुझसे. तो बस मौके पे चौका मारो और सिद्धार्थ को पालो.
1: तो भाई रिश्तों की उलझने तो काफी है और प्यार में कंफ्यूजन भी बहुत है. अब देखना होगा कि आकाश सिद्धार्थ के सच का खुलासा कब और कैसे करता है और कैसे कजरी के सामने सच्चाई आती है. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: टैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान. आइए आपको ले चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर.
3: प्यार के सफर में बढ़ रही हैं नजदीकियां.
1: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. नजर डाल लीजिए तो जूलियट जर्दी के आने वाले नए ट्विस्ट पर, जहां पर एक होने जा रहे हैं हीर और नवाब. तो क्या इन पर चढ़ेगा प्यार का रंग या आएगा कोई ट्विस्ट?
3: प्यार के सफर में बढ़ रही हैं नजदीकियां.
4: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान.
5: ये ट्रिप खत्म होने तक तुम खुद अपना सच बताओगी और मानोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो.
1: खतरों के खिलाड़ियों का हुआ रीयूनियन. देख लीजिए ये रिवाइंड नजारे, जहां सभी मस्ती के मूड में हैं.
6: अभी फूल की जैसा खिल रहा था.
7: ऑडियंस में एक नई पर्सनैलिटी आई. आई एम रियली ग्लैड आई डिड दिस शो.
8: द ब्यूटी ऑफ द शो इज कि हर किसी के अंदर का स्पोर्ट्समैन जागता है.
9: मेरी बेटियां रोज शाम को बोलती है, मम्मा खतरों के खिलाड़ी देखना है.
8: सब एक दूसरे को इतना मिस कर रहे हैं, लेकिन इन सबको एक साथ ला सकता है सिर्फ द प्लॉट. द प्लॉट
10: इतना मिस कर रहे हो तो चलो करते हैं खतरों के खिलाड़ी रिवाइंड.
1: जल्द आने वाला है कॉफी विद करण का नया सीजन, जो कि होगा फाइनल सीजन. ऐसे में खबरें हैं कि इस सीजन में खास मेहमान बनकर आएंगे सलमान खान भी, और उन्होंने एपिसोड की शूटिंग भी कर ली है.

खन्ना निभा रहे हैं श्री राम का किरदार आगरा के जनकपुरी महोत्सव 2026 में स्टेज शो पर गौरव खन्ना श्री राम बने। देख लीजिए इसकी ये झलकियाँ। नवरात्रि के खास मौके पर शिल्पा शेट्टी अपने घर पर कर रही है माता रानी की पूजा। देख लीजिए ये नज़ारे।

अर्जुन रामपाल जल्द नजर आएंगे इनके आने वाले नए प्रोजेक्ट बिलियनेयर में, जिसकी शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने शेयर किए हैं मुहूर्त सेरेमनी के ये ग्लिम्प्स।

बिग्बी के बर्थडे के मौके पर फैंस ने उन्हें बड़ा सा सरप्राइज दिया। देख लीजिए कैसे अपने बर्थडे के दिन फैंस से की अमिताभ बच्चन ने मीट एंड ग्रीट।

भई नवरात्रि का मौका है और ऐसे में आज ही परिवार एक साथ आया है इस त्योहार को मनाने के लिए। नवरात्रि के मौके पर सितारे झूम रहे हैं और धूमधाम से मना रहे हैं त्योहार। तो आइए देखते हैं कैसे जी परिवार के सदस्य नवरात्रि के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और कैसे हो रही है त्योहार की धूम।

नाची वृंदा और स्वाति मस्त मगन में लीला और खुशियां बिखेरती गंगा माई की बेटी स्नेहा। मौका है नवरात्रि का, परिवार के एक होने का, एक होकर पावन पर्व मनाने का, नारी शक्ति को प्रणाम करने का। ऐसे में जी कुटुंब की बहु बेटियां एक साथ आ गई हैं माता रानी के आगमन पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। और करे भी क्यों ना, सीरियल की कहानी अलग है, किरदार अलग है और परेशानियां भी अलग हैं, लेकिन हर परेशानी को हल करने की शक्ति माता रानी से ही तो मिलती है। ऐसे में उस शक्ति को नमन करना ही चाहिए, तभी तो क्या वसुधा, क्या जगधात्री, क्या वृंदा, क्या स्नेहा, क्या राधिका, क्या स्वाति और क्या लीला सभी गुलाबी रंग में रंगकर गंगा माई संग पहुंच गई हैं माता रानी की वंदना करने। और तो और उनका साथ दे रहे हैं उनके जोड़ीदार यानी कि टीवी के बेटे।

0: जो हमारा आउटफिट है वो प्रॉपर जैसे गरबा आउटफिट तो नहीं है, लेकिन एक थीम है कि गर्ल्स विल बी इन पिंक एंड मेन विल बी इन ब्लू. तो सारे लड़के ब्लू में हैं, लड़कियां पिंक में हैं, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है. जब मैंने कुछ स्क्रीन पे भी कुछ BTS देखे तो मुझे समझ में आया कि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत ही प्यारा जो सेटअप है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है. तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा. यहाँ डांस है लेकिन वो बीट पे है, इट्स नॉट लाइक इन द प्रॉपर गरबा फॉर्म, बट हाँ सब मिलके कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. प्लस जो डांसर्स हैं उन्होंने सबने गरबा आउटफिट पहनी है, तो जब कोई घूम रहा है तो बहुत ही अच्छा वो ट्विस्ट एंड टर्न बहुत अच्छे लग रहे हैं फ्रेम में. तो गरबा वाली फील देने की पूरी पूरी कोशिश की है, लेकिन जो कोरियोग्राफी है वो टोटल गरबा नहीं है.
1: बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी कोरियोग्राफी है और देवी माँ के स्वागत में हम सब परफॉर्म कर रहे हैं और पूरा जी कुटुंब है. सभी आर्टिस्ट अपने शूट से टाइम निकाल कर आए हैं एंड वी हैविंग फन. अभी तो फेस्टिवल पे फेस्टिवल आ रहे हैं, अभी नवरात्रे हैं, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी और हम सभी आर्टिस्ट को एक ब्रेक भी मिल जाता है, लाइक टू परफॉर्म, टू डांस, एंड डांस इज द बेस्ट थेरेपी टू रिलैक्स फॉर मी. सो एक अच्छा मौका होता है टू इंटरेक्ट विद ऑल द अदर आर्टिस्ट एंड यू नो टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम नॉर्मल शूट से ये वाला शूट पे.
2: एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग यार, आज नवरात्रि का माहौल है, दुर्गा माँ की मूर्ति हमारे पीछे और हम डांस और पूरा एकदम खुशी से हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं. जी का पूरा परिवार यहाँ पर है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है. विथ शूट्स तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि नवरात्रि सेलिब्रेट हो. हालांकि मुझे अभी भी देखिए नवरात्रि में हमारे यहाँ पर तो पूजा होती है, थोड़ा बहुत पंडाल में चले जाते हैं हम. जितनी पूजा पाठ होती है वो घर पे ही होती है मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ. बाकी अभी जो गरबा और ये सब होता है अभी मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट होपफुली सम डे आई विल गेट टू एक्सपीरियंस दैट टू. बिल्कुल बिल्कुल, कुछ स्टेप्स तो आ ही गए हैं, तो मैं तो यही बोल रही थी कि कुछ स्टेप्स आ गए हैं यहाँ पर, कोरियोग्राफर्स ने सिखा दिए हैं, वो कहीं पर तो मौका मिलना चाहिए करने का. तो एक बार पंडाल में जाना चाहूँगी मैं, जहाँ पर गरबा और ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर मैं डांस करना चाहूँगी अपने दोस्तों के साथ.
3: जी अपने दर्शकों का पूरा ख्याल रखता है और वो कोशिश करता है कि जैसे जी कुटुंब एक परिवार है, तो इस देश का हर वो परिवार जो जी के साथ जुड़ा हुआ है वो अपना परिवार है. और जैसे हमने अभी गणेश चतुर्थी पर बहुत सारी मस्ती, मजाक, परफॉर्मेंस, एक्ट, गैग, ठीक है सब कुछ था, वैसे नवरात्रि पे हम अपने दर्शकों के लिए प्रोमो बना रहे हैं जहाँ पे डांस है अलग अलग शो के, जो माँ दुर्गा के अवतार हैं वो अवतार हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है. सो बहुत कुछ होगा देखने के लिए जो हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा.
4: आई मीन मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है जब मैं ऐसे किसी इवेंट के लिए आती हूँ, बिकॉज आई ट्रैवल फ्रॉम चंडीगढ़ टू बॉम्बे एंड आई वेट फॉर सच इवेंट्स कि मुझे बॉम्बे आने का मौका मिले, बिकॉज आई लव बॉम्बे, आई लव चंडीगढ़ ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक मुझे चंडीगढ़ नहीं पसंद है, बट बॉम्बे से एक अलग प्यार है मुझे. तो मैं ऐसे इवेंट्स की वजह से यहाँ आ पाती हूँ और आप लोग बुला पाते हैं हमको, एंड ऑफकोर्स मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाती हूँ, अदरवाइज पंजाब में तो आप लोग आते ही नहीं है.
5: बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, क्योंकि बॉम्बे की नवरात्रि दुनिया में सबसे स्पेशल है. तो अब मैं मिस करती हूँ जब मैं चंडीगढ़ में शूट करती हूँ, तो यहाँ एक दिन के लिए आई हूँ. लेकिन सारा जी कुटुंब आया हुआ है, सारे सीरियल्स के लीड आए हुए हैं, तो लग रहा है कि मैं नवरात्रि सेलिब्रेट कर रही हूँ. वैसे हम लोग बहुत अच्छे से नवरात्रि करते थे जब मैं बॉम्बे में थी. अभी तो 1.5 साल से हम लोग चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो कौन सा दिन आया कौन सा दिन गया कुछ याद नहीं रहता, बस हम लगे पड़े रहते हैं स्क्रिप्ट में और एक्टिंग में. लेकिन ये एक जो ब्रेक मिला वो बहुत रिलीफ है हमारे लिए.
6: ये भाई ये आज साउथ इंडियन है, मैं बंगाली
7: और हम लोग मना रहे हैं नवरात्रि.
6: डाइवर्सिटी
7: नहीं, एक्चुअली ना ये बंगाली बने हैं ना मैं साउथ इंडियन, इट्स जस्ट
6: अटायर वी आर टॉकिंग अबाउट, कि मेरा थोड़ा बंगाली लुक है. इट्स
7: मिष्टी तो एक खाबू
6: खाबू खाबू आई डोंट नो, मैंने बस कह दिया. एंड शी इज ऑल साउथ इंडियन, ऑल बेनी डोसा एंड इडली सांभर. इडली सांभर
8: जी, हम जी कुटुंब में हमारा पहला नवरात्रि है एंड हम सारे एक्टर से मिले हैं. हम अभी एक महीने पहले ही आए थे TV पे, तो सबसे मुलाकात हुई, सबके साथ डांस कर रहे हैं हम. एंड आई होप ये इवेंट अच्छे से शूट होके आए एंड ऑडियंस को बहुत मज़ा आए देख के.
9: बहुत मज़ा आ रहा है सबसे मिलकर,
0: क्योंकि ये पहली बार है जो हम सबसे मिल रहे हैं जी कुटुम की फैमिली से, और सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत मजा आ रहा है. गर्ल्स को रेड दिया है, पिंक दिया है, एंड बॉयज को ब्लू दिया है. एंड हमको राम को एक्चुअली ऐसे अच्छे कपड़े मिलते नहीं है, तो ये तो बहुत खुश है.
8: ये राम के इकोनॉमिक स्टेटस के बहुत बाहर है ऐसे कपड़े, लेकिन उसने पहना है. पहली बार आई थिंक मैं भी अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, बहुत दिनों बाद अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, तो इट फील्स गुड टू ड्रेस अप नाइसली एंड वेयर इंडियन. इंडियन कपड़े मुझे इतने पसंद नहीं आते, इंडियन वेयर, लेकिन अच्छा लग रहा है.
9: भाई जी कुटुंब की सभी बहू बेटियां आज वाकई बहुत खुश हैं, क्योंकि माता रानी का आगमन हो गया है, यानी अब सच्चाई की सिर्फ जीत ही होगी. रिश्तों में झूठ का पर्दाफाश होगा. नारी हर रिश्ते को संभाल कर चलेगी, तभी तो सभी बहू बेटियां गोल गोल घूमकर उस जीत का जश्न मना रही हैं.

और उनसे इस जीत में कहीं ना कहीं जी टीवी के बेटे वो भी सभी शामिल हैं, चाहे वो राम हो जो माता रानी के आगमन पर झूम झूम कर नाच रहे हैं, या फिर हो शिवाय और देव जो कर रहे हैं माता रानी की घटी

0: आई यूज टू व्हेन आई यूज टू स्टे इन बॉम्बे, बट अभी हम चंडीगढ़ में तो डेफिनेटली नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पे इतना गरबा सेलिब्रेट नहीं करते, नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं करते. बट या मैं 9वें दिन में कंजक जरूर बिठाती हूँ क्योंकि ये मेरे बचपन का रिचुअल है. मेरी मम्मा बिठाती थी. अगर मैं कंजक नहीं बैठा पाती हूँ तो मैं किसी ना किसी को फोन करके बोलती हूँ मुझे हलवा छोले पूरी चाहिए है, तो मुझे सबके घरों से वो खाना जरूर मिलता है. बिकॉज दैट्स लव, दैट्स माय लव.
1: मतलब थोड़ा सा मौका मिला ऑफ द कैमरा खेला है क्योंकि ऑन कैमरा गंगा माई इज नॉट सपोज टू डू ऑल दिस, तो मैंने नहीं किया. लेकिन वैसे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ.
2: हाँ मतलब अच्छे अच्छे शॉट्स लिए हैं लेकिन वो शॉट्स थोड़े टफ भी हैं क्योंकि कैमरा ऊपर था, मुझे ऊपर देख के घूमना था तो मुझे तो चक्कर ही आ गया ऑलमोस्ट. फिर मुझे किसी ने बताया कि जिस डायरेक्शन में घूमो उसके उल्टी डायरेक्शन में घूमो तो थोड़ा बेटर फील होगा. मैंने वो किया, फिर मैं नॉर्मल हुई. उसमें बहुत सारे दो तीन शॉट्स तो थे. लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि जब वो टीवी पे आएगा, जब आप लोग देखेंगे तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेज करेंगे कि बहुत अच्छा म्यूज़िक वीडियो है, तो डेफिनेटली इट्स गोना रॉक. और उसके लिए इतनी मेहनत तो वर्थ इट है. नवरात्रि बेसिकली मुझे हमारे वहाँ तो बचपन से, मैं हिमाचल में जहाँ रही हूँ तो वहाँ पे तो फास्ट रखते थे हमेशा, पूजा कीर्तन और माता जी को स्पेशल अटेंशन देते थे. तो मतलब वैसे ही आज भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ. उस साइड गरबा नहीं होता है लेकिन हाँ फास्टिंग एंड ऑल तो प्रॉपर रिचुअल्स के साथ होती है. तो मैं भी अभी 9 नवरात्रि में पूरे रखती हूँ और जो अष्टमी होती है उस दिन मैं छोले पूरी और ये सब बना के कन्याओं को खिलाती भी हूँ. और अगर वो नहीं कर पाऊँ तो मंदिर में ज़रूर दे आती हूँ. तो ये सब मैं छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ और ये चीज़ें बहुत दिल से जुड़ी हैं क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं और अब इसके बिना नवरात्रि अधूरी लगती है. तो बहुत अच्छा लगता है जब नवरात्रि आती है और माता से जो विशेस मांगती हूँ वो पूरी भी ज़रूर होती हैं.
3: मुझे बहुत पसंद है नवरात्रि पे, मुझे बहुत पसंद है नवरात्रि एंड आई लव टू गो जहाँ पे भी मुझे होता है. घर पे तो मम्मी करती हैं एंड प्लस यहाँ पे देर आर फ्रेंड्स, देर आर माई स्पेशल पीपल विद होम आई गो एंड देर अ पर्सन जिसके साथ मैं आई लव टू ट्रैवल ऑल दी नवरात्रि के जहाँ जहाँ गरबा होता है एंड वी हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जहाँ पे जाते हैं. आउटफिट ट्विनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स.
4: मैंने बोला हमेशा मुझे डांस करने का बड़ा मजा आता है. लोगों ने मुझे बोला अंदर तुम बहुत इन्जॉय कर रहे हो, डांस देख के बहुत खुशी मिल रही है. तो मैंने कहा यस यस आई एम द वन जो नाच गा के बहुत खुश होता है. सो बहुत मज़े, मस्ती, मजाक, फुल एक बढ़िया सा नवरात्रि का डेकोरेशन है वहाँ पे और सब लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं. मैंने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं.
5: लुक के बारे में यहाँ पर पिंक और ब्लू का थीम है. मेन आर वेयरिंग ब्लू, वेमेन आर वेयरिंग पिंक और बहुत ही प्यारा लुक है एकदम. आई थिंक इंडियन वेयर से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता. एंड सारे लोगों ने लहंगा, साड़ीज और बहुत ही अच्छे से ये ज्वेलरी दी हुई है विच इज़ वेरी हैवी क्योंकि फेस्टिवल है तो थोड़ा हैवी ज्वेलरी है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल.
6: मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं गई हूँ पहले खेलने नहीं बट ऑफकोर्स अटेंड करने गई हूँ. गरबा जो भी होते हैं वो एक टाइम पीरियड तक जो गरबा चलता है सब ऐसे भक्तिमय होके डांस भी करते हैं, खुशी का माहौल होता है. ऑफकोर्स थकते हैं उसके बाद भी लेकिन कंटिन्यू करते हैं, वो बड़ी बात है. वो देखने में बड़ा मज़ा आता है, करने में भी बहुत मज़ा आता है. बट इट्स बीन रियली लॉन्ग कि मैं ऐसे गरबा खेला नहीं है बट आई एम श्योर ये माहौल बड़ा ही अच्छा होगा बॉम्बे में भी.
7: मैंने इतना गरबा खेला नहीं पर मुझे नवरात्रि जैसे हमारे घर में जो प्रिपरेशन होती है 9 दिन जो पूजा होती है, व्रत रखते हैं और व्रत वाला खाना बनता है और वो साथ सजावट रोज़ की, तो वो करने बड़ा मज़ा आता था. तो अब तो नहीं कर पाता क्योंकि घर से दूर हूँ, मम्मी पापा से दूर हूँ. नवरात्र में ज़्यादातर वो साथ में होते नहीं क्योंकि हमारे घर में कलश रखते हैं तो कलश को छोड़ नहीं सकते 9 दिन तक. सो वो सारे रिचुअल मैं बड़ा मिस करता हूँ, उसमें मतलब मेरा बचपन बसा हुआ है. सो आई रियली मिस दैट.
8: हम भी सीख रहे हैं यहाँ पे गरबा खेलना. हमने मैंने कभी गरबा खेला नहीं है लेकिन आई थिंक यहाँ से सीखने के बाद खेलूंगा इस साल.
9: सेम मैंने भी, मैं हिमाचल से आती हूँ वहाँ पर गरबा खेला नहीं जाता तो अभी यहाँ पे सीख लेंगे हम आज.
10: खैर इस नवरात्रि के पावन पर्व पर जी के दर्शकों के लिए जी कुटुंब की तरफ से ये खास तोहफा है और ये तोहफा दर्शकों को तो बेहद अच्छा लगेगा ही लेकिन आज यहाँ पर मौजूद जितने भी कलाकार हैं उनको भी बेहद पसंद आ रहा है क्योंकि उन्हें मौका मिला है एक दूसरे से मिलने का. और सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही हैं स्नेहा और उनकी गंगा माई. असल में इनका शूट चंडीगढ़ में होता है जिसके चलते मुंबई के सभी कलाकारों से मिलना बहुत कम हो पाता है और ऐसे में आज इन्हें मौका मिला है. तो देखिए जैसे ही सीन खत्म होता है तो कैसे इनकी बातें शुरू हो जाती हैं.
0: यार आई फील वेरी गुड हियर बिकॉज जितने भी जी कुटुंब के मेंबर्स हैं सब लोग बहुत स्वीट है. वसुधा इज मतलब वसुधा और मैं खड़े हो जाए तो वो चुप ही नहीं होती, मैं चुप नहीं होती, हमें डायरेक्टर से डांट पड़ती है, हमारी पोजीशन अलग कर दी जाती है, आप वसुधा से अलग हो जाइए. सो बहुत मजा आता है मुझे यहाँ के लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं बिकॉज वी स्टे इन चंडीगढ़, वी शूट इन चंडीगढ़ एंड वी डोंट हैव मच फ्रेंड्स ओवर देयर. सो हमारा जो फैमिली है वहाँ पे सिर्फ वही उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बट वेन आई कम हियर आई गेट टू मीट न्यू पीपल, सो इट्स ऑलवेज fun to meet new people.
2: आज बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि आज बहुत टाइम बाद हम सब एक साथ मिले हैं और वो भी स्पेशली नवरात्रि के ओकेजन पे, तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है. और हम सब डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और सब अपने अपने सेट की कहानियां सुना रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है.

अच्छी यही तो है जी कुटुंब की खासियत, जहां पूरा परिवार जब भी मिलता है तो सब एक साथ हंसी ठट्टा करते ही करते हैं और साथ ही सेलिब्रेशन भी दमदार होता है।

0: ट्विस्ट और टर्न्स से भरी होती है टीवी सीरियल्स की दुनिया, जहां हर मोड पर एक नया ड्रामा दर्शकों को हैरान करता है। किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना काफी मजेदार होगा। तो चलिए चलते हैं सीरियल्स की इस दिलचस्प दुनिया में।
1: महादेव एंड सन्स, अभी हम लिखकर दिखाते हैं तुम्हें अपना नाम।
2: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में मैयाज हो रही है रज्जी और धीरज की मेहंदी की रस्म, और जरा देखिए तो कैसे मैयाज ये दोनों एक दूसरे के हाथों में रचा रहे हैं अपना नाम। मैं इतना ही नहीं, इसके बाद घर में शुरू हो गया है डांस धमाल, क्योंकि मेहंदी के मौके पर पूरा परिवार एक साथ झूम उठा।

0: तो वहीं दूसरी ओर मोगरा, सपना और पूरी टीम एक ही मिशन पर जुट गई है कि कैसे वो महादेव और उनके परिवार का पर्दाफाश करें। ऐसे में देखिए कैसे चोरी छुपके मोगरा ने महादेव के फोन का कॉल लॉग्स निकाला और उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया यश को, जिसके बाद अब पुलिस वाले ट्रेस कर रहे हैं उन नंबर्स को जिन पर महादेव ने हाल ही में बात की है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वाकई पुलिस और सपना को मिल जाएगा महादेव के खिलाफ कोई नया सबूत।
1: दो से तीन बजे के बीच तीन नंबर्स पर कॉल किया गया है।
2: ये शादी के तैयारियों के बीच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एम्बुलेंस वाले को फोन क्यों किया होगा?
3: क्योंकि वहां मुर्दा घर है।
1: ये वाला नंबर
2: है? वजीर सिंह रुको, अगर ये एम्बुलेंस वाला महादेव के साथ मिला हुआ है तो हमारी कॉल से अलर्ट हो जाएगा।
1: मैं हॉस्पिटल में बात करता हूँ।
4: हाँ गोपाल, हम पहुँच गए हैं। कहाँ हो तुम?
5: आपसे मिलने के लिए निकलने ही वाला था। कोई पुलिस वाले?
6: वजीर सिंह जी नाम है और यश बाबू भी साथ में इनके।
7: हमारी गलती की वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है और वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए। वो इतनी आसानी से नहीं हार मानेंगे। हम जानते हैं अपने यश बाबा जी को, वो तुम्हारे पीछे पड़ गए।
8: और अब तो नवरात्रि भी आ रही है सर। त्योहारों में चाहे दिल हो चाहे दीवारें हो, सब कुछ ऑटोमेटिक उजला उजला उजला हो जाता है।
9: उजला उजला उजला हो चुका है। आपने अपने हिस्से की तैयारी कर लिया, मुझे भी करने दीजिए।
8: अरे सर,
9: तीसरी बार कह रहा हूँ, प्लीज नीचे उतर आइए, मेरी टेंशन कम होगी। प्लीज
8: सर, ये इतना तो खत्म कर लेती मैं। अच्छा सर, चलिए आप ही करिए।
10: अनुपमा जी।
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में भाई रणवीर जैन ने अनुपमा और दिग्विजय को साथ में हंसी मजाक करते हुए देख लिया है और ये बात उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। तभी तो देखिए कैसे भाई अपने ही पिता के साथ हाथापाई पर उतर आया, लेकिन ये बात अनुपमा से देखी नहीं गई। तभी तो उसने रणवीर जैन को लेफ्ट राइट सुना दिया।
9: इधर मुँह में गया, टेस्ट आ रहा है।

0: आपको इतना बर्बाद कर दूंगा कि आप फिर से कभी आबाद होने लायक नहीं बचोगे।
1: क्या करेगा? मैं देखना चाहता हूं तो क्या करेगा बता।
2: चले
3: अरवी।
4: अरे अपने पिता पे हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? बेशरम।
5: मम्मी आप प्लीज शांत हो जाइए।
3: अब आरवी को ही बोल रही है, लेकिन अंकल ने भी सही नहीं किया।
6: प्रेम, अंकल ने क्या किया है? प्रेम क्या किया है उन्होंने? आरवी ने उनका कॉलर पकड़ लिया था। वो पिता है उनके, कुछ तो बेसिक सेंस होना चाहिए था ना।
3: राही अभी तुम प्लीज जज मत बनो यार, मम्मी को भी क्रॉस चेक करना चाहिए था कि अंकल की।
1: मुझे किसी को अपनी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सच्चाई किसी से नहीं छिपी है, सबके सामने है। अगर जानना है तो इसको क्रॉस चेक करो। क्यों अपनी पहचान छिपा कर सबके बीच में रह रहा था? अरे जो इंसान भरे बाजार में बाप का गिरेबान पकड़ सकता है, उसका गला दबा सकता है, उसके साथ बिजनेस करना चाहते हो तुम? एक सेकंड नहीं लगाएगा तुम्हारे सपने बेचने में, खत्म कर देगा सब कुछ।
4: शांति शांति से पर काबू नहीं है, आप तो संयम रखिए सर। सर आप अंदर चलिए सर। सर
5: हार्वी लेट्स गो।
4: रणविजय तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ने? तो जरा सोचो, जब तुम अपनी माँ को जाके ये बताओगे कि तुमने आज अपने पिता के साथ का गिरेबान पकड़ा, तो क्या वो खुश होंगी? हाँ, तुम्हारे सर पे हाथ रख के तुम्हें आशीर्वाद देंगी, तुम्हारी पीठ थपथपा के तुम्हें शाबाशी देंगी। अरे उन्हें यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बताते हुए क्या तुम उनसे नजरें मिला पाओगे? तो कोशिश करो कि ऐसा कोई काम मत करो कि तुम्हारे माता पिता का सर शर्मिंदगी से झुक जाए।
7: ऐसे में बहुत जल्द अनुपमा की जिंदगी में होने वाली है नए विलन की एंट्री, जिसने आते ही मचा दी है तोड़फोड़।

0: सीरियल जगत धात्री में अब जगत धात्री लिली बन चुकी है। ऐसे में लिली और शिवाय की नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। तो दूसरी तरफ जगत धात्री जासूस भी बनी हुई है। तो आइए देखते हैं सीरियल में क्या कुछ हो रहा है।
1: एक तरफ शिवाय को हुआ लिली पर शक, तो दूसरी तरफ जगधात्री के सामने आया असली मुजरिम। एक तरफ शिवाय को देख धड़का जगधात्री का दिल, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाशों के बीच बुरी फंसी जगधात्री। जी टीवी के सीरियल जगधात्री में शिवाय को लिली पर शक तो बहुत पहले से ही हो गया था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया है। तभी तो देखिए कैसे मैग्नीफायर ग्लास लेकर वो लिली के पीछे पड़ गया है और उसके चेहरे पर जगधात्री के निशान ढूंढ रहा है। इतना ही नहीं, वो तो लिली को बातों ही बातों में फिश मार्केट वाली बात भी बताता है। ये सुनकर एक पल के लिए लिली यानी कि जगधात्री हिचकिचा जाती है और उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन फिर भी जगधात्री हार नहीं मानती। जरा देखिए कैसे वो शिवाय को गुमराह करने की कोशिश करने लगती है।
2: सरप्राइजिंग तो है, पर तुम्हारा स्मॉल ब्रेन के लिए। जब तुम फिश मार्केट गया अपने भगोड़े बीवी को ढूंढने के लिए, तो वो नहीं मिलेगा ना, हम भी तो मिलेगा।
3: संभाल के, वाइफ के बारे में बात कर रही हो तो मेरी।
2: तुम अपनी वाइफ को लेकर इतना सेंसिटिव है, हमको नहीं मालूम था।
3: अच्छा, मालूम नहीं था या मालूम ना होने का नाटक कर रही हो? ऐसे मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान एक ही टाइप का इतना स्मार्ट इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। नहीं बॉस,
2: तुम फिर से बॉस क्यों कह रहे हो हमें? हाँ, हम तुम्हारा बॉस नहीं है मिस्टर देशमुख, तुम आउट ऑफ माइंड हो गए। तुम्हारा ना एकदम माइंड ना इधर उधर हो गया है। नहीं सीरियसली, तुमको ना अपना वाइफ का खोने का सदमा लग रहा है, बट नॉट हर फॉल्ट। तुम इतना सेंसलेस बातें करेगा तो बेचारे के पास कोई और ऑप्शन होगा ही
3: नहीं।
1: भाई लिली तो जगधात्री के लिए अनाप शनाप बोल रही है और ये बातें शिवाय को रास नहीं आ रही। हालांकि शिवाय को पूरा यकीन है कि लिली ही जगधात्री है। जब लिली जाने लगती है तो देखिए कैसे शिवाय उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और एक पल के लिए दोनों की आंखें टकरा जाती है।
2: मिस्टर देशमुख, मिस्टर देशमुख, तुम क्या करते हो? एकदम लोफर टाइप का आदमी है, छोड़ो मैं कंप्लेन कर देगा।

0: मैम देखो अब ग्लास एकदम क्लियर है ना।
1: भाई शिवाय तो मुस्कुराता हुआ इसीलिए निकल जाता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि यही उसकी जगधात्री है। खैर जगधात्री यानी कि लिली अब वो डरी हुई है कि वो अपने आप को शिवाय से कैसे बचाएगी। वहीं दूसरी ओर तपस्या लाखों रुपए लेकर पहुंच गई है बदमाश के अड्डे पर ताकि वो सारा पैसा रुद्र को बचाने के लिए दे सके। इतना ही नहीं बदमाशों के कहे अनुसार वो रुपयों से भरे बैग वहीं पर छोड़कर चली जाती है। इसी बीच असली मुजरिम आ जाता है जिसने पहना हुआ है काला कोट और ढक रखा है चेहरा। ऐसे में वो कोशिश करता है कि रुपयों से भरा बैग लेकर जा सके लेकिन उसे ये नहीं पता कि वहाँ पर जगधात्री पहुँच गई है बंदूक लेकर और देखिए कैसे जगधात्री ने उसे बना लिया है अपना निशाना।
2: काउंटर के बाद तुम्हें सच में लगा था हम अकेले बिना किसी तैयारी के आएंगे?

0: पिछली बार ना हिसाब रह गया था, इस बार पूरा करके बॉयज।
1: भाई ये बहरूपिया अकेली नहीं बल्कि अपने साथ कई सारे बदमाशों को लाई है जिन्होंने जगधात्री को घेर लिया है। अब देखना होगा क्या शिवाय आकर जगधात्री की मदद कर पाएगा और उसे इन बदमाशों से बचा पाएगा जिनसे जगधात्री खुद अकेले ही लड़ रही है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में आज खुशी से झूम रही है बंसरी, क्योंकि वो बन गई है 300 करोड़ की मालकिन। तो ऐसे में हैप्पी डांस तो बनता है, तो आइए देखते हैं खुशी से भरे ये नजारे।
3: झूम कर नाची बंसरी,

बंसरी को मिला माता रानी का आशीर्वाद। खुशी में नाचती गाती बंसरी

0: दंगल टीवी के सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में कहानी में आ गया है मौसम खुशियों का। भाई नवरात्रि चल रही है और ऐसे में देखिए कैसे माता रानी की भक्ति में तो बंसरी लीन है ही, लेकिन आज घर वालों के सामने भी वो खुशी से हंस रही है और हंसते हंसते खुशी में झूमने भी लगी। ऐसे में सभी घर वाले अचंभे में है कि आखिरकार बंसरी को हुआ क्या है, क्योंकि वो बस हंसे जा रही है। बा उसे कहती भी है कि आखिर बंसरी को क्या हुआ है। ऐसे में बंसरी बस झूम रही है और अपनी खुशी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है।
1: मैं तो उसे क्यों हंस रही है?

0: ਬੱਚੀ ਬੱਚੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਲਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਬੇ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ। ਅਰੇ ਹਲੋ ਭਾਈ ਹਲੋ
1: भाई बंसरी खुशी में झूम रही है, हर एक घर वाले के पास जाकर डांस कर रही है और अपनी खुशी को जाहिर कर रही है, लेकिन घर वाले ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार बंसरी को हुआ क्या है। ऐसे में वो माता रानी की भक्ति भी करती है और उनका आशीर्वाद भी लेती है। वही खुशी से झूमे भी क्यों ना, बंसरी को एक बड़ी गुड न्यूज जो मिली है।

0: रंगीन माहौल चल रहा है। रंगीन मतलब नवरात्रि के जो नौ रंग होते हैं उसी तरह का माहौल चल रहा है। पूरे सेट को सजाया गया है और देखिए ये नवरात्रि का एक्चुअली आज नवा दिन है जो हम शूट कर रहे हैं। तो इसके पहले कल भी जो मैंने अटायर पहना था वो अलग था। तो नौ दिन में नौ अलग अलग अटायर होते हैं, तो ये नवे दिन का अटायर है, फुल कलरफुल है और बहुत कमाल का है। तो ऐसा कुछ लुक है और बहुत ही खुशनुमा माहौल है।
1: असल में खुशी की बात ये है कि बंसरी अब 300 करोड़ की मालकिन बन चुकी है। जी हाँ, उसके ससुर जी ने बंसरी के नाम पर 300 करोड़ कर दिए हैं और ये बात आकर बताई अंबा माँ ने। देखिए कैसे वो पेपर्स पर बंसरी के साइन ले रही है। भाई घर वाले शौक में भी हैं लेकिन खुश भी, क्योंकि घर में बंटवारा होने वाला था। लेकिन अब ससुर जी ने बंसरी यानी अपनी बहुरानी के नाम 300 करोड़ की जायदाद कर दी है। अब सारा फैसला बंसरी के हाथ में है।
2: ने अंबा ना मरी मावड़ी ना पर्चा ने अंबा ना चर्चा कोई दी पाछा थाई नहीं हो। क्या बोलती है, साइन करेगी कि अंगूठा लगाएगी?
3: नहीं, मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ, मैं सिंग करूंगी।
2: ओहो, तो सिंग करेगी तो करो अंगूठा। चल ये ले सिंग कर।

0: साइड कर।
1: अम्बे बात की जय, पानी कृपा अपरंपार छे, बेस्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम बाप।
0: चले डेली सोप की हीरोइन, तो क्या बैकग्राउंड म्यूजिक का इंतजार कर रही है? जहां माता जी की कृपा होती है ना, वहां बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है, शंख बजता है। शंख वधावना। पूरे द्वारका में ऐसा पहला किस्सा होगा जहां एक सास ससुर ने अपनी बहू को पूरी प्रॉपर्टी दे दी है। बंसी बंसरी, तेरे पोरबंदर में क्या कहते हैं इसे?
2: 300 करोड़ रुपए सच में मेरे हैं, मतलब सच्ची। मुझे तो बोलने में भी तकलीफ हो रही है। 300 करोड़?
0: अरे 300 रुपये नहीं दिए है तुझे, 300 करोड़ रुपये दिए है तुझे महेंद्र भाई ने। अब जरा तो खुश हो जा, कोई भी तेरे से ये पैसे छीन नहीं सकता। और अगर अगर किसी ने छीनने की कोशिश की तो ये अम्बा और ये अम्बा दोनों तेरे साथ बैठी है।
3: नवरात्रि का 9वां दिन है, उसका शूट कर रहे थे हम लोग, और जहाँ बंसरी और पूरे परिवार के ऊपर एक बॉम्ब फूटता है और पता चलता है कि बंसरी 300 करोड़ की मालकिन बन चुकी है, और बंसरी जो है बहुत बहुत बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। खुश इसलिए नहीं है कि पैसे आ गए, लोगों को ऐसा लग रहा है कि खुश इसलिए क्योंकि पैसे आ गए, पर वो एक्चुअली खुश इसलिए है क्योंकि उसके परिवार का बंटवारा हो रहा था और वो बंटवारा होने से अब बच गया, क्योंकि अब सारे पैसे बंसरी के पास, और जब तक बंसरी नहीं जाएगी बंटवारा नहीं होगा, किसी को पैसे नहीं मिलेंगे, तो बंसरी इसलिए खुश है। मैंने बताया ना, बंसरी जिस तरह से वो एक्ट कर रही है, वो नाच रही है, गा रही है, झूम रही है, सबको लग रहा है कि बंसरी पागल हो चुकी है। जब उसको पता चल चुका है कि 300 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई है, तो सबको वो नेगेटिव लगने लगा है कि बंसरी अब चेंज हो जाएगी, बंसरी देखना ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होने नहीं वाला है।
4: ये मांजरा

0: मैं बिना ना चाहते हुए भी बंटवारा करना पड़ रहा है मुझे, और उतने में जो हमारी अम्बा माँ है उनकी एंट्री होती है, और पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कहानी में, कि पता चलता है कि जो ये सारी प्रॉपर्टी थी वो मेरे पिताश्री ने जाने से पहले किसी और के नाम पे कर दी है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग ट्विस्ट इन द स्टोरी।
1: हालांकि बंसरी को नहीं पता कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी या नहीं, लेकिन वो खुश इसलिए है क्योंकि अब बंटवारा होने से और परिवार बिखरने से बच जाएगा। तो अब देखना होगा कि बंसरी के हाथ में इतनी बड़ी पावर आने के बाद कहानी में कौन से बदलाव आते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल बरेली के बच्चन में कृष्णा की सच्चाई घर वालों के सामने आ गई है, और ये सच सामने लाने वाले कोई और नहीं बल्कि कृष्णा के पापा हैं। इसी के चलते अब संगम भी कृष्णा से नाराज हो गई है। तो चलिए देखते हैं रिश्तों का ये तमाशा।
3: अब जाकर के पेट और मन को शांति मिली है।
4: आपके मन को शांति मिलेगी क्योंकि सारा रायता आप ही का फैलाया है। क्या जरूरत थी महाराज में?
1: बच्चन परिवार में अनबन।
3: अरे बंद काहे कर दिए, इतना मजा आ रहा है, मनोरंजन हो रहा था। सेठ साहब, ए मलिक साहब, सेठ साहब, ये हमारा सेठ है भाई, ट्रेवल एजेंसी का।
4: देख क्या रहे? ऐसे सर के ऊपर खड़े हो, मक्खी जैसे भिनभिनाने की आवाज आ रही है।
5: लग रहा है कि रात को बिना कुल्फी ले आया।
1: देखिए रिश्तों में दूरियां।
4: ये दाल नहीं निकल रही, अब तुम तो
5: सर कुल्फी खा रहे हो।
4: कुल्फी
6: खा रहे हो क्या? कहा उसका कान छोड़ो,
7: और तुम सब बैठे क्यों अभी तक? तैयार नहीं, काम भी नहीं जाना है।
4: पैसा तो नहीं है बस, खर्चा ले रहे हैं, अलग का खर्चा होता है, ऊपर से पेट्रोल डीजल।
1: कृष्णा और संगम की नाराजगी। टीवी के सीरियल बरेली के बच्चन में आज कृष्णा पर सब बरस पड़े हैं, चाहे फिर कृष्णा के पापा हो, संगम हो या हो उनके भाई। भाई आज तो देखिए कैसे मजे से कृष्णा के पापा खाना खा रहे हैं, और खाना खाते खाते वो कर रहे हैं कृष्णा की पोल खोल, जहां सबके सामने वो बता रहे हैं कि ये किसी कंपनी का मालिक वालिक है ही नहीं। ऐसे में कृष्णा वो तो गुस्से में है।
3: अब जाकर के पेट और मन को शांति मिली है।
4: आपके मन को शांति मिलेगी, सारा रायता आप ही का तो फैलाया हुआ है।
3: अरे बंद काहे कर दिए, इतना मजा आ रहा था, मनोरंजन हो रहा था। सेठ साहब, ए मलिक साहब, सेठ साहब, ये हमारा सेठ है भाई, ट्रेवल एजेंसी का।
4: अरे
3: अब तो रायता फैलाएंगे हम, हैं? देखो जरा बहुरिया क्या कहा था इसने। अरे वाह, का तेज पत्ता वाला तेज है इसके चेहरे पर। अरे इसके चेहरे पर मालिक वाला तेज दिख रहा है क्या तुमको? कैसे मान जाती हो तुम?
1: कृष्णा अपने पापा को तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन भाई पर अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन भाई भी उसे खरी खोटी सुना देते हैं। तो वहीं कृष्णा और संगम के बीच भी नाराजगी चल रही है, और साथ ही शुरू हो गई है इन दोनों की नोकझोंक भी।
3: अरे बहुरिया,
4: देखो रुलास को शांति मिलेगी क्योंकि सारा रायता आप ही का फैलाया है। क्या जरूरत थी महाराज मैडम के सामने बोलने की?
3: अरे
4: देख क्या रहे? ऐसे सर के ऊपर खड़े हो, मक्खी जैसे भिनभिनाने की आवाज आ रही है।
5: ये लग रहा है कि कल रात को बिना कुल्फी ले आया। अगर
4: भैया
6: कहा कर रहे हो? उसका कान छोड़ो,
7: और तुम सब बैठे क्यों अभी तक? तैयार नहीं, काम भी नहीं जाना है।
4: पैसा तो नहीं है मैडम, बस खर्चा ले रहे हैं, ड्राइवर का खर्चा होता है, ऊपर से पेट्रोल डीजल का खर्चा
1: है। ही जल्दी कहानी में नया ट्विस्ट भी आने वाला है। अब देखना होगा कि इन सब के बाद क्या कृष्णा खुद को सही साबित कर पाएगा।
8: हम सिर्फ और सिर्फ गंगा जी से शादी करना चाहते हैं और किसी और से नहीं। तुम हमारी मदद करो।

0: ना प्लीज संगम।
1: करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शादी आज ही होगी, ठीक 10 बजे तुम माता रानी के मंदिर आ जाना। वो यहाँ से थोड़ा दूर भी है तो तुम्हारे घर वाले या किसी को पता भी नहीं चलेगा।
0: और आज भी तुम आओ।
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: के दिन को खास बनाने और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम हाजिर हैं कुछ बेहद रॉकिंग और शॉकिंग खबरों के साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
2: लीजिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले नए ट्विस्ट पर, जहां घर लौट आया है मिहिर, तो क्या सुधरेंगे मिहिर और तुलसी के रिश्ते।

नैनीताल पहुंच गई हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर। ऐसे में वो पहुंची नैनीताल के माँ नैना देवी मंदिर, जहां उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। अजय देवगन पहुंच गए हैं लद्दाख, जहां वो कर रहे हैं उनके आने वाली फिल्म चौहान इन कारगिल की शूटिंग। फिर 23 साल बाद फिर एक बार अजय देवगन लद्दाख में शूटिंग करते नजर आएंगे।

कियारा अडवाणी ने शेयर की है फैमिली हॉलीडे की ये तस्वीरें, जहां वो अपने हस्बैंड और बेटे संग कर रही है ये हॉलीडे और वेकेशन एंजॉय।

0: कोई यूनिक सी हॉबी है जो है सॉन्गवर्जेशन.
1: क्या होती है?
0: सॉन्गवर्जेशन.
1: सॉन्गवर्जेशन.
0: सॉन्गवर्जेशन.
1: कॉन्वर्सेशन.
0: सॉन्ग प्लस कॉन्वर्जेशन, उसको मिक्स करेंगे तो बनेगा सॉन्गवर्जेशन.
1: अब बताइए क्या है?
2: कौन बनेगा करोड़पति में आ गई है नई कंटेस्टेंट लेके अपना नया शौक, जो कि है सॉन्गवर्सेशन. क्या है ये, आइए देखते हैं इस वीडियो में.
0: आईना कुछ खबर मेरी बारी की. जैसे ही आपने FFF में मेरा नाम बोला तो मेरे दिल के शोले उछल उछल के बोले.
3: जिसका मुझे
0: था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई. अब जब मैं हॉट सीट पे हूँ तो अंधेरी रातों और सुनसान राहों का तो पता नहीं. KBC के इस सेट पे जो चार चांद लगाते हैं उसे बेशक शहंशाह कहते हैं.
1: उसी वक्त आपके साथ खेलने का मन नहीं कर रहा. बैठ के गाना सुनेंगे आपका. और
4: इंडियन गेम शो विद भारती और हर्ष में.
5: यार आप लोगों ने मुझे मिस नहीं किया
2: है. तो इंडियन गेम शो के ये नज़ारे देख लीजिए, जहाँ है मस्ती गेम और फन अनलिमिटेड.
6: ऑडिशनों में चले जाते हैं इधर की दिहाड़ी छोड़ के, और फिर जैसे ही मम्मी पापा ने कहा लोन लेने वाले आ गए, नाली कोट पहन के दीदी.
4: इस प्रॉप से ऑडियंस में से 50 रुपए इकट्ठे करने हैं सिर्फ चिल्लर में, वो भी 2 मिनट के अंदर.
6: ये इनका काम ओरिजिनल है, माहिर है इसमें.
7: ओ यार हमने क्लियर क्या कर रहे हैं? ओ
6: लड़के को जरा एक दो हफ्ते नहीं बुलाया, कटोरा हाथ में आ गया.
4: क्या हुआ भाई, आ नहीं रहा.

0: तुझे बता,
1: नाम बता उसका, नाम बता, किसने मारा तुझे, उसका नाम बता,
2: तेरे थूकने।
3: रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में पति पत्नी के बीच पंगे तो चल ही रहे हैं, साथ ही मस्ती भी हो रही है अनलिमिटेड। तो आइए देखते हैं शो के सेट से सीधे ये मजेदार नजारे।

0: हमारे गेस्ट को और हमारी देखने वाली ऑडियंस को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: अगला रियलिटी चेक भी ऐसा ही है, झूठ पकड़ने वाला। अगले रियलिटी चेक में हम पत्नियों को मौका देंगे झूठ पकड़ने का, लेकिन आपके पति का नहीं, किसी भी पति का।
2: ओ अच्छा, तुम गेस करना है किसने बोला होगा।
0: आप सारे पति मिलकर आज डांडिया खेलोगे, लेकिन आपके हाथों पे बंधा हुआ होगा शॉक बैंड।
3: ओह नो।
0: इनमें से सिर्फ एक ही पति होगा जिसको एक्चुअली शॉक लग रहा होगा, बाकी सारे पति यहाँ करेंगे नाटक। पत्नियों को पता करना है कि वो कौन पति है जो नाटक नहीं कर रहा है, सच में शॉक खा रहा है। आपको अपनी स्लेट पे उसका नाम लिखना होगा और एट द एंड जिसके सही जवाब होंगे उनको मिलेंगे लड्डू, और कितने लड्डू, जितने आपके बॉक्स पे लिखे हुए हैं।
2: लेट्स सी बड़ी,
4: अभी तो बड़ा टक टक टुक टुक कर रहे हो, अभी देखना क्या होगा, उछलोगे?
2: नहीं, वो अलग टुक टुक होगा।
0: तो दोस्तों सुनो, ये चल रहा है कि नहीं आपका शॉकिंग बैंड, वो चेक करेंगे हम।
2: ओ ना ना, अच्छी बात नहीं है।
5: ओ पता चल गया मुझे।
6: पता चला? अब तक इनको लगता था मैं ब्लफ मारती हूँ।
2: अरे थोड़ा कम देना यार,
5: थोड़ा डिग्री थोड़ी कम कर लो यार।
7: ये इसने थोड़ा ओवर कर दिया।
5: ओ शिट,
7: बाप रे,
5: अरे बाप रे।

0: देखा तो ऐसे डांडिया हो गया।
1: मनोज जी को शौक लगा, मेरे को लगा कोई स्टेप कर रहे।
2: यार ये पतियों की जो रेड लगाई है पहले दो एपिसोड में।
1: क्या आप रेडियो इस शॉकिंग गरबा के लिए? सो म्यूजिक बजाया जाए और गरबा स्टार्ट किया जाए और हमारा रियलिटी चेक ही।

0: Buster.
1: तुम बहुत मुस्कुरा रही हो पतियों को दर्द में देखकर।
2: नाटक बनकर।
3: अरे कसम से यार,
2: नॉन स्टॉप दे रहे यार।
3: अरे बाप रे,
2: अब इसको उतार दे।
4: चलिए नाम लिखिए फटाफट।
5: वेरी कंफ्यूज यार।

0: चलिए अर्चना जी, आप ही से शुरू करते हैं। बताइए आपको क्या लगता है, किसको शॉक लग रहा था?
1: फॉर मी आई थिंक इट्स शब्बीर।
2: ओके,
3: समीर भाई पकड़े गए।
2: चलिए थोड़ी देर में पता चलेगा, आगे बढ़ते हैं। दिशा,
4: आई थिंक इट वॉज रोहित जी।
2: ओके ठीक है, क्यों ऐसा लगता है?
4: क्योंकि दो तीन जगह मुझे लगा कि दो तीन लोग साथ में उछले कि करंट लगा, सो ऑब्वियसली उन लोगों को नहीं लगा।
2: एक मिनट,
5: उनमें से एक हो सकता था
4: वो। नहीं, अलग नहीं लगा, बहुत ही ओवर लगा मुझे वो। एंड रोहित जी बड़ा ही, मतलब उनको कुछ भी नहीं हो रहा, सो आई डोंट नो, इट वाज हिज ट्रिक मे बी।
2: उसकी जिंदगी में इतना बड़ा शौक लग गया है।
6: मैं मेरी पड़ोसन से काफी इत्तेफाक रखती हूँ, मुझे भी रोहित ही लग रहा है
4: ना। अरे बाप रे, मैं तो मारी जाऊंगी।
0: आपको रोहित क्यों लग रहा है?
6: क्योंकि बिल्कुल ही एक्सप्रेशन नहीं दिए बंदे ने।
3: तो आप लोग मेरे को ही देख रहे थे क्या पूरे
4: टाइम?
5: आपसे नजरें हटी नहीं रही थी।
4: आप जो डांस करने में बिजी थे ना, शायद आप भूल गए करंट भी लगा।
7: रोहित है?
1: मुझे तो नहीं लगा।
2: चलिए
4: अर्जुन।
0: अर्जुन कांची,
8: मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सबसे हॉट है वो और भी ऐसे उछल रहा था, और भी हॉट लग रहा था, सो आई थिंक इट्स शबीर।
2: क्या बात है।
0: सुरभि जी आपको?
9: आई थिंक इट वॉज परमीत जी।
1: ओह,
0: और सबसे कम बोलने वाली दीपिका।
9: मुझे तो राहुल लग रहे हैं।
2: भाई विवेक भाई, कितनी गंदी एक्टिंग करी आपने।
3: किसी ने नहीं कहा
2: ना, लिखा है।
3: मैंने ओवर किया था क्या?
4: नहीं,
5: ओवर क्या, क्या अंडर तक ये बता दो।
4: ओवर
9: साथ में किए थे ना तुम लोग, इसलिए ऐसा लगा कि शायद प्लान है।
3: मुझे नहीं देखा तुमने?
9: मैं देखा ना, तुम अच्छे से नाच रहे थे तो मुझे लगा कि तुमको लगा तुम यूं ही हो जाओगे। तो तुम मजे से कर रहे थे, डांट दिया तो मैंने लगा नहीं।
3: वो देखो, दोनों ने ट्रस्ट किया पता है।
2: चलिए तो अब आ गई है बारी रिजल्ट्स की, और मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि कौन था नेहा। अपने पति का झूठ नहीं पकड़ पाई।
10: सच के होठों पे ताना है झूठ का।
2: लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन कांची, शब्बीर का आप नहीं पहचान पाए झूठ। सुना रहे हो कितना खुश हो रहे। 36 गुण।
1: अरे यार, इवन आई थॉट इट वाज शब्बीर, अच्छी एक्टिंग कर रहा था यार।
5: Thanks.
4: Very well done.
5: Thank you.
4: Acting अच्छी थी।
2: आपने जो नाम लिखा है वो बताइए।
9: परमीत जी।
2: क्या बात है, ये भी गलत है।
4: Oh God.
2: अब आते हैं दीपिका पे।
4: गई मैं तो पंगा।
2: आपने नाम लिया था राहुल वैद्य का, और दीपिका भी राहुल का झूठ नहीं पकड़ पाई।
3: आपको लगा था? आप हो क्या?
2: जिसने रोहित का नाम लिखा था वो जीतता है। राहुल और दिशा को मिलते हैं 2 लड्डू।
3: थैंक यू।
0: और दिव्यांका और विवेक को मिलते हैं 3 लड्डू।
11: मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई।
12: टेलीविजन की दुनिया की छटपटी खबरों और सीरियल्स के ड्रामे के साथ सास बहू और बेटियां में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन विधि विधान से की जा रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति आराधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ, बीएसएफ के जवानों का भजन कीर्तन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। बिहार के कटिहार से आई अनोखी भक्ति की तस्वीर, श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल के लड्डू का भोग, दर्शन पूजन को भक्तों की कतार। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: नवरात्र के दूसरे दिन आज देशभर में माता ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना, देवी के मंदिरों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। नवरात्रि के दूसरे दिन मां को अर्पित किया जाता है गुड़हल के फूल और मिश्री का भोग, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में दिख रहा है भक्तों का विशेष उत्साह। बेहद शांत सौम्य और मोहक है मां का ब्रह्मचारिणी स्वरूप, माता के सीधे हाथ से में जप की माला और उल्टे हाथ में होता है कमंडल। कठोर साधना और ब्रह्मलीन रहने के कारण इन्हें कहा गया है ब्रह्मचारिणी, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हर प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान का मिलता है वरदान। संयम साधना और आत्मबल की मूर्ति है ब्रह्मचारिणी। मां के इस स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याएं दूर हो जाती हैं। दिल्ली के जड़नेवाला मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का भव्य श्रृंगार। मां की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाया जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने मां की पूजा की। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी है लंबी कतारें, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। माया देवी मंदिर में मां की उतारी गई महाआरती, श्रद्धालुओं ने लगाया जय माता दी के जयकारे। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मैहर शक्तिपीठ में मां की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की। मैहर शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। कर्नाटक के कलबुर्गी में दूसरे दिन भवानी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हैदराबाद में नवरात्र के दूसरे दिन भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मां की उतारी गई महाआरती, भक्तों ने लगाए जयकारे। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में नवरात्र पर दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। महेंद्रगढ़ में शारदीय नवरात्र की धूम, शीतला माता मंदिर में दूसरे दिन लगी भक्तों की कतार। शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कठुआ में महाकाली मंदिर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। आगर मालवा के सिद्धपीठ मां बगलामुखी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दूसरे दिन भी मां बगलामुखी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अब तक 1,00,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन करके सुख समृद्धि का, मनोकामना पूर्ति की कामना की, बड़ी संख्या में भक्तों ने हवन अनुष्ठान भी किए। रामनगरी अयोध्या में शारदीय नवरात्र की धूम, प्रसिद्ध बड़ी देवकाली मंदिर में मां के दर्शन और पूजन के लिए लग रही है लंबी कतारें। अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में भक्तों का तांता, मान्यता है कि मां बड़ी देवकाली भगवान श्रीराम की कुलदेवी हैं। संत रामनगरी नागपुर में शारदीय नवरात्र का आगाज ढोलताशों की गूंज और मां दुर्गा के जयकारों के बीच सार्वजनिक पंडालों में हुई मां की स्थापना। पारंपरिक ढोल लगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत, पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु माता रानी के आगमन जुलूस में झूमते हुए नजर आए। मां दुर्गा की भक्ति में डूबी संतरा नगरी नागपुर के भव्य पंडालों में विधि विधान के साथ विराजी है माता रानी। रंग बिरंगी सजावट से सजे मां दुर्गा के पंडाल, श्रद्धालुओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। शारदीय नवरात्र को लेकर नागपुर में उत्साह चरम पर, शहर के अलग अलग इलाकों में सजे आकर्षक दुर्गा पंडाल, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी कतारें, जय माता दी के जयकारे। अयोध्या में नवरात्र पर पंडालों में विराजी मां दुर्गा, दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। मुजफ्फरपुर में नवरात्र पर सामूहिक आरती का आयोजन हुआ, लोगों के बीच बांटे गए फलाहार। असम के गोलाघाट में मां की प्रतिमाओं को निर्माण का अंतिम रूप दिया जा रहा है, कारीगर जुटे हुए। पुरी में नवरात्र के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रयागराज के गांवों में शारदीय नवरात्र की अनूठी परंपरा, पंडालों में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमाएं, सामूहिक पूजा अर्चना और आरती में जुटे लोग। प्रयागराज के ग्रामीण अंचलों में नवरात्रि पर आस्था का मिनी मेला, श्रद्धा सहयोग और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है मां की आराधना का पर्व। बागेश्वर में शारदीय नवरात्र की धूम, प्राचीन कोट भ्रामरी माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, मां के जयकारों की गूंज, कोट भ्रामरी मंदिर में 9 दिनों तक होगी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा। उज्जैन में नवरात्र के दूसरे दिन महाकाल के दरबार में पहुंचे कुल देवी कुलदीप यादव और तिलक वर्मा विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बिहार से कटिहार से निकलकर आई शानदार तस्वीरें, श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल के लड्डुओं का भोग, दर्शन पूजन करके भक्तों की कतार। चित्रकूट में नवरात्र के दूसरे दिन देवी के मंदिर में सुबह से लगी है लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ करके आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने शानदार प्रस्तुति दी, 45 वर्षों से चली आ रही है परंपरा। जम्मू में 40 साल से रावण के पुतले बना रहा है मुस्लिम परिवार, 50 से ज्यादा कारीगर जुटे। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति आराधना, जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट माता के मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ, बीएसएफ के जवान भजन कीर्तन। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन भी की गई विशेष आरती, सुबह सुबह श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अकोला के अंबिका देवी मंदिर में आस्था का जनसभा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां की पूजा करके आशीर्वाद लिया। कोटा में दशहरा को लेकर तैयारियां जबरदस्त, रावण का पुतला तैयार किया जा रहा, 5,000 से लेकर 20,000 तक में बिक रहे हैं पुतले। वाराणसी में भी दशहरा को लेकर कारीगरों में जबरदस्त उत्साह, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के बनाए जा रहे हैं पुतले।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है। अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन विधि विधान से की जा रही है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर। सरहद पर ही विधिवत हो रही है शक्ति आराधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनूट माता मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ, बीएसएफ के जवानों का भजन कीर्तन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बनाकर स्वर्ण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने शानदार प्रस्तुति दी। बिहार से कटिहार से आई अनोखी भक्ति की तस्वीर, श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल के लड्डू का भोग, दर्शन पूजन को भक्तों की कतार। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश आया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की भक्ति करने का महापर्व है नवरात्रा, जहां हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की उपासना का विधान है। सुबह से शाम तक मंदिरों में माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। आज बात करेंगे देवी के स्वरूप की, जिसे नवरात्र में देवी का तीसरा स्वरूप माना जाता है, जो भय से मुक्ति का वरदान देती है और जो बढ़ाती है आपका आत्मविश्वास। मान्यता है कि मां की पूजा उपासना से दूर होती है मंगल से जुड़ी बाधाएं। हम आपको देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक ज्योतिषीय महाप्रयोग आखिर क्या हैं।

0: साहस, शक्ति और वीरता का भाव देने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। भय का नाश करने वाली और सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। माना जाता है कि असुरों का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धरा था। माँ चंद्रघंटा, जिन्हें माथे पर घंटीनुमा आकार के चंद्रमा धारण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी कवचम में माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है।
1: यह नवरात्र के तीसरे दिन तृतीयम चंद्र घंटेति दुर्गा कवच में ऐसा कहा गया है, तीसरे दिन की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिसके कारण भगवती को चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप जो है चंद्रघंटा का, दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर शक्ति के रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
0: उग्र और तेजस्वी देवी के रूप में चंद्रघंटा भय और बाधाओं को दूर करने की अपार शक्ति रखती हैं और अपने भक्तों पर शक्ति के आवरण की छाया रखती हैं। नवरात्र में शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। आपके जीवन में चाहे ग्रहों का संकट हो या फिर जीवन की बाधाओं ने आपको परेशान कर रखा हो, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना में छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आप निर्भय और अभय हो जाते हैं।
1: जो भगवती का स्वरूप है भिन्न भिन्न स्वरूप है। यह भिन्न स्वरूप है, हमारे यहाँ कहा गया कि जहाँ से घंटा नाद किया जाता है वहाँ से आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं, और चंद्रमा जहाँ पर है तो मन का कारक है। तो जब घंटा इनके नाम में चंद्रमा के और घंटा दोनों का नाम दिया गया है, तो ऐसी देवी का आराधना करने से मनुष्य के मन से, मनुष्य के परिवार से भय डर दूर चला जाता है।
0: नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है।

0: पर वृद्धि होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मां चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और से देखिए ये ज्योतिषीय उपाय। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं मां चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में तलवार त्रिशूल गदा और धनुष होता है। इनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है।
1: तीसरा दिन है। हमारे यहाँ तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। तो चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, इनकी आराधना करने से जो तीनों प्रकार के ताप हैं, जिनको कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक, या तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, इन तापों का समन होता है। क्योंकि भगवती के साथ घंटा भी जुड़ा है, भय का नाश करेगा, और मस्तक पर चंद्रमा है तो मन को निर्मल करेगा। इनकी आराधना इस तरह से अगर कोई नवरात्रि में करता है तो विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
0: मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी का यह स्वरूप परम कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा की आराधना से साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मां चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है।
1: चंडी जो रूप है, नौ रूप भगवती का ही है, तो कलयुग में इनकी साधना जो होती है बहुत फलदायी होती है। साध धन ना, जो साधने में कठिन हो उसी का नाम साधना होता है। तो इन निरंतरता आवश्यक होती है। यह देवी शौर्य की प्रतीक हैं, जीवन में बल देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं। तो इनकी आराधना करने से जीवन से भय की निवृत्ति अवश्य हो जाती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयोग। गौर से देखिए। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। निवारण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता, पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग, कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है?
1: सफेद पदार्थ में आप कोई भी वस्तु ले लें, आपका जैसा व्रत है, जैसा अनुष्ठान, उस प्रकार का आप नैवेद्य ग्रहण कर लें, और दूध और खीर और जो सात्विक भाव से प्रसाद बने, और उसी सात्विक भाव से हम भगवती को अर्पण करें, तब यह जो उनका नैवेद्य होगा, जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे, वह हमें बल प्रदान करेगा, हमारे शरीर की कांति, हमारे चेहरे के ओज को, कांति को बढ़ाएगा।
0: माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो आप भी माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि, साथ ही जानेंगे माता के उद्भव की वो पौराणिक कथा जिसमें समाहित है त्रिदेव की शक्ति। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।

आस्था कहती है कि साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है, तब नवरात्र में मां चंद्रघंटा का पूजन एक वरदान की तरह साबित होता है।

0: माँ चंद्र घंटा की उपासना है परम फलकारी। जीवन से टल जाएगा संकट भारी से भारी। शक्ति की साधना से खुलेगा मुक्ति का द्वार। देवगण मानते हैं माँ चंद्र घंटा की महिमा है अपरंपार। माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार का नाश हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्र घंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। चलिए हम आपको वो पौराणिक कथा भी सुनाते हैं जब मातेश्वरी ने लिया था विश्व के कल्याण के लिए अवतार। देवी पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं और दैत्य राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवगण पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीनकर ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कथा कहती है कि तब इंद्र और देवताओं ने संकट की घड़ी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। कहते हैं कि उनके दुर्दशा से द्रवित होकर त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया जो एक भव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके 10 हाथ थे जो बाद में विभिन्न देवी देवताओं के दिव्य शस्त्रों से सुशोभित हुए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शस्त्र शामिल थे। स्वयं इंद्र ने अपना वज्र और घंटा भेंट किया। सूर्य देव ने उन्हें अपनी तेजस्वी किरणें, एक चमकीली तलवार और एक भयंकर शेर भेंट किया। इन दिव्य वरदानों से परिपूर्ण होकर देवी ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया। कथा है कि दैत्य राजा और उसके कुल का अंत हो गया और देवी चंद्रघंटा ने अपनी अदम्य शक्ति से देवताओं को उनके भय से मुक्त किया।
1: माँ चंद्रघंटा सामान्यतः सिंह पर सवार हैं और अनेक प्रकार के आयुध अपने हाथों में धारण की हुई हैं और एक हाथ इनका अभय मुद्रा में है। उनका स्वरूप जहाँ एक ओर उग्र शक्ति का स्वरूप है, उसी ओर उनके मुखमंडल पर जो शांति है वह करुणा रूप में दिखाई देती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विश्रुता, यह इनके बारे में शास्त्र में प्रमाण बताया गया है।
0: कथा कहती है कि तब से ही देवी को भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी के स्वरूप में पूजा जाने लगा। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र की तीसरी तिथि पर आपको कैसे करनी है देवी की उपासना। पर ध्यान रखिए कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है।
1: माँ चंद्र घंटा को रक्त पुष्प, लाल रंग का अक्षत, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह पंचोपचार जो पूजन है, यह पूजन हर देवी का करना चाहिए और सायंकाल के समय भी दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ होता है।
0: लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्र घंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्र घंटा की उपासना के लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगकाराय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी की कृपा। नवरात्रि में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली हैं माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान, माँ की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। आगे हम आपको बताएंगे माँ की उपासना के अमोघ मंत्र जिनके जाप से होगा आपकी सभी बाधाओं का निदान। बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का एक सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का हो जाएगा अंत।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के मस्तक पर लगे घंटे की भयानक ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, साथ ही मंत्रों के उच्चारण से वरदान देती हैं मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा के मंत्रों में है अद्भुत शक्ति। विधि विधान से करें आदि शक्ति की भक्ति। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मां चंद्रघंटा के मंत्रों के जाप से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। भगवती का ये स्वरूप अद्भुत है, जिनके आराधना से भय से मुक्ति और संकट में साहस का वरदान मिलता है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा का मंत्र जाप करने से मन का डर, अज्ञात भय और घबराहट दूर होती है। मां के विशेष मंत्र का जाप आपके सभी दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है।
1: देवी का कोई भी रूप हो, हम मां के रूप में मानते हैं और मां हमेशा अपने संतान को सुखी देखना चाहती है। हमारे यहाँ दुर्गा अर्गला में कहा गया, अर्गला स्तोत्र में, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम रूपन, देहि जयन, देहि यशो, देहि दिशो जही। यह सब जो मंत्र भगवती के हैं, यह लोक और परलोक दोनों बनाने वाले हैं। तो इन सब मंत्रों का जप करने से रोग नाश होता है, शत्रु दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
0: या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महयम चंद्रघंटेति विश्रुता।
1: भगवती मंत्र वही रहे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मूल मंत्र है, उसके जगह चंद्रघंटायै नमः, चंद्रघंटा लगा करके, और चंद्रमा का भी एक मंत्र, जो कि चंद्रमा इनके साथ जुड़ा है, तो चंद्रमा के लिए सोम सोमाय नमः, सायंकाल के समय घी का दीपक जला करके सोम सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इन मंत्रों का जप करने से जीवन से भय का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है।
0: तो आप जब भी मां चंद्रघंटा की उपासना करें तो देवी के मंत्रों का जाप भी करें। माना जाता है कि देवी के पूजन में मंत्रों के जाप से मां चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से मां की आराधना करें, फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान, और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
10: पहाड़ों में बदले मौसम का असर अब मैदानी इलाकों में भी महसूस होने लगा है। सुबह शाम की ठंड बता रही है कि सर्दियां धीरे धीरे करीब आ रही हैं, लेकिन पहाड़ों पर तो कुदरत ने अभी से सफेद चादर बिछानी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में शिंकुला दर्रे पर हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ से ढक दिया। खूबसूरत नजारे के बीच मौसम ने सफर को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। कई गाड़ियां और बाइक सवार रास्ते में फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।

0: अभी अक्टूबर का महीना ही है, लेकिन पहाड़ों ने सर्दी की सफेद चादर ओढ़ ली है। ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। वक्त से पहले बर्फबारी ने जहां हर किसी को हैरान किया, वहीं बर्फ से ढकी वादियों का नजारा लोगों को रोमांचित भी कर रहा है। श्रृंखला दर्रे पर अचानक हुई बर्फबारी ने सफर मुश्किल कर दिया। बर्फ की मोटी परत और ठंडी हवाओं के बीच कई गाड़ियों और बाइक सवार रास्ते में फंस गए।
1: बाइक आगे आई नहीं रहती, सब ऐसा रहती गिर रही थी।
2: किनारे पार
1: ब्लैक गाइस और इतनी स्नो आ रही है वहाँ पे, तो
2: किनारे पार भी नहीं कर पा रहे थे।
0: सड़क पर जमी बर्फ ने सफर को और मुश्किल बना दिया। गाड़ियों के पहिए थमने लगे, तो फिसलन के चलते बाइक सवारों के लिए भी संभल कर चलना चुनौती बन गया।
1: चौक टॉप से आ रहे थे सारे बाइकर्स थे, वहाँ फंस गए, सब गिरे एक एक करके बाइक से, और फिर ये जनाब आए हमारे सर लोग आए, ने हमें रेस्क्यू किया वहाँ से।
0: बर्फबारी की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए बाइकर्स को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया।
1: जनाब ने हेल्प की दोनों ने, और फिर हम लोग इस गाड़ी से रेस्क्यू करके आए यहाँ पर। अब जाएंगे वापस ऊपर टॉप पे जाएंगे, वहाँ से बाइक लेके आएंगे भैया के साथ में।
0: मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक हिमाचल में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अक्टूबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना है। अक्टूबर में ही बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। सर्दियों ने इस बार वक्त से पहले दस्तक देकर मौसम को और दिलकश बना दिया है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान, और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन, विधि विधान से हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। जेएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति आराधना। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ। बीएसएफ के जवानों का भजन कीर्तन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम। जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। बिहार के कटिहार से आई अनोखी भक्ति की तस्वीर। श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल के लड्डू का भोग। दर्शन पूजन को भक्तों की कतार। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड। अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे। देख रहे हैं आप तो मौसम की बात आज करने वाले हैं, क्योंकि मौसम ने ऐसी करवट ली है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश का सिलसिला यहां जारी है। कहीं बारिश, कहीं बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हवाएं ठंडी चल रही हैं, लेकिन अब सवाल यहां पर हर किसी के मन में यही है कि मौसम में अचानक बदलाव की वजह क्या है। क्या पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी है, या फिर ये महज मौसम का एक अस्थायी बदलाव है। सवाल वैसे ये भी है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है, क्या तापमान में और गिरावट आएगी, और क्या उत्तर भारत को अब सर्दियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बात इस पर भी आज करेंगे। बदले मौसम में लोग अपनी सेहत को लेकर किस तरीके से सावधानी बरते, इस पर भी चर्चा होगी। तो अगले एक घंटे इसी पर बात होगी। वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट, फिजिशियन और डाइटिशियन। तो मौसम के मोर्चे से जो खबर आई है वो आपको बता देते हैं। बड़ी हलचल है और इसे एक एक करके हम आपको समझाते हैं कहां कहां पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है और आने वाले दिनों में कहां कहां के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक क्या हाल है वो आपको बताते हैं। बारिश से पारा गिर गया है। दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो बीती रात और आज सुबह कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हुई है। जगह जगह पर रविवार को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। राजधानी में पारा गिरा, सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली, चंबा और लाहौल स्पीति में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। हरियाणा के फतेहाबाद, कैथल में भी भारी बारिश हुई है और बिहार के 8 जिले ऐसे जहां पर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। और बिहार से सटे झारखंड की बात करें तो रांची, पलामू, धनबाद में बारिश और तूफान का अलर्ट है। राजस्थान के बीकानेर के लूनकरनसर में भी ओले गिरे हैं। वहीं श्रीगंगानगर की बात करें तो तापमान 7 डिग्री तक गिर गया है। जाहिर सी बात है कि बारिश से मैदानी इलाकों का मौसम बदला हुआ है। तो उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदानों में बारिश, लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी है। बर्फबारी से पहाड़ों पर तापमान तेजी से गिरा है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा भी मैदानी इलाकों को कूल कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई हिस्सों में रविवार से ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इसके प्रभाव से कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली और आसपास के पूरे एनसीआर में अक्टूबर महीने में हुई बेमौसम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। तो बारिश से तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है।
1: एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज अक्टूबर महीने में ऐसा बिगड़ा है, एक तो तापमान में राहत मिल गई क्योंकि अचानक ठंडक बढ़ गई है, लेकिन जो बेमौसम बरसात उससे कई जगहों पर वाटर लॉगिंग जरूर हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दरअसल ये स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है जिसका असर हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। हालांकि दिल्ली और एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साउथ वेस्ट मानसून है, उसकी विदाई हो रही है, वो धीरे धीरे लौट रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो रहा है। तो अक्टूबर के महीने में आराम से आप कि सुबह सुबह कैसे अचानक से जो तपिश थी या उमस आपको महसूस हो रही होगी, अब अचानक से तापमान में आपको काफी कमी देखने को मिलेगी। तो सुबह सुबह ठंड बढ़ गई है, बरसात हो रही है, तेज बरसात अगर जारी रहती, क्योंकि रेड अलर्ट की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, यानी तेज आंधी तूफान आ सकते हैं, थंडर स्टॉर्म के साथ तेज बारिश हो सकती है।
0: खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा, वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर सुशील द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहसिन वली, जनरल फिजिशियन भी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर शिखा शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले गुरुदत्त जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, जरा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। हालांकि सुपर अल नीनो के दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, लेकिन उस बीच ये जो मौसम वाली न्यूज आई है, क्या ये गुड न्यूज है या फिर हम कहें कि अभी सर्दियों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार करना होगा?
2: देखिए, जो सुपर एल नीनो की बात कर रहे हैं तो ये एक्टिव होगा लगभग दिसंबर में, ज्यादा एक्टिव होगा और ये अगले साल करीब मई जून तक जाएगा। दूसरी बात, जब ये हमारे यहाँ पूरे देश में मानसून लगभग विड्रॉल की स्थिति है, मानसून वापस जा चुका है और नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी उदय होने वाला है साउथ में, तो इस समय ये खासकर पश्चिमी विक्षोभ है, चक्रवाती हवाओं का घेरा है और चक्रवात वगैरह उत्तर भारत में बने हुए हैं, उस कारण से अभी पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में बहुत भारी वर्षा हुई, करीब 12 से 20 सेंटीमीटर, हरियाणा में 7 से 11 सेंटीमीटर और उत्तराखंड पश्चिमी यूपी में बहुत जगह ओलावृष्टि हुई है। और ये जो सिस्टम है अभी करीब 13 से 15 तारीख तक हमको खासकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में काफी अच्छी वर्षा मिलेगी। 15 तारीख को उत्तराखंड में भी गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। 13 से 15 में हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ में भी ओलावृष्टि वगैरह होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बराबर नमी पहुंच रही है। और ये स्थिति खासकर होती है क्योंकि ये अक्टूबर संक्रमण काल का मंथ है, मानसून की विदाई होती है और ठंड का आगाज शुरू हो जाता है। लेकिन इससे ये मान के चलना कि अब ठंड आ गई है बेईमानी होगी, क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव है, इसलिए जब तापमान में गिरावट आती है, खासकर रात का तापमान गिर जाता है, लेकिन दिन का तापमान तो ज्यादा ही बना रहता है। जब रात साफ होती है तो काफी ठंडक हो जाती है, लेकिन दिन गर्म होता है। तो ये अभी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, ये धीरे धीरे जो अक्टूबर का महीना के एंड में ठंड की शुरुआत होगी धीरे धीरे, और नवंबर दिसंबर में क्योंकि लीनो का प्रभाव रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा कहना कि साल अच्छी ठंड पड़ेगी या बहुत ठंड होगी ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा
0: नहीं। लेकिन अगर हम गुरुदेव जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है और जैसा आप प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि आने वाले कम से कम 16 तारीख तक किसी तरह का मौसम रह सकता है, लेकिन जल्दी से एक सवाल सर आपसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए जो एक्चुअल मौसम का पैटर्न रहा था, जो बिहेवियर है मौसम का, वो यही रहता है कि अक्टूबर एंड से हल्की ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है और नवंबर में सर्दी आ जाती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऐसा पैटर्न नहीं है, क्या हम ये माने कि सर्दियों की आहट है ये, या सिर्फ इसको बुझाएं कि 17-18 तारीख तक ऐसा मौसम रहेगा, उसके बाद फिर से गर्मी आ सकती है?
2: सर्दियों की आहट नहीं है ये, चूंकि पश्चिम विक्षोभ और साइसर बना हुआ है, इस कारण से है, क्लाउडी होता है, फिर क्लाउड अलग होता है, फिर ये तापमान में निश्चित तौर पर जब पानी गिरता है तो होती है, तो ये स्थाई नहीं है, का कोई आगाज फिलहाल नहीं है, तो भी होगा वो दिसंबर में ही होगा, दिसंबर के बाद यहाँ पे, और धीरे धीरे ठंड का आगाज होगा अंत में, ये अक्टूबर के अंत में और नवंबर की शुरुआत में। लेकिन मैं बहुत ज्यादा गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि नवंबर में बहुत अच्छी ठंड रहेगी, क्योंकि जो सफल अल नीनो का प्रभाव शुरू होने जा रहा है नवंबर दिसंबर में, उससे हो सकता है कि बहुत ज्यादा ठंड हमारे देश में ना पड़े।
0: नहीं, लेकिन उसका असर बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास, उसका असर ऐसा भी तो देखने को मिलता है ना कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती है, गर्मी है तो बहुत गर्मी, सर्दी है तो बहुत सर्दी, जैसा आप बताते भी हैं, और वो पैचेस में इसका असर नजर आता है। डॉक्टर वली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वली, अभी देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला मौसम है, हालांकि दिल्ली वालों के लिए तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है, हम सब लोग बहुत खुश हैं, थोड़ी ह्यूमिडिटी, गर्मी से राहत मिल रही है, बावजूद इसके एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि ठंडे पानी से नहाया जाए, गर्म पानी से नहाया जाए, पानी गर्म पिया जाए कि ठंडा पिया जाए, आइसक्रीम खाई जाए कि नहीं खाई जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बदलते मौसम का में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत होती है।
3: बिल्कुल जनाब, बहुत ही आपने पूछा था ना किस चीज का है, तो मुझे लगता है एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस हमारे करतूतों की वजह से सब हो रहा है। ये विक्षोभ वर्ड पहले हम नहीं सुनते थे, और अभी बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी कि इसमें जो बारिश होगी उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है रेन बैंड्स, झुरमुट में होगी बारिश भी। मैं कल बाहर था एक 5-स्टार होटल के, मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी, और सडनली धूल भरी आंधी आई, और उसके बाद जब मैंने गाड़ी में बैठ के शीशा खोला तो ठंडी हवा आई, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो ये सडन डिस्टर्बेंस तो है इसमें सडनली। मैं तो पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ लोगों से कि भैया अपने गीजर चला लो, ठंडे पानी से मत नहाओ, और हमारी अब छाती वाती बहुत कमज़ोर हो गई है, अब हमारे शरीर में इतनी वो नहीं रह गई है क्षमता, इम्यूनिटी तो नहीं कहूँगा, क्षमता नहीं रह गई है कि इस तरह के विक्षोभ से वो प्रभावित ना हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात करें। मैं तो बहुत दिन से लोगों से कह रहा हूँ अदरक की चाय पीजिए, शिखा जी बताएंगी इसमें और क्या क्या अच्छी चीज़ें लेनी है, अदरक की चाय पीजिए और वो ज़ाफ़रान जिसको केसर कहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और बहुत सी चीज़ें हैं, अदरक वदरक है जाड़े में, बहुत सी और अच्छी चीज़ें हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये मौसम बदलता हुआ तो शुरू से ही ख़तरनाक बच्चों के लिए, अभी मेरे पास 5 मिनट पहले जो बच्चा आया था उसको दमे का अटैक था, अभी अभी देखा है। आपका प्रोग्राम के लिए जी
0: ये
3: मैं
0: बहुत
3: तैयारी,
0: कॉमन है डॉक्टर साहब, ये
3: बहुत
0: बहुत कॉमन
3: कॉमन
0: है।
3: है और ये
0: जी,
3: कहते थे पहले हमारे घर में एक्सपोजर वर्ड यूज होता था, तो एक्सपोजर से बचा जाए। और आपने बिल्कुल जिन चीजों का नाम लिया है उनको बहुत एहतियात से खाया जाए। कुल्फी है, आइसक्रीम है, ठंडे पेय हैं, शीतल पेय हैं, ठंडा पानी है, फ्रिज का पानी बहुत जरूरी है कि हम फ्रिज के पानी को, तो मैं कहता हूँ लोगों से जापान की नकल इसमें तो कर लो, कम से कम ठंडा पानी तो मत पियो, 100 बीमारियों की जड़ है ठीक करने की। तो ये जो है बिन बादल बरसात एक पिक्चर आई थी पहले, अब ये बिन मौसम बरसात शुरू हो गई है, तो इसके लिए अपने शरीर को साथ के रखना पड़ेगा और बचना, और भीगने से बचना है। हाँ, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, सुबह कोई छाता लेके नहीं जाएगा दफ्तर और शाम को बारिश हो रही, आपके तो टीवी में हो गई बारिश, अब पता नहीं बाहर बारिश कब होगी। और सुबह
0: नहीं
3: जब
0: सर, ये
3: ना
0: पुराने विजुअल्स
3: हूँ,
0: दिखा रहे हैं हम। हाँ, अभी
3: ये
0: फिलहाल
3: सुबह
0: थोड़ी धूप खिली
3: सुबह
0: हुई है।
3: सुबह सुबह जब मैं निकला था घर से तो वहां पानी भरा हुआ था, तो मैंने ड्राइवर से पूछा इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पानी, क्योंकि रात में तो गड़गड़ाहट बादलों की सुनता रहा मैं 4 बजे तक,
0: जी,
3: लेकिन सुबह पानी भरा हुआ था, इसका मतलब अच्छी खासी बारिश हुई है। और इस बारिश से हमको मेडिकली मैं बता रहा हूँ बचना चाहिए, क्योंकि सडन एक्सपोजर हमको अवॉइड करना है। ठंडी चीजें और फ्रिज की रखी हुई चीजें नहीं खानी है। हमें अभी त्योहार आ रहे हैं, और ये बात बता दूं मैं, हम लोग दिवाली पे निकालते थे गर्म कपड़े जब स्कूल गोइंग एज में थे, और दिवाली का दिन होता था जब सडनली ऐसा परिवर्तन होता था और हम लोग बाहर निकलते थे घूमने के लिए, और हम गर्म कपड़ा पहन के उस दिन पहली बार
0: डॉक्टर
3: घूमते,
0: साहब,
3: ये एक चेंजिंग डे था।
0: ये अब ना किससे कहानियों की बातें रह
3: हाँ
0: जाएंगी। मुझे लग रहा है आने वाली
3: ऐसा
0: पीढ़ियों को जब हम ये सुनाएंगे और वो भी हैरान होंगे कि क्या ऐसा होता था कि दिवाली पे अचानक
3: होता
0: से
3: था
0: सर्दी बढ़ जाती थी। मैं आऊंगी डॉक्टर साहब एक बार। डॉक्टर शिखर
3: जब।
0: शर्मा हमारे साथ मौजूद है, आपने खाने पीने का यहाँ पर जिक्र किया है। अब देखिए डॉक्टर शिखा, फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, आज दूसरा नवरात्र है, तो जाहिर सी बात है कि खाने पीने का समय तो है। कुछ लोग तो उपवास भी करते हैं, जो बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर आप 9 दिन फास्टिंग करेंगे, और एक साइंटिफिकली भी देखा जाए तो फास्टिंग बहुत अच्छा रहता है चेंज ऑफ वेदर में, अक्सर कहा जाता है, डॉक्टर वली हमें बताते भी हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यही तो खाने पीने का समय है, और अब ऐसे मौसम में एहतियात कैसे बरती जाए, क्या खाएं क्या छोड़े।
4: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली ये जो समय है आयुर्वेद के मुताबिक ये एयर प्रिडोमिनेंट या वाता प्रिडोमिनेंट समय होता है। वाता का मतलब होता है कि एयर डिस्टरबेंस, शरीर के अलग तत्व होते हैं जिसमें एयर, फायर, वाटर, अर्थ एलिमेंट होता है, तो ये जो समय है उसमें एयर एलिमेंट का डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है। तो क्योंकि ये एयर एलिमेंट का डिस्टरबेंस शुरू होता है तो इस समय कुछ चीजें मना करी गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत ज्यादा अपना जो मील्स है उसको स्किप ना करें, उससे आपके एयर एलिमेंट वाता में डिस्टरबेंस होती है, तो स्किपिंग मील्स मना किया गया है। बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना और गलत समय पे पीना, यानी रात को आप कॉफी पी रहे हैं चाय पी रहे हैं, वो मना किया गया है। तीसरी चीजें, तली हुई चीजें भी मना की गई हैं, बिकॉज ये आपके पित्त और वात को दोनों को डिस्टर्ब करता है। और अभी नवरात्रों में हम देख रहे हैं कि उपवास तो कम हो रहा है, तला हुआ ज्यादा खाया जा रहा है। नवरात्रों की थाली में आप फ्राइड फूड की पूरी थाली देख रहे हैं, तो उपवास कम और फीस्टिंग ज्यादा हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उपवास, इनफैक्ट शास्त्रों में कहा गया है कि ये चेंजिंग सीजन में जो नॉर्मली नवरात्रों में ही आता है, अगर आप उपवास करें, फास्टिंग करें, तो आपकी बॉडी एडजस्ट बेटर करती है टू अ चेंजिंग सीजन, बिकॉज आपकी जो समर्स की जितनी भी टॉक्सिन्स है, हीट है, वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी रिलीज करती है। तो बहुत सारा पानी पीना, कोकोनट वाटर पीना, सब्जियां और क्या बोलते हैं, फल खाना, जो हर्बल टीज हैं, जैसे कि डॉक्टर वली ने भी बोला, अदरक, तुलसी, इलायची, और सिनेमन, दालचीनी, इस सब का काढ़ा बना के पीना, और हल्का मित आहार यानी हल्का आहार खाना, बहुत अनाज, बहुत फ्राइड, बहुत प्रोटीन, इस तरह की चीजें मना करी गई हैं, खासकर इन चेंजिंग सीजन में। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके विंटर्स सही जाते हैं, अगर आप नहीं फॉलो करते तो फिर नजला, जुकाम, लो इम्यूनिटी, साइनस एलर्जी, फंगल इन्फेक्शंस, ये सारे आने शुरू हो जाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर गुरुदत्त, अब आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और असली सर्दी के लिए थोड़ा इंतजार नवंबर एंड तक का करना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जानना समझना चाहूंगी कि तापमान में क्या गिरावट जो इस वक्त है, क्या उतना तापमान न्यूनतम और अधिकतम रह सकता है या फिर इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा।
2: देखिए अभी जो तापमान है खासकर जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में, वो दिन और रात के तापमान में काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि दिन का तापमान बढ़ा हुआ है और रात का तापमान कम है, और ये बहुत ज्यादा करीब 17 तारीख से फिर से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। और ये संक्रमण काल होता है अक्टूबर और खासकर मार्च, अक्टूबर में ऐसे उतार चढ़ाव ये तापमान के आते हैं क्योंकि चेंज ओवर सीजन है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली कि तापमान लगातार गिरेगा। हाँ इतना जरूर है कि दिल्ली साइड में थोड़ा सा प्रदूषण वगैरह कम हो जाएगा, पानी गिरा है तो धूल के कण बैठ जाएंगे, इस समय एलर्जी की ज्यादा परेशानी होगी। तो मैं एक मोटी चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये तेज हवाएं हैं बरसात में, ये खासकर इन दोनों में जो गरज चमक की स्थिति होती है जो पश्चिम विक्षोभ के कारण से, बाकी मानसून काल से ज्यादा अभी होती है और बहुत खतरनाक होती है, इसलिए जब ऐसी स्थिति आए गरज चमक से बचना चाहिए, बिजली के तार के नीचे, पोल के नीचे या पेड़ों के नीचे कदापि न खड़े हों और वाहन को सावधानी से चलाएं। किसान भी अभी लगातार जो चूंकि फसल का दोनों स्थिति है, एक बोनी होना और एक कटाई होना है, तो मौसम विभाग लगातार जो चेतावनी जारी कर रहा है उसको आप देखते रहें, और हर तीन तीन घंटे मौसम विभाग की चेतावनी जारी होती है, चाहे ऐप के माध्यम से चाहे मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट के माध्यम से, तो आप उसकी जानकारी जरूर लेते रहें, क्योंकि ये खासकर गरज चमक की स्थिति पश्चिम विक्षोभ समय खतरनाक होती है, तेज हवाएं चलती है इस समय, तो ये रहेगा करीब 15-16 तारीख तक, इसके बाद फिर से मौसम में वैसी हो जाएगा और तापमान गिरेगा भी फिर बढ़ेगा भी, लेकिन ठंड अभी बहुत जल्दी नहीं आने वाली ये निश्चित है।
0: अब डॉक्टर वली आपके पास दो सवाल, डॉक्टर गुरुदत्त कह रहे हैं कि ठंड अभी आने वाली नहीं है, ये निश्चित है, अगर ठंड आने वाली नहीं है तो फिर गर्म कपड़े निकालें या नहीं, और दूसरा दिन और रात के तापमान में सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अगर रात में मान लीजिए आप ये एडवाइस भी करते हैं, लोग एसी नहीं भी चलाते, तो दिन का तापमान अभी आप बाहर ही देख लीजिए अच्छी खासी धूप है, दिन में लोग एसी में रहते हैं।
3: अभी मैंने कहा ना लोग छाता लेके दफ्तर नहीं जा रहे कि उनको पता नहीं रात का तापमान गिर रहा है, एसी चला के जब हम सोते हैं और जब 2 बज जाते हैं तो तापमान बहुत नीचे हो जाता है कमरे का, तो इसकी एहतियात करें। देखिए बिजली बचाने का तरीका भी तो होता है ना, जो मैं बताता हूँ काम की बात बताता हूँ भैया, 27 पे चला लो, 26 पे चला लो, अंडा रखना है तो 26 पे, नॉर्मल रखना है तो 27 पे भी चलाया जा सकता है इस मौसम में। देखिए ये सडन चेंज हुआ है, ठंडी हवाएं आई हैं, बर्फ पिघली है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि अब ठंड नहीं होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, अब हो गई तो लग गई, तो उससे कौन बचाएगा? डॉक्टर वली बचाएगा अदरक की चाय पिला के और दिन में जीरा का पानी पिला के, अजवाइन का पानी पिला के। तो ठंड के प्रेडिक्शन की तो बातें हम कई बार कर चुके हैं ना, मौसम का अब वो मिजाज नहीं रहा जो एक साइकिल होता था, हमारे 8वीं की किताब में ऋतु परिवर्तन का एक चैप्टर होता था और वो ऋतु परिवर्तन रेगुलर होता था, अब ऋतु परिवर्तन नहीं हो रहा, अब तो ऋतु राजा हो गई है, जब चाहे बारिश कर ले, जब चाहे धूप निकाल ले, तो भैया संभल के रहना हमारा काम है। देखिए अभी हम लोगों को इतनी बीमारियां हुई हैं, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा और जने कितनी तरह के रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, उस हालत के बाद तुरंत मौसम का बदलना ये एक अच्छा मेडिकल संदेश नहीं है, मौसम का कोई भी संदेश हो मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो संदेश है ये एहतियात की तरफ इशारा कर रहा है। गर्म कपड़े क्यों नहीं पहन के जा रहे, गर्मी लग रही तो कोट उतार के टांग दो, भैया लंदन में सब लोग ओवर कोट पहन के जाते हैं, हर दफ्तर के बाहर हैंगर रखा होता है उसमें टांग देते हैं, हमें भी ऐसा ही कुछ सीखना पड़ेगा। तो भाई अपने कपड़े अपने साथ रखो, अपना छाता अपने साथ रखो, देखिए बर्फ पड़ रही तो बर्फ पड़ रही है तो बर्फ के लिए बचाव भी होना चाहिए, अंदर से बचाव भी जरूरी है, गुड खुराक, गुड इम्यूनिटी, गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट वाटर इन द बॉडी जी, और बाहर से बचाव जो है वो मौसम से हमको बचना है, मौसम की इसको हम वेगरीज कहते हैं, वेदर की मतलब अनिश्चितता अगर बनी हुई है तो उस अनिश्चितता के लिए अनिश्चितकालीन तैयारी करके रहना है, फौज इसलिए होती है कि पीस में अलर्ट रहे, वॉर में तो होती होती है, तो हमें तो फौजी बन के रहना इस मौसम के मुकाबले के लिए। ये देखिए ऋतु परिवर्तन के लिए अब हमारी बॉडीज, ये मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, हमारी बॉडीज अब उसमें इतनी शक्ति नहीं रह गई है ये जंक फूड खा खा के या एडल्ट्रेटेड खा खा के कि हम ठंडा गर्म से रेजिस्ट करें। मैं मलमल का कुर्ता पहन के जाता था 1960 में, छोटा बच्चा था जब, और मेरी शिकायत होती थी घर पे कि तुम्हारे लड़के को ठंड लग जाएगी, जो मुझे गर्मी लगती थी कि प्योर खाना खाते थे, चिलगोजे जेब में भर के रखते थे। अब कहाँ चिलगोजा और कहाँ बादाम, कहाँ खाना, कहाँ अच्छा खाना, कहाँ ज़ाफ़रान, ये सब चीज़ें दुर्लभ हो गई हैं। दो रोटी खाना मुश्किल हो रहा है कॉमन, तो हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बचा के सजो के रखना है और बदपरहेजी नहीं करनी है। बदपरहेजी जो अभी शिका जी ने जिसकी तरफ इशारा किया, इसको कहते हैं ठंडे गर्म से बचना। ठंडे गर्म से बचना बहुत बढ़िया एब्रीवेशन है, हर चीज कवर हो जाती है उसमें, कपड़ा भी, खाना भी और लिहाफ गद्दा भी। तो तीनों चीजों को एहतियात से संजो के रखना है, अपने शरीर को बचाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। शिका जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, जब हम डाइट की बात करते हैं कुछ चीजें जिनको हमें पूरी तरह से एटलीस्ट इस तरह के मौसम में अवॉइड कर देना चाहिए, अगर हम इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मानते हैं, जैसे डॉक्टर गुरुदत्त बता रहे हैं कि 17 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए?
4: सबसे पहले कोई भी चीज जो आपके गट बायोम को इफेक्ट करती है उसको अवॉइड करना है। तो वो कौन सी चीजें जो गट बायोम को इफेक्ट करेंगी? सबसे पहले बासी खाना, यानी कि अगर हम फ्रिज में सामान रखते रहें या उसको गर्म बार बार गर्म करके खाते रहें तो वो बासी खाना माना जाता है, जिसकी लाइफ एनर्जी वाइटैलिटी कम होती है, वो आपके गट बायोम को डिस्टर्ब करेगा। दूसरा है कोई भी ऐसा खाना जिसमें आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और बहुत मीठा हो। क्यों मीठा ज्यादा गट बायोम को इफेक्ट करता है? बिकॉज वो जो गट का जो पीएच है, जो एक एसिड एल्कली बैलेंस है, उसको बिल्कुल बदल देता है। उसकी वजह से जो आपकी गुड बैक्टीरिया है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करते और उसकी और सारी बीमारियां गट से ही शुरू होती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं या तो आपके नोज यानी नेजल कैविटी से शुरू होगी या आपके इंटेस्टाइन से शुरू होगी और फिर वो आपके बॉडी में पूरी प्रदूषण फैलाएगी, इन्फ्लेमेशन करेगी, टॉक्सिसिटी बढ़ाएगी। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को आप हैवी खाना ना खाएं, क्योंकि जो रात को आप हैवी खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन नहीं होता। यानी कि कोई भी आपको जैसे राजमा है, चना है, रेड मीट्स हैं, ये सारी चीजें आप दिन में खा सकते हैं मगर रात को ना खाएं हैवी। और डाइजेस्टिव टीज जरूर पिए। डाइजेस्टिव टीज का मतलब है जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिवर के लिए अदरक, तुलसी और काली मिर्च, इन तीनों को अगर आप काढ़ा बना के खाएं और थोड़ा थोड़ा आप इसको डाइजेस्टिव टी के रूप में पिएं तो आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर खूब लें, क्योंकि फाइबर आपके अगेन, अब फाइबर का ये मतलब नहीं है कि आप अलग से सिर्फ फाइबर खरीद के खा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ अलग से फाइबर खरीद के खा रहे हैं। आपके नेचुरल खाने में अलग अलग फाइबर आ जाता है, जैसे ओट्स है या जैसे आप मल्टीग्रेन रोटी खा रहे हैं या जैसे आप सेब का छिलका बिना उतारे उसको वो खा रहे हैं या आप सब्जियां जैसे खा रहे हैं, बीन्स है उसमें भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। पपीता खाएं, आंवला और त्रिफला का इस्तेमाल करें। क्यों? बिकॉज आंवला एक रसायन माना जाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। त्रिफला में भी तीन चीजें होती है, आंवला, हरर, बेहर। हरर आपके इंटेस्टाइन के लिए अगेन एक टॉनिक का काम करता है। फिर कुछ ऐसे हर्बल चाय है जो आप पी सकते हैं, जैसे गुड़ैल का फ्लावर है, बहुत गुड़ैल का फ्लावर हमने देखा होगा जिसको हाइबिस्कस कहते हैं। हाइबिस्कस को अगर आप उबाल के, उसका सुर्ख लाल होता है, उसमें हल्का सा आप ब्लैक सॉल्ट डालें और उसका हल्का सा सौंफ उसको भून के उसमें डालें और उसका आप काढ़ा पिए, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और वो आपकी गट को हेल्दी रखता है। उसकी आजकल टीज भी मिलती है मार्केट में, हाइबिस्कस टी के नाम से माना जाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपकी बावल मूवमेंट्स ठीक नहीं है, अगर आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, अगर आपकी ब्लोटिंग हो रही है, तो यानी आपका ऑलरेडी जो पहला गेट है, आपकी जो फोर्ट्रेस है या जो आपका किला है, उसका पहला गेट कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो इसीलिए खट्टी डकारें, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें संकेत करता है कि आपको कुछ गट के प्रोबायोटिक्स भी खाने चाहिए। और आजकल बहुत से प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, बच्चों के लिए तो डिलिशियस मिलते हैं, बड़ों के लिए कैप्सूल फॉर्म में मिलते हैं, तो वो जरूर खाने चाहिए।
0: बिल्कुल। डॉक्टर गुरुदत्त आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बेमौसम बरसात तो है ही, असर कहाँ और कैसा हो रहा है वो भी आप बता ही रहे, लेकिन अगर मैं खास तौर पर खेती किसानी की बात करूँ तो उन पर कितना असर इसका होगा आगे?
2: देखिए धान की फसल पक्के कुछ जगह तैयार है, कुछ जगह पकने वाली है, और चूंकि इस साल मानसून में जून में अच्छी वर्षा नहीं हुई, जुलाई अगस्त में ही वर्षा हुई है, तो किसानों ने लेट फसल बोई तो धान की फसल भी लेट आने वाली है। अभी दाने आ गए हैं या बहुत जगह धान कटने में टाइम है, तो उनकी जिनकी धान खड़ी पके उनके लिए अगर ज्यादा पानी गिरता है तो वहां नुकसान भी है। और अब समय पर दलहन की बोनी का समय आ गया है, खासकर ये रबी फसल के लिए अक्टूबर में दलहन की बोनी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा जमीन गीली है तो किसान भी परेशान है, क्योंकि जब तक जमीन कड़ी और जुताई लायक नहीं होगी तो बोनी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा किसानों से कि क्योंकि अलीनो का साल है, बहुत सिस्टम ढंग से नहीं चल रहा है, वर्षा होगी नहीं होगी, क्योंकि गेहूं के लिए तापमान का गिरना भी जरूरी है और खासकर इनको मार्च तक कटाई हो जाना चाहिए गेहूं में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम दिन वाली फसल बोए और कम पानी वाली फसल बोएंगे तो थोड़ा सा आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि मौसम अनिश्चितता तो रहने वाली है, क्योंकि सुपर एल नीनो है, 2.5 डिग्री टेम्परेचर प्रशांत महासागर का बढ़ गया है, फिर नवंबर दिसंबर में हमारे इंडिया में भी प्रभाव डालेगा, तो किसानों को बहुत सावधानी से खेती करना चाहिए, क्योंकि लागत और खर्चे बहुत है, इसलिए ऐसे फसल ऐसे दाने बोए जो कि आपको नुकसान भी ना हो, कम पानी लगे, कम दिन की फसल है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में परंपरागत खेती होती है, जो बाजू को किसान बोता है वही हम बोते हैं, तो सारे मिलके एक साथ ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसमें आने वाले दिनों बचाव ही तरीका है, क्योंकि इस साल किसी तरह से लीनों से हमको मार्च अप्रैल तक बचना है, और दूसरी बात पानी की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, ये सारी चीजें होंगी कहाँ से, क्योंकि तालाबों में पानी नहीं है, नदियों में भी स्तर गिरा हुआ है, रिजर्वायरों में पानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो पानी कहाँ से मिलेगा, जमीन के अंदर भी स्रोत जो है बहुत गहरे हो गए हैं नलकूप, बिजली कैसे बनेगी, इन सबको भी ध्यान देते हुए हमको देश के साथ समाज के साथ मिलकर भी आगे काम करना है, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी होंगी आने वाले दिनों में कि हमको बिजली नहीं मिलेगी, कम बिजली मिलेगी, कम पानी मिलेगा, तो हम पानी का भी सदुपयोग करें और कम पानी वाली फसलों को बोएंगे तो हमको सुविधा होगी, और ऐसी कोशिश होगी कम बिजली भी लगेगी किसानों को, खासकर बोर से हो या सिंचाई करने के लिए, तो दिक्कत तो आने वाली है, क्योंकि भरपूर पानी ना होने से, भरपूर वर्षा ना होने से दिक्कत होने वाली है।
0: बिल्कुल, तो डॉक्टर गुरुदत्त बता रहे हमें लगातार कि किस तरीके से बेमौसम बरसात का असर अभी हो रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह का हाल रहेगा, यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान, और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: बेमौसम बरसात का क्या है पैगाम, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले एक बात जो गुरुदत्त जी ने क्लियर की थी, वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, वो ये कि फिलहाल हम इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही मानकर चलें। तापमान फिलहाल 17-18 तारीख तक थोड़ा सा कम रह सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। सर्दियों की आहट ये बिल्कुल नहीं है और सर्दियां नवंबर की बात शुरू होंगी, लेकिन वहां पर भी एक डिस्क्लेमर लगाया गुरुदत्त जी ने, वो ये कि सुपर अलनीनो का साल है जिसका असर उस वक्त देखने को मिलेगा। लेकिन इस बेमौसम बरसात ने यकीनन हमारे रोजमर्रा के पैटर्न को बदल कर रख दिया है। डॉक्टर शिखा, आपके पास आना चाहूंगी। एक तो नवरात्र चल रहे हैं, उत्तर भारत में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उपवास भी करते हैं। उपवास के हालांकि नियम यही बताए गए हैं कि आपको हल्का खाना है, कम खाना है, ताकि आप प्रिपेयर हो जाए अगली ऋतु के लिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है, जिसका जिक्र आप भी ब्रेक पर जाने से पहले कर रही थी, कि फ्राइड फूड लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। ऐसे में अगर आप मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी थोड़े से टिप्स दीजिए कि वो क्या, अगर वो उपवास कर रहे हैं, अगर वो नहीं भी कर रहे हैं, तब भी कौन सी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं और क्या अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
1: सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ये जो समय है 9 दिन का, इसमें अपनी हाइड्रेशन पे खास ध्यान रखें। हाइड्रेशन जैसे कि आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, खूब सारा आपको पानी पीना चाहिए 1-2 लीटर, और हर्बल टीज का यूजेज करना चाहिए, जिसमें जैसे तुलसी है, अदरक है, सारी चीजों का। दूसरी चीज कि आजकल जितने भी फल हैं, क्योंकि अब फलों का मौसम शुरू हो रहा है, तो आपको फल आहार ज्यादा लेना चाहिए। और भूख ज्यादा लगे तो ड्राई फ्रूट्स थोड़े ले सकते हैं, मूंगफली भुनी हुई ले सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप अनाज से दूर रहें, बिकॉज ये समय जो है एक तरह का आप कह सकते हैं एक रिचुअल है, एक सिस्टम है कि आप फलों पे रहें और मूंगफली खाएं या ड्राई फ्रूट्स खाएं और कम पका हुआ खाना खाएं। जहां तक आप को जैसे शाम के समय लोगों को कई बार चाय, कॉफी, ये सब चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, तो आप हर्बल टी ले सकते हैं जिसके अंदर कैफीन नहीं है, कॉफी नहीं है, और सूप ले सकते हैं। अब सूप का मौसम शुरू हो गया है, जैसे कि आप अलग अलग सब्जियों का आप सूप बना सकते हैं। आप जब सब्जियों का जितना भी उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जब आप सूप बनाते हैं और उसमें हर्ब्स डालते हैं, तो उसका फ्लेवर भी आता है और वो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता भी है। आयुर्वेद में एक चीज है त्रिकटू, जिसको कहते हैं, वो एक तरह का चूर्ण होता है जिसके अंदर तीन, जैसे लौंग पेपर और पेपर, ब्लैक पेपर, अदरक, ये सब मिला के एक तरह का डाइजेस्टिव चूर्ण बनता है। तो आप सूप में ये सारी चीजें डाल सकते हैं ताकि आपकी डाइजेस्टिबिलिटी उसकी ज्यादा बढ़े। एक और चीज जो ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे आजकल वाटर क्रेस मिलता है आपको, पंपकिन के सीड्स मिलते हैं, ये जो सारी चीजें हैं जिसको हम सीड्स बोलते हैं, नट्स बोलते हैं, वो आम लाइफस्टाइल में लोग नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि कई बार उनको महंगा लगता है या कभी समय ही नहीं होता, वो बाकी जंक फूड खाते हैं। तो अभी थोड़ी सी कॉन्शियस ईटिंग, यानी अवेयरनेस के साथ ईटिंग अगर आप करें, तो वो आप हेल्दी फूड्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समय होता है जब थोड़ा सा आपको हल्के तेल गर्म करके बॉडी की मसाज करनी शुरू करनी चाहिए। आप सेल्फ भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइनेस आनी शुरू होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वाता यानी एयर इम्बैलेंस शुरू होता है, तो बॉडी में खूब ड्राइनेस होती है, तो कई लोगों को इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं स्किन की। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप थोड़ा सा गर्म करके, हल्का ल्यूकवॉर्म करके, तिल की ऑयल की आप थोड़ी सी मसाज करें, हैवी मॉइस्चराइजिंग यूज करें अपने स्किन के ऊपर। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय कई लोग जो वाता प्रधान होते हैं, जिनका एयर इम्बैलेंस ऑलरेडी है, उनको एंग्जाइटी, उनको स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो कोशिश करें कि देर रात तक आप ज्यादा टीवी, यूट्यूब और मतलब अलग अलग चीजों की, आप सोशल मीडिया पे ना जाएं, और अपना फोन ऑफ करके सोने से 1 घंटे पहले, ताकि आपकी जो नेचुरल स्लीप है, जो नॉन स्टिमुलेटेड स्लीप है, वो आपको नेचुरली आए। कुछ लोगों को रात को अगर वो दूध लेने की आदत है, तो मैं कहूंगी दूध में कफ होता है, तो बट कफ को

0: खासियत होती है, हर रीजन की अपनी खासियत होती है। तो जैसे कि नारंगी अलग जगह के, कश्मीर के सेब, तो इसी तरह की वहां के टर्मरिक बहुत अच्छी, उसमें मेडिसिनल क्वालिटी होती है, उसको इस्तेमाल करें। और ध्यान रखें कि जो भी आप खा रहे हैं, भूख से पहले थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि एकदम पेट अगर आपका फुल हो जाएगा, ब्लोटिंग होगी, तो इनडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, वो सारी चीजें आपकी फिर से शुरू हो सकती हैं। और एलोवेरा का जो जूस है, जो लोगों के घर में एलोवेरा का प्लांट है, थोड़ा एलोवेरा जूस अगर आप पिए पानी में मिला के, तो जिन लोगों को एसिडिटी है वो भी एसिडिटी कम हो सकती है नेचुरली, विदाउट एनी आर्टिफिशियल मेथड्स।
1: बिल्कुल डॉक्टर वाली, अब आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे, अभी जब हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, आपने बताया था कि एक बच्चा अभी हाल फिलहाल में आपके पास आया है जो एस्थमेटिक है, एस्थमा का मरीज है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वल्नरेबल डिजीज के, चाहे वो बुजुर्ग हो, लोग हों या फिर बच्चे हों, उनके लिए खास तौर पर कैसी एहतियात बरतने की उनको जरूरत है, क्या करना चाहिए ऐसे समय में, स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर में रह रहा है। अगर हम मानकर चले कि 17 तारीख तक मौसम ऐसा रहेगा, उसके बाद वापस से चेंज हो सकता है, यानी कि इतना तापमान नहीं रहेगा, तापमान बढ़ सकता है, या फिर दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन भी बढ़ सकता है जो पहले से प्रेडिक्शन किया जा रहा था, तो ऐसे समय में अभी से कैसे खुद को तैयार करें?
2: हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे साल ही तैयार रहें। अब तो कोई भरोसा ही नहीं है ना मौसम का, तो सेहत तो अपने हाथ में है कुछ हद तक, और हमारे गुरुदत्त जी हमको गाइड कर रहे हैं, तो लेकिन शिखा जी भी इस बात पे जोर दे रही हैं कि खाने पे ध्यान दें। अच्छा, व्रत में मैं तो बहुत लोगों से कहता हूँ ज़रूर सेंधा नमक खाएं व्रत में, तो सेंधा नमक में पोटेशियम ज़्यादा होता है और सोडियम कम होता है। तो व्रत के दिनों में जैसे कि बता रही थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शिखा जी ने बताई वो नारियल पानी बताया और फ्रूट्स बताए, तो दे आर रिच इन पोटेशियम, सेंधा नमक भी पोटेशियम रिच होता है, तो जिन लोगों को किडनी की बीमारी नहीं है वो खा सकते हैं फ्रीली सेंधा नमक व्रत में। ख़ास तौर से समक के चावल, फलाहार और सेंधा नमक और कोटू का आटा, ये सब चीज़ें थोड़ा चेंज किया जाता है गट फ्लोरा को, इसलिए बताई जाती हैं। तो मैं सेंधा नमक इसमें यहाँ बताऊँगा। और वो जो हल्दी बता रही थी शिखा जी, वो ज़रा बड़ी होती है, ये पहाड़ी हल्दी के नाम से भी मिलती है, और ये जो है पता नहीं फोकस, हाँ हो गया, तो
1: डॉक्टर साहब लौटती हूँ मैं आपको, आप बताइएगा इस हल्दी की खासियत क्या होती है, अभी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। जी,
2: आ गया आ गया आ गया।
1: हाँ, जी
2: तो
1: डॉक्टर साहब,
2: ये
1: अपनी बात पूरी
2: हल्दी
1: कर
2: जो
1: लीजिए।
2: है, ये इसको इसको हमको प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए, इसको सलाद में भी डाल सकते हैं हम। तो ये हल्दी जिसकी बात कर रही थी शिखा जी, मैं दोहरा दूं, ये हल्दी बहुत जॉइंट्स के लिए भी अच्छी है, मोबिलिटी के लिए भी अच्छी है, और इसमें व्यायाम का और एक्सरसाइज का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है। कुछ लोग आलस में, मौसम बदल गया तो रजहाप में घुस गए, कल लोगों के लिहाफ गद्दे भी निकले हैं, बहुत ठंडी हवा आ रही थी रात को, छत पे मैं गया था जब, तो वो इस सडन चेंज ऑफ वेदर के लिए हमको तैयार रहना है। और डाइट इसका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। आजकल हर पैथी में, हम मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ लेकिन मैं आयुर्वेद की बहुत बड़ी वकालत करता हूँ, आयुर्वेद में है गट की बात भी, गट हेल्थ की बात भी, जो आयुर्वेद की परिभाषा है, प्रसन्न आत्माएं मना इंद्रिया, समा धातु समा अग्नि समा अग्नि समा धातु, ये समा है उसमें, समा मीन्स बैलेंस्ड हो, अग्नि धातु मल क्रिया ये सब बैलेंस हो, और प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिया, प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिया इति स्वास्थ्य अभिधेयते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डाइट से रिलेटेड हैं। गट हेल्थ की बात तो आयुर्वेद ने हजारों लाखों साल पहले करी है, जो अब हम डॉक्टर लोग कर रहे हैं आयुर्वेद ने तो बहुत पहले बता दिया। नहीं तो ये मल क्रिया क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन प्लस गट हेल्थ दोनों हैं। गट हेल्थ की बात करनी चाहिए, गट हेल्थ सारे एंटीबायोटिक अब्यूज से खराब हो रही है, ये आरओ के पानी पीने से खराब हो रही है, ये बॉटल्ड ड्रिंक पीने से खराब हो रही है, ये नेचुरल चीज़ें न खाने से खराब हो रही है। तो ये गट हेल्थ, अगर सारी बीमारियों की जड़ पेट है, पुरानी कहावत है, तो खाने पे और मौसम के कपड़ों पे दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है,

0: और व्रत की परिभाषा ही यही है जो हमें अनुशासन सिखाए। व्रत इसलिए नहीं है कि हम चटपटा खाएं, शाम को अपनी मर्जी का खाएं। हाँ, व्रत में कुछ लोग कुछ चीजें तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो चीजें व्रत में अलाउड है वो खूब खाते हैं। रोजों में भी ऐसी होता है, तो ये नहीं है। स्पिरिट व्रत की है परहेज, स्पिरिट व्रत की है अनुशासन, स्पिरिट व्रत की है गट हेल्थ को समावेशित करना, उसको सही करना, उस 10 दिनों में 9 दिनों में उस बात की प्रैक्टिस करना जिसको हमको सारे साल करना है अपनी जीवनचर्या में दाखिल। तो ये गट हेल्थ की ट्रेनिंग व्रत में है। इत्तेफाक से इस मौसम की शुरुआत भी दूसरे नवरात्रि को हो गई, या अगर सही कहा जाए तो पहले नवरात्रि की शाम से पहले ही हो गई। तो ये इस बात का संदेश है कि मौसम पर डिपेंड नहीं करना है
1: जी।
0: हमको, अपने शरीर को अनुशासित रखना है। इसमें सबसे बड़ा रोल सोने का है, खाने का है, और इसके साथ मौसम से बचाव का है। आपने चूंकि मुझे इन्वॉल्व किया है तो मैं बता दूं कि टीके वृद्ध लोग लगवा लें। स्वाइन फ्लू का टीका तो नहीं होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा का टीका और निमोनिया का टीका होता है
1: जी।
0: ये
1: जी,
0: दोनों
1: जी।
0: टीके बच्चों को भी और बड़ों को भी लगवाना चाहिए इस मौसम की आमद से पहले। जिनको नहीं लगे हैं वो लगवा लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब एक बार डॉक्टर गुरुदत्त आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा कि 17 तारीख तक ऐसा मौसम रहेगा, लेकिन पहाड़ों पर भी क्या ऐसी ही स्थिति रह सकती है? क्या वहां पर बर्फबारी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे ऊंचाई वाले इलाके जहां पर बर्फबारी हुई है, बारिश हो रही है अच्छी खासी, क्या वहां भी ऐसा ही मौसम रहेगा या वहां बदलाव देखने को मिलेगा?
2: पहले तो मैं डॉक्टर साहब ने जो हल्दी की बात की वो बता दूं कि जो पहाड़ की हल्दी हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कच्ची हल्दी देसी है वो बाजार में खूब मात्रा में इस समय उपलब्ध है। तो अदरक हल्दी और लहसुन की चटनी खाएं, बढ़िया अदरक तुलसी की हल्दी खूब मिल रही है बाजार में, देसी हल्दी मिल रही है। दूसरी बात, मैं ये जो पश्चिम विक्षोभ है लगातार आते रहते हैं। पिछली बार अगर आपको ध्यान होगा, पिछली बार पश्चिम विक्षोभ आई लेकिन बहुत ऊंचाई पे थे, उसका फायदा भारत में नहीं मिला हमको, और नवंबर दिसंबर में कोई भी वर्षा भारत में माउटा जिसको बोलते हैं नहीं हुई। तो ये कह देना कि पश्चिम विक्षोभ आएंगे, बहुत बर्फबारी होगी या ठंडक होगी, अनिश्चितता का मौसम है, मौसम खुशनुमा और बहुत अच्छा तो होगा, लेकिन जो हम उस तापमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं उससे मुझे बहुत ज्यादा लग नहीं रहा, क्योंकि इस साल जो मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की आगे वाले दिनों में कि जो तापमान है सामान्य से ऊपर रहेगा। दूसरी बात, जब पश्चिम विक्षोभ आएंगे और नीचे अगर होंगे तभी ये बर्फबारी और इसका आनंद मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों में जो अगर आप उत्तराखंड की बात कर ले, 50% जंगल बचा है, 50% तो साफ हो गया है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। ग्लेशियर अभी भी पिघल रहे हैं और अनिश्चितता का मौसम है, ये मान के चले आप हर जगह पूरी स्थिति बहुत अच्छी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि काम होने से लगातार विकास होने से पेड़ पौधों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर पश्चिम विक्षोभ आएगा और उसकी ऊंचाई कम होगी तो हमको बराबर उसका फायदा मिलेगा, ठंडी हवाएं भी आएंगी और उससे पानी भी मिलेगा उत्तर भारत में और पहाड़ी इलाकों में। लेकिन अगर पश्चिम विक्षोभ की स्थिति बहुत ऊंचाई पर नहीं जैसे पिछले साल हुई थी तो हमको बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं मिलेगा। तापमान में मुझे नहीं लगता कि बहुत गिरावट आएगी, लेकिन आम जनता के लिए तापमान तो अच्छा रहेगा, लेकिन किसानों के लिए उसका फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फसलों में भी तापमान का गिरना जरूरी है। खासकर हमारे भारत में गेहूं की जो फसल होती है इसके लिए 20 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान ना बहुत जरूरी है। अभी तापमान 30 से 35 चल रहे हैं आप ओवरऑल, और 18 से करीब 25 चल रहे हैं न्यूनतम तापमान। तो तापमान में बहुत ज्यादा संक्रमण काल है, अक्टूबर तो आप कैसे ही बीतने वाला है, 15 नवंबर तक भी यही स्थिति है। किसानों के लिए बहुत अच्छी हालत इस देश में फिलहाल नहीं मुझे समझ में आ रही है। सावधानी रखना बड़ी जरूरी है, बच के चलना है, पानी को बचाना है, कम पानी में सदुपयोग करना है, क्योंकि हमको ये अलिनो जो सुपर अलिनो है इसके करीब मई जून तक ये प्रभाव डालेगा और वाष्पन होगा, जब तापमान ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज्यादा होगा निश्चित तौर पे। इसलिए सब चीजों से मिलके चलना है और मौसम विभाग विज्ञान विभाग द्वारा लगातार जो चेतावनी है जारी की है उसको जरूर निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के समय मौसम बहुत अस्थिर होता है, खासकर गरज चमक की स्थिति, बिजली गिरने की स्थिति ये जरूर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, इसलिए सावधानी का भी विशेष ध्यान रखना है।
1: सावधानी हर तरह से रखनी है, बिल्कुल डॉक्टर गुरुदत्त जी, हर तरह से रखनी है अपनी सेहत के साथ साथ, अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो भी आप एहतियात बरतें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: भगवान बद्री विशाल के धाम में इस वर्ष आस्था ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। खास बात यह है कि कपाट बंद होने में अभी फिलहाल करीब एक महीने का वक्त बचा है, ऐसे में इस बार यात्रा के नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है।
2: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार ऐतिहासिक बनती नजर आ रही है। हर तरफ गाड़ियों की कतार, लगातार सड़कों पे जो जाम की स्थिति है वो अभी भी सड़कों पे देखने को मिल रहा है। जो तीर्थयात्री हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। तो वहीं मौसम की बात करें, भले ही मौसम लगातार करवट बदल रहा हो, बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त ठंड का एहसास देखने को मिल रहा है। वहीं अब तक बद्रीनाथ धाम में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। तो वहीं इस बार जो पितृपक्ष अभी बीता है, सिर्फ पितृपक्ष में पहली बार 2.25 लाख तीर्थयात्री जो बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं, इसी के साथ 20 लाख का आंकड़ा पहली बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा में देखने को मिला है। वहीं अभी भी एक महीने से अधिक का समय बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने में समय शेष है। ऐसे में देखना होगा इस बार कौन सा नया रिकॉर्ड बद्रीनाथ धाम की यात्रा में बनता है, क्योंकि पहली बार 20 लाख श्रद्धालु जो है अक्टूबर के शुरुआती दौर में ही बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुके हैं और अब एक महीने का लगभग समय शेष है। ऐसे में देखना होगा इस बार का नया आंकड़ा क्या रहता है, नया रिकॉर्ड क्या रहता है, क्योंकि मानसून, मौसम अलर्ट और कड़ाके की ठंड के बीच भी यात्रा का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। कमल एनसिलोरी, चमोली।
1: आपने बर्फ पर स्की करते लोगों को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने साबुन के पानी पर स्की ट्राई की है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं लंदन का एक ऐसा नजारा जहां पर चैरिटी इवेंट लोगों के लिए एक मजेदार इवेंट बन गया, जिसका लोगों ने खूब मजा लिया।
3: फिसलन भरा ट्रैक और उस पर पैरों में बर्फ की सिल्ली बांधे स्की करते ये लोग, ये किसी गेम शो का सेट नहीं बल्कि लंदन का एक शांत इलाका सर्बिटिन है, जो इस अनोखे गेम के कारण लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। कोई हाथों में स्टिक लिए एक स्कीयर की तरह स्की करता नजर आया, तो कोई बर्फ की सिल्ली लगे बाथटब में बैठकर फिसलता नजर आया। लोग गिरते पड़ते फिसलते रहे और दर्शक वीडियो बनाते रहे। इस अतरंगी खेल के दौरान सभी के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। लोगों ने इस इवेंट का जमकर मजा उठाया, लेकिन उत्साह तब चरम पर पहुंचा जब व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस भी इस मस्ती भरे खेल का हिस्सा बन गई।
4: How do you feel?
5: Excited.
3: पुलिस की इस अनोखी सवारी के लिए भीड़ ने भी पुलिस सायरन जैसी आवाजें निकाली और फिनिश लाइन तक फिसलते हुए जाने पर उनका उत्साह बढ़ाया। दरअसल ये खेल डाउनहिल स्कीइंग नाम के एक इवेंट का हिस्सा था, जिसमें लोगों ने अपने पैरों पर बर्फ के टुकड़े बांधकर पानी और डिटर्जेंट से फिसलन भरे ट्रैक पर स्लाइड करना था। ये इवेंट एक चैरिटी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए आयोजित किया गया था। जिसमें प्रतिभागियों से ली गई एंट्री फीस एक लोकल चैरिटी को सौंप दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। माँ के चरणों में शीश झुक जाए तो हर राह आसान हो जाती है, माँ की कृपा बरस जाए तो हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो माँ के 9 दिनों में आज है दूसरा दिन जब लोग माँ अम्बा की आराधना कर रहे हैं। किस तरीके से नवरात्र की रौनक पूरे देश में छाई है, आज आपको तस्वीरें दिखाएंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, नवरात्र में जयकारों में मां जगदम्बा का नाम और गरबा में ढोल की थाप पर झूमते थिरकते कदम। आस्था संस्कृति की छाव में शक्ति उपासना का गरबा डांडिया रास के रंग भी आपको हम दिखाएंगे। शहर दर शहर रामलीला के मंचन की शानदार तस्वीरें और बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा को लेकर बढ़ती चहल पहल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।
4: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। चाय पर चर्चा में कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से सर्द होते मौसम की शानदार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे ऐसी प्राचीन परंपरा की जिसका ताल्लुक कंबोडिया से है, जो आपके पूर्वजों का आभार जताने के लिए निभाई जाने वाली एक परंपरा है और इसे भारत के पितृपक्ष के जैसी परंपरा भी कहा जाता है। तो क्या है ये परंपरा, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
5: एवरेस्ट तीखाला, सही तीखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जयंती पर शक्ति उत्सव दिन पर सरहद पर भी विधिवत हो रहे शक्ति साधना। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ। बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम। जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। बिहार के कटिहार में आई अनोखी भक्ति की तस्वीरें। श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल के लड्डू का भोग। दर्शन पूजन को भक्तों की कतार। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड। अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई।

0: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है जब माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप यानी कि मां के जो नौ स्वरूप है उसमें दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। आज उसकी पूजा उपासना हो रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। तो वाकई अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे चर्चा कि हमारा देश और यहाँ की संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि देखिए कलर्स ही कलर्स है। और एक अभी हमने देखा कि अभी गणेशोत्सव हमने यहाँ पर किया और उसके बाद अब शारदीय नवरात्र में देखिए अलग अलग जगहों से पूरे देश से कितनी खूबसूरत तस्वीरें आ रही है।
1: बिल्कुल बेहद ही खूबसूरत। और कल क्योंकि कल से शुरू हुआ था तो कल मेरा व्रत भी था और फिर घर पे वो होता है ना जब महिलाएं आके कीर्तन करती हैं माता को बुलाती हैं घर पे, मतलब एक ना अलग ही रौनक होती है। और फिर आप डे बाय डे आप डिसाइड करते हो कि आज इन देवी का दिन है तो आपको ये कलर पहनना है फिर ये कलर पहनना है, मतलब फेस्टिव मूड ना शुरू हो गया है और उसमें ना आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है और मौसम भी मेहरबान हो गया।
2: ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया है। वैसे ये एक ऐसा समय रहता है जब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार, स्पेशली शारदीय नवरात्र की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर, हालांकि गुजरात में तो गरबा डांडिया होता है, उधर माँ दुर्गा के आने का भी इंतजार हो रहा है, दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी, लेकिन ये सारी चीजें आपको दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिलेंगी
1: और बहुत खूबसूरत लगती है। मेला लगना शुरू हो जाता है और रामलीला शुरू हो जाती है, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, गरबा होता है, क्या कुछ नहीं होता है यहाँ पे।
0: मतलब जो बात आपने कही ना कि घरों में जैसे कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव होता है तो शारदीय नवरात्र में मुझे लगता है कि ज्यादातर घरों में दुर्गा पाठ होता है में पूरे नौ दिनों तक। और फिर यहाँ पे वो कंजक वगैरह का भी है, अष्टमी या नवमी के दिन, हाँ अष्टमी पर लोग करते हैं या फिर नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। तो सुबह से ही जैसे हमने आपको बताया कि सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। आज देवी के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और शक्तिपीठों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल, देखिए जिसको माँ के दर्शन हुए वो खुद को धन्य महसूस कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि नवरात्रि पर भक्ति की एक अलग ही छटा बिखरी हुई है। तो सुबह से ही मंदिरों में रौनक कैसी बिखरी हुई है, छोटे बड़े शहरों में आज शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना कैसे हो रही है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं।

0: माँ की भक्ति में एक ऐसी शक्ति है जो टूटे मन को संबल देती है। यही शक्ति भक्त की जिंदगी में आई निराशा में आशा का दिया जलाती है। बस इसी उम्मीद के सहारे इस पावन शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा का स्मरण करने के लिए, उनके दिव्य स्वरूप की आराधना करने के लिए श्रद्धालुओं के शीश माँ जगदम्बा के हर मंदिर और शक्तिपीठ पर झुक रहे हैं। ऐसा ही एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है शक्ति, साहस और रक्षा की अधिष्ठात्री देवी कालका देवी का। कहते हैं कि यहाँ माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी, जिनकी महिमा का बखान करने वाले ही असंख्य हैं।
1: भक्त बड़ी संख्या में कालका जी मंदिर पहुँच रहे हैं और माँ कालका के जयकारों के साथ दर्शन कर रहे हैं।
0: केवल दिल्ली से ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु अपनी मन्नतों की झोली लेकर साल भर आते रहते हैं और माँ का यहाँ आशीर्वाद पाते हैं। वहीं अब क्योंकि दिन ही नवरात्रि के हैं तो ऐसे में ये शक्तिपीठ माँ के जयकारों से गुंजायमान है।
2: दर्शन कर लिए?
3: हाँ, दर्शन तो कर लिए।
2: कैसा लगा?
3: बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति हुआ हम लोग आने से। यहाँ
2: बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा दर्शन हो गया। यहाँ पे आकर मतलब मन को अजीब सी मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत शांति जैसा लग रहा है अंदर से। काफी मान्यता है दुर्गा जी का, यहाँ पे साक्षात प्रकट हुई थी।
4: दर्शन तो इसीलिए करने आते हैं कि मन शांति हो, सही हो, और इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। और काफी अच्छा लगा, कालका माता का दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हम लोगों ने किया यहाँ पे।
0: पूरे भक्ति भाव के साथ माँ का नाम भी लेंगे, उनसे कुछ ना भी मांगेंगे तो भी वो सब कुछ देती हैं। ऐसी ही है दिल्ली की झंडेवालान मंदिर वाली माँ भी, जहाँ शारदीय नवरात्रि पर आस्था का सैलाब सा उमड़ा हुआ है।
5: सभी भक्त लोग अपने अपने मनोरथ, अपनी कामना, अपनी इच्छाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के रूप में माँ झंडे वाली मंदिर में दर्शन के लिए सैकड़ों लाखों लोगों में यानी दर्शन के लिए आते हैं। और माँ भगवती झंडे वाली आज के दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी को आशीर्वाद प्रदान करती है।
0: नवरात्रि पर श्रद्धालुओं के बीच भक्ति भाव मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी खूब नजर आ रहा है। हर तरफ मुंबा देवी की जय जयकार है।
6: आते रहते हैं मुंबा देवी?
7: आते रहते हैं।
6: क्या क्या क्या खास है माता जी, थोड़ा बताइए मुंबा देवी से। मैंने सुना है कुछ
8: समुंदर में से प्रकट हुए वाली देवी है और मुंबई के इसके लिए इनका नाम मुंबा देवी रखा गया।
9: हर कामनाएं पूरी होती है, सच्चे मन से मांगी हर मनोकामनाएं पूरी कर जाती है।
6: आप भी कुछ कहना चाहती?
9: जरूर जरूर,
6: क्यों ना एक बार जोर से बोलते हैं। जोर से बोलो
8: जय माता दी,
6: प्रेम से बोलो
8: जय माता दी।
0: वहीं माँ अम्बे का आशीर्वाद पाने के लिए अकोला में भी भक्त की अद्भुत छटा बिखरी है। यहाँ ग्राम माता के रूप में पूजित माँ अंबिका देवी के प्राचीन मंदिर में शारदीय नवरात्र उत्सव के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
10: माता रानी एक जागरूक देवस्थान है यहाँ का। मैं करीब 25 वर्षों से यहाँ पे हर नवरात्र में आता हूँ और ये पूरे अकोला में सबसे पुराना और सभी लोगों को जागरूक देवस्थान है, जो हर कोई यहाँ पर आता है।
11: बहुत सारी शक्ति है माता की। मेरा अनुभव है, मैं शून्य से विश्व निर्माण हो गया। माता जी ने बहुत सारा दिया, मन में सोचा था भी नहीं इतना दिया।
12: ये तो आनंद के आश्रु है।
11: हाँ, बहुत माता जी के धन्यवाद धन्यवाद। जय माता जी।
0: शारदीय नवरात्रि का ये उत्सव बिहार के सासाराम में भक्ति उत्साह के बीच मनाया जा रहा है। सासाराम के इस प्रसिद्ध तारा चंडी देवी स्थान पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहाँ बालिका स्वरूप में विराजमान माँ के दर्शन पूजन को लेकर उमड़ी हुई है। इस मंदिर की मान्यता और माँ की प्रति श्रद्धा इतनी है कि हर साल देश विदेश से लोग माँ तारा चंडी का दर्शन करने पहुँचते हैं। सासाराम की ही तरह छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में भी माँ की साधना हो रही है। खासकर शहर के बीचों बीच बने प्राचीन शीतला माता मंदिर में तो नवरात्रि की एक अलग ही छटा बिखरी हुई है। माँ के नाम पर भक्त झूम रहे हैं, कहीं माँ के नाम आरती हो रही है तो कहीं माता के इस दरबार में ही ज्योति कलश माहौल को भक्तिमय बना दे रहे हैं। हरिद्वार में भी शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में माया देवी मंदिर में श्रद्धा अपार है। यहाँ भी भक्ति और श्रद्धा का एक अलौकिक माहौल महसूस हो रहा है। वहीं अयोध्या की प्रसिद्ध बड़ी देवकाली मंदिर में भी श्रद्धालु अपनी माँ का दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। आने वाले दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना, शक्ति, श्रद्धा और साधना यहाँ भी ऐसी ही जारी रहेगी। जाहिर है शक्ति वही है जो कमजोर को शक्ति दे, भक्ति वही है जो मन को निर्बल करे, और माँ वही है जो अपने बच्चों पर ममता और करुणा की छाया बनाए रखे। यही आशीर्वाद शारदीय नवरात्रि में हर भक्त माँ जगदम्बा से मांग रहा है। बिहार के सासाराम से रंजन कुमार, छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से धीरेंद्र विश्वकर्मा, अयोध्या से मयंक शुक्ला, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अकोला से धनंजय साबले, दिल्ली से आशुतोष कुमार और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और देखिए शारदीय नवरात्र चल रहा है और इस दौरान लोग दुर्गा शक्ति पीठों के दर्शन भी करते हैं, इस तरह की परंपरा भी दीपिका श्रोता रहती है, लोग जाते हैं स्पेशली इन दिनों में?
13: बिल्कुल जाते हैं, और ये प्लानिंग मतलब हमारे घर में फैमिली में ये होता है कि हम अपने शक्ति पीठ का दर्शन करें उस टाइम पे, और ज्यादा आपको वो फल देता है मेरा ऐसा मानना है, तो करते रहना चाहिए दर्शन, और बहुत भीड़ भी होती है जब जाते हैं तो।
14: हाँ बिल्कुल, ये तो हमने देखा है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ये चलन है, जैसे कि अभी आपसे बात भी हो रही थी दीपिका, हमारे यहाँ 9 दिनों तक पाठ होता है दुर्गा पाठ, तो इसलिए हम कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि घर में हम कलश स्थापना करते हैं और सुबह शाम पाठ होता है और 13 अध्याय उसमें होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं आखिरी दिन तक, तो इसीलिए हम कहीं नहीं जाते, लेकिन हाँ पूरे घर में जो उत्सवी माहौल है वो रहता है हमेशा, आपको वो धूप अगरबत्ती और पूजा की चीजें इतनी अच्छी लगती है, वो वाइब्रेंसी बहुत अच्छी लगती है और
7: पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आपको मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर आप देखें भी बाहर, जैसे घर से आप स्टेप आउट करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हर तरफ ही देखने को मिलता है। तो चलिए आपको कुछ और शक्तिपीठों की तस्वीरें दिखाते हैं, उनकी कहानियां क्या हैं वो बताते हैं, मान्यताएं कौन सी हैं, चमत्कार कौन से हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इनमें खासतौर पर आपको तनूट माता मंदिर हम लिए चलेंगे, प्रयागराज का दुर्गा मंदिर भी वैसे बहुत फेमस है, और चित्रकूट का झारखंडी देवी मंदिर भी, और मध्य प्रदेश के मैहर में भी माँ शारदा शक्तिपीठ जैसे और कई मंदिर हैं जो कि इन दिनों माँ के जयकारों से गुंजायमान है।
14: बिल्कुल, आपको बता दें कि माँ जो करुणा बरसाने वाली हैं, अपने भक्तों का कल्याण करने वाली हैं, इसलिए 9 दिन के नवरात्र पर्व पर ऐसी पावन जगहों पर आस्था अपार है, और अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे श्रद्धालु भी माता के दर्शन पूजन कर धन्य महसूस करते हैं।

0: राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद श्रद्धा और शौर्य के नाम तनोट माता मंदिर में हर नवरात्रि की तरह श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। धूमधाम से पूजा उपासना हो रही है। 9 दिन के मेले की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन पूजन कर मनोकामना पूर्ति का उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं।
1: माता का साक्षात चमत्कार है। अभी भी लोग यहाँ पे आते हैं और माता की साक्षात शक्ति विराजमान है। लगभग 1 घंटे की आरती हुई है, जिसमें बहुत ही शालीनता से आरती तनोट माता की आरती होती है। सभी देव देवताओं को उसमें शामिल किया गया है।
2: 1965 70-71 की लड़ाई थी, उसमें जो अपने फौज के लिए बहुत साथ दिया था और जो पाकिस्तान की ओर से बमबारी हुई थी, उस जितने भी गोले गिरे सबको फटने से रोक दिया था। और देवी का बहुत यहाँ वर्षा है और हम आई साल नवरात्र स्थापना के दिवस पे या देवी के दर्शन पे आते हैं।
0: भारत पाकिस्तान सीमा पर तनोट गांव में स्थित ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना माना जाता है। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों से जुड़ी मान्यताओं के चलते इन्हें जवानों की देवी के नाम से भी पुकारा गया है। तभी से ये मंदिर बमों वाली देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है।
3: इस तरह से इस मंदिर प्रांगण की पहले भी एक अद्भुत महिमा और व्याख्या चलती आ रही है, वैसे ही आज भी देखेंगे तो आप भक्तों का ये सैलाब और ये भीड़ इस बात की उत्सुकता करती है। और जिस तरह से माता की कृपा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के लोंगे वाला भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ है, आज भी वैसे ही कृपा इनकी बनी हुई है।
0: बताया जाता है कि जंग में पाकिस्तान ने यहाँ करीब 450 के आसपास बम बरसाए थे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं। तभी से इस चमत्कारिक मंदिर में आस्थावानों की श्रद्धा और बढ़ गई। खासकर बीएसएफ के जवान तो इस मंदिर में सालों भर माँ की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्र पर तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। प्रयागराज के गाँव में भी आस्था का मेला सज चुका है। पंडालों में माता विराज चुकी हैं। पूरे भक्तिभाव से माँ की आराधना हो रही है। संगम नगरी के गाँव में दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं, बल्कि गाँव की एकता और सामूहिक भागीदारी का भी प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा प्रतिमाओं को यहाँ स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। इसके बाद हर दिन गाँव के लोग एक साथ जुट कर पूजा पाठ और आरती करते हैं।
4: पूरी कमेटी का, पूरे गांव का एक ही मकसद रहता है कि जो भी ये हमारी जो नवरात्रि चलती है, हमारी नव दुर्गा माइयों की पूजा होती है, उसमें हम सभी घर के, गांव के, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, हम सभी घरों को यही कामना करते हैं कि सभी सुख संपत्ति से भरे हुए रहें।
0: वहीं धर्मनगरी चित्रकूट में झारखंडी देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त माँ के दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति को झारखंडी माता के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से है।
5: जगह की महिमा के विषय में मतलब शब्द नहीं, व्याख्यान नहीं कर सकते आप। यहाँ जो एक बार आता है सच्चे मन से, पूरी मन क्रम वचन से, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता का अद्भुत स्थान है।
0: मध्य प्रदेश के मैहर में माँ शारदा शक्तिपीठ पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। यहाँ सुबह की पहली किरण के साथ ही माँ शारदा के दर्शन और मंगला आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। मंदिर परिसर माँ के जयकारों से गूंज उठा। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कठिन चढ़ाई और लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। कटिहार का वैष्णवी देवी मंदिर भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति से सराबोर है। मंदिर की स्थापना को 100 साल पूरे हो चुके हैं, लिहाजा भक्तों ने मां वैष्णवी देवी को इस बार 251 किलो के विशाल लड्डू का भोग लगाया है और काफी उमंग के साथ माता के मंदिर का 100वां स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है।
6: यहाँ पे लोगों की बहुत सारी मनोकामनाएं जो है कि वो पूर्ण होती है। लोग अपने आस्था से यहाँ लोग आते हैं, माता का पूजा करते हैं, माता से अपनी मन्नत को मांगते हैं और वो उनका पूरा होता है।
7: दूर दराज बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, बहुत दूर दूर देशों से और इस क्षेत्र के पूरे परिक्षेत्र से श्रद्धालु यहाँ आके अपने मनवांछित फल पाते हैं और इन्हें मनोकामना पूर्ण भी होती है।
0: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जयपुर राजबाड़ी की दुर्गा पूजा भी अपनी अनोखी परंपरा, इतिहास और स्वर्ण प्रतिमा की वजह से खास पहचान रखती है। यहाँ माँ दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा साल के लगभग 360 दिन बैंक लॉकर में सुरक्षित रहती है। दुर्गा पूजा के अवसर पर षष्ठी के दिन कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच माँ की स्वर्ण प्रतिमा को बैंक लॉकर से निकालकर जयपुर राजबाड़ी लाया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद दशमी के दिन पुलिस सुरक्षा के बीच स्वर्ण प्रतिमा को दोबारा बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है। जैसलमेर से विमल भाटिया, प्रयागराज से आनंद राज, चित्रकूट से अखिलेश कुमार सोनकर, सतना से वेंकटेश द्विवेदी और कटिहार से विपुल राहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: तो देखिए, देश के कोने कोने में नवरात्रि की झलक आपको नजर आ रही है, तो इसी बीच आपको कोलकाता लिए चलते हैं जहां पर दुर्गा पूजा पंडाल सजने लगे हैं। देखिए, जब नवरात्रि का वक्त आता है या दुर्गा पूजा का नाम आता है तो कोलकाता सबसे पहले याद आता है क्योंकि भव्य पंडाल लगे होते हैं।
9: नवजोत से पूछे ये जाते नहीं, नहीं, नहीं, कोलकाता
10: मैं मिस कर रही हूँ, दो साल से तो नहीं जा रहे, लेकिन वो रंग आपको सीआर पार्क में नजर आ जाएगा। मैं एक्चुअली अभी किसी से बात कर रही थी, इस बार सीआर पार्क में ना अलग अलग पंडाल के अलग अलग थीम है। हम दिल्ली वालों को तो कम से कम कह ही सकते हैं, और सीआर पार्क में भी पंडाल हॉपिंग बहुत ज्यादा रहती है। और मैं आपको बताती हूँ एक और बहुत अट्रैक्शन होता है, एक दिन में 3 साड़ियाँ, अरे एकदम कोरी साड़ियां पहनती है लेडीज, तो आप लगा लीजिए कि षष्ठी से लेकर फिर उसके बाद सिंदूर खेला तक तो कितनी हो गई।
8: तो देखिए, 3 बार साड़ी बदलने होगी, तैयार हैं आप?
9: बिल्कुल, क्योंकि बंगाल में खास करके मैं आपको बताऊं, जो पूजा शुरू होती है ना वो षष्ठी से ही शुरू होती है, क्योंकि अगर पंडालों में, कई पंडालों में आप यहाँ पे दुर्गा पंडालों में देखेंगे जो मुख्य तौर पर बंगाली ही करते हैं, वो तो षष्ठी से ही माता को बिठाया जाता है और उनका मुख जो ओपन किया जाता है चेहरा, क्योंकि उससे पहले कपड़ा लगा होता है, वो हटता है षष्ठी से। और इसलिए कहते हैं कि षष्ठी वाले दिन और अष्टमी वाले दिन जिन्होंने दर्शन नहीं किए माता के, ये 2 दिन बहुत विशेष होते हैं, आपको करने चाहिए। तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी मेन पूजा उनकी यही रहती है, तो वो आप समझ लीजिए पूरे साल की शॉपिंग वो करके रखते हैं इसी समय के लिए, तभी वो दिन में 3-3 साड़ियां बदलती हैं और घूमती हैं।
10: एक चीज और इसमें ऐड ऑन करती हूँ, अब आपने पूजा का जिक्र किया, केवल दुर्गा पूजा पूजा तक सीमित नहीं है, ये एक एक सोशल फेस्टिवल है, एक कल्चरल फेस्टिवल है,
9: गीत संगीत बहुत होता है,
10: पूजा का मेरे
9: होता है धुनुची
8: तो बहुत ही, मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है जब वो दुर्गा पूजा में होता है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होता है।
10: एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, वो होता है फूड फेस्टिवल, आनंदो मेला, जो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना चाहिए।
8: तो बिल्कुल देखिए, लगातार कोलकाता में भी पंडाल सजने लगे हैं, और इसी बीच ऐतिहासिक संतोष मित्रा स्क्वायर में इस बार भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का एक ऐसा अनूठा रंग देखने को मिल रहा है जिसकी गूंज पूरे देश में है।
10: बिल्कुल, तो दुर्गा पूजा का जो भव्य उत्सव है बस वो शुरू ही होने वाला है, जैसा हमने आपको बताया कि षष्ठी से शुरुआत होगी, तो इस शुभ मौके पर वंदे मातरम की थीम पर बने लाल किले के भव्य प्रांगण में किस तरह से हो रही है माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना, आपको दिखाते हैं।
11: भारत माता की जयकार और वंदे मातरम की गूंज, लाल किला के शानदार पृष्ठभूमि, अखंड भारत और देश की अखंडता की भावना को उजागर करता तिरंगे में रंगा मातृभूमि का नक्शा, ४९४७ में देश के विभाजन के समय लाखों विस्थापित लोगों के दर्दनाक पलायन और उनके सफर की ऐतिहासिक यादों को समेटे हुए विंटेज सिस्टम इंजन और मूविंग ट्रेन की रेप्लिका, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारियों और नेताओं की प्रतिमाएं, कोलकाता की ऐतिहासिक पहचान हावड़ा ब्रिज की प्रतिकृति, ये तस्वीरें कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल की है। इस साल इस पंडाल को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की थीम पर तैयार किया गया है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन जोरदार आतिशबाजी के बीच इस पंडाल का धूमधाम से उद्घाटन किया गया।
12: खुशी का माहौल है और हमारी सनातनी संस्कृति को मानते हुए दुर्गा पूजा इस बार होगा। आज यहाँ वंदे मातरम का थीम है, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, वंदे मातरम के ऊपर इस लोग यहाँ आयोजन किया है। ये कलकत्ता की सबसे बड़ा पूजा है।
11: इस पंडाल में 1947 में हुए भारत के विभाजन के ऐतिहासिक दर, लोगों के विस्थापन, पलायन और देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की कहानियों को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसका विशेष लाइट एंड साउंड शो है। यहाँ पर लेजर लाइट के माध्यम से भारत की आजादी की लड़ाई के सफर को दर्शाया गया है, जिसके केंद्र में है वंदे मातरम की प्रेरणा।
13: वंदे मातरम, ये हमारा सारा देश का नारा है। एक टाइम जब आंदोलन हुआ था, वंदे मातरम नारा सारा देश को हिला के रख दिया था इंग्लैंड को भगाने में। आज वही चीज कुछ भारतीय लोग भूल गया था, उसी को दोबारा लाने के, लोगों को याद दिलाने के लिए इस साल वंदे मातरम को ये थीम तैयार किया गया है। और इस साल सनातनी मूर्ति पूजा हो रहा है और वंदे मातरम ये यंग जेनरेशन को नारा दे रहा है कि देश के लिए जो लोग बलिदान दिया है उन लोग सब भूल गया था, उसको जागृत करने के लिए एक थीम बना।
11: अवसर माँ दुर्गा की आराधना का है तो पंडाल में माता की प्रतिमा को ट्रेडिशनल लुक में भी पेश किया गया है, ताकि देशभक्ति की थीम के साथ माता की भक्ति की मूल भावना बरकरार रहे। पंडाल का भारी ढांचा दिल्ली के लाल किले जैसा है, लेकिन इसके भीतर प्रवेश करते ही अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा की प्रतिमा के दिव्य दर्शन होते हैं। कोलकाता के कुमार तुली के मशहूर कलाकारों ने तकरीबन 4 महीने लगातार कड़ी मेहनत के बाद इस पूजा पंडाल और प्रतिमा के निर्माण का काम पूरा किया। जितना भव्य पंडाल है उसमें स्थापित की गई माँ की प्रतिमा भी अपने आप में उतनी ही खास है।
13: 15 फुट ऊंची मूर्ति है और पीछे का बैकग्राउंड लेके 21 फीट है। इस मूर्ति का खास है ये देवी मिन्मयी रूप है, जो साबे की ढंग का पूजा है, जो सनातन धर्म इसको मानते हैं, और देवी का रूप जो है वो देवी का ही है।
11: कोलकाता का संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल पूरे पश्चिम बंगाल और भारत में सबसे प्रसिद्ध और भव्य पूजा पंडालों में से एक है। ये पंडाल हर साल की तरह इस बार भी अपनी अनूठी और रचनात्मक थीम, शानदार लाइट शो और भव्य प्रतिमा के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
14: थीम देखिए, खुद बात करेंगे, ये भारत माता की फ्लैग है, हम लोग इंडिया का फ्लैग है, और हम लोग इससे अच्छा क्या माहौल हो सकता है। हम लोग का जो ऐतिह्य है, जो हम लोग पहले छोटे से जो पढ़ के बड़े हुए हैं, वो आंखों हम लोग देख रहे हैं।
11: दुर्गा पूजा के दिव्य उत्सव का शुभारंभ हो चुका है तो कोलकाता वासियों में उत्साह देखते ही बनता है। इसकी एक झलक तो इस पूजा पंडाल में देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में यहाँ के एक और भी पंडाल में पूजा की शानदार रौनक आपको GNT पर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: देखिए, उत्सव एक है लेकिन दो अलग अलग स्टेट्स में बिल्कुल अलग अलग रंग है। दुर्गा पूजा के अभी जो आपने तस्वीरें देखी, नवजोत बताएंगे कि वहां पे जब आप पश्चिम बंगाल जाते हैं, खास करके कोलकाता जाती हैं, तो वहां पे सिर्फ पंडाल ही पंडाल और बहुत ही भव्य पंडाल विद अ मैसेज।
10: बिल्कुल, बहुत भव्य पंडाल होते हैं और उसकी एक झलक आजकल दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। अभी मैं नोएडा में भी एक तस्वीर देख रही थी जहां पर इको फ्रेंडली पंडाल और वहां पर भी एक मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि एक्चुअली जो कोलकाता का रंग होता है वो शायद आपको पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग थीम के, और उसके बाद भी हर पंडाल मैसेज तो होता ही है, लेकिन पंडालों में आपस में भी कंपटीशन रहता है कि कौन सा पंडाल सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट सरकार खुद इसमें बेस्ट पंडाल चुनती है, फिर उनको प्राइजेस दिए जाते हैं,
9: प्राइज मनी। तो ये तो आपने कोलकाता की बात सुनी, दुर्गा पूजा की बात सुनी, तो है वही दुर्गा पूजा, शक्ति की वही उपासना। लेकिन अब हम बात करें अगर नवरात्र, यानी ये 9 दिन नवरात्र दूसरे स्टेट में यानी गुजरात में आके वो डांडिया गरबा रास हो जाता है। और हालांकि यहाँ भी आप दीपिका, अब तो बहुत दिल्ली में भी बड़े पैमाने पे यहाँ पर हो रहा है, आपकी प्लानिंग हो गई?
15: बिल्कुल, मैं हर बार तैयारी करती हूँ। मेरा बस एक ही मोटिव होता है कि मुझे जाना है और गरबा खेलना है, क्योंकि वो जो ऑथेंटिक गरबा होता है ना, वो एक तो गुजरात में मिलता है, कोलकाता में आपको एक स्पिरिचुअल वाइब मिलेगी जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, वो भव्य पंडाल की आपको फीलिंग मिलती है। लेकिन गुजरात में होता है कि आपने जमकर डांस करना है, तो दिल्ली में नोएडा में थोड़ा बहुत हमें भी यहाँ मिल जाता है, तो हम उसी में सैटिस्फाइड हो जाते हैं।
10: इस बार तो गरबा के लिए बहुत जगह पर, एक्चुअली बहुत सारी जगह है जहां पर 4 या 5 बजे से शुरू हो रहा है। दिल्ली की सिक्योरिटी को देखते हैं मुझे लग रहा है टाइम बिल्कुल सही है। मैंने बहुत जगह देखा है कि 10 बजे वो ओवर हो जाएगा
9: बिल्कुल, जबकि अगर गुजरात की बात करें तो वहां 8 बजे से कॉल टाइम होता है, लोग आना शुरू करते हैं 8 बजे के बाद और 10 बजे के बाद से वहां शुरुआत होती है गरबा की। तो इस बीच आपको बता दें कि गुजरात में इन दिनों नवरात्र के महापर्व की धूम है और राज्य का कोना कोना गरबा उत्सव के रंग में सराबोर है। आस्था, शक्ति की उपासना और लोक संस्कृति का ये अनूठा संगम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
15: बिल्कुल, देखिए हजारों थिरकते कदम मां अंबा की भक्ति से सजे गीतों पर झूम उठते हैं। वडोदरा से पोरबंदर तक गुजरात का ये उत्सव केवल एक नृत्य नहीं है बल्कि सामूहिक ऊर्जा, उमंग और जीवंत सांस्कृतिक धरोहर का सबसे भव्य उत्सव बन चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं गुजरात में गरबे के रंग।

0: गरबे की धुन पर झूम रहे हजारों लोग। हर हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट और गरबे की ताल पर थिरक रहे पांव। ये तस्वीरें बड़ोदरा की है। नवरात्र के अवसर पर यहाँ लक्ष्मी विलास पैलेस के प्रांगण में गरबे का यह आयोजन खास हो गया है, क्योंकि आम लोगों के साथ साथ कुछ स्पेशल मेहमान भी इसमें बड़े उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक गुजराती रंग में रंगे इन मेहमानों के लिए यहाँ पर गरबे में भागीदारी यादगार बन गई।
1: Wonderful. Tens of thousands of people. We got the aarti prepared behind us. Garbo in the center. First night of Navratri here in Vadodara, Gujarat. The ultimate place in the world to experience this. Lakshmi Villas with the family. Amazing.
0: गरबा खेल रहे ये मेहमान हैं यहाँ आए 25 देशों के कलाकार और कला प्रेमी, जो यहाँ सांस्कृतिक समारोह एकम 2026 में भाग लेने पहुँचे थे। कार्यक्रम के आखिरी दिन इन्हें गरबे के इस पारंपरिक उत्सव में शरीक होने का शानदार मौका मिला।
2: बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने देशों से डेलीगेट्स आए हैं और हमारा गरबा में पार्टी किया है। उन्होंने हमारे बड़ौदा की कल्चर की एक झलक साथ ले जा रहे हैं, यादें साथ ले जा रहे हैं, तो माँ की कृपा है कि सब यहाँ आ सके जी। वो बहुत खुश हैं और उन्होंने कभी इतने सारे लोगों को एक साथ एक जगह पे इतने प्रेम से नाचते और माँ की श्रद्धा में नहीं देखा है, तो एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा है उनके।
0: नवरात्र का महापर्व चल रहा है तो माता की आराधना के लिए शहर शहर गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में गुजरात के पोरबंदर में 102 साल पुरानी भद्रकाली माताजी गरबी महोत्सव में भी लोग बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।
3: हम गरबा महसूस करते हैं कि हम ये गरबी पुरानी परंपरा से चली आ रही है, जिसमें सिर्फ पुरुष ही माता सर पर टोपी धारण करके खेल सकते हैं और जो गरबा लिखे गए हैं वो ही गरबा हम यह गाते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं उस तरह से सभी पुरुषों जो खेल रहे होते हैं वो हमारा गरबा माँ का गरबा वो सामने गाते हैं। और ये इस बात का हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारी ये छठी बेटी यहाँ खेल रही है।
0: छोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग तक तमाम उम्र और तबकों के लोग इस उत्सव में शामिल होकर त्योहार मनाते हैं। खास बात यह है कि इस उत्सव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है।
4: यहाँ पे जो गरबी हम सब पुरुषों ही यहाँ से सब मेल पर्सन ही हम खेलते हैं और जो साउंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ नो साउंड पे, और यहाँ पे हारमोनियम रहता है, तबला रहता है और मंजीरा रहता है, तो उसी पे ही हम खेलते हैं। और यहाँ पे खेलने के लिए भी एक शिस्तबद्ध है कि हम लोग जो एक पुराने हमारे जो भी हमारे जितने वडिल लोग हैं उसने सब जो सिखाया है वही हमें खेलना होता है, वही स्टेप में खेलना है।
0: गरबे का ये उत्सव केवल अंबे माँ की उपासना की धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए अपनी परंपरा और जड़ों से जुड़े रहने का भी माध्यम है। यही वजह है कि आधुनिक बदलावों के बावजूद समाज में ये सांस्कृतिक धरोहर अभी तक लगभग उसी रूप से बची हुई है जिस तरह सैकड़ों साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो माँ का दरबार सज चुका है, गरबा डांडिया की रातें सज गई हैं और बह रही है भक्ति की रसधार। गरबा जो सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है बल्कि अंबे माँ की आराधना का सबसे खूबसूरत माध्यम है।
6: बिल्कुल, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं गरबा के लिए मशहूर गुजरात राज्य के जामनगर और राजकोट में हाथों में डांडिया दिल में माँ की मूर्त लिए कैसे लोग यहाँ पर गरबा के उत्साह में मगन है।
7: के साथ शक्ति की उपासना की ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। नवरात्रि में पूरे गुजरात में गरबा का आयोजन होता है, लेकिन जामनगर के इस गरबा की अलग ही पहचान है। यहाँ के आशापुरी गरबी मंडल में पारंपरिक गरबा के साथ तलवार रास का आयोजन होता है। पिछले 45 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में युवतियां तलवार रास के जरिए नारी शक्ति का संदेश देती हैं। इस रास में डांडिया की जगह तलवारों का इस्तेमाल होता है। तलवार रास के दौरान गरबी मंडल की सदस्यों ने महाकाली तांडव समेत कई पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुति की। इन युवतियों का बेहतरीन तालमेल साहस शक्ति और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल पेश कर रहा था। गरबा के इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी जुटे थे। गुजरात के अलग अलग इलाकों में गरबा खेलने का अंदाज भले ही जुदा हो, लेकिन इस पर्व का उत्साह हर जगह एक सा है। नवरात्रि के दौरान तो गरबा की इस रौनक को देखने के लिए दूर दूर से लोग गुजरात आते हैं। राजकोट में भी गरबा डांडिया के विशाल आयोजन हो रहे हैं। इन गरबा पंडालों में हजारों की संख्या में युवतियां पहुंचती हैं। ऐसे में पंडालों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए राजकोट पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की एक खास टीम भी बनाई है। इस शी टीम में महिलाएं पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि गरबा कलाकारों की शक्ल में ही रहेंगी। ये पुलिस कर्मी चनिया चोली में अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और गरबा आयोजनों में पहुंचने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी।
8: हमारी शी टीम जो है महिला पुलिस स्टेशन में तैनात है और बाकी हर एक पुलिस स्टेशन में शी टीम के महिलाएं आइडेंटिफाइड है। तो वो महिलाएं पारंपरिक गरबा की गणवेश पहन के अलग अलग गरबाओं में जाएंगी और वहां पे नजर रखेंगे कि कोई रोमियो या फिर आवारा तत्व जो है छेड़खानी का प्रयास कर रहा हो या फिर कोई भी बहन बेटी को परेशान कर रहा हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी।
7: गुजरात में नवरात्रि का पर्व साल के सबसे बड़े त्योहारों में शुमार है। नवरात्रि के दौरान गरबा की रौनक में शामिल होने के लिए विदेशों में रहने वाले लोग भी गुजरात में अपने घर वापस आते हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश यही है कि गरबा नाइट्स में आने वाले सभी लोग इस त्योहार का दिल खोलकर आनंद ले सकें और हर साल की तरह इस बार भी गरबा नाइट्स का आयोजन यादगार बने। जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो चलिए, हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेंगलुरु में दशहरा उत्सव के शुभारंभ की तस्वीरें।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में, आगे बढ़े।

0: सरहद पर भी विधिवत हो रही शक्ति आराधना। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ। बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबे की धूम। जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। बिहार से के कटिहार से आई अनोखी भक्ति की तस्वीर। श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल के लड्डू का भोग। दर्शन पूजन को भक्तों की लंबी कतारें। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड। अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई।
1: चलिए और अब बात कर लेते हैं रामलीला की, क्योंकि उत्सव में हमने आपको पंडाल दुर्गा पूजा के दिखाए, उसके बाद गरबा डांडिया गुजरात में कैसे हो रहा है वो भी बताया। लेकिन अब आपको बता दें कि छोटे छोटे शहरों में भी अब रामलीला का मंचन हो रहा है। और अच्छी बात ये कि जन जी जो लेट वाले हैं और जो अल्फा हैं उनके लिए बड़ा अच्छा, जो नहीं समझते हैं या जिन्होंने बचपन से नहीं देखा रामायण और ये, वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोसाइटीज में। ये सब हो रहा है रामलीला, क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल हो रहा है। और मैंने भी देखा है कि उसमें ना जो सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई उस रामलीला में किसका कैरेक्टर क्या था, उन्हें डायलॉग्स याद करने हैं, तो जाहिर सी बात है अपने कल्चर से करीब आ रहे हैं, वो तो जानना जरूरी है। तो बहुत अच्छी चीज है कि ये जो कुछ दिन है 10-11 दिन है उसमें ये सारी फेस्टिव चीजें चलती रहे।
0: एक और चीज, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जैसे आजकल ना बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स या कार्टून्स बहुत ज्यादा इस पे आ गए, जैसे हमने हनुमान पे फिल्म देखी थी, हनुमान अंश देखी, ऐसी अलग अलग फिल्में हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं इस दौरान खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो इस कैरेक्टर में खुद को ढाल भी लेते हैं।
1: बिल्कुल, और आपस में लड़ाई भी हो जाती है कि मैं राम बनूंगा, मैं लक्ष्मण बनूंगा, और कोई सुर्पनखा नहीं बनना चाहता,
2: रावण भी नहीं बनना चाहता,
1: कुछ लोग
0: अच्छा हनुमान सब बनना चाहते
1: हैं, हनुमान सब सारे बच्चे हनुमान बनना चाहते हैं। तो आपको बता दें छोटे शहरों में रामलीला जो है कम से कम उसकी भी धूम है। ऐसे में प्रयागराज और अयोध्या में रामलीला और धार्मिक आयोजनों ने रफ्तार पकड़ ली है।
2: तो वहीं देखिए कोटा हो या जम्मू, जहां दशहरा की रौनक के बीच आस्था संस्कृति और आपसी भाईचारे की भी अनूठी तस्वीरें नजर आ रही है। रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। बुराई के प्रतीक इन पुतलों का विजयदशमी पर दहन और सत्य अच्छाई और मर्यादा को बनाए रखने के संदेश के तौर पर होगा।
3: शहर शहर शोभा यात्राएं, बाजारों में सजते रावण और मंच पर जीवंत होती प्रभु श्री राम की गाथा। दशहरे का त्योहार करीब आते ही देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां तेज हो गई हैं। कहीं सदियों पुरानी परंपराएं निभाई जा रही हैं, तो कहीं पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने की तैयारी है। प्रयागराज से अयोध्या, कोटा से जम्मू तक दशहरे की रौनक के बीच आस्था संस्कृति और आपसी भाईचारे की अनूठी तस्वीर दिखाई दे रही है। प्रयागराज में दशहरे की आहट के साथ धार्मिक आयोजनों ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रयागराज में देर रात शहर की ऐतिहासिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा निकाली गई। कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा की परंपरा प्रयागराज में बरसों से चली आ रही है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इस विशाल झांकी में शिव पार्वती, बजरंग बली, भगवान विष्णु और मां काली की झांकी भी शामिल है।
4: घोड़ा आम दशहरा आम, माने घोड़ा का जुलूस घुट गया। अब पूरे जनपद के अंदर राम की लीला, राम की कथा, राम की चौकियां ये आपकी निकलेंगी। कहीं राम लीला होगी, कहीं भोर की चौकियां उठेंगी, कहीं भरत मिलाप होगा, कहीं पर राम सीता का जो है आपकी जो है दल निकलेगा। तो ये पूरे जनपद में दशहरे के आरंभ का प्रतीक है, ये बड़ा प्राचीन काल से।
3: प्रयागराज में जहां शोभा यात्राओं के जरिए परंपरा की झलक दिख रही है, वहीं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 151वें वर्ष में प्रवेश कर रही रामलीला अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। अयोध्या में मंच पर राम कथा सज रही है, तो राजस्थान के कोटा में रावण के पुतलों को अंतिम रूप

0: दिया जा रहा है। सड़कों और बाजारों में अलग अलग आकार के पुतले बिक्री के लिए तैयार हैं। रावण के ये पुतले स्थानीय कारीगरों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन गए हैं।
1: अरे हम तो 12-13 साल से देख रहे हैं।
2: 12-13 साल से देख रही
3: हैं।
2: बहुत पुरानी रामलीला। ये पात्र बदलते रहते हैं, जो नए नए रोल होते हैं, और कैसी रामलीला चल रही है?
4: बदलती रहती है।
0: वहीं जम्मू के गीता भवन में रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इस काम के लिए मेरठ से आने वाले कारीगरों की टीम करीब एक महीने पहले पहुंच जाती है। पिछले लगभग 40 वर्षों से ये परिवार दशहरा आयोजन के लिए पुतले बनाता आ रहा है। इस बार भी 50 से अधिक लोग बांस के ढांचे तैयार करने, कागज लगाने और सजावट करने में जुटे हैं। हर कारीगर की अलग जिम्मेदारी है और सबका लक्ष्य तय समय पर पुतलों को तैयार करना है।
5: भी जाते हैं, अब लेह में भी जाता है, अब रजौरी में भी जाता है, पुंछ में भी जाता है, आरएसपुरा में भी जाता है, और अपना बड़ी ब्राह्मणा में भी जाता है, पलौड़ा में भी जाता है, और उधमपुर में, रियासी में, डोडा में, किश्तवाड़ में भी जाता था पहले, अब की बार भद्रवाह में है। किश्तवाड़ में तो नहीं गया, अब की बार फिर भद्रवाह में जा रहा है। एक दो साल का गैप पड़ जाता है, जैसे किश्तवाड़ में 2 साल बना है तो वहाँ पे गैप पड़ा है, फिर भद्रवाह में 2 साल का गैप पड़ा है, फिर अब की बार जा रहा है। तो ऐसे ही ये श्रीनगर भी जाता है अपना, अभी बात चल रही है उनसे, लेकिन पिछली बार गया था।
0: प्रयागराज की शोभा यात्राओं से लेकर अयोध्या की ऐतिहासिक रामलीला तक, कोटा के पुतला बाजार से जम्मू के कारीगरों की साझा मेहनत तक, दशहरे की तैयारियां अलग अलग रूपों में नजर आ रही हैं। कहीं विरासत को सहेजा जा रहा है तो कहीं हुनर अगली पीढ़ी तक पहुँच रहा है। और इन सभी आयोजनों का संदेश एक है, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिरकार जीत सत्य, अच्छाई और मर्यादा की ही होती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चलिए अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक के मैंगलुरु में दशहरा उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। मैंगलुरु दशहरा को कर्नाटक में आम आदमी का उत्सव भी कहा जाता है और ये मैसूर दशहरा की तरह ही अपनी भव्यता, अद्भुत रोशनी और अनूठी परंपराओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से कोडरोली श्री गोकर्णनाथ क्षेत्र और मंगला देवी मंदिर में आयोजित होने वाले इस 10 दिन के उत्सव में धार्मिक अनुष्ठान और लोक कला के शानदार रंग देखने को मिलते हैं।
7: बिल्कुल, उत्सव के पहले दिन कुडरोली मंदिर में ज्ञान की देवी मां शारदा की विशाल और सुंदर प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही माता के 9 रूपों यानी कि नवदुर्गा और भगवान गणपति की मूर्तियां भी स्थापित की जाती है। हर दिन देवी मां का अलग अलग रूपों में भव्य श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा मैंगलुरु दशहरे की सबसे अनूठी और ऊर्जावान पहचान यहाँ का बाघ नृत्य है। स्थानीय युवा अपने पूरे शरीर पर बाघ जैसी पेंटिंग करवाते हैं और ढोल नगाड़ों की तेज थाप पर सड़कों पर पारंपरिक नृत्य करते हैं। दूर दूर से सैलानी इस उत्सव के नजारे को देखने के लिए मैंगलुरु आते हैं।
6: फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए मनाली में बर्फ के बीच सैलानियों का रेस्क्यू।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: तो देखिए, पहाड़ों में बदले मौसम का असर अब मैदानी इलाकों में भी महसूस होने लगा है। सुबह शाम की ठंड बता रही है कि सर्दियां धीरे धीरे करीब आ रही है, लेकिन पहाड़ों पर तो कुदरत ने अभी से सफेद चादर बिछाना शुरू कर दिया है।
3: बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश के मनाली के श्रृंखला दर्रे पर हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ से ढक दिया है। खूबसूरत नजारे के बीच मौसम ने सफर को और ज्यादा खुशगवार बना दिए। कई गाड़ियां बाइक सवार रास्ते में हालांकि फंस जरूर गए थे, लेकिन इन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है।

0: अभी अक्टूबर का महीना ही है, लेकिन पहाड़ों ने सर्दी की सफेद चादर ओढ़ ली है। ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। वक्त से पहले बर्फबारी ने जहां हर किसी को हैरान किया, वहीं बर्फ से ढकी वादियों का नजारा लोगों को रोमांचित भी कर रहा है। श्रृंखला दर्रे पर अचानक हुई बर्फबारी ने सफर मुश्किल कर दिया। बर्फ की मोटी परत और ठंडी हवाओं के बीच कई गाड़ियों और बाइक सवार रास्ते में फंस गए।
1: बाइक आगे आई नहीं रहती, सब ब्लैक सा रहती, गिर रही थी किनारे पार, ब्लैक गाइस और इतनी इतनी स्नो आ रही है वहाँ पे, तो किनारे पार भी नहीं कर पा रहे थे।
0: सड़क पर जमी बर्फ ने सफर को और मुश्किल बना दिया। गाड़ियों के पहिए थमने लगे तो फिसलन के चलते बाइक सवारों के लिए भी संभल कर चलना चुनौती बन गया।
1: चौक स्टॉप से आ रहे थे सारे बाइकर्स थे, वहाँ फंस गए, सब गिरे एक एक करके बाइक से, और फिर ये जनाब आए हमारे सर लोग आए, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया वहाँ से।
0: बर्फबारी की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए बाइकर्स को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया।
1: जनाब ने हेल्प की दोनों ने और फिर हम लोग इस गाड़ी से रेस्क्यू करके आए यहाँ पर। अब जाएंगे वापस ऊपर टॉप पे जाएंगे, वहाँ से बाइक लेके आएंगे भैया के साथ में।
0: मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक हिमाचल में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अक्टूबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना है। अक्टूबर में ही बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। सर्दियों ने इस बार वक्त से पहले दस्तक देकर मौसम को और दिलकश बना दिया है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: भले ही दुनिया सरहदों में बटी है, लेकिन भगवान और इंसान का भावनात्मक रिश्ता हर देश में एक सा ही होता है। दरअसल जिस तरह भारत में हर साल पितृपक्ष की परंपरा निभाई जाती है, उसी तरह कंबोडिया में फेस्टिवल ऑफ द डेड का रीति रिवाज है, जो कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने और उनकी शांति की प्रार्थना के लिए आयोजित होता है।
7: कंबोडिया की सड़कों पर दौड़ते ये सजी हुए भैंसे और इनकी ये अनोखी रेस देखने उमड़ा ये जन सैलाब। नजारा है यहाँ के पारंपरिक आयोजन फेस्टिवल ऑफ द डेड का, जो कंबोडिया की बौद्ध संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है। 2 हफ्तों तक चलने वाले इस आयोजन के आखिरी दिन भैंस और घोड़ों की रेस कराई जाती है, जिसे देखने और दौड़ में भाग लेने वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर नजर आए। इस पवित्र समय के दौरान पूरे कंबोडिया में लोग भिक्षुओं को खाना, पेय पदार्थ और पैसे देते हैं। दरअसल कंबोडियाई लोगों का मानना है कि इस पवित्र समय के दौरान नरक के द्वार खुल जाते हैं और उनके पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर लौटती हैं। इसलिए जीवित वंशज अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें भोजन अर्पित करते हैं। उनका मानना था कि ये चीजें उनके मृत पूर्वजों तक पहुंचेगी और उन्हें आशीर्वाद और सौभाग्य दिलाएंगी। इस आयोजन का समापन भैंस और घोड़ों की इस अनूठी रेस से होता है। इस साल दौड़ में कुल 28 घोड़े और 26 भैंसों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो पूरे देश में शारदीय नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है और देश के हर कोने से उत्सव की सारी तस्वीरें हम आप तक लाते हैं। तो जीएनटी पर शक्ति उत्सव लगातार जारी रहेगा और चाय पर कल आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर।

नवरात्रि के मौके पर इंदौर के विजयासन माता मंदिर में उमड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना। मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन।

सरहद पर भी विधिवत हो रही है साधना। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ। बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम। जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति।

बिहार से कटिहार से आई अनोखी भक्ति की तस्वीरें। श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया ढाई क्विंटल के लड्डुओं का भोग। दर्शन पूजन को भी भक्तों की कतार।

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं GNTS स्पेशल। GNTS स्पेशल में आज हम बात करने जा रहे हैं शक्ति उत्सव की। संयोग कुछ ऐसा बना है कि देश में इस समय जल थल और नभ हर ओर शक्ति उत्सव का आभा देखने को मिल रही है। नवरात्र तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ दो और मोर्चों पर देश की शक्ति का उत्सव जारी है और इस उत्सव को मना रहे हैं हमारे देश के जाबाज। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, तीन तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं। देखिए, एक तस्वीर है शक्ति के उत्सव की जो राजस्थान में जोधपुर के आसमान पर हुआ। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति 2026 की यह तस्वीरें हैं। पिछले दो हफ्तों से जोधपुर का आसमान दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट के साथ गूंज रहा है। भारत का तेजस भी इन वायु योद्धाओं में शामिल था। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के वायु सैनिकों के बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिला। ये कोशिशें भविष्य में आने वाले चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल है। इन्हीं तस्वीरों में शक्ति उत्सव की एक तस्वीर सात समुद्र पार रूस से भी निकलकर आई, जहां पर भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच सागर की लहरों पर इंदिरा एक्सरसाइज का आगाज होने वाला है और भारत का INS सहयात्री इसके लिए रूस तक पहुंच चुका है। तो आसमान और समुद्र दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो भारत के शक्ति उत्सव का ये गवाह बन रहे हैं। और इसी बीच देश की धरा पर नवरात्र का उत्सव जबरदस्त तरीके से जारी है। युद्ध में भारत की रणवीरों की रक्षा करने वाली मां तनोट भवानी और विजय का वरदान देने वाली मां बगलामुखी के थाम में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हर तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले आसमान में मनाए गए शक्ति उत्सव के साथ और दिखाते हैं तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की जबरदस्त तस्वीरें।

0: शक्ति सर्वत्र वर्तते। यानी शक्ति सर्वत्र मौजूद है। देश की जमीन पर शक्ति महोत्सव के रंग बिखरे हैं, तो भारत का आसमान भी शक्ति उत्सव के रंगों से अछूता नहीं। ये शक्ति है भारत के वायु वीरों की, वो शक्ति जिसने दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर ला खड़ा किया। जोधपुर के आसमान में ये तरंग फॉर्मेशन की तस्वीर है, जिसे तरंग शक्ति 2026 के दौरान जोधपुर के आसमान में आकार दिया गया। तरंग फॉर्मेशन में तेजस, Su-30 MKI, रफाल और F-35 जैसे दुनिया के महाशक्तिशाली और सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स भारत के आकाश में साथ उड़ान भरते दिखे।
1: हम इस वक्त मौजूद हैं जोधपुर में, जहां भारतीय वायुसेना की तरंग शक्ति एक्सरसाइज पूरी हो रही है। पूरी दुनिया की 40 वायुसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया और सबसे खास रही अमेरिका की वायुसेना की पार्टिसिपेशन, जिसमें F-35 जो अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, वो पहली बार भारत में आकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI, रफाल और तेजस ने अपना दमखम दिखाया, तो वहीं UAE के F-16 भी इसका हिस्सा रहे। खास बात यह है कि ये पूरी एक्सरसाइज जोधपुर में हो रही है और 26 सितंबर से लगातार हर दिन खास फॉर्मेशंस, खास इंटरैक्शंस, इंटर ऑपरेबिलिटी ड्रिल्स हो रही हैं, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नज़दीक। तो खास तौर पर भारत से सीख रही हैं जितनी भी वायुसेनाएं हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरह से ऑपरेट किया, कैसे प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए, कैसे पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों को ख़त्म किया और बिना किसी कोलैटरल डैमेज के, बिना किसी सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह की जो तकनीक और स्किल है वो भारत की बेमिसाल है, और तरंग शक्ति में भी जो तमाम वायुसेनाएँ आई हैं वो सब कुछ भारत को देख कर काफ़ी प्रभावित रहे हैं।
0: हिंदुस्तान की सरजमी पर जब दुनिया भर के ताकतवर हवाई योद्धा एक साथ जुटे, तो पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं पर टिक गई। जोधपुर एयरबेस पर ये रक्षा रणनीति, आसमानी पराक्रम और वैश्विक दोस्ती की एक शानदार तस्वीर है। आपको बता दें कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य था इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी अलग अलग देशों की वायुसेनाएं संकट के समय एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकती हैं। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट पर खास फोकस रहा, यानी दुश्मन जब सामने दिखाई न दे तब भी तकनीक और रडार के दम पर उसे आसमान में ही नेस्तनाबूद करने की तैयारी। इस युद्धाभ्यास में आसमान में सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं भिड़े, बल्कि असली परीक्षा थी दिमाग की। इसी परीक्षा को पार करने के लिए इस युद्धाभ्यास में रेड फोर्स और ब्लू फोर्स नाम की दो टीमें बनाई गई, एक टीम दुश्मन बनी तो दूसरी रक्षक। लेकिन इस पूरे अभ्यास का असली शो स्टॉपर रहा आत्मनिर्भर भारत का गौरव तेजस। विदेशी पायलट्स ने जब तेजस की कलाबाजियां और इसकी मारक क्षमता देखी तो वे भी भारतीय इंजीनियर्स के कायल हो गए।
1: अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से तेजस अब लैंड कर रहा है। तेजस जिसने तमाम अलग अलग मैन्यूवर्स यहां पर दिखाए हैं, और जो भारत की शान है, भारत का अपना तेजस आपको दिखाई दे रहा है यहां पर जोधपुर में तरंग शक्ति में। तेजस ने तमाम अलग अलग मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस में शिरकत की है और अब जोधपुर में आपको दिखाई दे रहा है तेजस किस तरह से अलग अलग फॉर्मेशंस के साथ साथ इसने F-35, F-16 और दूसरे फाइटर जेट्स, जो पूरी दुनिया के एयरफोर्सेस के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, उनके साथ मिलकर यहां पर अलग अलग मैनूवर्स दिखाए हैं। और अगर तेजस की बात करें तो तमाम ऑपरेशंस में, तमाम मिशंस में भारतीय वायुसेना का सबसे मजबूत फाइटर जेट ये रहा है।
0: जोधपुर में हुए इस युद्धाभ्यास पर पूरी दुनिया की नजर इसलिए भी थी क्योंकि ये पहला मौका था जब अमेरिका अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 को किसी दूसरे देश में हो रहे युद्धाभ्यास में लेकर आया था।
1: और खास बात यह है कि अमेरिका ने पहली बार अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के साथ किसी एक्सरसाइज में शामिल किया है और वो भी भारत में। और आप देख सकते हैं इस वक्त इस स्टैटिक डिस्प्ले में ये F-35 प्रदर्शित किया गया है। F-35 की खासियत की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही आधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। इसके अलग अलग वेरियंट्स हैं जो F-35A, F-35B जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के लिए हैं, जो एयर फोर्स के लिए हैं, और F-35C नौसेना के लिए भी है। इसकी रफ्तार 1.6 मैक है, यानी कि ये अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकता है और इसका इंजन बहुत पावरफुल है। तो
0: आपको बता दें कि तरंग शक्ति के दौरान विभिन्न देशों के 80 से ज्यादा अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट ने अपनी ताकत की नुमाइश की। अलग अलग देशों के 3,000 से ज्यादा वायु सैनिकों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। भारत की अगुवाई में दुनिया के कई शक्तिशाली देशों की वायु सेनाओं ने तरंग शक्ति के दौरान अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान उतारे।
1: तरंग शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ मित्र वायुसेनाओं के साथ मिलकर आकाश में फॉर्मेशंस बनाए, लेकिन आप देखिए जमीन पर भी इन एयरक्राफ्ट को नजदीक से देखने का एक मौका दिया। जो फाइटर जेट आप इस वक्त देख रहे हैं वो यूएई का F-16 है, जिसे लाइटनिंग फाइटरिंग फाइलकॉन भी कहा जाता है, और लॉकहीड मार्टिन ने इसे बनाया है, अमेरिका का ये बनाया हुआ। और यूएई ने 1980 के दशक में F-16 अक्वायर किए थे। इसमें F-16EF डेजर्ट फाल्कन वेरिएंट भी है और ख़ास तौर पर ये यूएई के लिए खास तरह के एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स के साथ तैयार किया गया।
0: हफ्तों की कड़ी मेहनत, सैकड़ों घंटों की उड़ान और अनगिनत रणनीतिक बैठकों के बाद आज तरंग शक्ति 2026 का जोधपुर अध्याय अपने अंजाम पर पहुंच गया। जोधपुर के आसमान में गर्जना अब थम चुकी है, लेकिन यहाँ जो दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी की नई इबारत लिखी गई है उसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी, क्योंकि वास्तव में ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं था बल्कि दुनिया को एक संदेश था, संदेश कि भारत आज वैश्विक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है जो पूर्व और पश्चिम के देशों को एक सूत्र में पिरो सकता है।
1: तरंग शक्ति दूसरे संस्करण की एक्सरसाइज थी और पहली एक्सरसाइज जो 2024 में हुई थी उसकी तुलना में इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। तो हर संस्करण के साथ तरंग शक्ति बड़ी और वृहद होती जा रही है और भारत की क्षमताएं और शौर्य को पूरी दुनिया देख भी रही है और उससे सीख भी रही है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा। जो
2: बात करेंगे उस शक्ति उत्सव की जिसका आगाज जो है 13 अक्टूबर यानी कल से सागर की लहरों पर होने वाला है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको 13 से 18 अक्टूबर तक भारत और रूस के बीच साझा युद्धाभ्यास INS इंदिरा का आयोजन जो है रूस के व्लादिवास्तोक में होने जा रहा है और इसके लिए भारत का INS सहयात्री रूस पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 2003 से लगातार हो रहा यह युद्धाभ्यास इंडिया के INDO और रशिया के RA से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहले एक हार्बर फेज होगा और उसके बाद सी फेज में दोनों देशों की सेनाएं सागर की लहरों पर अभ्यास करने के लिए उतरेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच समन्वय को बढ़ाना। इसमें पेशेवर बातचीत, समुद्री विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल होता है। जब दो अलग देशों की सेनाएं मिलकर तमाम जो है बातचीत करती हैं, युद्धाभ्यास करती हैं, तो उनकी भाषा, तकनीक और काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। इस अभ्यास से दोनों नौसेनाएं जो हैं एक दूसरे की तकनीक और तौर तरीकों को सीखती हैं, जैसा कि हमने तरंग शक्ति के दौरान देखा। नभ और जल के बाद अब बात करेंगे थल पर हो रहे शक्ति उत्सव की। शक्ति का वो स्थल जो देश के रणमाकरों की रक्षा की कहानी को समेटे हुए है अपने आप में, जैसलमेर का तनोट धाम। बताया जाता है कि तनोट माता हिंगलाज माता का ही एक रूप है, वही हिंगलाज माता जिनका स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है और इसे देवी के 51 शक्ति पीठों में गिना जाता है। लेकिन कमाल देखिए कि भले ही हिंगलाज भवानी भारत की सरहदों के पार बसती हों, लेकिन बात जब उसी पाकिस्तान से टकराने की आई तो जैसलमेर के तनोट में वो भारत के रणमाकरों की ढाल बन गई। पहले 1965 और फिर 1971 के युद्ध में तनोट माता ने शत्रु के प्रहार से भारत के परम वीरों की रक्षा की। हर युद्ध में दुनिया की बैसाखी पर युद्ध लड़ने वाले पाकिस्तान का झूठा अहंकार और उसके दागे तमाम जो बम हैं वो बेदम होकर तनोट धाम के धूल में बिखर गए। भारत की सरहद पर विराजी मां तनोट भवानी तब से लेकर आज तक अपने वीर सपूतों की रक्षा यूं ही कर रही हैं।

रणबांकुरों के राजस्थान में फैले रेत के अथाह समंदर के बीचों बीच बसा है माँ भवानी का ये अद्भुत दरबार, जहाँ प्रताप और पन्ना को जन्म देने वाली मरुधरा की मिट्टी में राष्ट्रभक्ति के चंदन के साथ साथ माँ भवानी की आस्था के रंगों का मेल भी नजर आता है। माँ जगदम्बा का ये धाम श्रद्धा और शौर्य की कहानियों में पगा वो तीर्थ स्थल है, जहाँ आकर देवी माँ और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश झुकाते हैं। ये राजस्थान में पाकिस्तान से लगी 1000 किलोमीटर लंबी रेतीली सीमा पर जैसलमेर से लगभग 125 किलोमीटर दूर बना तनोट राय मंदिर है, जहाँ पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ विराजती हैं तनोट की माँ भवानी। ये वो शक्ति है जो वतन के रखवालों की रक्षा करती है, ये वो देवी है जो भारत पाक युद्धों की गवाह है, ये माँ भवानी का वो रूप है जिनके प्रकोप से पाकिस्तान की सेना कांप उठी थी, ये वो देवी है जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। मरुभूमि में तनोट माता को आवड़ माता के नाम से भी पूजा जाता है। तनोट माता को 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। बताया जाता है कि तनोट में सन 828 ईस्वी में देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। सदियों तक तनोट और उसके आसपास फलती फूलती पीढ़ियां माँ भवानी के इस आंगन में श्रद्धा से सिर झुकाती थी। तब ये मंदिर आज जितना विशाल और भव्य नहीं था, बल्कि चार दीवारी के बीच पेड़ की छाह में चबूतरे पर माँ का दरबार सजता था। लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तनोट धाम की ख्याति भारत की सीमाओं के पार दुनिया के कानों तक पहुँचने वाली थी। वो 1965 का साल था जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। उस वक्त पाकिस्तान का निशाना तो कश्मीर था, लेकिन भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा सुलग रही थी। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने अपनी तोपों का मुंह भारतीय सीमा में मौजूद तनोट गांव की तरफ मोड़ दिया था। उस समय पाकिस्तान ने इतनी भीषण बमबारी की थी कि केवल मंदिर परिसर में ही लगभग 450 बम गिरे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पाकिस्तानी सेना की तोपों से गोले निकल तो रहे थे, लेकिन वो गोले जहां गिर रहे थे वहां धमाका नहीं हो रहा था। इस बात से बौखलाकर पाकिस्तानी सैनिक गोले दागते रहे, लेकिन उस रोज तनोट की भूमि पर न तो कोई गोला फटा और न किसी का बाल भी बाका हुआ। ये तनोट की धरती पर माँ भवानी की कृपा की छाया थी, जिसने दुश्मन की अग्नि वर्षा के बीच भी उस समय पेड़ के नीचे मौजूद 8 भारतीय सैनिकों को बिल्कुल सुरक्षित रखा।

0: ऐसी मान्यता है कि उस रोज एक अदृश्य ढाल की तरह माँ ने सब की रक्षा की। मंदिर के आसपास बम गिरे जरूर, लेकिन फटा एक भी नहीं। ये माँ की महिमा थी जिसके आगे पाकिस्तान भी घुटने टेकने को मजबूर हो गया था।
1: जिस तरह से माता की कृपा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के लोंगेवाला भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ है, आज भी वैसी ही कृपा इनकी बनी हुई है। जैसे 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और यहाँ 3200 से 3500 से भी अधिक बम मंदिर प्रांगण में और इस एरिया में गिरे और माता की ऐसी कृपा हुई कि एक भी बम नहीं पटा।
0: मंदिर के साथ साथ गांव पर भी गोले दागे गए। युद्ध के बाद जब गोलों की गिनती हुई तो पता चला कि लगभग 3000 बम तनोट की ओर दागे गए थे। आज भी पाकिस्तान के दागे वो बम मंदिर परिसर में साबुत मौजूद हैं और दुनिया को मां तनोट के चमत्कार की कहानी सुना रहे हैं।
1: उस समय पाकिस्तानी आर्मी कमांडर शाहनवाज खान, दैट टाइम ही वाज कर्नल, जब वो इस बात को पुख्ता किए कि आखिर ऐसी क्या शक्ति है कि जिसके वजह से हमारे सारे बम गोले बारूद विफल हो रहे हैं, उन्होंने दर्शन करने की इच्छा जाहिर की और विगत वर्षों के बाद में आए, माता के लिए दर्शन किए और 4 बड़े बड़े चांदी के छत्र चढ़ाए जो कि चौकस में है।
0: उस दिन के बाद से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हो गया और आम लोगों के साथ साथ सेना के जवानों की आस्था भी इस मंदिर के प्रति और प्रगाढ़ हो गई। 1965 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई और बीएसएफ ने यहां अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया। बाद में यहां एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया। आज भी मंदिर के नजदीक शान से खड़ा ये स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है।
2: देवी के दरबार में और हर साल नवरात्रा स्थापना दिवस पर हम यहाँ देवी के दर्शन के लिए
3: चमत्कार से माता का साक्षात चमत्कार है। अभी भी लोग यहाँ पे आते हैं और माता की साक्षात शक्ति विराजमान है।
0: आज जितना मशहूर माँ का ये मंदिर है उतनी ही मशहूर है यहाँ की आरती। कहते हैं देवी माँ की जैसी जोशीली आरती यहाँ होती है वैसी दुनिया में कहीं और नहीं होती। तनोट माता का ये मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तनोट माता के प्रति सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी अटूट आस्था है। तनोट माता को उनके भक्त रुमाल वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। दरअसल यहाँ कई सालों से ये मान्यता है कि यहाँ रुमाल बांधने से हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में माँ के प्रति आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद भक्त माँ का आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं और रुमाल खोलते हैं। मंदिर परिसर में लाखों ऐसे श्रद्धालुओं के रुमाल बंधे हुए दिखते हैं। वैसे तो पूरे साल माँ भवानी का ये धाम भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ 9 दिनों तक चलने वाले मेले के लिए देश के कोने कोने से भक्तों का सैलाब उमड़ता है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: शक्ति उत्सव की एक और तस्वीर आई है उस धाम से जहां पर मां भवानी वीरों को विजय का आशीर्वाद देती हैं। जी हां, आगर मालवा में मौजूद मां बगलामुखी का धाम। मां बगलामुखी के धाम से जुड़ी मान्यता है कि देवी शत्रुओं के नाश का आशीर्वाद देती हैं और अपने साधकों को भय मुक्त कर देती हैं। महाभारत काल से मान्यता चली आ रही है। आज भी नवरात्र में यहां भक्त मां बगलामुखी से विजय और कल्याण का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं।

0: प्रदेश के आगरमालवा में ये माँ बगलामुखी का धाम है। वे माँ बगलामुखी जो अपने साधकों को तूफान से भी लड़ जाने की प्रचंड शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। वे माँ बगलामुखी जो अपने भक्तों को भयमुक्त होने का वरदान देती हैं, जो दुष्टों का दलन और असुरों का संहार कर अपने साधकों का कल्याण करती हैं।
1: अतः बगलामुखी की पूजा करने से, आराधना करने से उन साधक के अंतर मन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति जागृत हो जाती है। उस व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति के साथ साथ इतनी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है कि वो अपने शत्रुओं का विनाश भी कर सकता है। तो शत्रुओं का विनाश करने का अर्थ हुआ कि वह विजय को भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वह युद्ध का मैदान हो अथवा राजनीति का मैदान हो या जीवन में किसी भी तरह की प्रतियोगिता अगर है, तो उसमें माता बगलामुखी की आराधना करने से उसे विजय की प्राप्ति सहजता के साथ मिल जाती।
0: माँ बगलामुखी के इस धाम में पूजा अर्चना और हवन यूं तो आम है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं।
2: हवन जो है यहाँ पर तीन तरह के हवन होते हैं। साधारण होता है, एक जो है विशेष हवन होता है, एक महाविशेष हवन होता है। तीन प्रकार के हवन होते हैं और यहाँ पर बहुत सारी यज्ञशालाएं, 175 की भी यज्ञशालाएं बनी गई है। उसमें प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक नवरात्रि में भी हवन होंगे, जिसका समय निर्धारित किया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक होंगे।
0: माँ बगलामुखी को तंत्र की देवी माना जाता है। मान्यता है कि उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। भक्तों का ये विश्वास है कि शक्ति स्वरूपा माँ बगलामुखी की उपासना साधकों को हर प्रकार की बाधा से मुक्ति दिलाती है, हर मुश्किल आसान बनाती है। मान्यता है कि देवी अपने उपासक के दुश्मन को निष्क्रिय बना देती है। बता दें कि देवी के 10 महाविद्या रूपों में से 8वां स्वरूप माँ बगलामुखी का है। माँ बगलामुखी का रंग सोने के समान पीला है, इसलिए उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। इसी तरह माँ का एक नाम ब्रह्मास्त्र विद्या या ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी है।
1: जो 8वां स्वरूप है अब माता का, जो आठ माता महाविद्या का जो 8वां स्वरूप है, वह माता बगलामुखी का स्वरूप माना जाता है। यह स्वरूप किसी के प्रति आकर्षण के लिए, उच्चाटन के लिए, मोहन के लिए तथा मारण के लिए, तो मारण में विजय प्राप्ति के लिए माना जाता है। विशेष करके यह स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है तथा किसी से अलगाव की शक्ति भी आ जाती है कि नकारात्मक प्रभाव अगर किसी तरीके से व्यक्ति के ऊपर है तो उससे भी छुटकारा माता के इस स्वरूप की पूजा करने से, आराधना करने से दूर हो।
0: पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में उत्पन्न हुए महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान को शांत करने के लिए जब भगवान विष्णु ने तपस्या की, तब प्रसन्न होकर सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी। भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया, शाजापुर नलखेड़ा और हिमाचल के कांगड़ा में स्थित है। देवी के तीनों ही मंदिरों का विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का मंदिर बहुत चमत्कारी माना जाता है। इस मंदिर में माँ बगलामुखी की मूर्ति स्वयंभू है। बताया जाता है कि महाभारत में विजय पाने के लिए श्री कृष्ण के निर्देश पर युधिष्ठिर ने इस मंदिर की स्थापना की थी।
2: यहाँ पर पांडव ने भगवान कृष्ण के निर्देश अनुसार साधना की, क्योंकि बगलामुखी की साधना दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए करना है, कुछ शक्ति है वो माँ बगलामुखी।
0: आगर मालवा के इस मंदिर से ये मान्यता जुड़ी है कि माँ यहाँ अपने उपासकों को विजयश्री का अमोघ वर देती हैं। यही वजह है कि आम भक्तों के साथ यहाँ बड़ी संख्या में नेता भी हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। इसी प्रार्थना के साथ कि माँ बगलामुखी अपने साधकों को शक्ति, साहस और विजय का वरदान दे। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना, सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में उमड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के हो रहे हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता की भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने शानदार प्रस्तुति दी। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का हुआ ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को मिला सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का भव्य श्रृंगार, मां की आरती उतारी गई, आरती में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, श्रद्धालुओं ने लगाया जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़, सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। माया देवी मंदिर में मां की उतारी गई विशेष महाआरती, श्रद्धालुओं ने लगाए जय माता दी के जयकारे। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मैहर शक्तिपीठ में मां की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की। मैहर शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम, सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी। कर्नाटक के कलबुर्गी में दूसरे दिन भवानी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हैदराबाद में नवरात्र के दूसरे दिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मां की महाआरती निकाली गई, भक्तों ने जयकारे लगाए। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में नवरात्र पर दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शारदीय नवरात्र की धूम, शीतला माता मंदिर में दूसरे दिन भी लगी भक्तों की कतार। शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन, श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कठुआ में महाकाली मंदिर में दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। प्रयागराज के गांव में शारदीय नवरात्र की अनूठी परंपरा, पंडालों में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमाएं, सामूहिक पूजा अर्चना और आरती में जुट रहे हैं लोग। प्रयागराज के ग्रामीण अंचलों में नवरात्रि पर आस्था का मिनी मेला, श्रद्धा सहयोग और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है आराधना का पर्व। बागेश्वर में शारदीय नवरात्रि की धूम, प्राचीन कोट भ्रामरी माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, मां के जयकारों की गूंज, कोट भ्रामरी मंदिर 9 दिनों तक होगी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा। उज्जैन में नवरात्र के दूसरे दिन महाकाल के दरबार में पहुंचे कुलदीप यादव और तिलक वर्मा, विधि विधान के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति आराधना। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सटे तनोट माता मंदिर में नवरात्र मेले का शुभारंभ, बीएसएफ के जवानों ने भजन कीर्तन किया। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन विशेष आरती, सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अकोला के अंबिका देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का जलसा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। कोटा में दशहरा को लेकर तैयारियां जबरदस्त, रावण का पुतला 5,000 से लेकर 20,000 तक उपलब्ध। वाराणसी में भी दशहरा को लेकर कारीगरों में जबरदस्त उत्साह, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ की भारी डिमांड। बिहार से कटिहार से आई अनोखी भक्ति की तस्वीरें, श्रद्धालुओं ने माता रानी को लगाया 2.5 क्विंटल लड्डू का भोग। चित्रकूट में नवरात्र के दूसरे दिन देवी के मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ करके आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने शानदार प्रस्तुति दी।

बड़ी संख्या में भक्तों ने गरबा में शिरकत की। गरबा रास जलती मशालों के साथ रास करते हुए नजर आए युवा। 30 साल से चली आ रही है परंपरा। जामनगर में आस्था और साज का अनोखा संगम। नंगे पैर तहकते अंगारों पर रास करते हैं युवक। सूरत में नवरात्र उत्सव पर गरबा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल शामिल हुए। गरबा से पहले देवी दुर्गा की उतारी गई आरती। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। रामनगरी अयोध्या की रामलीला 151वें वर्ष में प्रवेश किया। स्थानीय कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं भगवान श्री राम की लीला के मंचन की परंपरा। अयोध्या की 151 साल पुरानी रामलीला की अनोखी परंपरा। हनुमान जी के प्राचीन मुकुट की रोजाना होती है पूजा अर्चना। अयोध्या में रामलीला के जरिए सहेजी जा रही है सांस्कृतिक विरासत। बचपन से ही रामलीला से जुड़ने में स्थानीय बच्चे बड़े होकर निभाते हैं रामायण के पात्र। पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा। रामनगरी की रामलीला में हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले कलाकारों ने खास नियम का पालन किया। अयोध्या की रामलीला बनी आस्था और संस्कारों की मिसाल। कोई अभिनय से तो कोई भजन और वादन से दे रहा योगदान। प्रयागराज में रामलीला की रौनक। श्री बाल रामलीला समिति में नारद मोह लीला का मंचन। प्रयागराज में नारद मोह लीला के साथ रामलीला का आगाज भगवान विष्णु की भूमिका में नजर आए अभिनेता गौतम त्रिपाठी। रामलीला के जरिए जीवंत हो रही है प्रभु श्री राम की गाथा। श्री बाल रामलीला समिति ने नारद मोह लीला के साथ शुरू हुआ मंचन। तमिलनाडु के थूथुकुडी में नवरात्रि और दशहरे की धूम। घरों में सजाए जा रहे रंग बिरंगे गोलू। विशेष पूजा अर्चना के साथ मां दुर्गा की आराधना। आकर्षण सजावट और भक्ति के माहौल ने बनाया पर्व को और खास। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में वंदे भारत ट्रेन की थीम पर सजाया जा रहा है मां दुर्गा का पंडाल। पक्की सड़क पर बनाया जा रहा है लगभग 250 मीटर लंबा रेल ट्रैक। पंडाल में जाने के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जा रहे हैं। पंडाल में कश्मीर की सुंदरता को भी जीवंत किया जा रहा है। बनाई जा रही है बर्फ से ढकी गुफा। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्र की भव्य तैयारियां। बी ब्लॉक पूजा पंडाल में रविंद्रनाथ टैगोर की थीम पर बनाया गया है पूजा पंडाल। पंडाल को अंतर रूप देने में जुटे हुए कार्यकर यहां। 15 अक्टूबर को पंचमी के दिन से शुरू होगा कार्यक्रम जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। भोपाल के पुराने शहर में स्थित कर्फ्यू वाली माता में दिख रहा है इतिहास और परंपरा का अनूठा संगम। बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। इस मंदिर में प्रज्वलित होते हैं घी और तेल के अखंड दीपक। लोग इसे मन्नतों का समुंदर भी कहते हैं। श्रद्धालु अपनी मन्नतों के साथ यहां पर आते हैं और नारियल में अपनी अर्जी लगाकर मन्नत मांगते हैं। इंदौर के बिजासन माता मंदिर में आस्था का महासंगम। नवरात्र में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नवरात्र के 9 दिन तक यहां पर होते हैं अलग अलग स्वरूपों के दर्शन। बड़ी संख्या में दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। नवरात्र के मौके पर बिहार के सासाराम में ताराचंडी देवी के स्थान पर जलाए जा रहे हैं अखंड दीपक। यहां हजारों की संख्या में पहुंचते हैं लोग। नवरात्र में पूरे 9 दिन तक यहां पर अखंड दीपक जलाने की परंपरा है। शुद्ध देसी घी से प्रज्वलित किए जाते हैं दीपक। नवरात्रि के मौके पर मिशन शक्ति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंदौली में निकाली जागरूकता रैली। रैली में महिला पुलिस कर्मियों के साथ छात्राएं और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं और स्थानीय महिलाएं शामिल। अमरावली में पहाड़ियों में शुरू हुआ करणी माता का मेला। प्रदेश सरकार के वन मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी योजना का लाभ उठाकर दिव्यांग बन रहे हैं आत्मनिर्भर। प्रशिक्षण लेने के बाद दिव्यांगों ने तैयार किया करीब 100 तरह के दीपक। मध्य प्रदेश के पन्ना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा जगह जगह स्वागत हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग भागीदारी के चलते जिले में यात्रा को लेकर उत्साहित।
धर्मशाला के त्रियुंड फॉरेस्ट इलाके में क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल की तैयारी, 240

0: टेंट से अधिक की नहीं होगी अनुमति। पर्यटकों के लिए पानी की व्यवस्था भी की जाएगी सुनिश्चित। पर्यटक गतिविधियों से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को कम करना मकसद है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड, अब तक 20 लाख का आंकड़ा पार। मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालु का जोश है, बड़ी संख्या में बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हरिद्वार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किए, कई बड़े नेता शामिल हुए। अकोला में देवदूत बनी महिला आरपीएफ के जवान, चलती ट्रेन में बुजुर्ग बचाई जान। पुरी में स्वच्छता अभियान को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने लगाई झाड़ू, कार्यकर्ता के साथ साफ सफाई। पहाड़ों पर भी मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में चंबा में पहुंच रहे पर्यटक, सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियों पर सीजन की तीसरी बर्फबारी, पर से ढकी चोटियां। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश और हिमपात से बदल गया मौसम का मिजाज। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में मौसम ने बढ़ाई पर्यटक कारोबारियों की उम्मीद, धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में बदल गया मौसम का मिजाज, कहीं देर रात बारिश तो कहीं पड़े ओले। दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, आवाजाही प्रभावित। गाजियाबाद में भी जमकर बरस रहे बदरा, कई इलाकों में जल जमाव। रोहतक में भारी बारिश से किसान परेशान, पानी में डूबे अनाज। सोनीपत में भी भारी बारिश के चलते मंडी में जल जमाव, किसानों की बड़ी परेशानी। किनिंग जायंट पांडा रिसर्च सेंटर में धूमधाम से मनाया गया विशाल पांडा किन हुआ का बर्थडे। रिसर्च सेंटर के कर्मचारियों ने पांडा के लिए तैयार किया विशेष केक। पांडा ने मस्ती के साथ साथ ताजा बांस के केक का स्वाद उठाया और पांडा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए रिसर्च सेंटर के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। चीन के यूनान प्रांत में हैंगहोंग का वेटलैंड पहुंचा प्रवासी पक्षियों का झुंड। इन प्रवासी पक्षियों के आने के साथ ही चीन में शुरू हो जाता है सर्दी का मौसम। पूर्वोत्तर चीन के सुरम्य वेटलैंड में भी 10,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी शामिल हुए, दिखा अद्भुत नजारा। शाम ढलती हजारों पक्षियों की उड़ान भरते देखने के लिए पक्षी प्रेमी और फोटोग्राफर अभ्यारण्य के पैदल मार्गों पर जमा हो गए। चीन के वाइल्ड लाइफ संरक्षण केंद्र में दर्ज की गई छोटी पुंछ वाली बाघ। इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रूपर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को मिला सम्मान। दोनों पुरस्कार विजेताओं ने नए माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल विकसित किए, जिसका इस्तेमाल आज दुनिया भर में सेंट्रल बैंक और सरकारें कर रही हैं। सनी देओल की अगली फिल्म सूर्या के मोशन पोस्टर रिलीज हुआ, 20 नवंबर 2026 को होगी रिलीज। राजकुमार राव की प्रहार का गाना मुंबई सपनों का समंदर हुआ रिलीज, फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। नेशनल अवार्ड जीतने वाले विनोद कापड़ी की अगली फिल्म पायर का ट्रेलर हुआ जारी, 30 अक्टूबर 2026 को दस्तक देगी। दृश्यम 3 ने 10 दिनों में रजी इतिहास, बॉर्डर 2 को पछाड़ दिया, दूसरी बड़ी धांसू फिल्म बन गई 300 करोड़ का आंकड़ा पार। 30 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म नखरे वाली, फिल्म में अशदुगल और प्रगति नजर आएंगे। एनिमेटेड फीचर फिल्म महादेवी आदि शक्ति की पहली झलक जारी, फिल्म अगले साल फरवरी में होगी रिलीज। चार दिसंबर यानी इंडियन नेवी डे पर रिलीज होने जा रही है कजिन ईशा। फिल्म गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट का ट्रेलर, फिल्म 11 दिसंबर को देगी दस्तक। फिल्म द डर्टी पिक्चर 2 का सीक्वल का ऐलान। एकता कपूर ने की पुष्टि, कहा मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रही हूं। महावीर जैन की फिल्म लंबोदर 2.2 का ऐलान, 20 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेमानंद महाराज की आंखों से क्यों छलके आंसू, शिष्य की मौत पर भक्तों के सामने भावुक हुए प्रेमानंद। नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा के वीडियो का सच, बच्चों का मासूम जवाब दिल जीत रहा। वायरल वीडियो की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को,
0: आपने बर्फ पर स्की करते लोगों को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने साबुन के पानी पर स्की ट्राई किया है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं लंदन का एक ऐसा नजारा जहां पर चैरिटी इवेंट लोगों के लिए एक मजेदार इवेंट बन गया जिसका लोगों ने भरपूर मजा लिया।
8: फिसलन भरा ट्रैक और उस पर पैरों में बर्फ की सिल्ली बांधे स्की करते ये लोग, ये किसी गेम शो का सेट नहीं बल्कि लंदन का एक शांत इलाका सर्बिटिन है जो इस अनोखे गेम के कारण लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। कोई हाथों में स्टिक लिए एक स्कीयर की तरह स्की करता नजर आया तो कोई बर्फ की सिल्ली लगे बाथटब में बैठकर फिसलता नजर आया। लोग गिरते पड़ते फिसलते रहे और दर्शक वीडियो बनाते रहे। इस अतरंगी खेल के दौरान सभी के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। लोगों ने इस इवेंट का जमकर मजा उठाया, लेकिन उत्साह तब चरम पर पहुंचा जब व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस भी इस मस्ती भरे खेल का हिस्सा बन गई।
9: How do you feel?
8: पुलिस की इस अनोखी सवारी के लिए भीड़ ने भी पुलिस सायरन जैसी आवाजें निकाली और फिनिश लाइन तक फिसलते हुए जाने पर उनका उत्साह बढ़ाया। दरअसल ये खेल डाउनहिल स्कीइंग नाम के एक इवेंट का हिस्सा था जिसमें लोगों ने अपने पैरों पर बर्फ के टुकड़े बांधकर पानी और डिटर्जेंट से फिसलन भरे ट्रैक पर स्लाइड करना था। ये इवेंट एक चैरिटी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए आयोजित किया गया था। जिसमें प्रतिभागियों से ली गई एंट्री फीस एक लोकल चैरिटी को सौंप दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, आप देख रहे हैं 7 बजे 7 गुड न्यूज। और आज हम आपको 7 गुड न्यूज में सबसे पहले बताएंगे आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज के बारे में। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जी हां, शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर घर और मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना हो रही है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है तो विधि विधान से माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना हो रही है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए उमड़ी भीड़। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में नवरात्र पर्व का उत्साह चरम पर है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और मुंबई से लेकर मैंगलुरु तक महापर्व नवरात्र के रंग बिखरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी मंदिर में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने को मिल रही है, तो वहीं कटरा के श्री माता वैष्णो देवी धाम में भक्त जयकारों के साथ माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। और गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी धाम में उत्साह और उल्लास का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों की रौनक, भक्तों की श्रद्धा और सांस्कृतिक आयोजनों की भव्यता नवरात्रि के इस पर्व को और भी खास बना रही है। नवरात्र के दूसरे दिन मुंबई के मुंबा देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली।
4: नवरात्र उत्सव का दूसरा दिन और इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में। सबसे पहले आप खुद भी माता रानी का दर्शन करें। वाकई में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर माता रानी विराजमान है। एक अलग ही तरह का तेज उनके चेहरे पर देखा जा रहा है। एक बड़ी संख्या में मुंबई, महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों से माता रानी का दर्शन करने के लिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा देखें तस्वीरें, हर कोई सिर्फ एक झलक देवी का यहाँ पर देखना चाहता है। हाथों में लोगों के थालियां हैं, थालियों में माता रानी को जो कुछ भी पसंद है वो सारी चीजें रखी गई हैं। साथ ही साथ बाजार सजा हुआ है, एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग और स्टाइलिश जो चुनरियां हैं वो भी यहाँ पर लगाई हुई हैं। लगभग 2 घंटे कतार में खड़े होने के बाद माता रानी का दर्शन किया जा रहा है। देखिए जितनी ज्यादा तेज इस समय माता रानी के चेहरे पर देखी जा रही है उतना ही सुंदर माता रानी का ये दरबार भी है।
3: और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक दुर्गा पूजा पंडाल सजने लगे हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक संतोष मित्रा स्क्वायर में इस बार भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का एक ऐसा अनूठा रंग देखने को मिल रहा है जिसकी गूंज पूरे देश में है। यहां वंदे मातरम की थीम पर भव्य पंडाल सजाया गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है कोलकाता से दिल्ली तक सजे भव्य दिव्य पंडाल। जी हां, आपको बता दें कि नवरात्र पर्व की शुरुआत से दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ने लगी है। पंडाल सज रहे हैं, मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियां और पकड़ रही है। शहर शहर आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है।
5: शहर शहर बिखरे नवरात्र महोत्सव के रंग, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सजा माँ का भव्य दरबार। कहीं वंदे मातरम थीम पर बना माँ दुर्गा का पांडाल, तो कहीं वंदे भारत ट्रेन में विराजी माँ। माँ भवानी के महोत्सव की शुभ शुरुआत हो चुकी है। शहर शहर माँ के रंग में रंग चुके हैं। कहीं माँ भव्य दिव्य पंडाल में विराज रही है तो कहीं माँ के पंडाल को एक विशेष थीम पर तैयार किया गया है। ये तस्वीरें कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल की है। इस साल इस पंडाल को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के थीम पर तैयार किया गया है।
6: बड़ा खुशी का माहौल है और हमारी सनातनी संस्कृति को मानते हुए दुर्गा पूजा इस बार होगा। आज यहाँ वंदे मातरम का थीम है, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, वंदे मातरम के ऊपर इस लोग यहाँ आयोजन किया है।
5: इस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसका विशेष लाइट एंड साउंड शो है। यहाँ पर लेजर लाइट्स के जरिए भारत की आजादी की लड़ाई के सफर को दर्शाया गया है जिसके केंद्र में वंदे मातरम की प्रेरणा है।
7: ये भारत माता की फ्लैग है, हम लोग इंडिया का फ्लैग है और हम लोग इससे अच्छा क्या माहौल हो सकता है। हम लोग का जो ऐतिह्य है, जो हम लोग पहले छोटे से जो पढ़ के बड़े हुए हैं, वो आंखों हम लोग देख रहे हैं।
5: आस्था की ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ करीब 250 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर गुजरते हुए श्रद्धालु माँ के दरबार तक पहुँचेंगे। पंडाल में प्रवेश के लिए रेलवे स्टेशन की तर्ज पर दो प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं और सबसे खास होगा वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा दिखने वाला ट्रेन का मॉडल, जिसके जरिए श्रद्धालुओं को पंडाल तक पहुँचने का अनूठा अनुभव मिलने वाला है। इस पूरी थीम के बीच माँ दुर्गा की प्रतिमा को पारंपरिक एक चाला शैली में तैयार किया जा रहा है, यानी आधुनिक रेल यात्रा और कश्मीर की खूबसूरती के बीच बंगाल की पारंपरिक दुर्गा पूजा की विरासत भी पूरी शान से नजर आएगी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जयपुर राजबड़ी की दुर्गा पूजा अपनी अनोखी परंपरा, इतिहास और स्वर्ण प्रतिमा की वजह से खास पहचान रखती है। यहाँ माँ दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा साल के लगभग 360 दिन बैंक लॉकर में सुरक्षित रहती है। दुर्गा पूजा के अवसर पर षष्ठी के दिन कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच माँ की स्वर्ण प्रतिमा को बैंक लॉकर से निकालकर जयपुर राजबाड़ी लाया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद दशमी के दिन पुलिस सुरक्षा के बीच स्वर्ण प्रतिमा को दोबारा बैंक लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है। आस्था की भव्य दिव्य तस्वीर नागपुर से भी आई है। यहाँ ढोल ताशों की गूंज, शंखनाद की ध्वनि और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ माँ की घट स्थापना हुई। इस बीच माता रानी के जयकारों के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। संतरा नगरी नागपुर में नवरात्रि के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर तरफ माँ की भक्ति, हर मन में श्रद्धा और हर जुबा पर एक ही जयकारा, जय माता दी। आस्था के ऐसे ही खूबसूरत रंग प्रयागराज में भी बिखरे हुए हैं। यहाँ के गांवों में आस्था का मेला सज चुका है, पंडालों में माता विराज चुकी हैं, पूरे भक्ति भाव से माँ की आराधना की जा रही है। संगम नगरी के गांवों में दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि गांव की एकता और सामूहिक भागीदारी का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई और यहाँ की खास बात है कि हर दिन गांव के लोग एक साथ जुटकर पूजा पाठ और आरती करते हैं।
8: पूरे गांव में सुख शांति बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद रहे। नवरात्रि के पहले दिन से
9: क्या क्या होता है?
8: आरती होती है, भगवान का पूजा होता है, देवी माँ का प्रतिष्ठित किया जाता है।
5: नवरात्र उत्सव की ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में शहर शहर पंडालों में भक्ति और उत्साह की ऐसी ही शानदार रौनक देखने को मिलेगी। प्रयागराज से आनंदराज, पूर्व बर्धमान से सुजाता मेहरा और नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: नवरात्र पर पूरे देश में मां अंबे का दरबार सजा हुआ है तो चारों ओर गरबा और डांडिया की रातें भी सजने लगी है। चारों ओर भक्ति की रसधार बह रही है। ऐसे में गरबा जो सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं बल्कि अंबे मां की आराधना का सबसे खूबसूरत माध्यम बन गया है, इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है और वो है अंगारे और तलवार के साथ धूमधाम से गरबा रास। जी हाँ, गरबा के लिए मशहूर गुजरात के जामनगर और राजकोट में हाथों में डांडिया और दिल में मां की मूरत लिए गरबा के उत्साह में मगन हैं लोग। वहीं गुजरात पुलिस ने गरबा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं।
5: गुजरात में नवरात्रि पर्व की धूम के बीच जामनगर के आशापुरा गरबी मंडल में पारंपरिक गरबा और तलवार रास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव की परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। यहां बालिकाएं और युवतियां पूरे उत्साह के साथ गरबा खेलकर मां अंबे की आराधना कर रही हैं। आशापुरा गरबी मंडल में पारंपरिक गरबा के साथ तलवार रास की विशेष प्रस्तुति लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस दौरान महाकाली तांडव सहित विभिन्न पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गुजरात के ही जामनगर में मशाल और अंगारा रास भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। शक्ति पर्व में नौजवानों का मशाल सबको लुभा रहा है। नौजवान हाथ में मशाल लेकर ये खास रास कर रहे हैं। गरबा और रास उत्सवों में किया जाने वाला ये एक साहसिक और अद्भुत नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले कलाकार अपने हाथ में जलते हुए मशाल और जलते हुए अंगारों पर सधे हुए अंदाज में डांडिया या रास नृत्य प्रस्तुत करते हैं,
10: जिसमें हम पारंपरिक पोशाक और पारंपरिक गाने के साथ गरबे के साथ खेल रहे हैं। हमारे फेमस रास यानी कि मसाल रास, तलवार रास, कर्मी रास, घोड़ो रास हम सब खेलते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पे निहारने आते हैं। और हमारा वर्ल्ड फेमस रास है वो है मसाल रास, जिसमें हम जलते अंगारों के ऊपर खेलते हैं और माता जी की असीम कृपा से आज तक कोई भी खिलाड़ियों को कुछ भी नहीं हुआ और माता जी का ऐसा ही आशीर्वाद हमारे पे बरसते रहते हैं।
5: गुजरात के पोरबंदर में 102 साल पुरानी भद्रकाली माताजी गरबा महोत्सव में भी लोग बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग तक तमाम उम्र और तबकों के लोग इस उत्सव में शामिल होकर त्योहार मनाते हैं। खास बात यह है कि इस उत्सव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। आस्था उल्लास और पारंपरिक गरबा के महापर्व नवरात्रि के दौरान राज्य भर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए गुजरात पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा योजना तैयार की है। प्रदेश में 22,000 से अधिक गरबा स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों और पुलिस आयुक्तों को सतर्क रहने और गश्त बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। राजकोट पुलिस की शी टीम की महिला पुलिसकर्मी डांडिया खेलने के परिधान में अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और बदमाशों पर नजर रखेंगी। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। राजकोट पुलिस ने गरबा आयोजकों को आयोजन के दौरान सीसीटीवी लगाने और गरबा स्थलों पर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी रखने के आदेश दिए हैं।
11: इस गरबा के दरमियान हमने कुछ जगहें आइडेंटिफाई करी है जहां पे लाइटिंग थोड़ी कम है या फिर जहां पे असामाजिक तत्व बैठते हैं, तो वहां पे हमारी एसओजी की टीम जो है वो ड्रोन के मार्फते जो है वहां पे सर्वेलेंस रखेगी और जो जो इलीगल एक्टिविटीज इनके ध्यान में आएंगी उनके ऊपर एक्शन लेगी और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी।
5: गरबा का यह उत्सव केवल अंबे माँ की उपासना की धार्मिक रस्म नहीं है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए अपनी परंपरा और जड़ों से जुड़े रहने का भी माध्यम है। यही वजह है कि आधुनिक बदलावों के बावजूद समाज में यह सांस्कृतिक धरोहर अभी तक लगभग उसी रूप में बची हुई है जिस तरह सैकड़ों साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। जामनगर से दर्शन ठक्कर और गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ राजकोट से रौनक मजीठिया, गुड न्यूज टुडे।
3: और आपको बता दें कि दिल्ली के साथ ही छोटे बड़े और शहरों में रामलीला का मंचन हो रहा है और इसे देखने आने वाले की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में प्रयागराज और अयोध्या में रामलीला जैसे धार्मिक आयोजन लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है और वो है कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा से दशहरा उत्सव की शुरुआत। जी हाँ, आपको बता दें कि शहरों में दशहरा की रौनक के बीच आस्था, संस्कृति और आपसी भाईचारे की भी अनूठी तस्वीर नजर आ रही है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। बुराई के प्रतीक इन पुतलों का विजयदशमी पर दहन, सत्य, अच्छाई और मर्यादा को बनाए रखने के संदेश के तौर पर किया जाएगा।

0: शहर शहर शोभा यात्राएं, बाजारों में सजते रावण और मंच पर जीवंत होती प्रभु श्री राम की गाथा। दशहरे का त्योहार करीब आते ही देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां तेज हो गई हैं। कहीं सदियों पुरानी परंपराएं निभाई जा रही हैं, तो कहीं पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने की तैयारी है। प्रयागराज से अयोध्या, कोटा से जम्मू तक दशहरे की रौनक के बीच आस्था, संस्कृति और आपसी भाईचारे की अनूठी तस्वीर दिखाई दे रही है। प्रयागराज में दशहरे की आहट के साथ धार्मिक आयोजनों ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रयागराज में देर रात शहर की ऐतिहासिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा निकाली गई। कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा की परंपरा प्रयागराज में बरसों से चली आ रही है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इस विशाल झांकी में शिव पार्वती, बजरंग बली, भगवान विष्णु और मां काली की झांकी भी शामिल है।
1: घोड़ा आन, दशहरा आन, माने कर्ण घोड़ा का जुलूस घुट गया। अब पूरे जनपद के अंदर राम की लीला, राम की कथा, राम की चौकियां ये आपकी निकलेंगी। कहीं राम लीला होगी, कहीं भोर की चौकियां उठेंगी, कहीं भरत मिलाप होगा, कहीं पर राम सीता का जो है आपकी जो है दल निकलेगा। तो ये पूरे जनपद में दशहरे के आरंभ का प्रतीक है, ये बड़ा प्राचीन काल से।
0: अयोध्या में मंच पर राम कथा सज रही है, तो राजस्थान के कोटा में रावण के पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सड़कों और बाजारों में अलग अलग आकार के पुतले बिक्री के लिए तैयार हैं। रावण के ये पुतले स्थानीय कारीगरों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन गए हैं। वहीं जम्मू के गीता भवन में रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इस काम के लिए मेरठ से आने वाले कारीगरों की टीम करीब एक महीने पहले पहुंच जाती है। पिछले लगभग 40 वर्षों से यह परिवार दशहरा आयोजन के लिए पुतले बनाता आ रहा है। इस बार भी 50 से अधिक लोग बांस के ढांचे तैयार करने, कागज लगाने और सजावट करने में जुटे हैं। हर कारीगर की अलग जिम्मेदारी है और सबका लक्ष्य तय समय पर पुतलों को तैयार करना है। प्रयागराज की शोभा यात्राओं से लेकर अयोध्या की ऐतिहासिक रामलीला तक, कोटा के पुतला बाजार से जम्मू के कारीगरों की साझा मेहनत तक, दशहरे की तैयारियां अलग अलग रूपों में नजर आ रही हैं। कहीं विरासत को सहेजा जा रहा है, तो कहीं हुनर अगली पीढ़ी तक पहुंच रहा है। और इन सभी आयोजनों का संदेश एक है, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिरकार जीत सत्य, अच्छाई और मर्यादा की ही होती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश के चार धामों में से एक भगवान बद्री विशाल के धाम में इस वर्ष आस्था ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यात्रा शुरू होने से लेकर अक्टूबर मध्य तक बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि मंदिर के कपाट बंद होने में अभी तक महीने भर का एक समय है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है, और वो है बद्रीनाथ धाम में आस्था का नया कीर्तिमान। आपको बता दें कि इस बार चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड के साथ संपन्न होने जा रहा है। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान मौसम की चुनौतियों, मॉनसून की बारिश और अक्टूबर में बढ़ती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। मुख्य यात्रा सीजन के बाद भी धाम में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अक्टूबर माह में भी बद्री विशाल के दर्शनों के लिए यात्रियों का सिलसिला जारी है, और अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंच चुके हैं। इस बार पितृपक्ष के दौरान भी बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के साथ ही पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से बद्रीनाथ स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण किया। इससे पितृपक्ष में भी धाम में धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं की आवाजाही में तेजी देखने को मिली। अब सभी की नजरें यात्रा के बाकी बचे दिनों पर टिकी है। यदि श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इस वर्ष बद्रीनाथ धाम की यात्रा नए ऐतिहासिक आंकड़े के साथ संपन्न हो सकती है।
3: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार ऐतिहासिक बनती नजर आ रही है। हर तरफ गाड़ियों की कतार, लगातार सड़कों पे जो जाम की स्थिति है वो अभी भी सड़कों पे देखने को मिल रहा है। जो तीर्थयात्री हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। तो वहीं मौसम की बात करें, भले ही मौसम लगातार करवट बदल रहा हो, बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त ठंड का एहसास देखने को मिल रहा है। वहीं अब तक बद्रीनाथ धाम में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। तो वहीं इस बार जो पितृपक्ष अभी बीता है, सिर्फ पितृपक्ष में पहली बार 2.25 लाख तीर्थयात्री जो बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। इसी के साथ 20 लाख का आंकड़ा पहली बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा में देखने को मिला है। वहीं अभी भी एक महीने से अधिक का समय बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने में समय शेष है। ऐसे में देखना होगा इस बार कौन सा नया रिकॉर्ड बद्रीनाथ धाम की यात्रा में बनता है, क्योंकि पहली बार 20 लाख श्रद्धालु जो है अक्टूबर के शुरुआती दौर में ही बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुके हैं और अब एक महीने का लगभग समय शेष है। ऐसे में देखना होगा इस बार का नया आंकड़ा क्या रहता है, नया रिकॉर्ड।
2: उत्तराखंड के टिहरी जिले में भव्य कुंजापुरी मेला लोगों का दिल जीत रहा है। इस साल ये मेला इसलिए भी खास है क्योंकि मां श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। कुंजापुरी मेले में सांस्कृतिक झांकियों ने मोहा मन। जी हाँ, टिहरी में 19 अक्टूबर तक चलने वाले कुंजापुरी मेले में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर है। मेले में जुटने वाले लोगों से स्थानीय दुकानदारों, कारोबारियों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा और उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है।
4: आस्था का उत्सव लोक संस्कृति के रंग और विकास की नई उम्मीदें। ये तस्वीर है उत्तराखंड के टिहरी की, जहां नरेंद्र नगर में माँ श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का आयोजन किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस साल मेले के 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए मेले को स्वर्ण जयंती के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें लोक आस्था, संस्कृति, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास का संगम नजर आ रहा है।
5: माँ कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेला, इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, उसका भी आज शुभारंभ हो रहा है। मैं सभी को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। बहुत भव्य और दिव्य यहाँ पर आयोजन होता है, शानदार आयोजन होता है। सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सारे कल्चर इकट्ठे होते हैं और इस प्रकार के आयोजन हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाते हैं और नई पीढ़ी से उसको जोड़ने का काम करते हैं।
4: इस मेले की विशेषता उत्तराखंड की लोक संस्कृति है। यहाँ स्थानीय लोग पारंपरिक छोलिया नृत्य से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। वहीं महिषासुर मर्दिनी, माँ कुंजापुरी और बदलते नरेंद्र नगर पर आधारित झांकियों ने लोगों का ध्यान भी खींचा। इन प्रस्तुतियों के जरिए धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्र के बदलते स्वरूप को दर्शाया गया।
6: हाँ, मेले के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को याद रखते हैं, दूसरे राज्यों की संस्कृति को हमारे बच्चे सीखते हैं, उनको बड़ा मंच मिलता है, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तमाम जो पूरे बॉलीवुड से लेकर तमाम राज्य के, तमाम देश के, तमाम राज्यों की टीमें इसमें आती हैं, तो जहाँ उनकी संस्कृति से भी हमारे लोग एक उसके पर उसको जानने का अवसर उन्हें मिलता है। वहाँ साथ ही साथ ये खेलों का भी एक बहुत बड़ा माध्यम, 20 से ज़्यादा प्रतियोगिताएँ राष्ट्रीय और राज्य स्तर की इस मेले के माध्यम से होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें कुल मिलाकर के जहाँ एक और मनोरंजन को बढ़ाता है, लोगों को मेल मिलाप का अवसर देता है, विकास को आगे बढ़ाने का काम करता है, अपनी संस्कृति को के संरक्षण का काम करता है, दूसरे की संस्कृति से हमारे नौजवान रूबरू हों उसका क्या काम करता है।
4: कुंजापुरी मेला 19 अक्टूबर तक चलने वाला है। हर दिन यहां पर्यटकों को नए रंग देखने के लिए मिलेंगे। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी। नरेंद्र सिंह नेगी, मीना राणा, किशन महिपाल, पांडवाज बैंड और प्रीतम भरतवान जैसे जाने माने लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में नरेंद्र नगर में लोक संगीत, लोक नृत्य और सांस्कृतिक उत्सव की रौनक और बढ़ने वाली है। दरअसल उत्तराखंड की पहचान यहाँ की लोक संस्कृति, पारंपरिक हस्तकला और स्थानीय उत्पादों से भी है। ऐसे में पर्यटन से जुड़े आयोजनों के माध्यम से इन उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिशें भी हो रही है। स्थानीय व्यंजन हो, पारंपरिक वस्तुएं हो या हस्तशिल्प, मेले में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच इन्हें प्रदर्शित करने से रोजगार बढ़ने की ही उम्मीद है। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कानपुर देहात के रसूलाबाद में पहलवानों को अपने दांव पेच दिखाने का मौका मिला। यहां पर आयोजित 19वें विराट दंगल में दर्शकों की भारी भीड़ पहुंची। नैला कटरा गांव में आयोजित इस दंगल में लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि बैठने की जगह तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं बची। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, कानपुर के दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम। जी हां, आपको बता दें कि इस दंगल में देश के अलग अलग हिस्सों से पहलवान पहुंचे। अखाड़े में उतरे पहलवानों ने अपनी ताकत, तकनीक और फुर्ती से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मुकाबलों के दौरान दर्शकों की तालियों और शोर से पूरा माहौल उत्साह से भर गया। इस दंगल में महिला पहलवानों के मुकाबले भी आकर्षण का केंद्र रहे। रूबी पहलवान और सोनी पहलवान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में रूबी पहलवान ने जीत दर्ज की, जिसके बाद दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। दंगल में पहलवानों के दाव पेच से ज्यादा चर्चा दर्शकों की भारी भीड़ की रही। नैला कटरा गांव में आयोजित इस दंगल में लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि बैठने की जगह तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं बची। कुश्ती देखने के लिए कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ गया तो कोई ई रिक्शा और बाइक पर खड़े होकर मुकाबलों का रोमांच लेता नजर आया। ऐसे में रिकॉर्ड भीड़ और रोमांचक मुकाबलों के बीच ये विराट दंगल संपन्न हुआ।
7: कानपुर देहात के रसूलाबाद में आयोजित विराट दंगल में पहलवानों का दमखम देखने के लिए ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भर गया। हालात ये रहे, दंगल देखने के लिए लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, ई रिक्शा और बाइक तक पर चढ़ गए। नैला कटरा गांव में आयोजित इस दंगल में देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से पहलवान पहुंचे थे। यहां पर मौसम अली से लेकर पंजाब के देव थापा और महिला पहलवान रूबी तक सभी ने अपने दाव पेचों से दर्शकों को खूब रोमांचित। यह दंगल सिर्फ कुश्ती का मुकाबला ही नहीं बल्कि मिट्टी से जुड़े खेलों के प्रति लोगों के जुनून की मिसाल भी बना।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: प्रेमानंद महाराज की आंखों से क्यों छलके आंसू, शिष्य की मौत पर भक्तों के सामने भावुक हुए प्रेमानंद। नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा के वीडियो का सच, बच्चों का मासूम जवाब दिल जीत रहा, वायरल वीडियो की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की 9:00
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

तपस्या और संगम की देवी माँ ब्रह्मचारिणी का मिलेगा आशीष। तलवार रास महिलाओं का अनोखा गरबा। बुराई पर अच्छाई की जीत का संकल्प। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।

0: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बजासन माता मंदिर में उमड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना। मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही शक्ति साधना। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ। बीएसएफ जवानों ने गाए मां के भजन। शारदीय नवरात्र में गुजरात में गरबा की धूम। जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान। अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान। अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश में रंग कर एक नया एंगल दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे फैक्ट चेक में। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि शिष्य रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: क्या प्रेमानंद महाराज अपने शिष्य की मौत से टूट गए, फूट फूट कर रोने लगे? प्रेमानंद महाराज के रोते वीडियो को शिष्य रसिक दुलारी की मौत से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये खबर हमारे सामने भी आई, हमने इसकी पड़ताल की।
3: मरने का डर है ना, इतने कष्टों का कोई भय है।
4: खूब रोए प्रेमानंद महाराज, शिष्य की मौत के बाद छलके आंसू।
3: एकमात्र भगवान का आश्रय।
4: प्रेमानंद महाराज के रोने का वीडियो हुआ वायरल।
3: अब मुझे कोई परवाह नहीं है, भगवान ऐसी।
4: ये वीडियो जैसे ही सामने आया लोग चौंक गए, ये क्या हो गया? सत्य मार्ग पर चलने की सीख देने वालों की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे?
3: शरणागति होती है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
4: प्रेमानंद महाराज को चाहने वाले लोग सकते में आ गए, सवाल उठने लगे।
3: न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
4: सोशल मीडिया पर ये दावा कि प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो उनके शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद का है, जिसमें वो काफी आहत नजर आ रहे हैं।
3: प्रियाजू ने मुझे अपना बना लिया, भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं।
4: जब पहले ये सुनिए आखिर रोते रोते प्रेमानंद महाराज क्या बोल रहे हैं। सुना आपने, प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं। ना मरने का डर है, ना ही किसी कष्ट का कोई भय,
3: ना इतने कष्टों का कोई भय है।
4: कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि हालिया घटनाओं को लेकर वो कितने आहत हुए हैं। ये वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि प्रेमानंद महाराज जी अंदर से टूट गए। अगर प्रेमानंद महाराज जी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वो सभी ट्रोलर्स होंगे जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सटीक खबर के प्रेमानंद महाराज जी को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर भी किया जा रहा है।
3: डर है ना, इतने कष्टों का कोई भय है।
5: बता दें कि प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत 25 सितंबर को हुई थी। वृंदावन स्थित श्रीहरि राधा केलिकुंज आश्रम के पास गुरुकृपा कुंज परिसर में उनका शव मिला था। चौथी मंजिल से कूदकर युवा संत रसिक दुलारी ने आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीपक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के रोने वाला वीडियो सामने आया है और ये इस वक्त खूब सुर्खियों में भी है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद अंदर से टूट गए और इस कदर आहत हुए कि फूट फूट कर रोने लगे। ये वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो के जरिए जो दावा किया गया उसमें पहला तो ये कि प्रेमानंद महाराज के रोने वाला ये वीडियो हाल फिलहाल का है। दूसरा ये बताया गया कि श्रीहरि राधा केलिकुंज से ये वीडियो सामने आया है। हमने इसके बारे में पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि शिष्य की संदिग्ध मौत और उससे जुड़े विवादों के बाद प्रेमानंद महाराज ने तुरंत ही श्रीहरि राधा केलिकुंज आश्रम छोड़ दिया था। अब वो यमुना पार बेलवन स्थित आश्रम में रह रहे हैं। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि श्रीहरि राधा केलिकुंज से इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है। वीडियो में गौर करने वाली बात यह भी नजर आई कि प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रम नहीं रह जाता और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, न मरने की का कोई डर है और न ही किसी कष्ट से कोई मतलब है। मतलब किसी भी संदर्भ में प्रेमानंद महाराज ने ये बातें कहते हुए वो रोने लग गए। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर प्रेमानंद महाराज ने यहां पर अपने शिष्य का नाम क्यों नहीं लिया। ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखने को मिला। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये कि ये वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नजर नहीं आया। तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझ कर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
4: वीडियो को देखने से लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज किसी बात का जिक्र छेड़ने के बाद रोने लगे,
3: तब हृदय में उस शरणागति होती।
4: ऐसे में फैक्ट चेक की टीम दावे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो की पड़ताल में जुटी।

0: आत्महत्या की घटना 25 सितंबर को सामने आई थी। इसके बाद हमें प्रेमानंद महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भजन मार्ग पर इसी साल 1 मार्च को अपलोड किया गया इसका लंबा वर्जन मिला। उसी दिन एकांतिक वार्तालाप और दर्शन के दौरान प्रेमानंद महाराज जब प्रवचन दे रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी। करीब 39 मिनट के इस वीडियो में ठीक 7 मिनट 10 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा आता है।
1: भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूँ, हृदय की बात कह रहा हूँ। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
0: रसिक दुलारी की मौत को लेकर प्रेमानंद महाराज के बयान का कोई वीडियो हमें नहीं मिला, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वृंदावन के राधा कीली कुंज ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रसिक दुलारी के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त किया था और बताया था कि प्रेमानंद महाराज व्यथित है। साथ ही घटना की पुलिस जांच पूरी न होने तक किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या अफवाह न फैलाने की अपील की गई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि 1 मार्च 2026 का है, जो वो एक प्रवचन के दौरान भावुक हो गए थे। रिदीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
2: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। हमने इस खबर की भी पड़ताल की।
3: नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गोवा में कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें करीब 45 मिनट तक CPR दी गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुणे के डोजे गांव में रात को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर उनकी अंतिम यात्रा का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग एक अर्थी को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही आसपास कई लोग दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, नाना पाटेकर को अंतिम विदाई, 75 की उम्र में दिग्गज अभिनेता का निधन। सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: 8 अक्टूबर को 75 वर्ष की आयु में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई। पुणे के डोंजे गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच अब ये वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है और ये वीडियो हमारे सामने भी आया। सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो की जांच में सबसे पहले हमने वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें इस वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। जब नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा के दौरान कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी दृश्य सुनने या देखने को नहीं मिला। वीडियो में नजर आ रहा है कि अर्थी को पर्दे से ढक दिया गया है, जबकि नाना पाटेकर की अर्थी को पर्दे से नहीं ढका गया था। वीडियो में एक और बात गौर करने वाली थी, कंधा दे रहे सभी लोग इस्लामिक टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दृश्य तभी सामने आता है जब किसी का जनाजा निकलता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि कहीं किसी और के जनाजे के वीडियो को नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। दूसरा सवाल ये कि दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को पुणे के डोंजे गांव स्थित उनके आवास नानाची बाड़ी में अंतिम विदाई दी गई। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही था कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 25 सितंबर को एक फेसबुक पेज पर अपलोड हुई एक वीडियो रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी देखने को मिले। इसमें बताया गया था कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान को मुंबई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके साथ ही 4 दशकों से भी अधिक समय तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाले इस अभिनेता की अंतिम यात्रा सम्पन्न हो गयी। जुमे की नमाज के बाद मुंबई के यारी रोड कब्रिस्तान में अभिनेता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। उनके अंतिम यात्रा के दौरान उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य उनके पार्थिव देह को ले जाते हुए दिखाई दिए। बता दें, फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का लंबी बीमारी के चलते 24 सितंबर को निधन हो गया था।

0: सर्च के दौरान हमें 25 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी नाना पाटेकर की अंतिम विदाई का बताकर शेयर किए गए वीडियो वाले दृश्य मौजूद है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के जनाजे का है, जिन्हें 25 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद यारी रोड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। हमारी जाँच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ये वीडियो अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम विदाई का नहीं है। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के अंतिम जनाजे का है, जिनका 24 सितंबर को निधन हो गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: फैक्चुअल के आखिरी सफर का आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: मैडम ने जब मासूम बच्चे से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनके जवाब सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किसी ने सलमान खान बनने की बात कही, तो किसी ने ढाबा खोलने और लंदन जाने का सपना बताया। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। कविता सुनाने का अंदाज अगर थोड़ा अलग हो तो हर किसी का ध्यान खिंच जाता है। इस बच्चे ने भी कविता सुनाने के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा है। बच्चा बांस की दीवार पर चढ़ा हुआ है और नीचे बैठे बच्चों को बड़े उत्साह से कविता सुना रहा है। चेहरे की मासूमियत और अंदाज की बेफिक्री इस पूरे पल को खास बना रही है। वीडियो देखकर लोग बच्चे की क्यूटनेस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। ट्रेन में बैठा बच्चा बड़े आराम से चिप्स खा रहा था, लेकिन नीचे बैठे बंदर को भी पैकेट दिखाकर ललचा रहा था। बच्चे को शायद अंदाजा नहीं था कि बंदर इतनी जल्दी एक्शन में आएगा। तभी बंदर ने छलांग लगाई और जंगल के रास्ते बच्चे के हाथ से चिप्स का पूरा पैकेट छीन लिया। कुछ ही सेकंड में बंदर अपना काम कर चुका था। अब इस मजेदार वीडियो को देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है। कहते हैं कि प्यार जताने के लिए किसी बड़े तोहफे या महंगे सरप्राइज की जरूरत नहीं होती, कई बार छोटी छोटी चीजें भी दिल छू जाती हैं। ऐसा ही ये प्यारा सा पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड रात में बैंक की ड्यूटी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी घर से खाना लेकर पहुंच गई। दोनों ने बैंक के अंदर शटर के बाहर बैठकर साथ में खाना खाया और कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताया। इस साधारण से पल ने लोगों को रिश्तों की असली अहमियत याद दिला दी। प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से जाहिर होता है। उम्र चाहे कोई भी हो, रिश्ता पुराना हो या नया, अगर प्यार सच्चा है तो परवाह हमेशा बनी रहती है। इस वीडियो में पत्नी बीमार होकर बिस्तर पर लेटी है और उन्हें दर्द में देखकर पति उनके पैर दबाने लगते हैं। पति का ये छोटा सा कदम रिश्ते की बड़ी खूबसूरती बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यार और देखभाल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: Today, my wife and I are cooking prasad for our family. My dad is outside mowing the lawn right now.
4: Two sabjis, one karela, and rice. So over here.
2: भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का रंग विदेशियों पर भी चढ़ता नजर आ रहा है। विदेशी परिवार के घर हरे कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। परिवार को प्रेम से सात्विक प्रसाद बनाते देख लोग उनकी संस्कृति के प्रति श्रद्धा की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
4: Yes. And then over here, let me check that spot. Okay. Here we got a squash sabji.
2: ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक लड़का समुद्र के रेतीले तट पर खड़ा है और उसके हाथों में एक विशाल पतंग की डोर है। ये पतंग सामान्य पतंगों से बिल्कुल अलग है। इसका अलग हिस्सा खौफनाक ड्रैगन के चेहरे जैसा बना है, जिसके बड़े बड़े दांत और आंखें बेहद जीवंत लगती है। इसके पीछे लंबी पूंछ जैसी संरचना जुड़ी हुई है जो हवा के थपेड़ों के साथ किसी उड़ते हुए नाग की तरह लहराती है। जब युवक इस विशाल पतंग को संभालने और हवा में लहराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक एक छोटा बच्चा चिप्स का पैकेट हाथ में लिए कैमरे के सामने आ जाता है। एक तरफ जहां हवा में भयानक ड्रैगन मंडरा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इस बच्चे का बेफिक्र अंदाज में चिप्स खाना वीडियो को एक मजेदार ट्विस्ट दे देता है। इंसान हो या जानवर, प्रेम फर्क मिटा देता है। दिखते हैं तो सिर्फ भाव जो एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देते हैं। देखिए इस वीडियो में खुद साइकिल पर है ये शख्स और डॉगी को कंधे पर ऐसे बिठा रखा है मानो कोई छोटा बच्चा हो। डॉगी के साथ इस शख्स की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आ रही है। इन्हें देखिए, ऐसे अटैक कर रहे हैं मानो हरा ही देंगे मुकाबले में। आत्मविश्वास भरपूर है, हो भी क्यों नहीं, सामने वाला भी तो इस लड़ाई में खूब दिलचस्पी ले रहा है। भले ही बच्चे का मन रखने की गरज से खेल खेल रहे हों, लेकिन बच्चा भला अपने आप को बच्चा कहां समझ रहा है। बछड़े की ये मासूमियत देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। माँ का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, बेजुबान भी अपने बच्चों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। इस वीडियो में एक डॉगी अपने बच्चे के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्चा आगे आगे भागता है तो माँ उसे पकड़कर वापस अपनी ओर ले आती है। कभी प्यार से साथ दौड़ती है तो कभी दांतों से पैर थामकर उसे रोक लेती है। माँ और बच्चे के बीच प्यार भरा ये नजारा देखकर लोग भावुक भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तपस्या और संयम की देवी के साथ माँ ब्रह्मचारिणी का मिलेगा आशीर्वाद, माँ की महिमा अपरंपार, भक्तों का उद्धार, नारित्व के सम्मान का उत्सव गरबा देखिए। अयोध्या की 151 साल पुरानी रामलीला का आनंद, श्री राम के जीवन और लीलाओं का मंचन। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
1: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, जयंती पर देखिए शक्ति उत्सव दिन भर। नवरात्र के मौके पर इंदौर के ब्रजासन माता मंदिर में उमड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों की होती है आराधना। सरहद पर भी विधिवत हो रही शक्ति आराधना, जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। नवरात्र पर गुजरात की गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना, आकर्षण का केंद्र तलवारों के साथ, बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉर्न और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की, जिसका आज दूसरा दिन है और आज देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। सुबह से ही देश के तमाम प्राचीन मंदिरों और शक्तिपीठों में मां के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है।

सजे हैं देवी माँ के दरबार, मंदिरों में भक्तों की लगी है कतार, हर तरफ हो रही माँ की जय जयकार। आस्था और भक्ति का ये उत्सव शुरू हुआ तो देश के तमाम देवी मंदिर और शक्ति पीठ भक्तों से गुलजार हो उठे। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या आम और क्या खास, हर कोई देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए दौड़ा चला आया।

0: ये दो तस्वीरें दिल्ली के प्राचीन मंदिर कालका जी और झंडेवाला की है, जहां शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन दिन भर माँ के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की कतार देखने को मिली है। इनमें कोई माँ को अर्पित करने के लिए फल फूल लेकर आया और कोई माँ के लिए चुनरी और नारियल लेकर आया।
1: नवरात्रि का आज दूसरा दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है और आज के दिन भी दिल्ली का हर एक भक्त झंडेवालान मंदिर में पहुंचने की कोशिश करता है। इस वक्त हम भी झंडेवालान मंदिर में हैं और भक्तों की भारी भीड़ आज भी यहां आने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही है। कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर तो भक्तों के उत्साह में कोई कमी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। दिल्ली का कोई भी नागरिक हो वो ज़रूर कोशिश करता है कि झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि में कम से कम एक बार तो ज़रूर पहुँचे। यहाँ आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सालों साल से लगातार इस मंदिर में आते रहे हैं।
0: माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, संयम और दृढ़ संकल्प की प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। धार्मिक मान्यता है कि उनके विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को धैर्य, आत्मबल और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी मनोकामना को लिए ये भक्त माँ के दरबार में पहुँचे हैं।
2: शरतकालीन नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा आराधना की जाती है। इनका नाम ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता ब्रह्म तप करने वाले, तप का आचरण करने वाले। भगवत के रूप में इनका पूजन आराधना अर्चना की जाती है। सभी भक्त लोग अपने अपने मनोरथ, अपनी कामना, अपनी इच्छा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा के रूप में माँ झंडे वाले मंदिर में दर्शन के लिए सैकड़ों लाखों लोगों में यानी दर्शन के लिए आते हैं।
0: दिल्ली की तरह ही देश के दूसरे शहरों में भी शक्ति उपासना के इस पर्व की रौनक देखते ही बन रही है। खासकर देवी माँ के जितने भी शक्ति पीठ है वहाँ नवरात्रि के मौके पर माँ की विशेष पूजा आराधना की जा रही है। मंदिर घंटे घड़ियाल, शंख और घंटियों की आवाज से गूंज रहे हैं। इन शक्ति पीठों की सजावट भी देखते ही बन रही है। चाहे हरिद्वार का माया देवी मंदिर हो या सतना का शारदा माता का मंदिर हो या फिर कोई और शक्ति पीठ, माँ के इन धामों में आस्था का मेला लगा हुआ है। वैसे तो साल भर ये तमाम शक्ति पीठ भक्तों से गुलजार रहते हैं, लेकिन अगर मौका नवरात्रि का हो तो इनकी रौनक और बढ़ जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग इन शक्ति पीठों में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँच रहे हैं।
3: माया देवी मंदिर में जो भी मत्था टेकता है उसकी मनोरथ पूर्ण होती है, माँ उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।
4: नवरात्रि में कितनी विशेष हो जाती है माँ माया देवी?
3: देखिए नवरात्रि में तो विशेष होती है, मैं तो साधु हूँ, मेरे लिए तो रोज ही विशेष रहती है। नवरात्रि में भक्तों को दर्शन देने आती है माँ, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने आती है, कष्टों को दूर करने आती है।
5: बहुत भव्य आरती हुई है और बहुत मन लगा मंदिर में आकर के, और देवियों के दिन चल रहे हैं तो अच्छा लगा बहुत।
6: नवरात्रों में बहुत ये देवी की बहुत ज्यादा मान्यता है। माया देवी मंदिर हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसकी यहाँ पे नवरात्रों में बहुत फलों से फूलों से देवी का श्रृंगार किया जाता है और यहाँ पे बहुत भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
0: 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति उपासना के इस पर्व के दौरान एक से बढ़कर एक आस्था और भक्ति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर बिहार के कटिहार में देखने को मिली है। वहाँ अयोध्या गंज बाजार में मौजूद माँ वैष्णवी मंदिर में भक्तों ने नवरात्रि के मौके पर 251 किलो के विशाल लड्डू का भोग माँ को लगाया है। कुल मिलाकर शक्ति साधना का ये पर्व पूरे ही देश में बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है और लोग देवी दुर्गा की आराधना में तन मन से डूबे हुए हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया और आशुतोष कुमार के साथ सतना से वेंकटेश द्विवेदी और कटिहार से विपुल राहुल, गुड न्यूज टुडे।
7: शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हुआ तो शहर शहर गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम लोग देवी के भजनों पर एक साथ झूमते हैं और मां की उपासना करते हैं।

0: नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हुए तो देवी माँ की उपासना में भक्तों ने अपना पूरा जोश और उत्साह झोंक दिया है। चाहे माँ के मंदिर हो या जागरण, गरबा हो या तलवार रास, लोगों की एनर्जी देखते बन रही है। गुजरात के जामनगर से आई इस तस्वीर में भी ऐसा ही उत्साह और जोश देखने को मिला। यहाँ नवरात्रि के खास मौके पर पारंपरिक तलवार रास किया गया, जिसमें इन लड़कियों ने हाथों में तलवार लेकर महाकाली तांडव समेत विभिन्न पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 सालों से नवरात्रि महोत्सव की परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। ये तलवार रास इस गरबी मंडल की खास पहचान है। आशापुरा गरबी मंडल का तलवार रास पूरे इलाके में खासा मशहूर है। इस मंडली से जुड़े लोगों का कहना है कि ये परंपरा आज भी नई पीढ़ी को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही है। इनकी ये कला न केवल गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती है, बल्कि नारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संदेश भी देती है।
1: આ ગરબી છેલ્લા 45 વર્ષથી થાય છે અને આ ગરબી બધી બધી છોકરીઓ એટલી ખુશીથી રમે છે અને એટલી ઉત્સાહથી રમે છે અને આ ગરબીમાં તલવાર રાસ, મહાકાળી તાંડવ જેવા અનેકો રાસો થાય છે। તલવાર રાસમાં અત્યારે અમે લોકો દાંડિયાના બદલે તલવાર વાપરી છીએ, જેનાથી અમે લોકો નારી શક્તિ આગળ વધારી છીએ અને લોકો આ તલવાર રાસને દૂર દૂરથી જોવા આવે છે અને આ અમારો રાસ બહુ ફેમસ છે।
0: नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबा, डांडिया, नाइट्स और रास का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है, जिनमें बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी खास तैयारी की है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ज्यादा सतर्क है। राजकोट के पंडालों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की एक खास टीम बनाई है। इस शी टीम में महिलाएं पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि गरबा कलाकारों की शक्ल में ही रहेंगी, जो अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और ऐसे आयोजनों में पहुंचने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी।
2: हमारी शी टीम जो है महिला पुलिस स्टेशन में तैनात है और बाकी हर एक पुलिस स्टेशन में शी टीम के महिलाएं आइडेंटिफाइड है, तो वो महिलाएं पारंपरिक गरबा की गणवेश पहन के अलग अलग गरबाओं में जाएंगी और वहां पे नजर रखेंगे कि कोई रोमियो या फिर आवारा तत्व जो है छेड़खानी का प्रयास कर रहा हो या फिर कोई भी बहन बेटी को परेशान कर रहा हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। और इसके अलावा हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की जो टीमें हैं वो गरबा के संपूर्ण आयोजन के दौरान जो है आयोजन रहेंगी।
0: गुजरात के इस लोक नृत्य को लोग खासा पसंद भी करते हैं, इसलिए रात रात भर चलने वाले इन आयोजनों में सुरक्षा एक अहम पहलू रहा है। ऐसे में प्रशासन की भी कोशिश यही है कि गरबा में आने वाले सभी लोग बिना किसी परेशानी के गरबा खेल सकें। जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रभात। शहर शहर सनातन के प्रतीक रामलीला की निभाई जा रही परंपरा की। रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का जीवंत प्रतीक है। अयोध्या में राम जानकी मंदिर की रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से होता है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते ये रामलीला भी श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखती है। इस रामलीला की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान श्री राम, हनुमान जी और दूसरे पात्रों से जुड़ी भूमिका निभाने वाले कलाकार बाहर से नहीं बल्कि स्थानीय लोग ही होते हैं और बचपन से रामलीला से जुड़ने वाले बच्चे बड़े होकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।

0: दिव्य भव्य राम नगरी, आस्था, अध्यात्म और सनातन परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र अवधपुरी, अद्भुत अलौकिक प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर शारदीय नवरात्रि के दौरान स्वर्णिम वैभव से निखर चुकी है। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के दौरान राम नगरी में जगह जगह रामलीला का भी मंचन हो रहा है। अयोध्या में भगवान के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संगीत, संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से हो रहा है। माँ सरयू नदी के तट पर विराजमान अवधपुरी आस्था, परंपरा और भारतीय संस्कृति के विराट उत्सव दशहरा के लिए तैयार हो चुकी है। दशरथ नंदन भगवान राम की पवित्र नगरी में बेहद प्राचीन, जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रामायण मंचन हो रहा है। भगवान राम के चरित्र और उनकी लीलाओं के प्रति लोगों का समर्पण ही ऐसा है कि वो पूरी पूरी रात जाग कर मंचन देख रहे हैं। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर की विख्यात रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते यहाँ की रामलीला बहुत मशहूर है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाली इस रामलीला में भगवान श्री राम, हनुमान जी और दूसरे पात्रों की भूमिका निभाने के लिए कलाकार बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि वो स्थानीय ही होते हैं।
1: ये अयोध्या नगरी है भगवान राम की। यहाँ पे मंच जगह जगह सज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकार प्रकार से मंच पर श्री राम जानकी मंदिर की रामलीला है और राम पथ पर है। लगातार यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे राम मंदिर है। तो ये रामलीला की शुरुआत है। जगह जगह से कलाकार आए हैं और ये काफी प्राचीन रामलीला है, 100 वर्षों पुरानी रामलीला है। तो लगातार यहाँ पे लोग बैठे हैं, रामलीला का आनंद उठा रहे हैं और भगवान राम की जो रामायण की गाथा है उसको लगातार सुनते चले आ रहे हैं। तो ये प्रथा है अयोध्या की, भगवान श्री राम की नगरी है।
0: रामलीला के पात्र, संगीत, संवाद और विशेष रूप से कलाकारों के मंचन का अनुभव ऐसा कि लोग घंटों बैठे रहते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि कितनी रात बीत गई।
2: बहुत साल हो रहा है यहाँ पर, बहुत दिन से हो रहा है।
1: बहुत ज्यादा हो गया।
2: हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: कितने देख रही है? कितने सालों से देख रही है?
2: अरे हम तो 12-13 साल से देख रहे हैं।
1: 12-13 साल से देख रही है। कितने सालों से रामलीला?
3: हम तो कब से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे
1: हैं। बहुत पुरानी रामलीला।
0: राम नगरी से करीब 160 किलोमीटर दूर संगम नगरी प्रयागराज में दशहरा महोत्सव और रामलीला के आरंभ की पारंपरिक घोषणा हुई। उससे पहले पूरे वैभव, श्रद्धा और उल्लास के साथ ऐतिहासिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो दशहरा महोत्सव और रामलीला मंचन के प्रारंभ का प्रतीक है। पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी की पारंपरिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा हीवेट रोड पर मौजूद चमेली बाई धर्मशाला से निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल धार्मिक झांकियां इस पारंपरिक आयोजन से जुड़े आकर्षण के केंद्र में रही। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान राम, माता सीता, भगवान कृष्ण, माँ काली, भगवान गणेश, राम भक्त हनुमान और सूर्य देवता की झांकी की वजह से पूरा माहौल ही भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा में शामिल करीब 20 फीट ऊंचा भव्य और सुसज्जित कर्ण घोड़ा मुख्य आकर्षण रहता है, जिसे मोतियों, आकर्षक लाइट्स और पारंपरिक सजावट से सजाया जाता है। सफेद रंग के कर्ण घोड़े को भगवान श्री राम का दूध भी माना जाता है। यही वजह है कि शोभा यात्रा निकलते ही दशहरा महोत्सव के आधिकारिक शुभारम्भ का संदेश फैल जाता है।
4: ये कर्ण घोड़े का कंसेप्ट उत्तर रामायण काल में जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या आ गए तो ये कर्ण घोड़ा राम की कथा को पूरे जो है राम राज्य में, राज्य अयोध्या के राज्य में घूम घूम के सुनाया करता था। तो उसी घोड़े को ये माना जाता है कि अब ये घोड़ा जो है पूरे जनपद के अंदर राममय बना देगा, राम की कथा चारों तरफ बहेगी, लोग आनंद लेंगे, सीता राम की जय बोलेंगे, भरत जी की जय बोलेंगे, लक्ष्मण की जय बोलेंगे और हनुमान जी की जय बोलेंगे। माने पूरा जो रामलीला का कंसेप्ट है, रामायण का कंसेप्ट है, वो चारों तरफ वातावरण में फैलता रहेगा।
5: ये परंपरागत हो रहा है, आज से 150 साल पहले कमेटी के पूर्वज लोगों ने इसका प्रारंभ किया था और मुकुट पूजा से कार्यक्रम प्रारंभ होता है जो राष्ट्रपति तक चलता है। ये राम मंदिर से प्रारंभ होकर के हमारे जो रूप चौकी का है कोठा पाचा रामबाग पटाखा मंदिर लोकनाथ चांदेगंज को पुनः यहाँ से समाप्त हुआ।
0: इस साल भी शोभा यात्रा में डमरू दल पारंपरिक ढोल ताशों डीजे बैंड बाजा और भक्ति गीतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शारदीय नवरात्र पर शहर शहर लोक कलाकारों की मंडलियां प्रमुख प्रसंगों के जरिए भगवान राम के धर्म कर्तव्य प्रेम त्याग और बलिदान जैसे मूल्यों को राम भक्तों के सामने पेश करते हैं जिसको देखकर राम भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
6: खबरें सच्ची होनी चाहिए अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और हम लोग देवी की अलग अलग स्तुतियां कर रहे हैं। आज हम आपको देवी की एक चमत्कारी स्तुति के बारे में बताएंगे जिसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि क्या है आज का लकी टिप और सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:27 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:12 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, चंद्रमा बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, देखिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में लिखा हुआ है शिव पार्वती संवाद के नाम से। दुर्गा सप्तशती का पाठ थोड़ा कठिन है और चूक हो जाने पर लाभ नहीं होता, ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का पाठ ज्यादा सरल भी है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल आपको मिल जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मंत्र अपने आप स्वतः ही सिद्ध किए हुए हैं, इसलिए इनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत अद्भुत स्तोत्र है
जिसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। इसके नियमित रूप से पाठ करने पर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और नवरात्रि में या वैसे भी अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी कठिन से कठिन समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी, परिवार के रिश्तों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से आपको जीवन में क्या फल मिलते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को वाणी की और मन की शक्ति मिलती है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है और मन मजबूत होता है, व्यक्ति का आलस्य दूर होता है, व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति को खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। और अगर आप रोज शाम को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो जीवन में धन और समृद्धि मिलती है। और जो कोई भक्त, जो कोई साधक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है उसके ऊपर तंत्र मंत्र

का तरीका और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, देवी को लाल फूल अर्पित करेंगे। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करेंगे। शाम के समय में गोधूलि वेला में या मध्य रात्रि के समय में अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो उत्तम होगा। देवी के सामने एक घी का दीपक जलाएं, इसके बाद लाल आसन पर बैठिएगा। अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सकें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लें कि मैं किस कामना के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले साधक को पवित्रता का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने आहार अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, संतान की खूब उन्नति होगी, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मन प्रसन्न रहेगा, धन की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या दूर होगी, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।

कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, करियर का दबाव कम होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, सामान्य जीवन में भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, खास तौर से अगर पाप ग्रहों की समस्या हो, शनि की दिक्कत हो, राहु या केतु की दिक्कत हो, और विशेषतर राहु की समस्या अगर ज्यादा परेशान करे तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। पाप ग्रहों की बाधा से, पाप ग्रहों की समस्या से आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में देवी को पान के पत्ते पर रख कर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा लगातार 3 दिनों तक। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन नाजमा ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में उमड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों की होती है पूजा। सरहद पर भी विधिवत हो रही शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी है और इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा नवरात्र पर यूपी पुलिस के मिशन शक्ति अभियान की भी है। देखिए,
4: प्रतियोगिता तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ये थोड़ा अलग हटकर है, क्योंकि यहाँ टास्क इंसानों के लिए नहीं कुत्तों के लिए है। राजस्थान के अलवर में यह इंटर फ्रंटियर डॉग कंपटीशन 2026 के समापन समारोह की तस्वीरें हैं, जहां देश भर से अलग अलग फ्रंटियर के एसएसबी जवान अपने ट्रेंड डॉग्स के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुए और अलग अलग कैटेगरी के चैलेंज में अपना कर्तव्य दिखाया। सबसे दिलचस्प तो जवानों और डॉग्स के बीच की जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग और उनके बीच का तालमेल था। विजेता डॉग को पुरस्कार भी दिए गए। इसमें अलवर ट्रेनिंग सेंटर और पटना के डॉग ने प्रतियोगिता जीती। डॉग्स ने परेड में भी हिस्सा लिया। इस दिलचस्प और अनूठी प्रतियोगिता को देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। शारदीय नवरात्र के उत्साह और आध्यात्मिक माहौल के बीच यूपी पुलिस ने अनूठी पहल की। मौका शक्ति की आराधना का है, ऐसे में यहां चंदौली में यूपी पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की जागरूकता रैली निकाली। ये तस्वीरें उसी की हैं। यहां सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पूरे जोश में सड़कों पर दिखाई दी। इनमें महिला पुलिसकर्मियों से लेकर आम महिलाओं और छात्राओं ने भी हिस्सा लिया और शहर के अलग अलग इलाकों तक पहुंचकर महिलाओं के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर उन्हें जागरूक किया। ये भीड़ देखिए, मानो पूरा गांव उठकर यहीं चला आया हो। यूपी के कानपुर देहात में ये कुश्ती का क्रेज है। 19वें विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो न सिर्फ नैला कटरा गांव बल्कि आसपास के गांव से भी लोग इस प्रतियोगिता के साक्षी बनने पहुंच गए। भीड़ ऐसी उमड़ी कि देखने वाले दंगल में पहलवानों के दाव पेच से ज्यादा चर्चा लोगों के इस हुजूम और कुश्ती को लेकर उनके उत्साह के कर रहे हैं। यहाँ बैठने की जगह तो छोड़िए, खड़े होने तक की जगह नहीं बची। इस खेल में दिलचस्पी ऐसी कि कुश्ती देखने के लिए कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर खड़ा नजर आया तो कोई ई रिक्शा और बाइक पर खड़े होकर मुकाबलों का रोमांच लेता नजर आया, और पहलवानों का जोश बढ़ाने के लिए तालियां और शोर भी खूब गूंजा। प्रतियोगिता में कड़ी टक्कर के बाद पुरुषों के मुकाबले में मौसम अली तो महिलाओं में रूबी पहलवान ने जीत दर्ज की, और इस तरह कानपुर देहात के रसूलाबाद में रिकॉर्ड भीड़ और रोमांचक मुकाबलों के बीच 19वां विराट दंगल संपन्न हुआ। बिहार के सासाराम में मिट्टी के ये जलते दिए यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा और आस्था की जगमगाती तस्वीर हैं। नवरात्र के पावन त्योहार और शक्ति की आराधना के उत्सव के बीच सालों से यहाँ के तारा चंडी देवी स्थान में नवरात्र पर सैकड़ों घी के दिए इसी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। असल में ये दीपक मन्नतों के हैं, माँ से उनकी संतानों की प्रार्थना के हैं, जो इस अनूठे रिश्ते को भाव से भर देती है। इन दीपकों की संख्या हजारों में होती है, ऐसे में यहाँ कई अखंड दीप गृह बनाए गए हैं, जहाँ पुजारी और व्यवस्था में लगे लोग दीयों की देखभाल करते हैं, ताकि भक्तों की पुकार माँ तक पहुँचने तक ये अखंड दीप जलता रहे। इसका एक फायदा पर्यावरण को भी होता है, शुद्ध घी से हजारों दीपक कई दिनों तक लगातार जलने से न सिर्फ वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भी भर जाता है। शक्ति की आराधना का पावन पर्व शुरू हो चुका है, लोग माँ की भक्ति में भूले हुए हैं। ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं, जहाँ नवरात्र पर आयोजित पारंपरिक गरबा और तलवार रास लोगों का ध्यान खींच रहा है। आशापुरा गरबी मंडल की ओर से आयोजित इस गरबा उत्सव में युवतियों से लेकर छोटी बच्चियों तक ने अपनी गरबा कला के जरिए माँ अम्बे की आराधना की और तलवार रास के जरिए नारी शक्ति का संदेश भी दिया।
2: और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज की सुबह ठंडी हवाओं और बारिश के साथ हुई। मौसम में हुए इस बदलाव से जहां शहरी इलाकों में लोगों ने सुकून महसूस किया, वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी गई। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। अमूमन अक्टूबर में बारिश थम जाती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हुई बारिश ने गर्मी से राहत दी है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित पूरे 24 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

0: उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी है। बर्फबारी से पहाड़ों पर तापमान तेजी से गिरा है। वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बारिश से मौसम के मिजाज में नरमी आई है। राजधानी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया। वहीं यूपी के मेरठ में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। जम्मू में मूसलाधार बारिश से सड़कें और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के श्रृंखला दर्रे में बर्फ से फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सोमवार सुबह अचानक मौसम में बड़ा बदलाव दिखा। पहले तेज हवाओं ने मौसम के तेवर को नरम कर दिया, इसके बाद बारिश ने राजधानी को भिगो दिया, जिससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिला। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हवा इतनी तेज चल रही है कि उसमें बारिश की बूंदें ऐसे उड़ रही हैं मानो आसमान में धुआं उड़ रहा हो। तेज हवा के झोंकों के साथ झमाझम बारिश हो रही है।
1: दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज अक्टूबर महीने में ऐसा बिगड़ा है, एक तो तापमान में राहत मिल गई क्योंकि अचानक ठंडक बढ़ गई है, लेकिन जो बेमौसम बरसात है उससे कई जगहों पर वाटर लॉगिंग जरूर हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दरअसल ये स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है जिसका असर हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। हालांकि दिल्ली और एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी समझिए कि बीती रात 2-2.5 बजे के बाद से झमाझम बारिश हो रही है। दूर दूर तक जितने इलाके हैं, कई जगह सड़कों पर लो लाइन इलाकों पर जलभराव भी देखने को मिला है, जिसके चलते ट्रैफिक समस्या भी हो सकती है। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मौसम का अपडेट ये लेकर के चलें, क्योंकि अभी लगातार ये जो रेड अलर्ट वो जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा, इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीआर के आसपास का जो पूरा इलाका है वहां लगातार तेज बरसात हो रही है। हालांकि कई जगहों पर बूंदाबांदी है, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि बरसात आगे लगातार जारी रहेगी, मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। आमतौर पर जैसे उत्तर पश्चिम जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी विदाई हो रही है, वो धीरे धीरे लौट रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो रहा है।
0: दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे सड़कों पर कुछ इलाकों में वाहन रेंगते नजर आए। दिल्ली के मध्य और दक्षिणी इलाकों कनॉट प्लेस और कालकाजी मंदिर के आसपास बादलों ने जमकर पानी बरसाया। यानी वीकेंड के बाद हफ्ते के पहले ही दिन दिल्ली एनसीआर में हुई इस बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया।
1: अक्टूबर के महीने में आराम से आप सोचिए कि सुबह सुबह कैसे अचानक से जो तपिश थी या उमस आपको महसूस हो रही होगी, अब अचानक से तापमान में आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तो सुबह सुबह ठंड बढ़ गई है, बरसात हो रही है, तेज़ बरसात अगर जारी रहती, क्योंकि रेड अलर्ट की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, यानी तेज़ आंधी तूफान आ सकते हैं, थंडर स्टॉर्म के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर आप जा रहे हैं कहीं पर तो जल जमाव हो सकता है, अगर आप दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, और अगर नहीं जा रहे हो तो कम से कम घर पर आप मौसम का मिजाज जो है बिगड़ा नहीं कहेंगे, काफ़ी अच्छा हो चुका है, खुशनुमा हो चुका है, और ऐसा आपको सर्दियों का आभास भी अक्टूबर के इस पहले दूसरे सप्ताह में होने लगा है।
0: इस बीच मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर महीने की इस बारिश से आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के तापमान में और गिरावट आएगी। फिलहाल बारिश के चलते पूरे एनसीआर की हवा साफ हो गई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बारिश के कारण तापमान गिरकर इस महीने के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, और इसी के साथ ये दिन पिछले 4 साल में अक्टूबर में एक दिन में सबसे अधिक बारिश वाला दिन भी बन गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम में आए इस बदलाव का कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बताया जा रहा है, जिसका सीधा असर पूरे उत्तर भारत के मौसम पर पड़ा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि दिल्ली के कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में 13 से 17 अक्टूबर के बीच अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार दोपहर बाद तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई और शहर के कई इलाकों में सड़कों पर सफेद ओले बिछ गए, गलियों में पानी भर गया। अक्टूबर में हुई इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से गर्मी का सामना कर रहे लोगों ने मौसम में आए इस बदलाव से राहत महसूस की। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 1-2 दिन मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। बारिश के असर से प्रदूषण के स्तर में भी राहत मिलने की उम्मीद है। जम्मू में रविवार सुबह हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के कई इलाकों में सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों में पानी भर गया। कई घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद शहर के ज्यादातर नाले उफान पर आ गए और जल निकासी की व्यवस्था चरमराने से निचले इलाकों की सड़कें, दरिया और रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हो गए। बताया जा रहा है कि वजीर लेन में 2 से 3 फुट पानी चढ़ने से गली में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं।
2: हम अभी खड़े हैं वजीर लैंड में अपने वार्ड नंबर 41 में। आज यहाँ पे बारिश ने वो हाल कर दिया है कि लोगों को घरों का नुकसान आप देख ही सकते हो कि लाखों रुपए का लोगों को घरों को नुकसान हुआ है। जो उनकी गाड़ियाँ बह के पानी के बिल्कुल नाले के पास आ गई, जो 500-500 मीटर दूर गाड़ियाँ थी वो भी रोड से आगे आते हुए पूरे नाले में बह के यहाँ पे नाले के पास पहुंची हुई है। मेरे ख्याल में ये गाड़ियाँ 5-6 गाड़ी तो हमने अभी देखी है, और जो स्कूटरी, बच्चों के साइकिल, ये सब लोगों के घरों से बाहर निकलते पानी में बह गए।
3: गाड़ियों का तो छोड़ो सर, घर में जो नुकसान हुआ ना लोगों का, वो अभी रिकवर करने में कम से कम उनको हफ्ता लगेगा सफाई करने में। 8-8, 10-10 फुट पानी है घर के अंदर, और गाड़ियां कम से कम 10-12 तो मैंने खुद देखी बहती हुई, जिनमें से एक मेरी थी, वो नाले के पास पड़ी हुई है। कम से कम 500 मीटर चल के आई है वो बह के वहाँ से। पानी रोड में कम से कम 15-15, 20-20 फिट था। तो बाकी सभी यहाँ पे जितने भी घर हैं ना, हर घर में पानी गया है, कोई भी नहीं सेफ है जिसके घर में नहीं गया होगा। किसी की दीवार टूटी है, किसी के गेट टूट गया, किसी के घर में पानी, तो किसी के बेड, तो मतलब बेड ऐसे तैर रहे हैं जैसे स्विमिंग पूल में कोई तैरता है, वैसे बेड तैर रहे हैं।
0: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शिंकुला दर्रे पर अचानक हुई बर्फबारी के कारण करीब 20 से 25 बाइकर और 40 गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई। ये सभी वाहन जंगसर घाटी से शिंकुला पास होकर लाहौल की ओर आ रहे थे। भारी बर्फबारी के कारण बाइक सवार फिसलन होने से संतुलन खोकर गिरने लगे, जबकि कई गाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में कुछ वाहनों को रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। पर्यटकों के फंसे होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकालकर नीचे पहुंचाया।
4: चौफ टॉप से आ रहे थे, सारे बाइकर्स थे, वहाँ फंस गए, सब गिरे एक एक करके बाइक से, और फिर ये जनाब आए, हमारे सर लोग आए, इन्हें हमें रेस्क्यू किया वहाँ से, और सेफली हमें और कम है अभी, इन्हें हमको यहाँ पे कैंपर दिलाया, जाएंगे ऊपर वापस बाइक नीचे लेके आएंगे।
5: बस यहाँ पे हम लोगों को इन्होंने कैंपर का सर्विस अवेलेबल करा दी है, तो हम जाएंगे वापस बाइक से ड्रॉप करवा देंगे। बहुत ज्यादा कॉपरेटिव है ना, श्रृंखला टॉप में फंस गए थे हम लोग, वहाँ पे ऊपर ही, फिर वहां से नीचे आना बहुत मुश्किल हो रहा था।
6: अंकल ने देखा अपने आप ही, फिर अपने आप ही उन्होंने बोला कि बाइक यहीं रख दो, हम छोड़ देंगे सेफ्टी। हम
7: बाइक आगे आई नहीं रहती, सब बुलाया रहती गिर रही थी किनारे पर, ब्लैक गाइस, और इतनी स्नो आ रही है वहाँ पे। तो जनाब ने हेल्प की दोनों ने, और फिर हम लोग इस गाड़ी से रेस्क्यू करके आए यहाँ पर। अब जाएंगे वापस ऊपर टॉप पे जाएंगे, वहां से बाइक लेके आएंगे।
0: बहरहाल श्रृंखला दर्रे और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते सुरक्षा के मद्देनजर आवाजाही को रोक दिया गया है। इसका मकसद बर्फबारी और सड़क पर फिसलन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फिलहाल अक्टूबर को आमतौर पर मानसून की विदाई और मौसम में बदलाव का महीना माना जाता है। कई जगह इस समय बारिश कम होने लगती है। आमतौर पर माना जाता है कि अब बारिश नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि मानसून की वापसी का मतलब ये नहीं है कि बारिश पूरी तरह रुक जाएगी, बल्कि मौसम चक्र जिस तरीके से बदल रहा है उससे संभावना इस बात की भी है कि आने वाले वर्षों में अक्टूबर में भी तेज बारिश, आंधी और ओले पड़ सकते हैं, और बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश इसका संकेत माना जा रहा है। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी, मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ, दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
8: बिहार के कटिहार में मां दुर्गा को 251 किलो के महालड्डू का लगाव होगा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस ने राष्ट्रीय एकता दिवस और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मणिपुर से गुजरात तक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का मकसद देश में राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और युवाओं को नशे से दूर रखने को लेकर जागरूकता फैलाना है। मणिपुर से शुरू हुई यह जागरूकता रैली गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर खत्म होगी। इस दौरान ये बाइकर्स अलग अलग राज्यों से होते हुए यात्रा करेंगे। असम से गुजरते हुए ये आज बगाईगांव जिला के असम पुलिस कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और फिर यहां से आगे के लिए रवाना हुए। शारदीय नवरात्रि में अयोध्या के प्रसिद्ध बड़ी देवकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि मां बड़ी देवकाली भगवान श्री राम की कुलदेवी हैं और राजा रघु ने युद्ध में विजय के लिए मां बड़ी देवकाली की आराधना की थी और उन्होंने ही ये मंदिर भी बनवाया था। इस मंदिर में मां के त्रिगुणात्मक स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड के टिहरी में कुंजापुरी मेले की शुरुआत हो गई। सीएम धामी ने इसका शुभारंभ किया। ये लगातार 50वां साल है जब टिहरी के नरेंद्र नगर में ये मशहूर मेला लगा है। मेले में छूलिया नृत्य, महिषासुर मर्दिनी, मां कुंजापुरी और नरेंद्र नगर में आए बदलावों पर आधारित आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गयी। नवरात्रि पर बिहार के कटिहार में भक्ति का एक अलग रंग देखने को मिला। यहां के अयोध्यागंज में मां दुर्गा को 251 किलो यानी करीब 2.5 क्विंटल वजनी महालड्डू का भोग लगाया गया। इस प्राचीन मंदिर में कुमरा यानी कद्दू का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि माता के हाथ का चूड़ी का टुकड़ा टूटकर यहां गिरा था। चार धाम यात्रा अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम में यात्रा का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। बारिश और अक्टूबर में बढ़ती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं है।
8: और अब बात शारदीय नवरात्र की। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और इस पावन अवसर पर घर और मंदिरों में विधि विधान से मां ब्रह्मचारिणी की आराधना हो रही है। सुबह से ही देश के तमाम प्राचीन मंदिरों और शक्तिपीठों पर मां के दर्शन और पूजन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। वहीं देश भर के मंदिरों में भक्तों की श्रद्धा और सांस्कृतिक आयोजनों की भव्यता नवरात्र पर्व को और भी खास बना रही है।

0: शक्ति वाहिनी माँ दुर्गा का दरबार सज गया है। मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और हर तरफ माँ अम्बे की जय गूंज रही है। आस्था और भक्ति का ये उत्सव शुरू हुआ तो देश के तमाम देवी मंदिर और शक्तिपीठों में भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई। क्या आम और क्या खास, हर कोई देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुँचने लगा। ये तस्वीरें कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल की हैं। इस साल इस पंडाल को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की थीम पर तैयार किया गया है। इस पंडाल का निर्माण भारत के नक्शे के आकार में किया गया है। इसमें विभाजन के दौर की ऐतिहासिक तस्वीरें और लाल किले की प्रतिकृति शामिल की गई है। इसके अलावा शरणार्थियों के पलायन को दर्शाती एक ट्रेन इंस्टॉलेशन और खुदीराम बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं।
1: बड़ा खुशी का माहौल है और हमारी सनातनी संस्कृति को मानते हुए दुर्गा पूजा इस बार होगा। आज यहाँ वंदे मातरम का थीम है, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, वंदे मातरम के ऊपर इस लोग यहाँ आयोजन किया है।
0: इस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसका विशेष लाइट एंड साउंड शो है। यहाँ पर लेजर लाइट्स के जरिए भारत की आजादी की लड़ाई के सफर को दर्शाया गया है, जिसके केंद्र में वंदे मातरम की प्रेरणा है।
2: कि खुद बात करेंगे, ये भारत माता की फ्लैग है, हम लोग इंडिया का फ्लैग है और हम लोग इससे अच्छा क्या माहौल हो सकता है। हम लोग का जो ऐतिह्य है, जो हम लोग पहले छोटे से जो पढ़ के बड़े हुए हैं, वो आंखों हम लोग देख रहे हैं।
0: अब आपको एक ऐसी दुर्गा पूजा दिखाते हैं जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जयपुर राजबाड़ी की दुर्गा पूजा अपनी अनोखी परंपरा, इतिहास और स्वर्ण प्रतिमा की वजह से खास पहचान रखती है। यहाँ माँ दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा साल के लगभग 360 दिन बैंक लॉकर में सुरक्षित रहती है और दुर्गा पूजा के अवसर पर षष्ठी के दिन कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच माँ की स्वर्ण प्रतिमा को बैंक लॉकर से निकालकर जयपुर राजबाड़ी लाया जाता है। पूजा सम्पन्न होने के बाद दशमी के दिन पुलिस सुरक्षा के बीच स्वर्ण प्रतिमा को दोबारा बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है। राज परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर राजबाड़ी की दुर्गा पूजा करीब 400 साल पुरानी परंपरा से जुड़ी है। मान्यता है कि राजा जयसिंह के समय से इस क्षेत्र में राज परिवार की धार्मिक परंपराओं की शुरुआत हुई। आस्था की ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भी देखने को मिली। यहाँ करीब 250 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर गुजरते हुए श्रद्धालु माँ के दरबार तक पहुँचेंगे। पंडाल में प्रवेश के लिए रेलवे स्टेशन के तर्ज पर दो प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं और सबसे खास वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा दिखने वाला ट्रेन का मॉडल है, जिसके जरिए श्रद्धालुओं को पंडाल तक पहुंचने का अनूठा अनुभव मिल रहा है।
3: जैसे आप देख सकते हैं, कॉटन, बांबू, फिर ओरिजिनल का जो ट्री होता है वो ट्री का इस्तेमाल करके कुछ पाइन ट्रीज किया हुआ है। ऐसे ही पूरा पंडाल डेकोरेटेड है। अगर हम स्पेशलिटी की बात करें इस बात का, तो हमारा वंदे भारत स्पेशलिटी है। स्पेशली हम लोग जो छोटे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों का आनंद के लिए वंदे भारत है। और फिर एक केव का पूरा सीन है अंदर।
0: इस पूरी थीम के बीच माँ दुर्गा की प्रतिमा को पारंपरिक एक चाला शैली में तैयार किया गया है, यानी आधुनिक रेल यात्रा और कश्मीर की खूबसूरती के बीच बंगाल की पारंपरिक दुर्गा पूजा की विरासत भी नजर आएगी। ये दो तस्वीरें दिल्ली के प्राचीन मंदिर कालकाजी और झंडेवालान की हैं, जहां नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की कतार देखने को मिली। यहाँ माँ को अर्पित करने के लिए कोई फल फूल लेकर आया तो कोई माँ के लिए चुनरी और नारियल लेकर पहुँचा।
4: नवरात्रि का आज दूसरा दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है और आज के दिन भी दिल्ली का हर एक भक्त झंडेवालान मंदिर में पहुँचने की कोशिश करता है। इस वक्त हम भी झंडेवालान मंदिर में हैं और भक्तों की भारी भीड़ आज भी यहाँ आने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही है। कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं और आप देखेंगे यहाँ पर तो भक्तों के उत्साह में कोई कमी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। दिल्ली का कोई भी नागरिक हो वो जरूर कोशिश करता है कि झंडे वालान मंदिर में नवरात्रि में कम से कम एक बार तो जरूर पहुंचे। यहाँ आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सालों साल से लगातार इस मंदिर में आते रहे हैं।
0: दिल्ली की तरह ही देश के दूसरे शहरों में भी शक्ति उपासना के इस पर्व की रौनक देखते ही बन रही है। आस्था की ये तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से आई है। यहाँ ढोल ताशों की गूंज, शंख की ध्वनि और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ माँ की घट स्थापना हुई और माँ दुर्गा के जयकारों के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। आस्था के ऐसे ही खूबसूरत रंग प्रयागराज में भी बिखरे हुए हैं। यहाँ के गांवों में आस्था का मेला सज चुका है। पंडालों में माँ दुर्गा विराज चुकी है। पूरे भक्ति भाव से माँ की आराधना की जा रही है।
5: पूरे गांव में सुख शांति बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद रहे। नवरात्रि के पहले दिन से
6: क्या क्या होता है?
5: आरती होती है, भगवान का पूजा होता है, देवी माँ का प्रतिष्ठित किया जाता है।
0: चाहे हरिद्वार का माया देवी मंदिर हो या सतना का माँ शारदा का मंदिर या फिर कोई और शक्तिपीठ, माँ के इन धामों में आस्था का मेला लगा हुआ है। वैसे तो साल भर ये तमाम शक्तिपीठ भक्तों से गुलजार रहते हैं, लेकिन नवरात्र पर इनकी रौनक और बढ़ जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग इन शक्तिपीठों में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँच रहे हैं। शक्ति साधना का ये पर्व पूरे ही देश में बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है और लोग देवी दुर्गा की आराधना में भक्तिभाव से डूबे हुए हैं। प्रयागराज से आनंद राज, वर्धमान से सुजाता महिरा, नागपुर से योगेश बसंत पांडे, सतना से वेंकटेश द्विवेदी और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
7: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोमवार 12 अक्टूबर को सेंसेक्स 548 अंक लुढ़ककर 71,925 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 157 अंक फिसला, ये गिरकर 22,363 पर आ गया। रुपए में आई शानदार मजबूती और ग्लोबल मार्केट के सुस्त रुझानों का असर सोने चांदी की कीमतों पर भी दिखा। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 1400 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,53,000 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी 2,000 रुपए सस्ती हुई। अब दिल्ली में किलो चांदी की कीमत 2,26,500 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। सोमवार 12 अक्टूबर को रुपया 96 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.75 रुपए हो गई।
7: फिल्म सूर्या में एक बार फिर दमदार अंदाज में दिखेंगे सनी देओल। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
0: सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। उनकी अगली फिल्म सूर्या का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। सूर्या 20 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एम पद्म कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल की पहली झलक दर्शकों के लिए खास है। कमल मुकुट की पेशकश वाली इस फिल्म को दीपक मुकुट, हेमंत मुकुट और लोकेश मुकुट ने MM मूवीज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।
8: डॉक्टर बोलने वाला हुआ, इसका खून कम बन रहा है, हर 10 दिन में आने को बोला है, तुम लोग मदद करोगे मेरी?
9: कर तो देंगे ना बुबू, तो कब हम तलक?
8: तुम्हें कुछ तो सोचना पड़ेगा।
0: नेशनल अवार्ड विजेता फिल्मेकर विनोद कापड़े की अगली फिल्म पायर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हिमालय के खूबसूरत वादियों की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म प्यार, साथ और अकेलेपन की कहानी दिखाती है। कहानी उत्तराखंड के एक दूर दराज गाँव में रहने वाले उम्र दराज जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है। खास बात यह है कि मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले पद्म सिंह कापड़ी और हीरा देवी ने इससे पहले कभी कैमरे का सामना नहीं किया। 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी ये फिल्म 30 अक्टूबर को हिंदी और मलयालम में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
10: चमत्कार हो गया,

रोमांस कॉमेडी और अतरंगी अंदाज से भरपूर फिल्म नखरे वाली सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। जियो स्टूडियोज और आनंद एल राय के सहयोग से बनी इस फिल्म में अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 30 अक्टूबर तय की है। फिल्म का आने वाला ट्रेलर इसकी अनोखी कहानी और प्यार को देखने के दिलचस्प नजरिए की झलक दिखाएगा। राहुल शंकल्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म को ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसकी कहानी दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है।

मुंबई के जज्बे और सपनों को आवाज देने के लिए सिंगर सुनिधि चौहान और रैपर एमवीए बंटाई एक साथ आए हैं। फिल्म प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम का नया गाना मुंबई सपनों का समंदर रिलीज हो गया है। इस ट्रैक में सुनिधि पहली बार रैप करती नजर आ रही हैं, जो इस म्यूजिकल कोलैबोरेशन को खास बनाता है। एमवीए बंटाई और स्वालीना ने इसे कंपोजर परफॉर्म किया है। गाना मुंबई आने वाले लोगों की उम्मीदों, संघर्ष और कभी हार न मानने वाले जज्बे को सलाम करता है। राजकुमार राव और वामिका गब्बे स्टारर ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: और न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर।

0: नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में उमड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना। मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही शक्ति साधना। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ। बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम। जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान। अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान। अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान। न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: एक पिता के लिए उसकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं होती। हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी लाडली की खुशी का ख्याल वो हर पल रखता है। इस वीडियो में भी पिता और बेटी के बीच ऐसा ही प्यारा रिश्ता दिखाई दे रहा है। पिता साइकिल पर बेटी को आगे बैठाए हुए हैं और बड़े प्यार से उसके बाल संवार रहे हैं। बेटी भी आराम से बैठकर इस पल का आनंद ले रही है। आसपास मौजूद लोग भी इस खूबसूरत नजारे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। पिता का ये छोटा सा प्रयास दिखाता है कि बच्चों के लिए उनका प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है।

0: छोटी छोटी बच्चियां, रंग बिरंगे परिधान और मिथिला संस्कृति की खूबसूरत झलक। इस प्रस्तुति ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सजी धजी बच्चियां मंच पर पूरे उत्साह के साथ ताल से ताल मिलाती नजर आ रही हैं। उनके डांस के हर स्टेप में अभ्यास और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। पारंपरिक संस्कृति को इतनी कम उम्र में इस खूबसूरती से पेश करना वाकई खास है। बच्चियों की शानदार प्रस्तुति दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ ही उनकी प्रतिभा को निखारने का भी बेहतरीन मौका देते हैं। नाना और नाती का रिश्ता भी बेहद खास होता है, जहां प्यार के साथ खूब लाड दुलार भी मिलता है। इस वीडियो में नाना और नाती के बीच ऐसा ही प्यारा पल देखने को मिल रहा है। नाती आराम से बिस्तर पर लेटा है और नाना बड़े प्यार से उसके हाथ पैर और पूरे शरीर को दबाते हुए उसकी सेवा कर रहे हैं। बच्चे की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखते नाना का अंदाज दिल जीत लेता है। परिवार में बुजुर्गों और बच्चों के बीच ऐसा अपनापन रिश्तों की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। नाना का ये दुलार देख कर चेहरे पर मुस्कान आना लाजिमी है। बच्चों की शरारतें कभी कभी मम्मी की मुश्किलें बढ़ा देती हैं और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही मजेदार नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल बच्चों ने अलमारी खोलकर उसमें रखे बर्तनों को ही अपना खिलौना समझ लिया। फिर क्या था, खेलने के लिए सारे बर्तन बाहर निकालने लगे। बच्चों के लिए ये खेल मजेदार था, लेकिन मम्मी के लिए काम बढ़ाने वाला। अब घर समेटने और बर्तन वापस जमाने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। बच्चों की मासूम समझ और उनकी इस हरकत को देख कर हंसी आना तय है। आखिर बचपन की शरारतें भी तो घर की रौनक होती है।
1: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्वच्छता अभियान की। देश के शहरों में अब रात में भी कहीं भी कचरा फेंकने वालों पर हाईटेक नजर रखी जा रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाईटेक सिटी ग्रेटर नोएडा में एक शख्स को कचरा फेंकने पर पब्लिक शेमिंग का सामना करना पड़ा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखा कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 1 में एक शख्स रात में सड़क किनारे एक दीवार के पास कचरा फेंक कर जा रहा था, तभी अचानक लाउडस्पीकर से गूंजी आवाज ने उसे चौंका दिया। लाउडस्पीकर के जरिए उसे अपना फेंका हुआ कूड़ा उठाने के लिए कहा गया। सुनसान जगह पर आवाज सुनकर शख्स भौचक्का रह गया और इधर उधर देखने लगा कि आवाज आखिर आ कहां से रही है। तभी उसे लाउडस्पीकर से दोबारा चेतावनी दी गई कि अगर उसने कचरा नहीं उठाया तो सुबह चालान कटेगा। कैमरे में कैद हुआ शख्स चालान की बात सुनते ही घबरा गया। वो तुरंत उस जगह पर लौटा जहां उसने कचरा फेंका था और अपना फेंका हुआ कचरा उठाकर वहां से चला गया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देख तमाम यूजर्स इस पर अपनी राय दे रहे हैं। किसी ने इस वाकये को स्मार्ट सिटी का कमाल बताया तो किसी ने कहा कि चालान के डर से कचरा फेंकने वाले को बड़ा सबक मिला। इस मुद्दे पर हमने ग्रेटर नोएडा में सेक्टर बीटा 1 के आरडब्ल्यूए महासचिव हरेंद्र भाटी और वहां के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लोगों की प्रतिक्रिया दिखाने से पहले आपको वायरल सीसीटीवी वीडियो हम दिखाते हैं।

0: देखिए, जो कूड़ा कचरा फेंकने वाला वो तो खुश नहीं है, और जो सफाई चाहता है वो बहुत खुश है। हम चाहते हैं अपना शहर जो है, सेक्टर या शहर साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि हम लगातार सफाई अभियान चला रहे थे सेक्टर में, तो लोग बाग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने इसलिए जो कैमरा लगवाए सेक्टरों में कि भाई जो जिससे कि जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है वो बिल्कुल उसमें कैद हो जाए। कैद होने के बाद में उस पर पेनल्टी भी लगवाते हैं अथॉरिटी की तरफ से, और हमने कुछ ऐसे कैमरे लगवाए सेक्टर में जिसमें कि वो माइक बोलता है, माइक से आवाज़ आती है, जो कूड़ा फेंकता है तो तुरंत बोलता है उसमें, तो उसका भी जो रिचार्ज होता है करीब 1300 रुपये के आसपास का महीने का, और वो चिप लग जाती है उसमें, क्या बोलते हैं कैमरे में, एयरटेल कंपनी की या किसी की भी, अगर वाईफाई नहीं होता है तो उससे जो है कनेक्ट हो जाता है, और इसका मैसेज बढ़िया जा रहा है। जो कूड़ा कचरा हमारे यहाँ पर सेक्टरों में ज्यादातर फेंक रहा था उससे कम 50% फर्क पड़ा है।
1: अच्छा,
0: जब जब वो कैमरा बोलता है तो आदमी चौकन्ना हो जाता, पागल की तरह देखता है इधर उधर, फिर जाता है उसे खुद ही उठा करके ले जाता है। तो ये है कि वो शाम को, रात को जो है 10 बजे के बाद एक्टिव होता है और सुबह 6 बजे तक रहता है। फिर उसके उसके बाद में फिर ये 10 बजे के, सुबह 6 बजे के बाद में फिर अपने आप मोबाइल में उसको देख सकते हैं, जैसे मोबाइल होता है हमारा, तो उस मोबाइल में भी देख सकते
1: सब
0: हैं,
1: सेक्टर वाले देख सकते हैं,
0: सब सेक्टर वाले देख सकते हैं, जिस जिसमें हमने वो डाउनलोड कर रखा है उसका जो है।
1: सेक्टर वाले खुश हैं इस चीज से?
0: सेक्टर वाले बहुत खुश हैं इस चीज से, क्योंकि हर आदमी जो सफाई चाहता है, अपने आसपास में कोई भी गंदगी नहीं चाहता।
2: ये जो पहल है आरडब्ल्यू द्वारा की गई है, और मैं सभी सम्मानित सेक्टर वासियों के भी धन्यवाद के लिए पात्र हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने आरडब्ल्यू का सहयोग करा और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चीजें हैं और सुविधाजनक हैं तो आप बिल्कुल लगाइए उनको, हम आपके साथ हैं। आरडब्ल्यू ने फिर कैमरों को लगवाया, और जब कई चीज ऐसे रही हैं कि अधिकतर जो रेजिडेंस वाले फैमिली वाले हैं वो नहीं डालते, ये पीजी वाले अधिकतर इन चीजों को डालते हैं, क्योंकि पीजी एक एक पीजी में 200-150 बच्चे रहते हैं और वो रात को कूड़े को डालते हैं, और जब उन्हें ये चीजें देखने को मिलती हैं तो वो बचते हैं वहां से कि यहाँ तो तुम पकड़े जाओगे। अथॉरिटी के द्वारा भी उन पर काफी बार पेनल्टी लगाई गई। तो ये जो कैमरा लगाया गया है, मैं मेरा अनुरोध है सभी सेक्टर वासियों से और आरडब्ल्यूओ से कि वो अपने अपने सेक्टरों में ऐसे कैमरों का प्रयोग करें ताकि गंदगी ना फैले, और जिसका मैसेज एक स्वच्छ अभियान की तरह, कि जैसा हम कहते हैं कि एक हमारा सेक्टर ग्रेटर नोएडा बहुत सुंदर शहर है, कहते हैं लेकिन देखने के लिए नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ सपा होंगे तो ऑलरेडी सेक्टर सपा होगा, सेक्टर सपा होगा तो शहर सपा होगा।
3: जो यहाँ पे सेक्टर में इनिशिएटिव लिया गया है, जो कैमरे से देखा जा सकता है कौन कहाँ कूड़ा फेंकता है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे सेक्टर और सेक्टरों में भी कैमरे लगाने चाहिए, क्योंकि इससे जो है सेक्टर में कहीं ना कहीं जो गंदगी है उस पर असर पड़ेगा और सेक्टर जो है साफ सुथरा रहेगा, और साफ सुथरा रहेगा जिससे कि सेक्टर वासियों को भी बेनिफिट होगा, बीमारियों से जो है वो बच सकेंगे।
4: हमारे सेक्टर में जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें क्या सिस्टम है कि हमने उसमें सिम डाली है, और सिम डालने पे सुबह रात को सिम एक्टिवेट हो जाती है, और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होती है सुबह रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। उसमें क्या होता है कि उसमें आवाज आती है, जैसे किसी ने कूड़ा डाला मान लो सड़क पे, तो उसमें से आवाज आएगी कि रुको और इसे वापस उठाओ और इसे लेके जाओ। तो जब कूड़ा वो सड़क पे रहेगा ही नहीं, सबको ये सुनाई देगा, जब आदमी डरेगा, जैसे आश्चर्यजनक लगेगा उसे कि ये कहाँ से आवाज आई, कैसा कैसे हो रहा है ये, तो वो उस फिर कूड़े को आगे से डालता नहीं है और उस कूड़े को उठा के ले जाता है। इससे हमारा सेक्टर बिल्कुल साफ स्वच्छ है, और महिलाएं विशेष तौर पे खुश हैं कि हमारा सेक्टर बहुत बढ़िया साफ सफाई चल रही है और बहुत अच्छा चल रहा है।
5: नवरात्रि पर पूरे देश में मां अंबे का दरबार सजा हुआ है, चारों ओर भक्ति की बयार बह रही है। ऐसे में गरबा जो सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं बल्कि अंबे मां की आराधना का सबसे खूबसूरत माध्यम बन गया है। गरबा के लिए मशहूर गुजरात के जामनगर और राजकोट में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर गुजरात पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

गुजरात में नवरात्रि पर्व की धूम के बीच जामनगर के आशापुरा गरबी मंडल में पारंपरिक गरबा और तलवार रास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव की परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। यहां बालिकाएं और युवतियां पूरे उत्साह के साथ गरबा खेलकर मां अंबे की आराधना कर रही हैं। आशापुरा गरबी मंडल में पारंपरिक गरबा के साथ तलवार रास की विशेष प्रस्तुति लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस दौरान महाकाली तांडव सहित विभिन्न पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तलवार रास इस गरबी मंडल की खास पहचान है। इस रास में डांडिया की जगह तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है। बालिकाएं और युवतियां तालमेल, उत्साह और पारंपरिक अंदाज के साथ तलवार रास प्रस्तुत करती हैं। गुजरात के ही जामनगर में मशाल और अंगारा रास भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। शक्ति पर्व में नौजवानों का मशाल सबको लुभा रहा है। नौजवान हाथ में मशाल लेकर ये खास रास कर रहे हैं। गरबा और रास उत्सवों में किया जाने वाला ये एक साहसिक और अद्भुत नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले कलाकार अपने हाथ में जलते हुए मशाल और जलते हुए अंगारों पर सधे हुए अंदाज में डांडिया या रास नृत्य प्रस्तुत करते हैं।

0: जिसमें हम पारंपरिक पोशाक और पारंपरिक गाने के साथ गरबे के साथ खेल रहे हैं। हमारे फेमस रास यानी कि मसाल रास, तलवार रास, कणबी रास, घोड़ो रास हम सब खेलते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पे निहारने आते हैं। और हमारा वर्ल्ड फेमस रास है वो है मसाल रास, जिसमें हम जलते अंगारों के ऊपर खेलते हैं और माता जी की असीम कृपा से आज तक कोई भी खिलाड़ियों को कुछ भी नहीं हुआ और माता जी का ऐसा ही आशीर्वाद हमारे पे बरसते रहते हैं।
1: गुजरात के पोरबंदर में 102 साल पुरानी भद्रकाली माताजी गरबा महोत्सव में भी लोग बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग तक तमाम उम्र और तबकों के लोग इस उत्सव में शामिल होकर त्योहार मनाते हैं। खास बात यह है कि इस उत्सव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है
2: और यहाँ पे जो गरबी हम सब पुरुषों ही यहाँ से सब मेल पर्सन ही हम खेलते हैं और जो साउंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ नो साउंड पे और

0: गरबा के महापर्व नवरात्रि के दौरान राज्य भर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए गुजरात पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा योजना तैयार की है। प्रदेश में 22,000 से अधिक गरबा स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों और पुलिस आयुक्तों को सतर्क रहने और गश्त बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। राजकोट पुलिस की शी टीम की महिला पुलिसकर्मी डांडिया खेलने के परिधान में अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और बदमाशों पर नजर रखेंगी। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। राजकोट पुलिस ने गरबा आयोजकों को आयोजन के दौरान सीसीटीवी लगाने और गरबा स्थलों पर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी रखने के आदेश दिए हैं।
1: इस गरबा के दरमियान हमने कुछ जगहें आइडेंटिफाई करी है जहां पे लाइटिंग थोड़ी कम है या फिर जहां पे असामाजिक तत्व बैठते हैं, तो वहां पे हमारी एसओजी की टीम जो है वो ड्रोन के मार्फते जो है वहां पे सर्वेलेंस रखेगी और जो जो इलीगल एक्टिविटीज इनके ध्यान में आएंगी उनके ऊपर एक्शन लेगी। और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम इंश्योर करेंगे कि देर रात्रि तक जो हमारी बहन बेटियां गरबा खेलने जाती हैं वो सुरक्षित महसूस करें और खुलेआम घूम फिर सकें, उनको कोई असामाजिक तत्व परेशान ना करें।
0: गरबा का यह उत्सव केवल अम्बे माँ की उपासना की धार्मिक रस्म नहीं है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए अपनी परंपरा और जड़ों से जुड़े रहने का भी माध्यम है। यही वजह है कि आधुनिक बदलावों के बावजूद समाज में यह सांस्कृतिक धरोहर अभी तक लगभग उसी रूप में बची हुई है जिस तरह सैकड़ों साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। जामनगर से दर्शन ठक्कर और गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ राजकोट से रौनक मजीठिया, गुड न्यूज टुडे।
2: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका इमेज आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
6: राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय ने अंडर-19 मुकाबले में खेली विस्फोटक पारी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर।
7: बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले पहले वनडे का वेन्यू बदलने की खबरों को खारिज कर दिया है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने साफ किया कि अरुण जेटली स्टेडियम में ही मुकाबला खेला जाएगा। मैच को दिल्ली से अहमदाबाद शिफ्ट करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। असल में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर वेन्यू की तैयारी पर सवाल उठ रहे थे। इसी के बाद मैच अहमदाबाद में कराए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर क्रिकेट दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज विशाखापट्टनम में अंडर-19 के घरेलू मुकाबले में 17 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय ने आतिशी पारी खेली। उन्होंने महज 41 गेंदों पर 85 रन बनाए। उन्होंने ये रन कर्नाटक के लिए दिल्ली अंडर-19 के खिलाफ बनाया। वीनू माकर ट्रॉफी के तहत विशाखापट्टनम में अंडर-19 मुकाबला खेला जा रहा है। इसमें अन्वय अपनी कर्नाटक की टीम के कप्तान हैं। टीम इंडिया की जीत के बाद क्रिकेटर कुलदीप यादव और तिलक वर्मा आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद भी नजर आए। तीनों ने महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई, पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। वो यहां महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए।
6: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
8: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान? पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान? और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान? जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है
8: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
9: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से ही मंदिरों में लगी लंबी कतारें, जीएनटी पर शक्ति उत्सव दिन भर। नवरात्र के मौके पर इंदौर के विजयासन माता मंदिर में उमड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना। मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के हो रहे हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ। बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम। जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने शानदार प्रस्तुति दी। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान। अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान। अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं नवरात्र में मां की विशेष पूजा की। आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। इसी तरह आगे भी मां के सभी स्वरूपों की पूजा आराधना होगी। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर हम देखें तो मनोकामना पूरी करने के लिए अपनी राशि के मुताबिक भी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि के लिए नवरात्र में राशि के मुताबिक कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। इसलिए आज आपको राशियों के मुताबिक मां को मनाने का तरीका हम बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ देश के कई प्राचीन मंदिरों और शक्तिपीठों के दर्शन करवाएंगे, जहां पर मां के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तमाम तस्वीरें देखिए। आखिर में गुजरात में गरबा के खूबसूरत रंग भी आपको तमाम दिखाएंगे। फिलहाल 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आइए शुरुआत करते हैं नवरात्र में मां को मनाने वाली पूजा आराधना से। वैसे तो श्रद्धालुओं के लिए मां के सभी रूप पूजनीय हैं, लेकिन मां को प्रसन्न करना हो और उनका आशीर्वाद मिले, इसके लिए राशि के अनुसार भी मां के स्वरूपों की आराधना की जा सकती है। देखिए, देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अलग अलग राशियों के लिए ज्यादा शुभ और फलदायी होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर बिगड़े काम बनाने हो या सुख समृद्धि का वरदान पाना हो तो इस नवरात्र आप राशि के मुताबिक मां को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं।

0: माँ के भव्य दरबार में भक्तों की कतार, सभी के मन में माँ के दर्शन और उनके आशीर्वाद की आस है।
1: जोर से बोलो,
2: जय माता दी।
1: प्रेम से बोलो,
2: जय माता दी।
1: जय भवानी,
2: जय माता दी।
0: माँ के अलग रूप, अलग नाम, अलग धाम, पर एक ही आराधना, एक जैसी भावना और मन में गहरा विश्वास कि माँ हर कमी पूरी कर देंगी।
3: हर कामनाएं पूरी होती है, सच्चे मन से मांगी हर मनोकामनाएं पूरी कर जाती है।
1: आप भी कुछ कहना चाहती?
3: जरूर जरूर,
1: क्यों ना एक बार जोर से बोलते हैं। जोर से बोलो,
2: जय माता दी।
1: प्रेम से बोलो,
2: जय माता दी।
0: माँ के चरणों में बैठकर माँ से मांगने पर हर चीज मिल जाती है, हर मुराद पूरी होती है। हाँ, पर ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अपनी राशि के हिसाब से अगर माँ के अलग अलग स्वरूप की विशेष आराधना की जाए तो बिगड़े काम जरूर बनते हैं, किस्मत सवर जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नवरात्र अपनी राशि के हिसाब से आप कैसे पूजा करें। जानकार मानते हैं कि मेष राशि के जातक इस नवरात्र में माँ चंद्रघंटा और माँ कात्यायनी की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं, इससे आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। इसी तरह वृषभ राशि के लोगों को इस नवरात्र विशेष तौर पर माँ महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए, इससे रिश्तों में मधुरता आएगी और सुख समृद्धि भी।
4: मेष राशि वाले, यदि आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या निर्णय लेने में असमंजस महसूस कर रहे हैं तो इस नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा और माँ कात्यायनी की आराधना कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा साहस और निर्भयता का संदेश देती है, जबकि माँ कात्यायनी दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती है। आप माँ को लाल फूल, गुड़ या शहद का भोग भी लगा सकते हैं और ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का 21 बार आप जाप करें। इसके साथ ये संकल्प ले कि जिस काम को मैं लंबे समय से टाल रहा था उसे पूरा करने के लिए आज से ही मैं प्रयास शुरू कर दूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और रिश्तों में मधुरता चाहते हैं तो इस नवरात्रि में माँ महागौरी की उपासना आप कर सकते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप शांति, स्थिरता और सौम्यता का प्रतीक है। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से माँ की पूजा करते हुए माँ को सफेद पुष्प आप अर्पित करें, खीर या मिश्री का भोग लगाएं और ओम देवी महागौरये नमः मंत्र का 21 बार आप जाप करें।
0: नवरात्र में माँ के सभी 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा होती है, अलग तरह से भोग लगते हैं, अलग चढ़ावा होता है, लेकिन राशियों के हिसाब से माता रानी की पूजा का और भी शुभ लाभ मिलता है। जैसे मिथुन राशि के लोगों के लिए इस नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना से विशेष फल मिलेगा, नौकरी और कारोबार में फायदा होगा। कर्क राशि के जातकों को मन की परेशानी दूर करने के लिए माँ कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए।
4: मिथुन राशि वालों, यदि आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत, नौकरी का इंटरव्यू या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप ऐसे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें आपकी वाणी और बुद्धि की अहम भूमिका है तो माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की आराधना आप कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी अनुशासन और साधना की प्रेरणा देती है, जबकि माँ चंद्रघंटा साहस और सहजता का प्रतीक है। माँ को पीले या लाल पुष्प अर्पित करें, मिश्री का भोग लगाएं और ओम देवी चंद्रघंटाए नमः मंत्र का 21 बार आप जरूर जाप करें। कर्क राशि वालों, यदि मन में बेचैनी रहती है, परिवार की चिंता आपको परेशान करती है या आप भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं तो माँ कुष्मांडा की उपासना आपके लिए एक अच्छा आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं में माँ कुष्मांडा को सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा के सृजन से जोड़ा जाता है। माँ को पीले पुष्प अर्पित करें, मालपुए या अपनी परंपरा के अनुसार मीठे प्रसाद का भोग जरूर लगाएं और ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का 21 बार आप जाप करें।
0: नवरात्र में माँ के सभी बड़े धामों में दर्शन के लिए भारी भीड़ रहती है, फिर चाहे वो मुंबई का मुंबा देवी मंदिर हो या फिर दिल्ली का झंडे वाला मंदिर, दरबार में खूब चहल पहल होती है, खूब रौनक है, बस इस दरबार में हाजिरी लगानी है। माँ तो मन की बात वैसे ही समझ लेती है।
4: राशि वालों, यदि अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का उचित पहचान नहीं मिल रही, तो मां स्कंद माता की उपासना करें। मां स्कंद माता मातृत्व, संरक्षण और मार्गदर्शन का एक प्रतीक है। माँ को लाल या पुष्प अर्पित करें, केले या केले से बनी मिठाई का भोग लगाएं और ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। कन्या राशि वालों, यदि आप बहुत सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लगातार टाल रहे हैं, तो माँ कात्यायनी की आराधना करें। माँ कात्यायनी शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प का एक प्रतीक है। माँ को लाल पुष्प अर्पित करें, शहद का भोग लगाएं और ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का 21 बार आप जाप करें। इसके बाद अपने दिन के 3 महत्वपूर्ण काम लिखें और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं।
5: माँ तो बस भक्तों की भावना देखती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि पूजा पाठ में ज्योतिष के विधान का भी असर जरूर होता है। जैसे कि इस नवरात्र सिंह राशि के लोगों को जीवन में सुख समृद्धि के लिए माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, और इसी तरीके से कन्या राशि के लोगों को मानसिक शांति के लिए माँ कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए।
4: राशि वालों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है, किसी रिश्ते में गलतफहमी चल रही है, या आप अपने निजी और व्यवसायिक जीवन के बीच में संतुलन नहीं कर पा रहे, तो माँ महागौरी की आराधना आप कर सकते हैं। माँ का स्वरूप शांति, निर्मलता और सौम्यता का एक प्रतीक है। माँ को सफेद पुष्प अर्पित करें, नारियल या नारियल से बनी मिठाई का आप भोग लगाएं और ओम देवी महागौराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके साथ साथ एक संकल्प लें कि किसी भी रिश्ते में अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात का भी आप ध्यान से सुनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए, यदि आप किसी पुराने विवाद, मन की नाराजगी या जीवन में चल रहे बदलावों से परेशान हैं, तो माँ कालरात्रि और माँ महागौरी की उपासना आप जरूर करें। माँ कालरात्रि भय का सामना कराने का साहस देती है, जबकि माँ महागौरी शांति और निर्मलता का एक हमें आशीर्वाद देती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करें और ओम देवी कालरात्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें।
5: माँ की पूजा में धार्मिक विधान से ज्यादा सच्ची श्रद्धा जरूरी होती है। देखिए कैसे माँ के दरबार में मौजूद हर भक्त बस उनके दर्शन से ही संतुष्ट हो जाता है। माँ के सभी रूप करुणा से भरे हैं। पर राशि के हिसाब से देखें तो तुला राशि के लोगों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखने के लिए इस नवरात्र माँ महागौरी की आराधना करनी चाहिए, और इसी तरह वृश्चिक राशि निराशा और भय दूर करने के लिए, साथ ही मन की शांति के लिए भी माँ कालरात्रि और माँ महागौरी की पूजा आराधना जरूर करें।
4: धनु राशि वाले, यदि आप पढ़ाई, प्रतियोगिता, परीक्षाओं, करियर या किसी भी आध्यात्मिक लक्ष्य को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को धार्मिक मान्यताओं में सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। माँ को पीले पुष्प अर्पित करें, हलवे या चने का भोग लगाएं और ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके साथ प्रतिदिन कुछ समय अध्ययन, स्वाध्याय और ध्यान के लिए जरूर निकालें। मकर राशि वालों के लिए, अगर अपने काम में देरी हो रही है, मेहनत के बावजूद परिणाम मिलने में समय लग रहा है, या आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ से परेशान है, तो माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक आप उपासना करें। विशेष रूप से माँ कालरात्रि का स्मरण आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देगा। माँ को लाल पुष्प अर्पित करें और माँ को गुड़ का भोग लगाएं और ओम देवी कालरात्रि नमः मंत्र का जाप भी करें।
5: चाहे सुख शांति हो या फिर पढ़ाई लिखाई या हो कारोबार, माँ का आशीर्वाद मिले तो चुटकी में हर समस्या दूर हो जाती है। धनु राशि के लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस नवरात्र माँ सिद्धिदात्री की आराधना करनी चाहिए, और जानकार मानते हैं कि मकर राशि के लोगों को अगर परिणाम मिलने में देरी हो रही हो तो वो माँ कालरात्रि की पूजा करें।
4: कुंभ राशि वाले, यदि आप अपने जीवन में कोई नया बदलाव लाना चाहते हैं, किसी पुरानी आदत से बाहर निकलना चाहते हैं या समाज के कोई भी कुछ भी अच्छा करने की इच्छा रखते हैं, तो माँ कुष्मांडा और माँ कालरात्रि की उपासना कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा सृजन और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है, जबकि माँ कालरात्रि निर्भयता का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा को पीले पुष्प अर्पित करें, मालपुए या मीठे प्रसाद का भोग लगाएं और ओम देवी कुष्मांडाय नमः का जाप जरूर करें, और इसके साथ कोई एक सकारात्मक आदत अपनाने का एक संकल्प लें। मीन राशि वालों, यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं, किसी निर्णय को लेकर उलझन में हैं या आध्यात्मिक रूप से अपने भीतर गहराई लाना चाहते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और अनुशासन की प्रेरणा देती है, जबकि माँ सिद्धिदात्री आध्यात्मिक साधना और सिद्धि से जुड़ी हुई माता है। माँ को सफेद या पीले पुष्प अर्पित करें, खीर या हलवे का भोग लगाएं और ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप जरूर करें।
5: नवरात्र में माँ के सभी रूपों की पूजा आराधना से जीवन की हर चुनौती दूर हो जाती है, इसीलिए तो ये पुकार है, ये जयकार है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर कुंभ राशि के लोग जीवन में नया बदलाव चाहते हैं, तो उन्हें माँ कुष्मांडा और माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह मीन राशि के लोग मानसिक शांति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी और माँ सिद्धिदात्री की आराधना कर सकते हैं। कहते हैं कि माँ की कृपा पाने के लिए कठिन अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बस सच्ची श्रद्धा से और अपने राशि स्वामी को देखते हुए माँ की सच्चे मन से आराधना करें, उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, देश भर में नवरात्र की धूम है, शक्तिपीठ हो या फिर माँ के बड़े धाम, भक्तों की कतारें लगी हुई हैं माँ के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु बड़े मंदिरों का रुख कर रहे हैं, इनमें कई मंदिर अपनी कहानियां, मान्यताएं और चमत्कार की वजह से देश दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं। चलिए आपको भगवान राम की कुलदेवी और मैहर वाली मैया समेत देश के कई बड़े मंदिरों के दर्शन करवाते हैं, जहां पर मां के जयकारे गूंज रहे हैं।

0: अद्भुत है माँ का हर धाम, लेकिन जिससे जुड़ा हो भगवान राम का नाम, उस मंदिर का महत्व समझा जा सकता है। यूं तो रामनगरी में रामलला के दर्शन के लिए रोजाना भक्त उमड़ते हैं, लेकिन नवरात्र में कदम बड़ी देवकाली मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। माँ बड़ी देवकाली भगवान श्री राम की कुलदेवी है, इसलिए इनके दर्शन के लिए न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश भर से श्रद्धालु उमड़ते हैं।
1: वक्त हम है माँ जगत जननी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के दरबार में जिसको कहते हैं माँ बड़ी देवकाली। ये भगवान श्री राम की कुलदेवी मानी जाती है, तीनों भवानी ही मौजूद है और नवरात्र का दिन की शुरुआत हो चुकी है। लगातार यहाँ भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। ये राम मंदिर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये मंदिर और भगवान राम की कुलदेवी कहते हैं।
0: तरफ भगवान राम का भव्य मंदिर, तो वहीं पास में ही उनके कुल की देवी का चमकता धमकता धाम रोशनी से नहाया माता रानी के जयकारों से गूंजता। सामान्य दिनों में भी यहां भक्तों की मौजूदगी होती है, पर नवरात्र में दूर दराज के लोग भी यहां दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि जन्म के बाद माता कौशल्या भगवान राम को लेकर यहाँ दर्शन के लिए आई थी, इसलिए भी यहाँ भक्त हाजिरी जरूर लगाते हैं।
1: आज हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में जब किसी को भी पुत्र रथ की प्राप्ति होती है तो सवा माह पे महारानी का दर्शन लोग आकर के कराते हैं। तो आज है 9 दिन पूरा महारानी का भीड़ भाड़ पूरा लगा रहेगा, तो 9 दुर्गा के रूप में महारानी का पूजन होगा।
0: यूपी से चलिए एमपी और मैहर जिले में त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मैहर वाली मैया के दर्शन कीजिए। मैहर माता मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहां माता सती का कंठहार गिरा था, माई के हार की वजह से जगह का नाम पड़ा मैहर। यहां माता शारदा विराजमान है, जिन्हें देवी सरस्वती का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए छात्र और कला प्रेमी विद्या ज्ञान और अच्छे भविष्य की कामना लेकर दर्शन के लिए आते हैं और मनचाही मुराद पाते हैं। एमपी के ही आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में मौजूद है विश्व प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर। यहाँ स्थापित प्रतिमा स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट मानी जाती है, जिसका स्वरूप त्रिशक्ति है, यानी बीच में माता बगलामुखी, दाएं महालक्ष्मी और बाएं माँ सरस्वती विराजमान है। मान्यता है कि मंदिर की स्थापना महाभारत काल में भगवान कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने की थी। यहाँ शत्रु बाधा दूर करने के लिए विशेष हवन पूजन कराए जाते हैं। अब चलिए राजस्थान, जहाँ जैसलमेर में मौजूद है श्रद्धा और शौर्य का धाम तनोट माता मंदिर, जहाँ नवरात्र में भक्तों की भीड़ उमड़ी है और धूमधाम से पूजा उपासना की जा रही है।
2: से माता का साक्षात चमत्कार है, अभी भी लोग यहाँ पे आते हैं और माता की साक्षात शक्ति विराजमान है। लगभग 1 घंटे की आरती हुई है, जिसमें बहुत ही शालीनता से आरती तनोट माता की आरती होती है, सभी देव देवताओं को उसमें शामिल किया गया है।
0: भारत पाकिस्तान सीमा पर तनोट गांव में मौजूद ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना माना जाता है। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों से जुड़ी मान्यताओं के चलते इन्हें जवानों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। तभी से ये मंदिर बमों वाली देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है।
3: इस मंदिर प्रांगण की पहले भी एक अद्भुत महिमा और व्याख्या चलती आ रही है, वैसे ही आज भी देखेंगे तो आप भक्तों का ये सैलाब और ये भीड़ इस बात की उत्सुकता करती है। और जिस तरह से माता की कृपा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के लौंगे वाला भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ है, आज भी वैसी ही कृपा इनकी बनी हुई है।
0: बताया जाता है कि जंग में पाकिस्तान ने यहाँ करीब 450 के आसपास बम बरसाए थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटा, इसलिए इस चमत्कारिक मंदिर में आस्थावानों की श्रद्धा और बढ़ गई। खासकर बीएसएफ के जवान इस मंदिर में सालों भर माँ की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्र पर तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। जैसलमेर की तरह प्रयागराज में भी आस्था का मेला सजा है। संगम नगरी के गांवों में दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि गांव की एकता और सामूहिक भागीदारी का भी प्रतीक है। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। इसके बाद हर दिन गांव के लोग एक साथ जुटकर पूजा पाठ और आरती करते हैं।

0: वहीं धर्मनगरी चित्रकूट के झारखंडी देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन पूजन को पहुंच रहे हैं। इस मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति को झारखंडी माता के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से है। जैसलमेर से विमल भाटिया, प्रयागराज से आनंद राज, चित्रकूट से अखिलेश कुमार सोनकर और सतना से वेंकटेश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए नवरात्र है, इसलिए गुजरात गरबा के रंग में पूरी तरीके से सराबोर है। आस्था, शक्ति की उपासना और लोक संस्कृति का यह अनूठा संगम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग माँ अंबा की भक्ति से सजे गीतों पर झूमने के लिए तैयार हैं। गरबा केवल नृत्य नहीं होता बल्कि सामूहिक ऊर्जा, उमंग और जीवन सांस्कृतिक धरोहर का सबसे भव्य उत्सव है। चलिए आपको हैरान करने वाले तलवार रास की झलक दिखाते हैं।

0: हमारी शी टीम जो है महिला पुलिस स्टेशन में तैनात है और बाकी हर एक पुलिस स्टेशन में शी टीम के महिलाएं आइडेंटिफाइड है। तो वो महिलाएं पारंपरिक गरबा की गणवेश पहन के अलग अलग गरबाओं में जाएंगी और वहां पे नजर रखेंगे कि कोई रोमियो या फिर आवारा तत्व जो है छेड़खानी का प्रयास कर रहा हो या फिर कोई भी बहन बेटी को परेशान कर रहा हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी।
1: देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की हुई पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता, कल माता चंद्रघंटा की होगी आराधना। नवरात्रि के मौके पर इंदौर के विजयासन माता मंदिर में उमड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के हो रहे दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बनाकर चुड़का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को सम्मान मिला, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: अमरावती के अंबा माता और एक वीरा माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान गोंधल की धूम, गोंधल यानी जागर के जरिए मां जगदम्बी की होती आराधना। गोंधल को कर पल्लवी और नेत्र पल्लवी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र की लोक सांस्कृतिक विरासत में गोंधल का विशेष स्थान है, कलाकार कला के माध्यम से देवी की महिमा का करते हैं गुणगान। दुर्गा पूजा पर मां उग्रतारा धाम में लगा भक्तों का तांता, मंदिर परिसर में साधना कक्ष में बच्चे जवान और बुजुर्ग सभी साधना और दुर्गा पाठ करने में लीन है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में वंदे भारत ट्रेन की थीम पर सजाया जा रहा है मां दुर्गा का पंडाल। पक्की सड़क पर बनाया जा रहा है लगभग 250 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक का, पंडाल में जाने के लिए 2 प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं। पंडाल में कश्मीर की सुंदरता को भी किया जा रहा है जीवंत, बनाई जा रही है बर्फ से ढकी गुफा। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्रि की भव्य तैयारियां, बी ब्लॉक पूजा पंडाल में रविंद्रनाथ टैगोर की थीम पर बनाया गया है पूजा पंडाल। पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं कारीगर, यहां पर 15 अक्टूबर को पंचमी के दिन से शुरू होगा कार्यक्रम। भोपाल के पुराने शहर में स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दिख रहा इतिहास और परंपरा का अनूठा संगम, इस मंदिर में प्रज्वलित होते हैं घी और तेल के अखंड दीपक, श्रद्धालु अपनी मन्नतों के साथ यहां पर आते हैं और नारियल में अर्जी लगाकर मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होने को ये चढ़ावा चढ़ाते हैं। इंदौर के बिजासर माता मंदिर में आस्था का महासंगम, नवरात्र में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। नवरात्र के 9 दिन यहां पर माता की अलग अलग स्वरूप की उपासना होती है, बड़ी संख्या में दूर दूर से पहुंचते हैं भक्त। नवरात्र के मौके पर बिहार के सासाराम में ताराचंडी देवी स्थान में जलाए जा रहे अखंड दीपक, नवरात्र में पूरे 9 दिन तक यहां पर अखंड दीप जलाने की परंपरा, शुद्ध देसी घी से प्रज्वलित किए जाते हैं दीप। नवरात्र के मौके पर मिशन शक्ति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने चांदनी चंदौली में निकाली जागरूकता रैली, रैली में महिला पुलिस कर्मियों के साथ छात्राएं और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं और स्थानीय महिलाएं भी शामिल हुई। अरावली की पहाड़ियों में शुरू हुआ करणी माता का मेला, प्रदेश सरकार के वन मंत्री विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, मेले का उद्घाटन किया। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड में, भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला पुलिस तैनात। मुंगेर के एक कलाकार की अनूठी भक्ति, 3 सेंटीमीटर के पीपल पत्ते पर उकेर कर नारी शक्ति का स्वरूप बनाया। आधुनिक गरबा के दौर में जामनगर में अंगारों पर नंगे पैर रास और मशाल रास का आकर्षण। काठियावाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में युवक अलग अलग प्रकार के रास करते हुए नजर आए। इस रोमांचक प्रस्तुतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे लोग, 80 वर्ष पुरानी परंपरा। सहारनपुर में मिट्टी के बर्तन बनाकर कुमार बन रहे हैं आत्मनिर्भर। कुम्हार करवे और दीप बनाने में जुटे हुए हैं। झांसी की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रच दिया इतिहास, आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले राशन का लगाया प्लांट। 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। आतंकवाद, सीमा पार अपराध, साइबर खतरे, मादक पदार्थों की तस्करी, कट्टरपंथ और अवैध तस्करी लेने देने से निपटने का मुद्दा। राष्ट्रपति ने 6 राज्यों के गवर्नर के नाम किया ऐलान, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और सिक्किम के राज्यपालों के नामों की घोषणा। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश, अगले 3 से 4 दिन पूरे राज्य में हल्की से तेज बारिश की संभावना। हिमाचल में कई जगह बारिश, शिमला में भी बरसे बदरा, 15 अक्टूबर तक पूरे राज्य में हल्की से तेज बारिश की उम्मीद। सोनमर्ग में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बदल रहे मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी वादी की खूबसूरती को निहार रहे हैं। पहाड़ों पर भी मौसम की मेहरबानी बरकरार रहा, हिमाचल प्रदेश में चंबा में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में चंबा पहुंचे पर्यटक, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ। धर्मशाला की धौलाधार पानी पर सीजन की तीसरी बर्फबारी। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश और हिमपात से बदल गया मौसम का मिजाज, बारिश के बाद तापमान में गिरावट। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में मौसम ने बढ़ाई पर्यटकों और कारोबारियों की उम्मीद। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में बदल गया मौसम का मिजाज, कहीं देर रात बारिश तो कहीं पड़े ओले। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, आवाजाही प्रभावित। गाजियाबाद में भी जमकर बरस रहे हैं बदरा, कई इलाकों में जलजमाव। रोहतक में भारी बारिश से किसान परेशान, पानी में डूबे अनाज। सोनीपत में भी भारी बारिश से मंडी में जलजमाव, किसानों की बढ़ी चिंता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी योजना का लाभ उठाकर दिव्यांग बन रहे हैं आत्मनिर्भर। प्रशिक्षण लेने के बाद दिव्यांगों ने तैयार किया करीब 100 तरह के दिया, दीपावली पर दियों की बिक्री से रोजगार की जगी उम्मीद। मध्य प्रदेश के पन्ना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। धर्मशाला के त्रियोंडा फॉरेस्ट इलाके में क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल की तैयारी। पर्यटकों के लिए पानी की व्यवस्था भी की जाएगी सुनिश्चित, पर्यटक गतिविधियों से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए फैसला। भारतीय मुद्रा को मजबूत करने की रिजर्व बैंक की कोशिशों का असर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93 पैसे मजबूत होकर 95.78 पर बंद हुआ रुपया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ी गुड न्यूज, वडोदरा में दिल्ली मुंबई मेन लाइन के ऊपर सभी 14 पोर्टल बीम का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों का किया सम्मान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन। 22 अक्टूबर को देशभर में के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेल जनसंवाद का आयोजन किया जाएगा, विशेष अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन। स्वदेशी रक्षा निर्माण और समुद्र में देश की बढ़ती ताकत से जुड़ी हुई है गुड न्यूज, नौसेना में शामिल हुआ एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट INS मंगरोल। माहिम श्रेणी का तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट युद्धपोत आईएनएस मंगरोल। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत निर्माण किया 80% से ज्यादा स्वदेश। तीन डीजल इंजन और वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस। एंटी रडार डिकोई ड्रोन सिस्टम अभय हल माउंटेड सोनार से लैस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के करगिल से आए छात्रों के ग्रुप से की मुलाकात। राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत तो राष्ट्रपति भवन पहुंचे छात्रों से मुलाकात। सेना ने

0: processes and their role in climate. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी में शुरू हुए सम्मेलन में दुनिया भर के 380 प्रतिनिधि शामिल हुए। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया। मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश आए, बड़ी संख्या में बद्रीनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी में गंगा पूजन किया। अकोला में देवदूत बनी महिला, आरपीएफ जवान बुजुर्ग की बचाई जान। पुरी में स्वच्छता अभियान को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने लगाई झाड़ू, कार्यकर्ताओं के साथ साफ सफाई। स्टॉक होम में स्वीडिश रैपर और संगीतकार जोनाथन की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लोगों को कर रही आकर्षित। प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क था और इसमें विभिन्न विषयों और भावनाओं को दर्शाया गया था। जोनाथन संगीतकार होने के साथ साथ कला प्रेमी भी हैं। अंगड़ी में सूखा प्रभावित इलाकों की सिंचाई के लिए किया जा रहा है नया प्रयोग। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के विस्तार कर रहा सभी सूखा प्रभावित इलाकों को हरा भरा बनाने का प्रयास। पेरिस ऑटो शो में देखा फ्रांस के कुछ सबसे प्रसिद्ध पुरानी कारों का जलवा, लोगों ने कारों के डिजाइन की तारीफ की। इसको पुराने डिजाइन से प्रेरित कई कॉन्सेप्ट कारों की शोकेस। सिट्रोएन की 2CV के नए रूप ने खींचा सभी का ध्यान। नए इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में मूल कार की खास विशेषताएं बरकरार रखी गई हैं, जिसमें गोल हेडलाइट्स, रोल बैक रूफ और पहचाने जाने वाले डोर हैंडल शामिल। प्यूजो ने ET16 का अनावरण किया, जो 1985 और 1986 में विश्व रैली चैंपियनशिप जीतने वाली कार है। किनिंग जाइंट पांडा रिसर्च सेंटर में धूमधाम से मनाया गया विशाल पांडा किन हुआ का जन्मदिन। रिसर्च सेंटर के कर्मचारियों ने पांडा के लिए तैयार किया बांस का बना केक, जिसे सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया। पांडा ने मस्ती के साथ ताजा बांस के केक का आनंद उठाया। पांडा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए रिसर्च सेंटर के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। चीन के युन्नान प्रांत के हैहोंग वेटलैंड पहुंचा प्रवासी पंछियों का झुंड। डियांची झील के किनारे बड़ी संख्या में उड़ते नजर आए पंछी। इन प्रवासी
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रसिद्ध रामकथा वाचक मुरारी बापू की भारत स्वास्तिक यात्रा कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठ पहुंच चुकी है, और यात्रा के तीसरे दिन मुरारी बापू ने श्री शारदा पीठ की पावन भूमि पर रामकथा की आद्य शंकराचार्य से परंपरागत रूप से जुड़ी ये पीठ दुनिया में अद्वैत वेदांत और वैदिक ज्ञान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर आद्य शंकराचार्य की जन्मभूमि के रूप में पूजित कालड़ी से गुजरने के बाद यात्रा अब उनकी अद्वैत परंपरा से जुड़ी दक्षिण पीठ पहुंची है। यहां पर रामकथा के दौरान मुरारी बापू ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारत स्वास्थ्य यात्रा सभी को सद्भाव और सद्भावना के सूत्र में बांधने का माध्यम बनेगी। श्रृंगेरी में मां शारदाम्बा मंदिर के साथ ही प्राचीन विद्याशंकर मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला, खूबसूरती, नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।
7: श्रृंगेरी मठ, हम आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य के द्वारा मान्यता ये है कि पहला ये मठ है जिसकी स्थापना उनकी तरफ से की गई थी, और यहाँ प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र से माना जाता है इस मठ को, भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और ज्ञान परंपरा के हिसाब से। और आपको ये भी बता दें कि माँ शारदाम्बा का मंदिर है जो ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर एक और बहुत खास मंदिर है। ये माँ शारदाम्बा का मंदिर सबसे पहले आप देखिए जो बहुत ही ज़्यादा खास है, और कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो इस मंदिर के ज़रूर दर्शन करिए, क्योंकि इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य की तरफ से की गई थी। जो मां की मूल मूर्ति थी, चंदन की मूर्ति थी, जो यहां स्थापित की गई थी आदि शंकराचार्य की तरफ से। हालांकि बाद में जब इसका पुनर्निर्माण हुआ तो उसे बदल दिया गया। बहुत ही चमचमाती खूबसूरत मां की प्रतिमा यहां मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग नवरात्रों के समय पर यहां दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और आपको बता दें कि मां सरस्वती, जिन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और यही कारण है कि विद्यार्थी, शिक्षक, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले तमाम श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं दर्शनों के लिए। कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है हमें याद दिलाता है कि जो भारतीय परंपरा है ना, वो जो ज्ञान है वो केवल डिग्रियां, सिर्फ शिक्षा स्कूल्स तक सीमित नहीं है, उसे जीवन में सही दिशा देने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सिखाती हैं हमें माँ सरस्वती। तो माँ शारदाम्बा के दर्शनों के साथ ही कहा जाता है कि जो श्रृंगेरी आता है उस तमाम उन श्रद्धालुओं की विवेक और सद्बुद्धि की कामना पूरी होती है और इसीलिए बड़ी संख्या में माँ के दर्शनों के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन कल माँ चंद्रघंटा की होगी पूजा। शेर पर सवार माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान, भक्त विधि विधान से करते हैं माँ शक्ति स्वरूपा की आराधना। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में उमड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना। मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के हो रहे हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनूट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ। बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम। जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान। अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान। अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि में पान के पत्ते के खास प्रयोग की। अक्सर पूजा पाठ में हम पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, नवरात्रि में हम इसका प्रयोग किस प्रकार करें जिससे हमारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, इस बारे में पंडित जी से आज के शो में हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुडलक मंत्र क्या है।
1: देखिए, पूजा जब भी आप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो सामान्यतः काले या नीले रंग के वस्त्र पूजा उपासना में धारण ना करें। पीला, लाल या सफेद वस्त्र अगर आप पूजा में पहने तो वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
0: और चलिए अब सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं 13 अक्टूबर 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:27 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं 7:12 तक। राहु काल का समय 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत अपने विषय के साथ करें और सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि पान के पत्ते का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या होता है।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के पावन अवसर पर आप पान के पत्ते का कैसे प्रयोग करें जिससे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पान के पत्ते का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, पान का पत्ता एक विशेष लता का पत्ता है। ये शौक के लिए और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता पाचन तंत्र को अच्छा बना देता है और शरीर को विषमुक्त कर देता है। शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल देता है। भारतवर्ष में पान के पत्ते को प्राचीन काल से काफी पवित्र माना जाता है और पान के पत्ते की पवित्रता को देखते हुए इसका उल्लेख वेदों में भी किया गया है। लगभग हर तरीके के पूजा अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसको शुभ कार्य की शुरुआत के लिए, यात्रा के आरंभ के लिए, शुभता लाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। देवी की उपासना में, मां दुर्गा की उपासना में पान के पत्ते से विशेष मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं, यानी पान के पत्ते का प्रयोग करके अगर आप देवी की उपासना करें तो अपनी तमाम मनोकामनाएं आप बहुत आसानी से पूरी कर पाएंगे।
0: और इसी के साथ आप पंडित जी से जान लेते हैं कि पान के खास इस्तेमाल के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: अब अगर आप पान के पत्ते का विशेष प्रयोग करना चाहते हैं या पान के पत्ते का विशेष प्रयोग करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। जो पान का पत्ता आप प्रयोग में लाएंगे वो पान का पत्ता पूरा होना चाहिए, कटा हुआ या टूटा हुआ ना हो। इसमें इसकी डंडी यानी इसकी डंठल लगी होनी चाहिए। और पान का जो पत्ता आप प्रयोग में लाएंगे वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पूजा और विशेष प्रयोग के लिए हरे पान का पत्ता प्रयोग करना चाहिए। हरे पान के पत्ते का प्रयोग करना लाभकारी होगा।
0: और आगे बढ़ने से पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
1: मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी, परिवार के रिश्तों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने विषय के साथ। पंडित जी से ये जान लेते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए पान के पत्ते का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए।
1: अगर आपके विवाह होने में विलंब हो रहा हो, आपकी शादी जल्दी नहीं हो पा रही हो, तो नवरात्रि में पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे। एक पान का पत्ता ले लीजिए, हरा पान का पत्ता जिसमें डंठल लगी हुई हो, सिंदूर को घी में जरा सा मिलाकर पेस्ट बना लें और पान के पत्ते पर चिकनी तरफ इस पेस्ट से अपना नाम लिखें और इसको चिकनी तरफ से ही मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करें और देवी से प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। अगर ये उपाय आप नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें, पवित्र रहें, सात्विक रहें, तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
0: और आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का वक्त है।
1: कर्क राशि, परिवार में बेवजह के विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल ले लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला सवाल किसका रहेगा।
1: जी, आज का पहला प्रश्न मोमिता जी ने हमें लिखा है और मोमिता जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी की जन्म तारीख है 9 मार्च 2002, जन्म का समय दोपहर में 1:25, जन्म स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब आगे उसे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। मोमिता जी, आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से अगर आपकी बेटी एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करा करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ले जाना चाहिए, जहां पर उनको सफलता ज्यादा मिलेगी। आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से इनके करियर में ज्यादा कोई मुश्किलें या ज्यादा कोई संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, आज दूसरा सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, अगला प्रश्न अवधेश जी ने हमें लिखा है और अवधेश जी हमें बरेली से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 दिसंबर 1961। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है बरेली। अवधेश जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अवधेश जी, ज्यादातर आपको आने वाले समय में अपने यूरिन का, किडनी का, प्रोस्टेट आदि का ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन तनाव भी आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि रोजगार की व्यवस्था के लिए पान के पत्ते का किस तरह से इस्तेमाल करना फलदायी होता है।
1: अगर आपके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपका करियर बन जाए या शुरू हो जाए, तो पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? 27 पान के पत्ते ले लीजिएगा, टूटे हुए ना हो, हर पत्ते में डंठल होनी चाहिए और डंठल को लाल धागे में बांध कर पान के पत्तों की एक माला बना लीजिएगा। इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा, देवी को चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। अगले 1 से 3 महीने में आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी और जब आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाए, तब इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये उपाय नवरात्रि में किसी भी रात को अगर आप एक बार कर देते हैं और हृदय से प्रार्थना करते हैं, तो आपके रोजगार की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी।
0: और आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का वक्त है।
1: तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, संतान की खूब उन्नति होगी, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि धन लाभ के लिए पान के पत्ते का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, आपको धन का लाभ हो, तो पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? नवरात्रि में जितने दिन भी संभव हो या रोज शाम को माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा और इसके बाद पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके उनको अर्पित करिएगा। ऐसा पूरी नवरात्रि में करिए और नवरात्रि के बाद महीने में एक पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा की रात को पान के पत्ते में गुलाब की पंखुड़ी रख करके देवी को अर्पित करिएगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
0: और इसी के साथ पंडित जी से ये जानेंगे कि अगर विजय प्राप्ति करनी है तो इसके लिए पान के पत्ते का किस तरह से प्रयोग करें जो फलदायी हो।
1: देखिए, आप प्रतियोगिता में, परीक्षा में, शिक्षा में, मुकदमे में विजय पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शुद्ध घी का एक मुखी दीपक जलाएंगे, इसके बाद एक पान के पत्ते को दीपक से थोड़ा सा दूर दीपक के सामने रखेंगे, आप देखेंगे कि पत्ते पर थोड़ी कालीमा आ जाएगी, हल्की सी कालिख आ जाएगी, इस कालीमा को अपने कंठ पर लगा लें। आप जिस भी मुकदमे, प्रतियोगिता या परीक्षा के लिए जाएंगे, इसको लगा करके उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
0: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
1: मकर राशि, मन आपका इस समय प्रसन्न रहेगा, धन की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या दूर होगी। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, करियर का दबाव कम होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के आपके तीसरे सवाल का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पे आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज पंडित जी तीसरा सवाल किसका लेंगे।
1: जी अगला प्रश्न ख्याति ने हमें लिखा है और ख्याति हमें जबलपुर मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 2004, जन्म का समय सुबह के 9:05, जन्म स्थान है जबलपुर। ख्याति कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूं, किस क्षेत्र में मुझे करियर के लिए कोशिश करनी चाहिए। ख्याति, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र की तैयारी करें, तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकती हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, खान पान और डाइजेशन के मामले में लापरवाही मत करिएगा। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न शैलजा जी ने हमें लिखा है और शैलजा जी की जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1989, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है बुलंदशहर। शैलजा कह रही हैं कि मेरा विवाह काफी विलंब से हुआ है और अब संतान होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो संतान मुझे हो सकेगी या नहीं हो पाएगी। शैलजा जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से नेचुरली संतान होना कठिन है। अगर आप आईवीएफ के थ्रू जाएं या किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लें तो बिल्कुल आपको संतान हो सकती है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में अभी आपको आईवीएफ के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपका आईवीएफ सक्सेसफुल होगा और अगले साल आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। रोज प्रातः एक बार गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें और हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम सवाल की ओर। पंडित जी, चौथा सवाल किसका लेने वाले हैं?
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न विक्रम जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से मेल लिखते हैं। विक्रम जी की जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1981। जन्म का समय दोपहर में 2:50। जन्म स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। विक्रम जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यवसाय करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए नौकरी छोड़ना बेहतर रहेगा? विक्रम जी, अभी आपकी कुंडली में नौकरी छोड़ना बहुत सूटेबल नहीं है। अभी आप व्यवसाय पर फोकस मत करिए, अभी आप नौकरी में ही बने रहिए। 2029 के बाद व्यापार के बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन तब तक आप नौकरी करें और अभी कोई नौकरी में रिस्क ना लें। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक ओपल लगभग 10-12 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 13 अक्टूबर को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेंगे पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 13 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है इस बारे में जान लेने का वक्त हो चला है।
1: आज की जिज्ञासा है कि भैरवी चक्र क्या होता है। देखिए, एक दूसरे में ऊपर और नीचे की तरफ त्रिभुज फंसा होता है, तारे की तरह दिखाई देता है। ये दो त्रिभुज होते हैं, इसको भैरवी चक्र कहते हैं। शाक्त तंत्र में देवी की पूजा में भैरवी चक्र का विशेष प्रयोग किया जाता है। इस पर बैठ करके विशेष तरीके से साधना की जाती है, लेकिन अगर आपको तरीका पता नहीं है और बिना सोचे समझे आप इसका गलत प्रयोग करें तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है।
0: और चलिए अब आपको बता देते हैं 13 अक्टूबर 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
1: दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 13 अक्टूबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है जान लेने का कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है धनु। इनका दिमाग तेज होता है लेकिन पढ़ाई एवरेज यानी मध्यम रहती है। अच्छी शिक्षा के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए।
0: और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हुए अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो जो ले लेते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या रहेगा।
1: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में समस्या रहती हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद 108 बार ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र का जप करिए और अपने पिता के नाम से हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके पिता का जीवन और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
0: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: साहस, शक्ति और वीरता का भाव देने वाली देवी है माँ चंद्रघंटा। भय का नाश करने वाली और सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली देवी है माँ चंद्रघंटा। माना जाता है कि असुरों का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धरा था। माँ चंद्रघंटा, जिन्हें माथे पर घंटीनुमा आकार के चंद्रमा धारण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी कवचम में माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है।
1: यह नवरात्र के तीसरे दिन तृतीयम चंद्रघंटेति दुर्गा कवच में ऐसा कहा गया है, तीसरे दिन की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिसके कारण भगवती को चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप जो है चंद्रघंटा का, दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर शक्ति के रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
0: उग्र और तेजस्वी देवी के रूप में चंद्रघंटा भय और बाधाओं को दूर करने की अपार शक्ति रखती हैं और अपने भक्तों पर शक्ति के आवरण की छाया रखती हैं। नवरात्र में शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। आपके जीवन में चाहे ग्रहों का संकट हो या फिर जीवन की बाधाओं ने आपको परेशान कर रखा हो, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना में छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी हैं। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आप निर्भय और अभय हो जाते हैं।
1: जो भगवती का स्वरूप है भिन्न भिन्न स्वरूप है। यह भिन्न स्वरूप है, हमारे यहाँ कहा गया कि जहाँ से घंटा नाद किया जाता है वहाँ से आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं, और चंद्रमा जहाँ पर है तो मन का कारक है। तो जब घंटा इनके नाम में चंद्रमा के और घंटा दोनों का नाम दिया गया है, तो ऐसी देवी का आराधना करने से मनुष्य के मन से, मनुष्य के परिवार से भय डर दूर चला जाता है।
0: नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और से देखिए ये ज्योतिषीय उपाय। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। इनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है।
1: तीसरा दिन है, हमारे यहाँ तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, इनकी आराधना करने से जो तीनों प्रकार के ताप हैं, जिनको कहा गया दैहिक, दैविक, भौतिक, या तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, इन तापों का समन होता है। क्योंकि भगवती के साथ घंटा भी जुड़ा है, भय का नाश करेगा, और मस्तक पर चंद्रमा है तो मन को निर्मल करेगा। इनकी आराधना इस तरह से अगर कोई नवरात्रि में करता है तो विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
0: मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी का यह स्वरूप परम कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है।
1: चंडी जो रूप है नौरु भगवती का ही है, तो कलयुग में इनकी साधना जो होती है बहुत फलदायी होती है। साध धन ना, जो साधने में कठिन हो उसी का नाम साधना होता है। तो इन निरंतरता आवश्यक होती है। यह देवी शौर्य की प्रतीक हैं, जीवन में बल देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं। तो इनकी आराधना करने से जीवन से भय की निवृत्ति अवश्य हो जाती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयोग। गौर से देखिए। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवारण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जब के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता, पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाए भोग, कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है?
1: सफेद पदार्थ में आप कोई भी वस्तु ले लें, आपका जैसा व्रत है, जैसा अनुष्ठान, उस प्रकार का आप नैवेद्य ग्रहण कर लें, और दूध और खीर और जो सात्विक भाव से प्रसाद बने, और उसी सात्विक भाव से हम भगवती को अर्पण करें, तब यह जो उनका नैवेद्य होगा, जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे, वह हमें बल प्रदान करेगा, हमारे शरीर की कांति, हमारे चेहरे के ओज को, कांति को बढ़ाएगा।
0: माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो आप भी माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि, साथ ही जानेंगे माता के उद्भव की वो पौराणिक कथा जिसमें समाहित है त्रिदेव की शक्ति। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: आस्था कहती है कि साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है, तब नवरात्र में मां चंद्रघंटा का पूजन एक वरदान की तरह साबित होता है।

0: माँ चंद्र घंटा की उपासना है परम फलकारी। जीवन से टल जाएगा संकट भारी से भारी। शक्ति की साधना से खुलेगा मुक्ति का द्वार। देवगण मानते हैं माँ चंद्र घंटा की महिमा है अपरंपार। माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार का नाश हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्र घंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। चलिए हम आपको वो पौराणिक कथा भी सुनाते हैं जब मातेश्वरी ने लिया था विश्व के कल्याण के लिए अवतार। देवी पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं और दैत्य राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवगण पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीनकर ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कथा कहती है कि तब इंद्र और देवताओं ने संकट की घड़ी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। कहते हैं कि उनके दुर्दशा से द्रवित होकर त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया जो एक भव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके 10 हाथ थे जो बाद में विभिन्न देवी देवताओं के दिव्य शस्त्रों से सुशोभित हुए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शस्त्र शामिल थे। स्वयं इंद्र ने अपना वज्र और घंटा भेंट किया। सूर्य देव ने उन्हें अपनी तेजस्वी किरणें, एक चमकीली तलवार और एक भयंकर शेर भेंट किया। इन दिव्य वरदानों से परिपूर्ण होकर देवी ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया। कथा है कि दैत्य राजा और उसके कुल का अंत हो गया और देवी चंद्रघंटा ने अपनी अदम्य शक्ति से देवताओं को उनके भय से मुक्त किया।
1: माँ चंद्रघंटा सामान्यतः सिंह पर सवार हैं और अनेक प्रकार के आयुध अपने हाथों में धारण की हुई हैं और एक हाथ इनका अभय मुद्रा में है। उनका स्वरूप जहाँ एक ओर उग्र शक्ति का स्वरूप है, उसी ओर उनके मुखमंडल पर जो शांति है वह करुणा रूप में दिखाई देती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विश्रुता, यह इनके बारे में शास्त्र में प्रमाण बताया गया है।
0: कथा कहती है कि तब से ही देवी को भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी के स्वरूप में पूजा जाने लगा। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र की तीसरी तिथि पर आपको कैसे करनी है देवी की उपासना। पर ध्यान रखिए कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है।
1: माँ चंद्र घंटा को रक्त पुष्प, लाल रंग का अक्षत, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह पंचोपचार जो पूजन है, यह पूजन हर देवी का करना चाहिए और सायंकाल के समय भी दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ होता है।
0: लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्र घंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्र घंटा की उपासना के लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगकाराय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी की कृपा। नवरात्रि में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली है माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान, माँ की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। आगे हम आपको बताएंगे माँ की उपासना के अमोघ मंत्र जिनके जाप से होगा आपकी सभी बाधाओं का निदान। बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का एक सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का हो जाएगा अंत।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के मस्तक पर लगे घंटे की भयानक ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, साथ ही मंत्रों के उच्चारण से वरदान देती हैं मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा के मंत्रों में है अद्भुत शक्ति। विधि विधान से करें आदि शक्ति की भक्ति। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मां चंद्रघंटा के मंत्रों के जाप से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। भगवती का ये स्वरूप अद्भुत है, जिनके आराधना से भय से मुक्ति और संकट में साहस का वरदान मिलता है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा का मंत्र जाप करने से मन का डर, अज्ञात भय और घबराहट दूर होती है। मां के विशेष मंत्र का जाप आपके सभी दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है।
1: देवी का कोई भी रूप हो, हम मां के रूप में मानते हैं और मां हमेशा अपने संतान को सुखी देखना चाहती है। हमारे यहाँ दुर्गा अर्गला में कहा गया, अर्गला स्तोत्र में, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपन देहि जयन देहि यशो देहि दिशो जहि, यह सब जो मंत्र भगवती के हैं, यह लोक और परलोक दोनों बनाने वाले हैं। तो इन सब मंत्रों का जप करने से रोग नाश होता है, शत्रु दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
0: या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महयम चंद्रघंटेति विष्णुता।
1: भगवती मंत्र वही रहे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मूल मंत्र है, उसके जगह चंद्रघंटायै नमः, चंद्रघंटा लगा करके, और चंद्रमा का भी एक मंत्र, जो कि चंद्रमा इनके साथ जुड़ा है, तो चंद्रमा के लिए सोम सोमाय नमः, सायंकाल के समय घी का दीपक जला करके सोम सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इन मंत्रों का जप करने से जीवन से भय का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है।
0: तो आप जब भी मां चंद्रघंटा की उपासना करें तो देवी के मंत्रों का जाप भी करें। माना जाता है कि देवी के पूजन में मंत्रों के जाप से मां चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से मां की आराधना करें, फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुननी।

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान? पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान? और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान? जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हुआ तो शहर शहर गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम लोग देवी के भजनों पर एक साथ झूमते हैं और माँ की उपासना करते हैं।

0: नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हुए तो देवी माँ की उपासना में भक्तों ने अपना पूरा जोश और उत्साह झोंक दिया है। चाहे माँ के मंदिर हो या जागरण, गरबा हो या तलवार रास, लोगों की एनर्जी देखते बन रही है। गुजरात के जामनगर से आई इस तस्वीर में भी ऐसा ही उत्साह और जोश देखने को मिला। यहाँ नवरात्रि के खास मौके पर पारंपरिक तलवार रास किया गया, जिसमें इन लड़कियों ने हाथों में तलवार लेकर महाकाली तांडव समेत विभिन्न पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 सालों से नवरात्रि महोत्सव की परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। ये तलवार रास इस गरबी मंडल की खास पहचान है। आशापुरा गरबी मंडल का तलवार रास पूरे इलाके में खासा मशहूर है। इस मंडली से जुड़े लोगों का कहना है कि ये परंपरा आज भी नई पीढ़ी को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही है। इनकी ये कला न केवल गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती है, बल्कि नारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संदेश भी देती है।
1: आ गरबी छेल्ला 45 वर्ष थी थाई छे अने आ गरबी बधी बधी छोकरियो एटली खुशी थी रमे छे अने एटली उत्साह थी रमे छे अने आ गरबी मां बहु आ गरबी मां तलवार रास, महाकाली तांडव जेवा अनेको रासो थाय छे। तलवार रास मां अत्यारे अमे लोको दांडियाना बदले तलवार वापरी छी, जेनाथी अमे लोको नारी शक्ति आगळ वधारी छी अने लोको आ तलवार रास ने दूर दूर थी जोवा आवे छे अने आ अमारो रास बहु फेमस छे।
0: नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबा, डांडिया, नाइट्स और रास का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है, जिनमें बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी खास तैयारी की है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ज्यादा सतर्क है। राजकोट के पंडालों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की एक खास टीम बनाई है। इस शी टीम में महिलाएं पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि गरबा कलाकारों की शक्ल में ही रहेंगी, जो अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और ऐसे आयोजनों में पहुंचने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी।
2: हमारी शी टीम जो है महिला पुलिस स्टेशन में तैनात है और बाकी हर एक पुलिस स्टेशन में शी टीम के महिलाएं आइडेंटिफाइड है, तो वो महिलाएं पारंपरिक गरबा की गणवेश पहन के अलग अलग गरबाओं में जाएंगी और वहां पे नजर रखेंगी कि कोई रोमियो या फिर आवारा तत्व जो है छेड़खानी का प्रयास कर रहा हो या फिर कोई भी बहन बेटी को परेशान कर रहा हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। और इसके अलावा हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की जो टीमें हैं वो गरबा के संपूर्ण आयोजन के दौरान जो है आयोजन स्थल पर हाजिर रहेंगी।
0: गुजरात के इस लोक नृत्य को लोग खासा पसंद भी करते हैं, इसलिए रात रात भर चलने वाले इन आयोजनों में सुरक्षा एक अहम पहलू रहा है। ऐसे में प्रशासन की भी कोशिश यही है कि गरबा में आने वाले सभी लोग बिना किसी परेशानी के गरबा खेल सकें। जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना, शेर पर सवार माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान, भक्त विधि विधान से करते हैं मां की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में बड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश में रंग कर एक नया एंगल दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे फैक्ट चेक में। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि शिष्य रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि ये वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: क्या प्रेमानंद महाराज अपने शिष्य की मौत से टूट गए, फूट फूट कर रोने लगे? प्रेमानंद महाराज के रोते वीडियो को शिष्य रसिक दुलारी की मौत से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये खबर हमारे सामने भी आई, हमने इसकी पड़ताल की।
8: मरने का डर है ना, इतने कष्टों का कोई भय है।
9: खूब रोए प्रेमानंद महाराज, शिष्य की मौत के बाद छलके आंसू।
8: एकमात्र भगवान का आश्रय।
9: प्रेमानंद महाराज के रोने का वीडियो हुआ वायरल।
8: अब मुझे कोई परवाह नहीं है, भगवान ऐसी।
9: ये वीडियो जैसे ही सामने आया लोग चौंक गए, ये क्या हो गया? सत्य मार्ग पर चलने की सीख देने वालों की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे?
8: शरणागति होती है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
9: प्रेमानंद महाराज को चाहने वाले लोग सकते में आ गए, सवाल उठने लगे।
8: न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
9: सोशल मीडिया पर ये दावा कि प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो उनके शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद का है, जिसमें वो काफी आहत नजर आ रहे हैं।
8: प्रियाजू ने मुझे अपना बना लिया, भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं।
9: पहले ये सुनिए आखिर रोते रोते प्रेमानंद महाराज क्या बोल रहे हैं। सुना आपने, प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं, ना मरने का डर है, ना ही किसी कष्ट का कोई भय,
8: ना इतने कष्टों का कोई भय है।
9: कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि हालिया घटनाओं को लेकर वो कितने आहत हुए हैं, ये वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि प्रेमानंद महाराज जी अंदर से टूट गए, अगर प्रेमानंद महाराज जी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वो सभी ट्रोलर्स होंगे, जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सटीक खबर के प्रेमानंद महाराज जी को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर भी किया जा रहा है।
8: डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
0: बता दें कि प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत 25 सितंबर को हुई थी। वृंदावन स्थित श्रीहरि राधा केलीकुंज आश्रम के पास गुरुकृपा कुंज परिसर में उनका शव मिला था। चौथी मंजिल से कूदकर युवा संत रसिक दुलारी ने आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीपक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के रोने वाला वीडियो सामने आया है, और ये इस वक्त खूब सुर्खियों में भी है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद अंदर से टूट गए और इस कदर आहत हुए कि फूट फूट कर रोने लगे। ये वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो के जरिए जो दावा किया गया उसमें पहला तो ये कि प्रेमानंद महाराज के रोने वाला ये वीडियो हाल फिलहाल का है। दूसरा ये बताया गया कि श्रीहरि राधा केलीकुंज से ये वीडियो सामने आया है। हमने इसके बारे में पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि शिष्य की संदिग्ध मौत और उससे जुड़े विवादों के बाद प्रेमानंद महाराज ने तुरंत ही श्रीहरि राधा केलीकुंज आश्रम छोड़ दिया था। अब वो यमुना पार बेलवन स्थित आश्रम में रह रहे हैं। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि श्रीहरि राधा केलीकुंज से इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है। वीडियो में गौर करने वाली बात यह भी नजर आई कि प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रम नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, न मरने की का कोई डर है और न ही किसी कष्ट से कोई मतलब है। मतलब किसी भी संदर्भ में प्रेमानंद महाराज ने ये बातें कहते हुए वो रोने लग गए। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर प्रेमानंद महाराज ने यहां पर अपने शिष्य का नाम क्यों नहीं लिया। ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखने को मिला। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये कि ये वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नजर नहीं आया। तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
9: वीडियो को देखने से लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज किसी बात का जिक्र छेड़ने के बाद रोने लगे,
8: तब हृदय में वो शरणागति होती।
9: ऐसे में फैक्ट चेक की टीम दावे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये इसी साल 22 मार्च के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो वृंदावन में हुए हालिया हादसे से संबंधित नहीं है, क्योंकि आश्रम के शिष्य दीपक लोधी और रसिक दुलारी की आत्महत्या की घटना 25 सितंबर को सामने आई थी। इसके बाद हमें प्रेमानंद महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भजन मार्ग पर इसी साल 1 मार्च को अपलोड किया गया इसका लंबा वर्जन मिला। उसी दिन एकांतिक वार्तालाप और दर्शन के दौरान प्रेमानंद महाराज जब प्रवचन दे रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी। करीब 39 मिनट के इस वीडियो में ठीक 7 मिनट 10 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा आता है।
8: भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूँ, हृदय की बात कह रहा हूँ। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
9: रसिक दुलारी की मौत को लेकर प्रेमानंद महाराज के बयान का कोई वीडियो हमें नहीं मिला, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वृंदावन के राधा कीली कुंज ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रसिक दुलारी के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त किया था और बताया था कि प्रेमानंद महाराज व्यथित है। साथ ही घटना की पुलिस जांच पूरी न होने तक किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या अफवाह न फैलाने की अपील की गई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि 1 मार्च 2026 का है, जो वो एक प्रवचन के दौरान भावुक हो गए थे। रिदेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। हमने इस खबर की भी पड़ताल की।
4: नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गोवा में कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें करीब 45 मिनट तक CPR दी गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुणे के डोजे गांव में रात को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर उनकी अंतिम यात्रा का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग एक अर्थी को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही आसपास कई लोग दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, नाना पाटेकर को अंतिम विदाई, 75 की उम्र में दिग्गज अभिनेता का निधन। सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: 8 अक्टूबर को 75 वर्ष की आयु में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई। पुणे के डोंजे गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच अब ये वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है और ये वीडियो हमारे सामने भी आया। सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो की जांच में सबसे पहले हमने वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें इस वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। जब नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा के दौरान कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी दृश्य सुनने या देखने को नहीं मिला। वीडियो में नजर आ रहा है कि अर्थी को पर्दे से ढक दिया गया है, जबकि नाना पाटेकर की अर्थी को पर्दे से नहीं ढका गया था। वीडियो में एक और बात गौर करने वाली थी, कंधा दे रहे सभी लोग इस्लामिक टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दृश्य तभी सामने आता है जब किसी का जनाजा निकलता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि कहीं किसी और के जनाजे के वीडियो को नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। दूसरा सवाल ये कि दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को पुणे के डोंजे गांव स्थित उनके आवास नानाची वाड़ी में अंतिम विदाई दी गई। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही था कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 25 सितंबर को एक फेसबुक पेज पर अपलोड हुई एक वीडियो रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी देखने को मिले। इसमें यह बताया गया था कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान को मुंबई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके साथ ही 4 दशकों से भी अधिक समय तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाले इस अभिनेता की अंतिम यात्रा संपन्न हो गई। जुमे की नमाज के बाद मुंबई के यारी रोड कब्रिस्तान में अभिनेता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। उनके अंतिम यात्रा के दौरान उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य उनके पार्थिव देह को ले जाते हुए दिखाई दिए। बता दें, फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का लंबी बीमारी के चलते 24 सितंबर को निधन हो गया था। सर्च के दौरान हमें 25 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी नाना पाटेकर की अंतिम विदाई का बताकर शेयर किए गए वीडियो वाले दृश्य मौजूद है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के जनाजे का है, जिन्हें 25 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद यारी रोड कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ये वीडियो अभिनेता नाना पाटेकर के अंतिम विदाई का नहीं है। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के अंतिम जनाजे का है, जिनका 24 सितंबर को निधन हो गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
10: पढ़ाके क्या करेंगे? सलमान खान की मूवी मोटेम्मा, आर्मी में जाऊंगी।
11: मैडम ने जब मासूम बच्चे से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनके जवाब सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किसी ने सलमान खान बनने की बात कही तो किसी ने ढाबा खोलने और लंदन जाने का सपना बताया। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। कविता सुनाने का अंदाज अगर थोड़ा अलग हो तो हर किसी का ध्यान खिंच जाता है। इस बच्चे ने भी कविता सुनाने के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा है। बच्चा बांस की दीवार पर चढ़ा हुआ है और नीचे बैठे बच्चों को बड़े उत्साह से कविता सुना रहा है। चेहरे की मासूमियत और अंदाज की बेफिक्री इस पूरे पल को खास बना रही है। वीडियो देखकर लोग बच्चे की क्यूटनेस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। ट्रेन में बैठा बच्चा बड़े आराम से चिप्स खा रहा था, लेकिन नीचे बैठे बंदर को भी पैकेट दिखाकर ललचा रहा था। बच्चे को शायद अंदाजा नहीं था कि बंदर इतनी जल्दी एक्शन में आएगा। तभी बंदर ने छलांग लगाई और जंगल

0: कहते हैं कि प्यार जताने के लिए किसी बड़े तोहफे या महंगे सरप्राइज की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी चीजें भी दिल छू जाती हैं। ऐसा ही ये प्यारा सा पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड रात में बैंक की ड्यूटी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी घर से खाना लेकर पहुंच गई। दोनों ने बैंक के अंदर शटर के बाहर बैठकर साथ में खाना खाया और कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताया। इस साधारण से पल ने लोगों को रिश्तों की असली अहमियत याद दिला दी। प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से जाहिर होता है। उम्र चाहे कोई भी हो, रिश्ता पुराना हो या नया, अगर प्यार सच्चा है तो परवाह हमेशा बनी रहती है। इस वीडियो में पत्नी बीमार होकर बिस्तर पर लेटी है और उन्हें दर्द में देखकर पति उनके पैर दबाने लगते हैं। पति का ये छोटा सा कदम रिश्ते की बड़ी खूबसूरती बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यार और देखभाल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: Today, my wife and I are cooking prasad for our family. My dad is outside mowing the lawn right now.
2: Two sabjis, one karela, and rice. So, over here.
0: भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का रंग अब विदेशियों पर भी चढ़ता नजर आ रहा है। विदेशी परिवार के घर हरे कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। परिवार को प्रेम से सात्विक प्रसाद बनाते देख लोग उनकी संस्कृति के प्रति श्रद्धा की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
2: Yes. And then over here, let's check that pot. Okay. Here we got a squash sabji.
0: ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक लड़का समुद्र के रेतीले तट पर खड़ा है और उसके हाथों में एक विशाल पतंग की डोर है। ये पतंग सामान्य पतंगों से बिल्कुल अलग है। इसका अलग हिस्सा खौफनाक ड्रैगन के चेहरे जैसा बना है, जिसके बड़े बड़े दांत और आंखें बेहद जीवंत लगती है। इसके पीछे लंबी पूंछ जैसी संरचना जुड़ी हुई है, जो हवा के थपेड़ों के साथ किसी उड़ते हुए नाक की तरह लहराती है। जब युवक इस विशाल पतंग को संभालने और हवा में लहराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक एक छोटा बच्चा चिप्स का पैकेट हाथ में लिए कैमरे के सामने आ जाता है। एक तरफ जहां हवा में भयानक ड्रैगन मंडरा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इस बच्चे का बेफिक्र अंदाज में चिप्स खाना वीडियो को एक मजेदार ट्विस्ट दे देता है। इंसान हो या जानवर, प्रेम फर्क मिटा देता है। दिखते हैं तो सिर्फ भाव, जो एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देते हैं। देखिए इस वीडियो में खुद साइकिल पर है ये शख्स और डॉगी को कंधे पर ऐसे बिठा रखा है मानो कोई छोटा बच्चा हो। डॉगी के साथ इस शख्स की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आ रही है। इन्हें देखिए, ऐसे अटैक कर रहे हैं मानो हरा ही देंगे मुकाबले में। आत्मविश्वास भरपूर है, हो भी क्यों नहीं, सामने वाला भी तो इस लड़ाई में खूब दिलचस्पी ले रहा है। भले ही बच्चे का मन रखने की गरज से खेल खेल रहे हों, लेकिन बच्चा भला अपने आप को बच्चा कहां समझ रहा है। बछड़े की ये मासूमियत देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। माँ का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, बेजुबान भी अपने बच्चों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। इस वीडियो में एक डॉगी अपने बच्चे के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्चा आगे आगे भागता है तो माँ उसे पकड़कर वापस अपनी ओर ले आती है। कभी प्यार से साथ दौड़ती है तो कभी दांतों से पैर थामकर उसे रोक लेती है। माँ और बच्चे के बीच प्यार भरा ये नजारा देखकर लोग भावुक भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: और अब आज शहर शहर सनातन के प्रतीक रामलीला की निभाई जा रही परंपरा की। रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि

आस्था, संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का जीवंत प्रतीक है। अयोध्या में राम जानकी मंदिर की रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से होता है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते ये रामलीला भी श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखती है। इस रामलीला की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान श्री राम, हनुमान जी और दूसरे पात्रों से जुड़ी भूमिका निभाने वाले कलाकार बाहर से नहीं बल्कि स्थानीय लोग ही होते हैं और बचपन से रामलीला से जुड़ने वाले बच्चे बड़े होकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।

0: दिव्य भव्य राम नगरी, आस्था, अध्यात्म और सनातन परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र अवधपुरी, अद्भुत अलौकिक प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर शारदीय नवरात्रि के दौरान स्वर्णिम वैभव से निखर चुकी है। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के दौरान राम नगरी में जगह जगह रामलीला का भी मंचन हो रहा है। अयोध्या में भगवान के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संगीत, संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से हो रहा है। माँ सरयू नदी के तट पर विराजमान अवधपुरी आस्था, परंपरा और भारतीय संस्कृति के विराट उत्सव दशहरा के लिए तैयार हो चुकी है। दशरथ नंदन भगवान राम की पवित्र नगरी में बेहद प्राचीन, जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रामायण मंचन हो रहा है। भगवान राम के चरित्र और उनकी लीलाओं के प्रति लोगों का समर्पण ही ऐसा है कि वो पूरी पूरी रात जाग कर मंचन देख रहे हैं। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर की विख्यात रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते यहाँ की रामलीला बहुत मशहूर है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाली इस रामलीला में भगवान श्री राम, हनुमान जी और दूसरे पात्रों की भूमिका निभाने के लिए कलाकार बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि वो स्थानीय ही होते हैं।
1: ये अयोध्या नगरी है भगवान राम की, यहाँ पे मंच जगह जगह सज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकार से मंच पर श्री राम जानकी मंदिर की रामलीला है और राम पथ पर है, लगातार यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे राम मंदिर है। तो रामलीला की शुरुआत है, जगह जगह से कलाकार आए हैं और ये काफी प्राचीन रामलीला है, 100 वर्षों पुरानी रामलीला है। तो लगातार यहाँ पे लोग बैठे हैं, रामलीला का आनंद उठा रहे हैं और भगवान राम की जो रामायण की गाथा है उसको लगातार सुनते चले आ रहे हैं। तो ये प्रथा है अयोध्या की, भगवान श्री राम की नगरी है।
0: रामलीला के पात्र, संगीत, संवाद और विशेष रूप से कलाकारों के मंचन का अनुभव ऐसा कि लोग घंटों बैठे रहते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि कितनी रात बीत गई।
2: बहुत साल हो रहा है यहाँ पे, बहुत दिन से हो रहा है,
3: बहुत ज्यादा हो गया।
2: हाँ, बहुत ज्यादा
3: देख रही है। कितने सालों से देख रहे हैं?
2: अरे हम तो 12-13 साल से देख रहे हैं।
3: 12-13 साल से देख रही है।
1: कितने सालों से रामलीला?
4: हम तो कब से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे
3: हैं। बहुत पुरानी रामलीला।
0: राम नगरी से करीब 160 किलोमीटर दूर संगम नगरी प्रयागराज में दशहरा महोत्सव और रामलीला के आरंभ की पारंपरिक घोषणा हुई। उससे पहले पूरे वैभव, श्रद्धा और उल्लास के साथ ऐतिहासिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो दशहरा महोत्सव और रामलीला मंचन के प्रारंभ का प्रतीक है। पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी की पारंपरिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा हीवेट रोड पर मौजूद चमेली बाई धर्मशाला से निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल धार्मिक झांकियां इस पारंपरिक आयोजन से जुड़े आकर्षण के केंद्र में रही। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान राम, माता सीता, भगवान कृष्ण, माँ काली, भगवान गणेश, राम भक्त हनुमान और सूर्य देवता की झांकी की वजह से पूरा माहौल ही भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा में शामिल करीब 20 फीट ऊंचा भव्य और सुसज्जित कर्ण घोड़ा मुख्य आकर्षण रहता है, जिसे मोतियों, आकर्षक लाइट्स और पारंपरिक सजावट से सजाया जाता है। सफेद रंग के कर्ण घोड़े को भगवान श्री राम का दूध भी माना जाता है। यही वजह है कि शोभा यात्रा निकलते ही दशहरा महोत्सव के आधिकारिक शुभारंभ का संदेश फैल जाता है।
5: ये कर्ण घोड़े का कंसेप्ट उत्तर रामायण काल में जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या आ गए तो ये कर्ण घोड़ा राम की कथा को पूरे जो है राम राज्य में, राज अयोध्या के राज में घूम घूम के सुनाया करता था। तो उसी घोड़े को ये माना जाता है कि अब ये घोड़ा जो है पूरे जनपद के अंदर राममय बना देगा, राम की कथा चारों तरफ बहेगी, लोग आनंद लेंगे, सीता राम की जय बोलेंगे, भरत जी की जय बोलेंगे, लक्ष्मण की जय बोलेंगे और हनुमान जी की जय बोलेंगे। माने पूरा जो रामलीला का कंसेप्ट है, रामायण का कंसेप्ट है, वो चारों तरफ वातावरण में फैलता रहेगा।
6: ये परंपरागत हो रहा है। आज से 150 साल पहले पंडित के पूर्वज लोगों ने इसका प्रारंभ किया था और मुकुट पूजा से कार्यक्रम प्रारंभ होता है जो राष्ट्रपति तक चलता है। ये राम मंदिर से प्रारंभ होकर के हमारे जो रूप चौकी का है कोठा पाचा रामबाग पटाखा मंदिर लोकनाथ चांदेगंज पुनः यहाँ से समाप्त हुआ।
0: इस साल भी शोभा यात्रा में डमरू दल पारंपरिक ढोल ताशों डीजे बैंड बाजा और भक्ति गीतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
7: हम लोग पंडाल के साथ सब लोग देखने आए, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर प्रदर्शन हुआ।
0: शारदीय नवरात्र पर शहर शहर लोक कलाकारों की मंडलियां प्रमुख प्रसंगों के जरिए भगवान राम के धर्म कर्तव्य प्रेम त्याग और बलिदान जैसे मूल्यों को राम भक्तों के सामने पेश करते हैं जिसको देखकर राम भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
9: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना, शेर पर सवार माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान, भक्त विधि विधान से करते हैं मां की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में बड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की भक्ति करने का महापर्व है नवरात्र, जहां हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की उपासना का विधान है। सुबह से शाम तक मंदिरों में माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। आज बात करेंगे देवी के स्वरूप की, जिसे नवरात्र में देवी का तीसरा स्वरूप माना जाता है, जो भय से मुक्ति का वरदान देती है और जो बढ़ाती है आपका आत्मविश्वास। मान्यता है कि मां की पूजा उपासना से दूर होती है मंगल से जुड़ी बाधाएं। हम आपको देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक ज्योतिषीय महाप्रयोग आखिर क्या हैं।

0: साहस, शक्ति और वीरता का भाव देने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। भय का नाश करने वाली और सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। माना जाता है कि असुरों का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धरा था। माँ चंद्रघंटा, जिन्हें माथे पर घंटीनुमा आकार के चंद्रमा धारण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी कवचम में माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है।
1: यह नवरात्र के तीसरे दिन तृतीयम चंद्र घंटेति दुर्गा कवच में ऐसा कहा गया है, तीसरे दिन की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिसके कारण भगवती को चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप जो है चंद्रघंटा का, दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर शक्ति के रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
0: उग्र और तेजस्वी देवी के रूप में चंद्रघंटा भय और बाधाओं को दूर करने की अपार शक्ति रखती हैं और अपने भक्तों पर शक्ति के आवरण की छाया रखती हैं। नवरात्र में शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। आपके जीवन में चाहे ग्रहों का संकट हो या फिर जीवन की बाधाओं ने आपको परेशान कर रखा हो, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना में छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आप निर्भय और अभय हो जाते हैं।
1: जो भगवती का स्वरूप है भिन्न भिन्न स्वरूप है। यह भिन्न स्वरूप है, हमारे यहाँ कहा गया कि जहां से घंटा नाद किया जाता है वहां से आसुरी शक्तियां भाग जाती हैं, और चंद्रमा जहां पर है तो मन का कारक है। तो जब घंटा इनके नाम में चंद्रमा का और घंटा दोनों का नाम दिया गया है, तो ऐसे देवी का आराधना करने से मनुष्य के मन से, मनुष्य के परिवार से भय डर दूर चला जाता है।
0: नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और से देखिए ये ज्योतिषीय उपाय। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। इनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है।
1: तीसरा दिन है, हमारे यहाँ तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, इनकी आराधना करने से जो तीनों प्रकार के ताप हैं, जिनको कहा गया है दैहिक, दैविक, भौतिक, या तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, इन तापों का समन होता है। क्योंकि भगवती के साथ घंटा भी जुड़ा है, भय का नाश करेगा, और मस्तक पर चंद्रमा है तो मन को निर्मल करेगा। इसलिए इनकी आराधना इस तरह से अगर कोई नवरात्रि में करता है तो विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
0: मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी का यह स्वरूप परम कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है।
1: चंडी जो रूप है नौरू भगवती का ही है, तो कलयुग में इनकी साधना जो होती है बहुत फलदायी होती है। साध धन ना, जो साधने में कठिन हो उसी का नाम साधना होता है। तो इन निरंतरता आवश्यक होती है। यह देवी शौर्य की प्रतीक हैं, जीवन में बल देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं। तो इनकी आराधना करने से जीवन से भय की निवृत्ति अवश्य हो जाती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयोग। गौर से देखिए। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवारण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता, पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग, कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय?
1: सफेद पदार्थ में आप कोई भी वस्तु ले लें, आपका जैसा व्रत है, जैसा अनुष्ठान, उस प्रकार का आप नैवेद्य ग्रहण कर लें, और दूध और खीर और जो सात्विक भाव से प्रसाद बने, और उसी सात्विक भाव से हम भगवती को अर्पण करें, तब यह जो उनका नैवेद्य होगा, जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे, वो हमें बल प्रदान करेगा, हमारे शरीर की कांति, हमारे चेहरे के ओज को, कांति को बढ़ाएगा।
0: माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो आप भी माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि, साथ ही जानेंगे माता के उद्भव की वो पौराणिक कथा जिसमें समाहित है त्रिदेव की शक्ति। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: आस्था कहती है कि साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है, तब नवरात्र में मां चंद्रघंटा का पूजन एक वरदान की तरह साबित होता है।

0: माँ चंद्र घंटा की उपासना है परम फलकारी। जीवन से टल जाएगा संकट भारी से भारी। शक्ति की साधना से खुलेगा मुक्ति का द्वार। देवगण मानते हैं माँ चंद्र घंटा की महिमा है अपरंपार। माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार का नाश हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्र घंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। चलिए हम आपको वो पौराणिक कथा भी सुनाते हैं जब मातेश्वरी ने लिया था विश्व के कल्याण के लिए अवतार। देवी पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं और दैत्य राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवगण पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीनकर ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कथा कहती है कि तब इंद्र और देवताओं ने संकट की घड़ी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। कहते हैं कि उनके दुर्दशा से द्रवित होकर त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया जो एक भव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके 10 हाथ थे जो बाद में विभिन्न देवी देवताओं के दिव्य शस्त्रों से सुशोभित हुए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शस्त्र शामिल थे। स्वयं इंद्र ने अपना वज्र और घंटा भेंट किया। सूर्य देव ने उन्हें अपनी तेजस्वी किरणें, एक चमकीली तलवार और एक भयंकर शेर भेंट किया। इन दिव्य वरदानों से परिपूर्ण होकर देवी ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया। कथा है कि दैत्य राजा और उसके कुल का अंत हो गया और देवी चंद्रघंटा ने अपनी अदम्य शक्ति से देवताओं को उनके भय से मुक्त किया।
1: माँ चंद्रघंटा सामान्यतः सिंह पर सवार हैं और अनेक प्रकार के आयुध अपने हाथों में धारण की हुई हैं और एक हाथ इनका अभय मुद्रा में है। उनका स्वरूप जहाँ एक ओर उग्र शक्ति का स्वरूप है, उसी ओर उनके मुखमंडल पर जो शांति है वह करुणा रूप में दिखाई देती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विश्रुता, यह इनके बारे में शास्त्र में प्रमाण बताया गया है।
0: कथा कहती है कि तब से ही देवी को भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी के स्वरूप में पूजा जाने लगा। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र की तीसरी तिथि पर आपको कैसे करनी है देवी की उपासना। पर ध्यान रखिए कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है।
1: माँ चंद्र घंटा को रक्त पुष्प, लाल रंग का अक्षत, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह पंचोपचार जो पूजन है, यह पूजन हर देवी का करना चाहिए और सायंकाल के समय भी दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ होता है।
0: लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्र घंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्र घंटा की उपासना के लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगकाराय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी की कृपा। नवरात्रि में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली है माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान, माँ की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। आगे हम आपको बताएंगे माँ की उपासना के अमोघ मंत्र जिनके जाप से होगा आपकी सभी बाधाओं का निदान। बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का एक सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का हो जाएगा अंत।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के मस्तक पर लगे घंटे की भयानक ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, साथ ही मंत्रों के उच्चारण से वरदान देती हैं मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा के मंत्रों में है अद्भुत शक्ति। विधि विधान से करें आदि शक्ति की भक्ति। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मां चंद्रघंटा के मंत्रों के जाप से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। भगवती का ये स्वरूप अद्भुत है, जिनके आराधना से भय से मुक्ति और संकट में साहस का वरदान मिलता है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा का मंत्र जाप करने से मन का डर, अज्ञात भय और घबराहट दूर होती है। मां के विशेष मंत्र का जाप आपके सभी दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है।
1: देवी का कोई भी रूप हो, हम मां के रूप में मानते हैं और मां हमेशा अपने संतान को सुखी देखना चाहती है। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा अर्गला में कहा गया, अर्गला स्तोत्र में, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपन देहि जयन, देहि यशो, देहि दिशो जही। यह सब जो मंत्र भगवती के हैं, यह लोक और परलोक दोनों बनाने वाले हैं। तो इन सब मंत्रों का जप करने से रोग नाश होता है, शत्रु दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
0: या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महयम चंद्रघंटेति विष्णुता।
1: भगवती मंत्र वही रहे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मूल मंत्र है, उसके जगह चंद्रघंटायै नमः, चंद्रघंटा लगा करके। और चंद्रमा का भी एक मंत्र, जो कि चंद्रमा इनके साथ जुड़ा है, तो चंद्रमा के लिए सोम सोमाय नमः, सायंकाल के समय घी का दीपक जला करके सोम सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इन मंत्रों का जप करने से जीवन से भय का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है।
0: तो आप जब भी मां चंद्रघंटा की उपासना करें तो देवी के मंत्रों का जाप भी करें। माना जाता है कि देवी के पूजन में मंत्रों के जाप से मां चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से मां की आराधना करें, फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनी।

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हुआ तो शहर शहर गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम लोग देवी के भजनों पर एक साथ झूमते हैं और माँ की उपासना करते हैं।

0: नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हुए तो देवी माँ की उपासना में भक्तों ने अपना पूरा जोश और उत्साह झोंक दिया है। चाहे माँ के मंदिर हो या जागरण, गरबा हो या तलवार रास, लोगों की एनर्जी देखते बन रही है। गुजरात के जामनगर से आई इस तस्वीर में भी ऐसा ही उत्साह और जोश देखने को मिला। यहाँ नवरात्रि के खास मौके पर पारंपरिक तलवार रास किया गया, जिसमें इन लड़कियों ने हाथों में तलवार लेकर महाकाली तांडव समेत विभिन्न पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 सालों से नवरात्रि महोत्सव की परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। ये तलवार रास इस गरबी मंडल की खास पहचान है। आशापुरा गरबी मंडल का तलवार रास पूरे इलाके में खासा मशहूर है। इस मंडली से जुड़े लोगों का कहना है कि ये परंपरा आज भी नई पीढ़ी को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही है। इनकी ये कला न केवल गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती है, बल्कि नारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संदेश भी देती है।
1: आ गरबी छेल्ला 45 वर्ष थी थाई छे अने आ गरबी बधी बधी छोकरियो एटली खुशी थी रमे छे अने एटली उत्साह थी रमे छे अने आ गरबी मां बहु आ गरबी मां तलवार रास, महाकाली तांडव जेवा अनेको रासो थाय छे। तलवार रास मां अत्यारे अमे लोको दांडियाना बदले तलवार वापरी छी, जेनाथी अमे लोको नारी शक्ति आगळ वधारी छी अने लोको आ तलवार रास ने दूर दूर थी जोवा आवे छे अने आ अमारो रास बहु फेमस छे।
0: नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबा, डांडिया, नाइट्स और रास का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है, जिनमें बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी खास तैयारी की है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ज्यादा सतर्क है। राजकोट के पंडालों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की एक खास टीम बनाई है। इस शी टीम में महिलाएं पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि गरबा कलाकारों की शक्ल में ही रहेंगी, जो अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और ऐसे आयोजनों में पहुंचने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी।
2: हमारी शी टीम जो है महिला पुलिस स्टेशन में तैनात है और बाकी हर एक पुलिस स्टेशन में शी टीम के महिलाएं आइडेंटिफाइड है, तो वो महिलाएं पारंपरिक गरबा की गणवेश पहन के अलग अलग गरबाओं में जाएंगी और वहां पे नजर रखेंगे कि कोई रोमियो या फिर आवारा तत्व जो है छेड़खानी का प्रयास कर रहा हो या फिर कोई भी बहन बेटी को परेशान कर रहा हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। और इसके अलावा हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की जो टीमें हैं वो गरबा के संपूर्ण आयोजन के दौरान जो है आयोजन स्थल पर हाजिर रहेंगी।
0: गुजरात के इस लोक नृत्य को लोग खासा पसंद भी करते हैं, इसलिए रात रात भर चलने वाले इन आयोजनों में सुरक्षा एक अहम पहलू रहा है। ऐसे में प्रशासन की भी कोशिश यही है कि गरबा में आने वाले सभी लोग बिना किसी परेशानी के गरबा खेल सकें। जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना, शेर पर सवार माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान, भक्त विधि विधान से करते हैं मां की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में बड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मिलेगा शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश में रंग कर एक नया एंगल दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे फैक्ट चेक में। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि शिष्य रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: क्या प्रेमानंद महाराज अपने शिष्य की मौत से टूट गए, फूट फूट कर रोने लगे? प्रेमानंद महाराज के रोते वीडियो को शिष्य रसिक दुलारी की मौत से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। यह खबर हमारे सामने भी आई, हमने इसकी पड़ताल की।
4: मरने का डर है ना, इतने कष्टों का कोई भय है।
5: खूब रोए प्रेमानंद महाराज, शिष्य की मौत के बाद छलके आंसू,
4: एकमात्र भगवान का आश्रय।
5: प्रेमानंद महाराज के रोने का वीडियो हुआ वायरल।
4: अब मुझे कोई परवाह नहीं है, भगवान ऐसी।
5: ये वीडियो जैसे ही सामने आया लोग चौंक गए, ये क्या हो गया? सत्य मार्ग पर चलने की सीख देने वालों की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे?
4: शरणागति होती है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
5: प्रेमानंद महाराज को चाहने वाले लोग सकते में आ गए, सवाल उठने लगे।
4: न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
5: सोशल मीडिया पर ये दावा कि प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो उनके शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद का है, जिसमें वो काफी आहत नजर आ रहे हैं।
4: प्रियाजू ने मुझे अपना बना लिया, भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं।
5: पहले ये सुनिए आखिर रोते रोते प्रेमानंद महाराज क्या बोल रहे हैं। सुना आपने, प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं, ना मरने का डर है, ना ही किसी कष्ट का कोई भय,
4: ना इतने कष्टों का कोई भय है।
5: कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि हालिया घटनाओं को लेकर वो कितने आहत हुए हैं, ये वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि प्रेमानंद महाराज जी अंदर से टूट गए, अगर प्रेमानंद महाराज जी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वो सभी ट्रोलर्स होंगे जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सटीक खबर के प्रेमानंद महाराज जी को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर भी किया जा रहा है।
4: ना इतने कष्टों का कोई भय है।
6: बता दें कि प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत 25 सितंबर को हुई थी। वृंदावन स्थित श्रीहरि राधा केलिकुंज आश्रम के पास गुरु कृपा कुंज परिसर में उनका शव मिला था। चौथी मंजिल से कूदकर युवा संत रसिक दुलारी ने आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीपक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के रोने वाला वीडियो सामने आया है और ये इस वक्त खूब सुर्खियों में भी है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद अंदर से टूट गए और इस कदर आहत हुए कि फूट फूट कर रोने लगे। ये वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो के जरिए जो दावा किया गया उसमें पहला तो ये कि प्रेमानंद महाराज के रोने वाला ये वीडियो हाल फिलहाल का है। दूसरा ये बताया गया कि श्रीहरि राधा केलिकुंज से ये वीडियो सामने आया है। हमने इसके बारे में पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि शिष्य की संदिग्ध मौत और उससे जुड़े विवादों के बाद प्रेमानंद महाराज ने तुरंत ही श्रीहरि राधा केलिकुंज आश्रम छोड़ दिया था। अब वो यमुना पार बेलवन स्थित आश्रम में रह रहे हैं। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि श्रीहरि राधा केलिकुंज से इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है। वीडियो में गौर करने वाली बात यह भी नजर आई कि प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रम नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, न मरने की का कोई डर है और न ही किसी कष्ट से कोई मतलब है। मतलब किसी भी संदर्भ में प्रेमानंद महाराज ने ये बातें कहते हुए वो रोने लग गए। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर प्रेमानंद महाराज ने यहां पर अपने शिष्य का नाम क्यों नहीं लिया। ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखने को मिला। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये कि ये वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नजर नहीं आया। तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
5: वीडियो को देखने से लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज किसी बात का जिक्र छेड़ने के बाद रोने लगे,
4: तब हृदय में उस शरणागति होती है।
5: ऐसे में फैक्ट चेक की टीम दावे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये इसी साल 22 मार्च के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो वृंदावन में हुए हालिया हादसे से संबंधित नहीं है, क्योंकि आश्रम के शिष्य दीपक लोधी और रसिक दुलारी की आत्महत्या की घटना 25 सितंबर को सामने आई थी। इसके बाद हमें प्रेमानंद महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भजन मार्ग पर इसी साल 1 मार्च को अपलोड किया गया इसका लंबा वर्जन मिला। उसी दिन एकांतिक वार्तालाप और दर्शन के दौरान प्रेमानंद महाराज जब प्रवचन दे रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी। करीब 39 मिनट के इस वीडियो में ठीक 7 मिनट 10 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा आता है।
4: भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में उस शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूँ, हृदय की बात कह रहा हूँ। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
5: रसिक दुलारी की मौत को लेकर प्रेमानंद महाराज के बयान का कोई वीडियो हमें नहीं मिला, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वृंदावन के राधा केलिकुंज ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रसिक दुलारी के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त किया था और बताया था कि प्रेमानंद महाराज व्यथित हैं। साथ ही घटना की पुलिस जांच पूरी न होने तक किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या अफवाह न फैलाने की अपील की गई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि 1 मार्च 2026 का है, जो वो एक प्रवचन के दौरान भावुक हो गए थे। रिदेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
3: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। हमने इस खबर की भी पड़ताल की।
7: नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गोवा में कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें करीब 45 मिनट तक CPR दी गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुणे के डोजे गांव में रात को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर उनकी अंतिम यात्रा का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग एक अर्थी को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही आसपास कई लोग दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, नाना पाटेकर को अंतिम विदाई, 75 की उम्र में दिग्गज अभिनेता का निधन। सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
3: 8 अक्टूबर को 75 वर्ष की आयु में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई। पुणे के डोंजे गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच अब ये वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है और ये वीडियो हमारे सामने भी आया। सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो की जांच में सबसे पहले हमने वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें इस वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। जब नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा के दौरान कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी दृश्य सुनने या देखने को नहीं मिला। वीडियो में नजर आ रहा है कि अर्थी को पर्दे से ढक दिया गया है, जबकि नाना पाटेकर की अर्थी को पर्दे से नहीं ढका गया था। वीडियो में एक और बात गौर करने वाली थी, कंधा दे रहे सभी लोग इस्लामिक टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दृश्य तभी सामने आता है जब किसी का जनाजा निकलता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि कहीं किसी और के जनाजे के वीडियो को नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। दूसरा सवाल ये कि दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को पुणे के डोंजे गांव स्थित उनके आवास नानाची वाड़ी में अंतिम विदाई दी गई। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही था कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 25 सितंबर को एक फेसबुक पेज पर अपलोड हुई एक वीडियो रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी देखने को मिले। इसमें बताया गया था कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान को मुंबई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके साथ ही 4 दशकों से भी अधिक समय तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाले इस अभिनेता की अंतिम यात्रा संपन्न हो गई। जुमे की नमाज के बाद मुंबई के यारी रोड कब्रिस्तान में अभिनेता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य उनके पार्थिव देह को ले जाते हुए दिखाई दिए। बता दें, फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का लंबी बीमारी के चलते 24 सितंबर को निधन हो गया था। सर्च के दौरान हमें 25 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी नाना पाटेकर की अंतिम विदाई का बताकर शेयर किए गए वीडियो वाले दृश्य मौजूद है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के जनाजे का है, जिन्हें 25 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद यारी रोड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ये वीडियो अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम विदाई का नहीं है। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के अंतिम जनाजे का है, जिनका 24 सितंबर को निधन हो गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
9: मैडम ने जब मासूम बच्चे से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनके जवाब सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किसी ने सलमान खान बनने की बात कही, तो किसी ने ढाबा खोलने और लंदन जाने का सपना बताया। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
10: ढाबा खोलूंगा, लंदन करूंगा, आईफोन बांटूंगा।
9: कविता सुनाने का अंदाज अगर थोड़ा अलग हो तो हर किसी का ध्यान खिंच जाता है। इस बच्चे ने भी कविता सुनाने के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा है। बच्चा बांस की दीवार पर चढ़ा हुआ है और नीचे बैठे बच्चों को बड़े उत्साह से कविता सुना रहा है। चेहरे की मासूमियत और अंदाज की बेफिक्री इस पूरे पल को खास बना रही है। वीडियो देखकर लोग बच्चे की क्यूटनेस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। ट्रेन में बैठा बच्चा बड़े आराम से चिप्स खा रहा था, लेकिन नीचे बैठे बंदर को भी पैकेट दिखाकर ललचा रहा था। बच्चे को शायद अंदाजा नहीं था कि बंदर इतनी जल्दी एक्शन में आएगा। तभी बंदर ने छलांग लगाई और जंगल के रास्ते बच्चे के हाथ से चिप्स का पूरा पैकेट छीन लिया। कुछ ही सेकंड में बंदर अपना काम कर चुका था। अब इस मजेदार वीडियो को देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है। कहते हैं कि प्यार जताने के लिए किसी बड़े तोहफे या महंगे सरप्राइज की जरूरत नहीं होती, कई बार छोटी छोटी चीजें भी दिल छू जाती हैं। ऐसा ही ये प्यारा सा पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड रात में बैंक की ड्यूटी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी घर से खाना लेकर पहुंच गई। दोनों ने बैंक के अंदर शटर के बाहर बैठकर साथ में खाना खाया और कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताया। इस साधारण से पल ने लोगों को रिश्तों की असली अहमियत याद दिला दी। प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से जाहिर

0: व्यक्ति उनके पैर दबाने लगते हैं। पति का ये छोटा सा कदम रिश्ते की बड़ी खूबसूरती बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यार और देखभाल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: Today, my wife and I are cooking prasad for our family. My dad is outside mowing the lawn right now.
2: Two sabjis, one karela, and rice. So over here.
0: भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का रंग अब विदेशियों पर भी चढ़ता नजर आ रहा है। विदेशी परिवार के घर हरे कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। परिवार को प्रेम से सात्विक प्रसाद बनाते देख लोग उनकी संस्कृति के प्रति श्रद्धा की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
2: Yes. And then over here, let's take that pot. Okay. Here we got a squash sabji.
0: ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक लड़का समुद्र के रेतीले तट पर खड़ा है और उसके हाथों में एक विशाल पतंग की डोर है। ये पतंग सामान्य पतंगों से बिल्कुल अलग है। इसका अलग हिस्सा खौफनाक ड्रैगन के चेहरे जैसा बना है, जिसके बड़े बड़े दांत और आंखें बेहद जीवंत लगती है। इसके पीछे लंबी पूंछ जैसी संरचना जुड़ी हुई है, जो हवा के थपेड़ों के साथ किसी उड़ते हुए नाग की तरह लहराती है। जब युवक इस विशाल पतंग को संभालने और हवा में लहराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक एक छोटा बच्चा चिप्स का पैकेट हाथ में लिए कैमरे के सामने आ जाता है। एक तरफ जहां हवा में भयानक ड्रैगन मंडरा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इस बच्चे का बेफिक्र अंदाज में चिप्स खाना वीडियो को एक मजेदार ट्विस्ट दे देता है। इंसान हो या जानवर, प्रेम फर्क मिटा देता है। दिखते हैं तो सिर्फ भाव, जो एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देते हैं। देखिए इस वीडियो में खुद साइकिल पर है ये शख्स और डॉगी को कंधे पर ऐसे बिठा रखा है मानो कोई छोटा बच्चा हो। डॉगी के साथ इस शख्स की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आ रही है। इन्हें देखिए, ऐसे अटैक कर रहे हैं मानो हरा ही देंगे मुकाबले में। आत्मविश्वास भरपूर है, हो भी क्यों नहीं, सामने वाला भी तो इस लड़ाई में खूब दिलचस्पी ले रहा है। भले ही बच्चे का मन रखने की गरज से खेल खेल रहे हों, लेकिन बच्चा भला अपने आप को बच्चा कहां समझ रहा है। बछड़े की ये मासूमियत देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। माँ का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, बेजुबान भी अपने बच्चों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। इस वीडियो में एक डॉगी अपने बच्चे के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्चा आगे आगे भागता है तो माँ उसे पकड़कर वापस अपनी ओर ले आती है। कभी प्यार से साथ दौड़ती है तो कभी दांतों से पैर थामकर उसे रोक लेती है। माँ और बच्चे के बीच प्यार भरा ये नजारा देखकर लोग भावुक भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रभात शहर शहर सनातन के प्रतीक रामलीला की निभाई जा रही परंपरा की। रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का जीवंत प्रतीक है। अयोध्या में राम जानकी मंदिर की रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से होता है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते ये रामलीला भी श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखती है। इस रामलीला की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान श्री राम, हनुमान जी और दूसरे पात्रों से जुड़ी भूमिका निभाने वाले कलाकार बाहर से नहीं बल्कि स्थानीय लोग ही होते हैं और बचपन से रामलीला से जुड़ने वाले बच्चे बड़े होकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।

0: दिव्य भव्य राम नगरी आस्था अध्यात्म और सनातन परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र अवधपुरी अद्भुत अलौकिक प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर शारदीय नवरात्रि के दौरान स्वर्णिम वैभव से निखर चुकी है। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के दौरान राम नगरी में जगह जगह रामलीला का भी मंचन हो रहा है। अयोध्या में भगवान के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संगीत संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से हो रहा है। माँ सरयू नदी के तट पर विराजमान अवधपुरी आस्था परंपरा और भारतीय संस्कृति के विराट उत्सव दशहरा के लिए तैयार हो चुकी है। दशरथ नंदन भगवान राम की पवित्र नगरी में बेहद प्राचीन जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रामायण मंचन हो रहा है। भगवान राम के चरित्र और उनकी लीलाओं के प्रति लोगों का समर्पण ही ऐसा है कि वो पूरी पूरी रात जाग कर मंचन देख रहे हैं। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर की विख्यात रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते यहाँ की रामलीला बहुत मशहूर है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाली इस रामलीला में भगवान श्री राम हनुमान जी और दूसरे पात्रों की भूमिका निभाने के लिए कलाकार बाहर से नहीं आते हैं बल्कि वो स्थानीय ही होते हैं।
1: ये अयोध्या नगरी है भगवान राम की। यहाँ पे मंच जगह जगह सज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकार से मंच पर श्री राम जानकी मंदिर की रामलीला है और राम पथ पे है लगातार यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे राम मंदिर है। तो ये रामलीला की शुरुआत है। जगह जगह से कलाकार आए हैं और ये काफी प्राचीन रामलीला है, 100 वर्षों पुरानी रामलीला है। तो लगातार यहाँ पे लोग बैठे हैं, रामलीला का आनंद उठा रहे हैं और भगवान राम की जो रामायण की गाथा है उसको लगातार सुनते चले आ रहे हैं। तो ये प्रथा है अयोध्या की, भगवान श्री राम की नगरी है।
0: रामलीला के पात्र संगीत संवाद और विशेष रूप से कलाकारों के मंचन का अनुभव ऐसा कि लोग घंटों बैठे रहते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि कितनी रात बीत गई।
2: बहुत साल हो रहा है यहाँ पे, बहुत दिन से हो रहा है।
1: बहुत ज्यादा हो गया मतलब?
2: हाँ बहुत ज्यादा हो रहा
1: है। देख रही है? कितने सालों से देख रही है?
2: अरे हम तो 10-12-13 साल से देख रहे हैं।
1: 12-13 साल से देख रही है। कितने सालों से रामलीला?
3: हम तो कब से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे
1: हैं। बहुत पुरानी रामलीला।
0: राम नगरी से करीब 160 किलोमीटर दूर संगम नगरी प्रयागराज में दशहरा महोत्सव और रामलीला के आरंभ की पारंपरिक घोषणा हुई। उससे पहले पूरे वैभव श्रद्धा और उल्लास के साथ ऐतिहासिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो दशहरा महोत्सव और रामलीला मंचन के प्रारंभ का प्रतीक है। पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी की पारंपरिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा हीवेट रोड पर मौजूद चमेली बाई धर्मशाला से निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल धार्मिक झांकियां इस पारंपरिक आयोजन से जुड़े आकर्षण के केंद्र में रही। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान राम, माता सीता, भगवान कृष्ण, माँ काली, भगवान गणेश, राम भक्त हनुमान और सूर्य देवता की झांकी की वजह से पूरा माहौल ही भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा में शामिल करीब 20 फीट ऊंचा भव्य और सुसज्जित कर्ण घोड़ा मुख्य आकर्षण रहता है, जिसे मोतियों, आकर्षक लाइट्स और पारंपरिक सजावट से सजाया जाता है। सफेद रंग के कर्ण घोड़े को भगवान श्री राम का दूध भी माना जाता है। यही वजह है कि शोभा यात्रा निकलते ही दशहरा महोत्सव के आधिकारिक शुभारम्भ का संदेश फैल जाता है।
4: ये कर्ण घोड़े का कंसेप्ट उत्तर रामायण काल में जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या आ गए तो ये कर्ण घोड़ा राम की कथा को पूरे जो है राम राज्य में अयोध्या के राज्य में घूम घूम के सुनाया करता था। तो उसी घोड़े को ये माना जाता है कि अब ये घोड़ा जो है पूरे जनपद के अंदर राममय बना देगा, राम की कथा चारों तरफ बहेगी, लोग आनंद लेंगे, सीता राम की जय बोलेंगे, भरत जी की जय बोलेंगे, लक्ष्मण की जय बोलेंगे और हनुमान जी की जय बोलेंगे। माने पूरा जो रामलीला का कंसेप्ट है, रामायण का कंसेप्ट है, वो चारों तरफ वातावरण में फैल पा रहेगा।
5: ये परंपरागत हो रहा है, आज से 150 साल पहले कमेटी के पूर्वज लोगों ने इसका प्रारंभ किया था और मुकुट पूजा से कार्यक्रम प्रारंभ होता है जो राष्ट्रपति तक चलता है। ये राम मंदिर से प्रारंभ होकर के हमारे जो रूप चौकी का है, कोठा पाचा, रामबाग, पताशा मंदिर, लोकनाथ, जानसेगंज, पुनः यहाँ तो समाप्त हुआ।
0: इस साल भी शोभा यात्रा में डमरू दल, पारंपरिक ढोल ताशों, डीजे, बैंड बाजा और भक्ति गीतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शारदीय नवरात्र पर शहर शहर लोक कलाकारों की मंडलियां प्रमुख प्रसंगों के जरिए भगवान राम के धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और बलिदान जैसे मूल्यों को राम भक्तों के सामने पेश करते हैं, जिसको देखकर राम भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना शेर पर सवार। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना शेर पर विराज, भक्त विधि विधान से करते हैं मां की पूजा अर्चना। माता मंदिर में बड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की भक्ति करने का महापर्व है नवरात्र, जहां हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की उपासना का विधान है। सुबह से शाम तक मंदिरों में माता रानी के जयकारी लग रहे हैं। आज बात करेंगे देवी के स्वरूप की, जिसे नवरात्र में देवी का तीसरा स्वरूप माना जाता है, जो भय से मुक्ति का वरदान देती है और जो बढ़ाती है आपका आत्मविश्वास। मान्यता है कि मां की पूजा उपासना से दूर होती है मंगल से जुड़ी बाधाएं। हम आपको देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक ज्योतिषीय महाप्रयोग आखिर क्या हैं।

0: साहस, शक्ति और वीरता का भाव देने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। भय का नाश करने वाली और सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। माना जाता है कि असुरों का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धरा था। माँ चंद्रघंटा, जिन्हें माथे पर घंटीनुमा आकार के चंद्रमा धारण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी कवचम में माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है।
1: यह नवरात्र के तीसरे दिन तृतीयम चंद्रघंटेति दुर्गा कवच में ऐसा कहा गया है, तीसरे दिन की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिसके कारण भगवती को चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप जो है चंद्रघंटा का, दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर शक्ति के रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
0: उग्र और तेजस्वी देवी के रूप में चंद्रघंटा भय और बाधाओं को दूर करने की अपार शक्ति रखते हैं और अपने भक्तों पर शक्ति के आवरण की छाया रखते हैं। नवरात्र में शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। आपके जीवन में चाहे ग्रहों का संकट हो या फिर जीवन की बाधाओं ने आपको परेशान कर रखा हो, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना में छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आप निर्भय और अभय हो जाते हैं।
1: जो भगवती का स्वरूप है भिन्न भिन्न स्वरूप है। यह भिन्न स्वरूप है, हमारे यहाँ कहा गया कि जहाँ से घंटा नाद किया जाता है वहाँ से आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं, और चंद्रमा जहाँ पर है तो मन का कारक है। तो जब घंटा इनके नाम में चंद्रमा का और घंटा दोनों का नाम दिया गया है, तो ऐसी देवी का आराधना करने से मनुष्य के मन से, मनुष्य के परिवार से भय डर दूर चला जाता है।
0: नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और से देखिए ये ज्योतिषीय उपाय। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। इनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है।
1: तीसरा दिन है, हमारे यहाँ तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, इनकी आराधना करने से जो तीनों प्रकार के ताप हैं, जिनको कहा गया है दैहिक, दैविक, भौतिक, या तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, इन तापों का समन होता है। क्योंकि भगवती के साथ घंटा भी जुड़ा है, भय का नाश करेगा, और मस्तक पर चंद्रमा है तो मन को निर्मल करेगा। इसलिए इनकी आराधना इस तरह से अगर कोई नवरात्रि में करता है तो विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
0: मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी का यह स्वरूप परम कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है।
1: चंडी जो रूप है नौ रूप भगवती का ही है, तो कलयुग में इनकी साधना जो होती है बहुत फलदायी होती है। साध धन ना, जो साधने में कठिन हो उसी का नाम साधना होता है। तो इन निरंतरता आवश्यक होती है। यह देवी शौर्य की प्रतीक हैं, जीवन में बल देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं। तो इनकी आराधना करने से जीवन से भय की निवृत्ति अवश्य हो जाती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयोग। गौर से देखिए। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवारण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जब के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता, पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग, कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है?
1: सफेद पदार्थ में आप कोई भी वस्तु ले लें, आपका जैसा व्रत है, जैसा अनुष्ठान है, उस प्रकार का आप नैवेद्य ग्रहण कर लें, और दूध और खीर और जो सात्विक भाव से प्रसाद बने, और उसी सात्विक भाव से हम भगवती को अर्पण करें, तब यह जो उनका नैवेद्य होगा, जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे, वह हमें बल प्रदान करेगा, हमारे शरीर की कांति, हमारे चेहरे के ओज को, कांति को बढ़ाएगा।
0: माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो आप भी माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि, साथ ही जानेंगे माता के उद्भव की वो पौराणिक कथा जिसमें समाहित है त्रिदेव की शक्ति। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: आस्था कहती है कि साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है, तब नवरात्र में मां चंद्रघंटा का पूजन एक वरदान की तरह साबित होता है।

0: माँ चंद्र घंटा की उपासना है परम फलकारी। जीवन से टल जाएगा संकट भारी से भारी। शक्ति की साधना से खुलेगा मुक्ति का द्वार। देवगण मानते हैं माँ चंद्र घंटा की महिमा है अपरंपार। माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार का नाश हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्र घंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। चलिए हम आपको वो पौराणिक कथा भी सुनाते हैं जब मातेश्वरी ने लिया था विश्व के कल्याण के लिए अवतार। देवी पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं और दैत्य राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवगण पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीनकर ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कथा कहती है कि तब इंद्र और देवताओं ने संकट की घड़ी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। कहते हैं कि उनके दुर्दशा से द्रवित होकर त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया जो एक भव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके 10 हाथ थे जो बाद में विभिन्न देवी देवताओं के दिव्य शस्त्रों से सुशोभित हुए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शस्त्र शामिल थे। स्वयं इंद्र ने अपना वज्र और घंटा भेंट किया। सूर्य देव ने उन्हें अपनी तेजस्वी किरणें, एक चमकीली तलवार और एक भयंकर शेर भेंट किया। इन दिव्य वरदानों से परिपूर्ण होकर देवी ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया। कथा है कि दैत्य राजा और उसके कुल का अंत हो गया और देवी चंद्रघंटा ने अपनी अदम्य शक्ति से देवताओं को उनके भय से मुक्त किया।
1: माँ चंद्रघंटा सामान्यतः सिंह पर सवार हैं और अनेक प्रकार के आयुध अपने हाथों में धारण की हुई हैं और एक हाथ इनका अभय मुद्रा में है। उनका स्वरूप जहाँ एक ओर उग्र शक्ति का स्वरूप है, उसी ओर उनके मुखमंडल पर जो शांति है वह करुणा रूप में दिखाई देती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विश्रुता, यह इनके बारे में शास्त्र में प्रमाण बताया गया है।
0: कथा कहती है कि तब से ही देवी को भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी के स्वरूप में पूजा जाने लगा। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र की तीसरी तिथि पर आपको कैसे करनी है देवी की उपासना। पर ध्यान रखिए कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है।
1: माँ चंद्र घंटा को रक्त पुष्प, लाल रंग का अक्षत, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह पंचोपचार जो पूजन है, यह पूजन हर देवी का करना चाहिए और सायंकाल के समय भी दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ होता है।
0: लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्र घंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्र घंटा की उपासना के लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगकाराय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी की कृपा। नवरात्रि में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली हैं माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान, माँ की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। आगे हम आपको बताएंगे माँ की उपासना के अमोघ मंत्र जिनके जाप से होगा आपकी सभी बाधाओं का निदान। बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का एक सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का हो जाएगा अंत।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के मस्तक पर लगे घंटे की भयानक ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, साथ ही मंत्रों के उच्चारण से वरदान देती हैं माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों में है अद्भुत शक्ति। विधि विधान से करें आदि शक्ति की भक्ति। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा के मंत्रों के जाप से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। भगवती का ये स्वरूप अद्भुत है, जिनके आराधना से भय से मुक्ति और संकट में साहस का वरदान मिलता है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा का मंत्र जाप करने से मन का डर, अज्ञात भय और घबराहट दूर होती है। माँ के विशेष मंत्र का जाप आपके सभी दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है।
1: देवी का कोई भी रूप हो, हम माँ के रूप में मानते हैं और माँ हमेशा अपने संतान को सुखी देखना चाहती है। हमारे यहाँ दुर्गा अर्गला में कहा गया, अर्गला स्तोत्र में, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपन देहि जयन, देहि यशो, देहि दिशो जहि। यह सब जो मंत्र भगवती के हैं, यह लोक और परलोक दोनों बनाने वाले हैं। तो इन सब मंत्रों का जप करने से रोग नाश होता है, शत्रु दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
0: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महयम चंद्रघंटेति विश्रुता।
1: भगवती मंत्र वही रहे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मूल मंत्र है, उसके जगह चंद्रघंटायै नमः, चंद्रघंटा लगा करके, और चंद्रमा का भी एक मंत्र, जो कि चंद्रमा इनके साथ जुड़ा है, तो चंद्रमा के लिए सोम सोमाय नमः, सायंकाल के समय घी का दीपक जला करके सोम सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इन मंत्रों का जप करने से जीवन से भय का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है।
0: तो आप जब भी माँ चंद्रघंटा की उपासना करें तो देवी के मंत्रों का जाप भी करें। माना जाता है कि देवी के पूजन में मंत्रों के जाप से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से माँ की आराधना करें, फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनी।

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हुआ तो शहर शहर गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम लोग देवी के भजनों पर एक साथ झूमते हैं और माँ की उपासना करते हैं।

0: नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हुए तो देवी माँ की उपासना में भक्तों ने अपना पूरा जोश और उत्साह झोंक दिया है। चाहे माँ के मंदिर हो या जागरण, गरबा हो या तलवार रास, लोगों की एनर्जी देखते बन रही है। गुजरात के जामनगर से आई इस तस्वीर में भी ऐसा ही उत्साह और जोश देखने को मिला। यहाँ नवरात्रि के खास मौके पर पारंपरिक तलवार रास किया गया, जिसमें इन लड़कियों ने हाथों में तलवार लेकर महाकाली तांडव समेत विभिन्न पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 सालों से नवरात्रि महोत्सव की परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। ये तलवार रास इस गरबी मंडल की खास पहचान है। आशापुरा गरबी मंडल का तलवार रास पूरे इलाके में खासा मशहूर है। इस मंडली से जुड़े लोगों का कहना है कि ये परंपरा आज भी नई पीढ़ी को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही है। इनकी ये कला न केवल गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती है, बल्कि नारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संदेश भी देती है।
1: आ गरबी छेल्ला 45 वर्षथी थई छे अने आ गरबी बधी बधी छोकरीओ एटली खुशीथी रमे छे अने एटले उत्साहथी रमे छे अने आ गरबीमां तलवार रास, महाकाली तांडव जेवा अनेको रासो थाय छे। तलवार रास में अत्यारे अमे लोको दांडियाना बदले तलवार वापरी छे, जेनाथी अमे लोको नारी शक्ति आगळ वधारी छे अने लोको आ तलवार रास ने दूर दूर थी जोवा आवे छे अने आ अमारो रास बहु फेमस छे।
0: नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबा, डांडिया, नाइट्स और रास का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है, जिनमें बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी खास तैयारी की है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ज्यादा सतर्क है। राजकोट के पंडालों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की एक खास टीम बनाई है। इस शी टीम में महिलाएं पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि गरबा कलाकारों की शक्ल में ही रहेंगी, जो अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और ऐसे आयोजनों में पहुंचने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी।
2: हमारी शी टीम जो है महिला पुलिस स्टेशन में तैनात है और बाकी हर एक पुलिस स्टेशन में शी टीम के महिलाएं आइडेंटिफाइड है, तो वो महिलाएं पारंपरिक गरबा की गणवेश पहन के अलग अलग गरबाओं में जाएंगी और वहां पे नजर रखेंगे कि कोई रोमियो या फिर आवारा तत्व जो है छेड़खानी का प्रयास कर रहा हो या फिर कोई भी बहन बेटी को परेशान कर रहा हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। और इसके अलावा हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की जो टीमें हैं वो गरबा के संपूर्ण आयोजन के दौरान जो है आयोजन रहेंगी।
0: गुजरात के इस लोक नृत्य को लोग खासा पसंद भी करते हैं, इसलिए रात रात भर चलने वाले इन आयोजनों में सुरक्षा एक अहम पहलू रहा है। ऐसे में प्रशासन की भी कोशिश यही है कि गरबा में आने वाले सभी लोग बिना किसी परेशानी के गरबा खेल सकें। जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर,
4: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना, शेर पर सवार माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान, भक्त विधि विधान से करते हैं मां की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में बड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश में रंग कर एक नया एंगल दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे फैक्ट चेक में। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि शिष्य रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: क्या प्रेमानंद महाराज अपने शिष्य की मौत से टूट गए, फूट फूट कर रोने लगे? प्रेमानंद महाराज के रोते वीडियो को शिष्य रसिक दुलारी की मौत से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। यह खबर हमारे सामने भी आई, हमने इसकी पड़ताल की।
5: मरने का डर है ना, इतने कष्टों का कोई भय है। भगवान ऐसी
6: खूब रोए प्रेमानंद महाराज। शिष्य की मौत के बाद छलके आंसू,
5: एकमात्र भगवान का आश्रय।
6: प्रेमानंद महाराज के रोने का वीडियो हुआ वायरल।
5: अब मुझे कोई परवाह नहीं है, भगवान ऐसी।
6: ये वीडियो जैसे ही सामने आया लोग चौंक गए, ये क्या हो गया? सत्य मार्ग पर चलने की सीख देने वालों की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे?
5: शरणागति होती है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
6: प्रेमानंद महाराज को चाहने वाले लोग सकते में आ गए, सवाल उठने लगे।
5: न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
6: सोशल मीडिया पर ये दावा कि प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो उनके शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद का है, जिसमें वो काफी आहत नजर आ रहे हैं।
5: प्रियाजू ने मुझे अपना बना लिया, भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं।
6: जब पहले ये सुनिए आखिर रोते रोते प्रेमानंद महाराज क्या बोल रहे हैं। सुना आपने, प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं। ना मरने का डर है, ना ही किसी कष्ट का कोई भय,
5: ना इतने कष्टों का कोई भय है।
6: कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि हालिया घटनाओं को लेकर वो कितने आहत हुए हैं, ये वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि प्रेमानंद महाराज जी अंदर से टूट गए। अगर प्रेमानंद महाराज जी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वो सभी ट्रोलर्स होंगे, जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सटीक खबर के प्रेमानंद महाराज जी को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर भी किया जा रहा है।
5: डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
7: बता दें कि प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत 25 सितंबर को हुई थी। वृंदावन स्थित श्रीहरि राधा केलीकुंज आश्रम के पास गुरु कृपा कुंज परिसर में उनका शव मिला था। चौथी मंजिल से कूदकर युवा संत रसिक दुलारी ने आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीपक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के रोने वाला वीडियो सामने आया है, और ये इस वक्त खूब सुर्खियों में भी है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद अंदर से टूट गए और इस कदर आहत हुए कि फूट फूट कर रोने लगे। ये वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो के जरिए जो दावा किया गया उसमें पहला तो ये कि प्रेमानंद महाराज के रोने वाला ये वीडियो हाल फिलहाल का है। दूसरा ये बताया गया कि श्रीहरि राधा केलीकुंज से ये वीडियो सामने आया है। हमने इसके बारे में पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि शिष्य की संदिग्ध मौत और उससे जुड़े विवादों के बाद प्रेमानंद महाराज ने तुरंत ही श्रीहरि राधा केलीकुंज आश्रम छोड़ दिया था। अब वो यमुना पार बेलवन स्थित आश्रम में रह रहे हैं। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि श्रीहरि राधा केलीकुंज से इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है। वीडियो में गौर करने वाली बात यह भी नजर आई कि प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रम नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। न मरने की का कोई डर है, और न ही किसी कष्ट से कोई मतलब है। मतलब किसी भी संदर्भ में प्रेमानंद महाराज ने ये बातें कहते हुए वो रोने लग गए। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर प्रेमानंद महाराज ने यहां पर अपने शिष्य का नाम क्यों नहीं लिया? ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखने को मिला। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये कि ये वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नजर नहीं आया? तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा?
6: वीडियो को देखने से लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज किसी बात का जिक्र छेड़ने के बाद रोने लगे,
5: तब हृदय में वो शरणागति होती है।
6: ऐसे में फैक्ट चेक की टीम दावे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये इसी साल 22 मार्च के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो वृंदावन में हुए हालिया हादसे से संबंधित नहीं है, क्योंकि आश्रम के शिष्य दीपक लोधी और रसिक दुलारी की आत्महत्या की घटना 25 सितंबर को सामने आई थी। इसके बाद हमें प्रेमानंद महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भजन मार्ग पर इसी साल 1 मार्च को अपलोड किया गया इसका लंबा वर्जन मिला। उसी दिन एकांतिक वार्तालाप और दर्शन के दौरान प्रेमानंद महाराज जब प्रवचन दे रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी। करीब 39 मिनट के इस वीडियो में ठीक 7 मिनट 10 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा आता है।
5: भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
6: रसिक दुलारी की मौत को लेकर प्रेमानंद महाराज के बयान का कोई वीडियो हमें नहीं मिला, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वृंदावन के राधा कीली कुंज ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रसिक दुलारी के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त किया था और बताया था कि प्रेमानंद महाराज व्यथित हैं। साथ ही घटना की पुलिस जांच पूरी न होने तक किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या अफवाह न फैलाने की अपील की गई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि 1 मार्च 2026 का है, जो वो एक प्रवचन के दौरान भावुक हो गए थे। रिदीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
7: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। हमने इस खबर की भी पड़ताल की।
8: नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गोवा में कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें करीब 45 मिनट तक CPR दी गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुणे के डोजे गांव में रात को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर उनकी अंतिम यात्रा का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग एक अर्थी को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही आसपास कई लोग दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, नाना पाटेकर को अंतिम विदाई, 75 की उम्र में दिग्गज अभिनेता का निधन। सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
7: 8 अक्टूबर को 75 वर्ष की आयु में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई। पुणे के डोंजे गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच अब ये वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है और ये वीडियो हमारे सामने भी आया। सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो की जांच में सबसे पहले हमने वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें इस वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। जब नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा के दौरान कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी दृश्य सुनने या देखने को नहीं मिला। वीडियो में नजर आ रहा है कि अर्थी को पर्दे से ढक दिया गया है, जबकि नाना पाटेकर की अर्थी को पर्दे से नहीं ढका गया था। वीडियो में एक और बात गौर करने वाली थी, कंधा दे रहे सभी लोग इस्लामिक टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दृश्य तभी सामने आता है जब किसी का जनाजा निकलता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि कहीं किसी और के जनाजे के वीडियो को नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। दूसरा सवाल ये कि दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को पुणे के डोंजे गांव स्थित उनके आवास नानाची वाड़ी में अंतिम विदाई दी गई। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही था कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 25 सितंबर को एक फेसबुक पेज पर अपलोड हुई एक वीडियो रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी देखने को मिले। इसमें यह बताया गया था कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान को मुंबई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके साथ ही 4 दशकों से भी अधिक समय तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाले इस अभिनेता की अंतिम यात्रा संपन्न हो गई। जुमे की नमाज के बाद मुंबई के यारी रोड कब्रिस्तान में अभिनेता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गयी। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य उनके पार्थिव देह को ले जाते हुए दिखाई दिए। बता दें, फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का लंबी बीमारी के चलते 24 सितंबर को निधन हो गया था। सर्च के दौरान हमें 25 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी नाना पाटेकर की अंतिम विदाई का बताकर शेयर किए गए वीडियो वाले दृश्य मौजूद है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के जनाजे का है, जिन्हें 25 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद यारी रोड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ये वीडियो अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम विदाई का नहीं है। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के अंतिम जनाजे का है, जिनका 24 सितंबर को निधन हो गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
10: पढ़ के क्या करेंगे? सलमान खान की मूवी मोडेम्मा, आर्मी में जाऊंगी।
11: मैडम ने जब मासूम बच्चे से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनके जवाब सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किसी ने सलमान खान बनने की बात कही, तो किसी ने ढाबा खोलने और लंदन जाने का सपना बताया। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। कविता सुनाने का अंदाज अगर थोड़ा अलग हो तो हर किसी का ध्यान खिंच जाता है। इस बच्चे ने भी कविता सुनाने के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा है। बच्चा बांस की दीवार पर चढ़ा हुआ है और नीचे बैठे बच्चों को बड़े उत्साह से कविता सुना रहा है। चेहरे की मासूमियत और अंदाज की बेफिक्री इस पूरे पल को खास बना रही है। वीडियो देखकर लोग बच्चे की क्यूटनेस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। ट्रेन में बैठा बच्चा बड़े आराम से चिप्स खा रहा था, लेकिन नीचे बैठे बंदर को भी पैकेट दिखाकर ललचा रहा था। बच्चे को शायद अंदाजा नहीं था कि बंदर इतनी जल्दी एक्शन में आएगा। तभी बंदर ने छलांग लगाई और जंगल के रास्ते बच्चे के हाथ से चिप्स का पूरा पैकेट छीन लिया। कुछ ही सेकंड में बंदर अपना काम कर चुका था। अब इस मजेदार वीडियो को देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है। कहते हैं कि प्यार जताने के लिए किसी बड़े तोहफे या महंगे सरप्राइज की जरूरत नहीं होती, कई बार छोटी छोटी चीजें भी दिल छू जाती हैं। ऐसा ही ये प्यारा सा पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड रात में बैंक की ड्यूटी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी घर से खाना लेकर पहुंच गई। दोनों ने बैंक के अंदर शटर के बाहर बैठकर साथ में खाना खाया और कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताया। इस साधारण से पल ने लोगों को रिश्तों की असली अहमियत याद दिला दी। प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से जाहिर होता है। उम्र चाहे कोई भी हो, रिश्ता पुराना हो या नया, अगर प्यार सच्चा है तो परवाह हमेशा बनी रहती है। इस वीडियो में पत्नी बीमार होकर बिस्तर पर लेटी है और उन्हें दर्द में देखकर पति उनके पैर दबाने लगते हैं। पति का ये छोटा सा कदम रिश्ते की बड़ी खूबसूरती बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यार और देखभाल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
12: Today, my wife and I are cooking prasad for our family. My dad is outside mowing the lawn right now.
13: Two sabjis, one karela, and rice. So, over here...
11: भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का रंग अब विदेशियों पर भी चढ़ता नजर आ रहा है। विदेशी परिवार के घर हरे कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। परिवार को प्रेम से सात्विक प्रसाद बनाते देख लोग उनकी संस्कृति के प्रति श्रद्धा की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
13: Yes. And then over here, let me take that pot. Okay. Here we got a squash sabji.
11: ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक लड़का समुद्र के रेतीले तट पर खड़ा है और उसके हाथों में एक विशाल पतंग की डोर है। ये पतंग सामान्य

0: लहराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक एक छोटा बच्चा चिप्स का पैकेट हाथ में लिए कैमरे के सामने आ जाता है। एक तरफ जहां हवा में भयानक ड्रैगन मंडरा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इस बच्चे का बेफिक्र अंदाज में चिप्स खाना वीडियो को एक मजेदार ट्विस्ट दे देता है। इंसान हो या जानवर, प्रेम फर्क मिटा देता है। दिखते हैं तो सिर्फ भाव, जो एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देते हैं। देखिए इस वीडियो में खुद साइकिल पर है ये शख्स और डॉगी को कंधे पर ऐसे बिठा रखा है मानो कोई छोटा बच्चा हो। डॉगी के साथ इस शख्स की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आ रही है। इन्हें देखिए, ऐसे अटैक कर रहे हैं मानो हरा ही देंगे मुकाबले में। आत्मविश्वास भरपूर है, वो भी क्यों नहीं, सामने वाला भी तो इस लड़ाई में खूब दिलचस्पी ले रहा है। भले ही बच्चे का मन रखने की गरज से खेल खेल रहे हों, लेकिन बच्चा भला अपने आप को बच्चा कहां समझ रहा है। बछड़े की ये मासूमियत देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। माँ का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, बेजुबान भी अपने बच्चों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। इस वीडियो में एक डॉगी अपने बच्चे के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्चा आगे आगे भागता है तो माँ उसे पकड़कर वापस अपनी ओर ले आती है। कभी प्यार से साथ दौड़ती है तो कभी दांतों से पैर थामकर उसे रोक लेती है। माँ और बच्चे के बीच प्यार भरा ये नजारा देखकर लोग भावुक भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: पांच शहर शहर सनातन के प्रतीक रामलीला की निभाई जा रही परंपरा की। रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का जीवंत प्रतीक है। अयोध्या में राम जानकी मंदिर की रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से होता है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते ये रामलीला भी श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखती है। इस रामलीला की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान श्री राम, हनुमान जी और दूसरे पात्रों से जुड़ी भूमिका निभाने वाले कलाकार बाहर से नहीं बल्कि स्थानीय लोग ही होते हैं, और बचपन से रामलीला से जुड़ने वाले बच्चे बड़े होकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।

दिव्य भव्य राम नगरी, आस्था अध्यात्म और सनातन परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र अवधपुरी, अद्भुत अलौकिक प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर शारदीय नवरात्रि के दौरान स्वर्णिम वैभव से निखर चुकी है। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के दौरान राम नगरी में जगह जगह रामलीला का भी मंचन हो रहा है। अयोध्या में भगवान के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संगीत संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से हो रहा है। माँ सरयू नदी के तट पर विराजमान अवधपुरी आस्था परंपरा और भारतीय संस्कृति के विराट उत्सव दशहरा के लिए तैयार है।

0: श्रत नंदन भगवान राम की पवित्र नगरी में बेहद प्राचीन, जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रामायण मंचन हो रहा है। भगवान राम के चरित्र और उनकी लीलाओं के प्रति लोगों का समर्पण ही ऐसा है कि वो पूरी पूरी रात जागकर मंचन देख रहे हैं। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर की विख्यात रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते यहाँ की रामलीला बहुत मशहूर है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाली इस रामलीला में भगवान श्री राम, हनुमान जी और दूसरे पात्रों की भूमिका निभाने के लिए कलाकार बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि वो स्थानीय ही होते हैं।
1: ये अयोध्या नगरी है भगवान राम की। यहाँ पे मंच जगह जगह सज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि फिजिकल प्रकार से मंच पर श्री राम जानकी मंदिर की रामलीला है और राम पथ पर है। लगातार यहाँ से 3000 किलोमीटर की दूरी पे राम मंदिर है। तो ये रामलीला की शुरुआत है। जगह जगह से कलाकार आए हैं और ये काफी प्राचीन रामलीला है, 100 वर्षों पुरानी रामलीला है। तो लगातार यहाँ पे लोग बैठे हैं, रामलीला का आनंद उठा रहे हैं और भगवान राम की जो रामायण की गाथा है उसको लगातार सुनते चले आ रहे हैं। तो ये प्रथा है अयोध्या की, भगवान श्री राम की नगरी है।
0: रामलीला के पात्र, संगीत, संवाद और विशेष रूप से कलाकारों के मंचन का अनुभव ऐसा कि लोग घंटों बैठे रहते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि कितनी रात बीत गई।
2: बहुत साल हो रहा है यहाँ पर, बहुत दिन से हो रहा है।
1: बहुत ज्यादा हो गया।
2: हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: कितने देख रही है? कितने सालों से देख रही है?
2: अरे हम तो 12-13 साल से देख रहे हैं।
1: 12-13 साल से देख रही है। कितने सालों से रामलीला?
3: हम तो कब से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे
1: हैं। बहुत पुरानी रामलीला।
0: रामनगरी से करीब 160 किलोमीटर दूर संगम नगरी प्रयागराज में दशहरा महोत्सव और रामलीला के आरंभ की पारंपरिक घोषणा हुई। उससे पहले पूरे वैभव, श्रद्धा और उल्लास के साथ ऐतिहासिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो दशहरा महोत्सव और रामलीला मंचन के प्रारंभ का प्रतीक है। पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी की पारंपरिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा हीवेट रोड पर मौजूद चमेली बाई धर्मशाला से निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल धार्मिक झांकियां इस पारंपरिक आयोजन से जुड़े आकर्षण के केंद्र में रही। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान राम, माता सीता, भगवान कृष्ण, माँ काली, भगवान गणेश, राम भक्त हनुमान और सूर्य देवता की झांकी की वजह से पूरा माहौल ही भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा में शामिल करीब 20 फीट ऊंचा भव्य और सुसज्जित कर्ण घोड़ा मुख्य आकर्षण रहता है, जिसे मोतियों, आकर्षक लाइट्स और पारंपरिक सजावट से सजाया जाता है। सफेद रंग के कर्ण घोड़े को भगवान श्री राम का दूत भी माना जाता है। यही वजह है कि शोभा यात्रा निकलते ही दशहरा महोत्सव के आधिकारिक शुभारम्भ का संदेश फैल जाता है।
4: ये कर्ण घोड़े का कंसेप्ट उत्तर रामायण काल में जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या आ गए तो ये कर्ण घोड़ा राम की कथा को पूरे जो है राम राज्य में, राज्य अयोध्या के राज में घूम घूम के सुनाया करता था। तो उसी घोड़े को ये माना जाता है कि अब ये घोड़ा जो है पूरे जनपद के अंदर राममय बना देगा, राम की कथा चारों तरफ बहेगी, लोग आनंद लेंगे, सीता राम की जय बोलेंगे, भरत जी की जय बोलेंगे, लक्ष्मण की जय बोलेंगे और हनुमान जी की जय बोलेंगे। माने पूरा जो रामलीला का कंसेप्ट है, रामायण का कंसेप्ट है, वो चारों तरफ वातावरण में फैलता रहेगा।
5: ये परंपरागत हो रहा है। आज से 150 साल पहले कमेटी के पूर्वज लोगों ने इसका प्रारंभ किया था और मुकुट पूजा से कार्यक्रम प्रारंभ होता है जो राष्ट्रपति तक चलता है। ये राम मंदिर से प्रारंभ होकर के हमारे जो रूप चौकी का है, कोठा पाचा, रामबाग, पटाखा मंदिर, लोकनाथ, जानसेगंज, हिबेट रोड पुनः यहाँ से समाप्त हुआ।
0: इस साल भी शोभा यात्रा में डमरू दल, पारंपरिक ढोल ताशों, डीजे, बैंड बाजा और भक्ति गीतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शारदीय नवरात्र पर शहर शहर लोक कलाकारों की मंडलियां प्रमुख प्रसंगों के जरिए भगवान राम के धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और बलिदान जैसे मूल्यों को राम भक्तों के सामने पेश करते हैं, जिसको देखकर राम भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना, शेर पर सवार माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान, भक्त विधि विधान से करते हैं मां की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में बड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की भक्ति करने का महापर्व है नवरात्रा, जहां हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की उपासना का विधान है। सुबह से शाम तक मंदिरों में माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। आज बात करेंगे देवी के स्वरूप की, जिसे नवरात्र में देवी का तीसरा स्वरूप माना जाता है, जो भय से मुक्ति का वरदान देती है और जो बढ़ाती है आपका आत्मविश्वास। मान्यता है कि मां की पूजा उपासना से दूर होती है मंगल से जुड़ी बाधाएं। हम आपको देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक ज्योतिषीय महाप्रयोग आखिर क्या हैं।

0: साहस, शक्ति और वीरता का भाव देने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। भय का नाश करने वाली और सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। माना जाता है कि असुरों का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धरा था। माँ चंद्रघंटा, जिन्हें माथे पर घंटीनुमा आकार के चंद्रमा धारण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी कवचम में माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है।
1: यह नवरात्र के तीसरे दिन तृतीयम चंद्र घंटेति दुर्गा कवच में ऐसा कहा गया है, तीसरे दिन की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिसके कारण भगवती को चंद्र घंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप जो है चंद्र घंटा का, दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर शक्ति के रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
0: उग्र और तेजस्वी देवी के रूप में चंद्रघंटा भय और बाधाओं को दूर करने की अपार शक्ति रखती हैं और अपने भक्तों पर शक्ति के आवरण की छाया रखती हैं। नवरात्र में शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। आपके जीवन में चाहे ग्रहों का संकट हो या फिर जीवन की बाधाओं ने आपको परेशान कर रखा हो, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना में छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आप निर्भय और अभय हो जाते हैं।
1: जो भगवती का स्वरूप है भिन्न भिन्न स्वरूप है। यह भिन्न स्वरूप है, हमारे यहाँ कहा गया कि जहां से घंटा नाद किया जाता है वहां से आसुरी शक्तियां भाग जाती हैं, और चंद्रमा जहां पर है तो मन का कारक है। तो जब घंटा इनके नाम में चंद्रमा के और घंटा दोनों का नाम दिया गया है, तो ऐसी देवी का आराधना करने से मनुष्य के मन से, मनुष्य के परिवार से भय डर दूर चला जाता है।
0: नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और से देखिए ये ज्योतिषीय उपाय। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। इनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है।
1: तीसरा दिन है, हमारे यहाँ तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, इनकी आराधना करने से जो तीनों प्रकार के ताप हैं, जिनको कहा गया है दैहिक, दैविक, भौतिक, या तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, इन तापों का समन होता है। क्योंकि भगवती के साथ घंटा भी जुड़ा है, भय का नाश करेगा, और मस्तक पर चंद्रमा है तो मन को निर्मल करेगा। इसलिए इनकी आराधना इस तरह से अगर कोई नवरात्रि में करता है तो विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
0: मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी का यह स्वरूप परम कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है।
1: चंडी जो रूप है नौ रूप भगवती का ही है, तो कलयुग में इनकी साधना जो होती है बहुत फलदायी होती है। साध धन ना, जो साधने में कठिन हो उसी का नाम साधना होता है। तो इन निरंतरता आवश्यक होती है। यह देवी शौर्य की प्रतीक हैं, जीवन में बल देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं। तो इनकी आराधना करने से जीवन से भय की निवृत्ति अवश्य हो जाती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयोग। गौर से देखिए। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवारण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता, पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग, कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है?
1: सफेद पदार्थ में आप कोई भी वस्तु ले लें, आपका जैसा व्रत है, जैसा अनुष्ठान, उस प्रकार का आप नैवेद्य ग्रहण कर लें, और दूध और खीर और जो सात्विक भाव से प्रसाद बने, और उसी सात्विक भाव से हम भगवती को अर्पण करें, तब यह जो उनका नैवेद्य होगा, जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे, वह हमें बल प्रदान करेगा, हमारे शरीर की कांति, हमारे चेहरे के ओज को, कांति को बढ़ाएगा।
0: माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो आप भी माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि, साथ ही जानेंगे माता के उद्भव की वो पौराणिक कथा जिसमें समाहित है त्रिदेव की शक्ति। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: आस्था कहती है कि साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है, तब नवरात्र में मां चंद्रघंटा का पूजन एक वरदान की तरह साबित होता है।

0: माँ चंद्र घंटा की उपासना है परम फलकारी। जीवन से टल जाएगा संकट भारी से भारी। शक्ति की साधना से खुलेगा मुक्ति का द्वार। देवगण मानते हैं माँ चंद्र घंटा की महिमा है अपरंपार। माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार का नाश हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्र घंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। चलिए हम आपको वो पौराणिक कथा भी सुनाते हैं जब मातेश्वरी ने लिया था विश्व के कल्याण के लिए अवतार। देवी पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं और दैत्य राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवगण पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीनकर ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कथा कहती है कि तब इंद्र और देवताओं ने संकट की घड़ी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। कहते हैं कि उनके दुर्दशा से द्रवित होकर त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया जो एक भव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके 10 हाथ थे जो बाद में विभिन्न देवी देवताओं के दिव्य शस्त्रों से सुशोभित हुए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शस्त्र शामिल थे। स्वयं इंद्र ने अपना वज्र और घंटा भेंट किया। सूर्य देव ने उन्हें अपनी तेजस्वी किरणें, एक चमकीली तलवार और एक भयंकर शेर भेंट किया। इन दिव्य वरदानों से परिपूर्ण होकर देवी ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया। कथा है कि दैत्य राजा और उसके कुल का अंत हो गया और देवी चंद्रघंटा ने अपनी अदम्य शक्ति से देवताओं को उनके भय से मुक्त किया।
1: माँ चंद्रघंटा सामान्यतः सिंह पर सवार हैं और अनेक प्रकार के आयुध अपने हाथों में धारण की हुई हैं और एक हाथ इनका अभय मुद्रा में है। उनका स्वरूप जहाँ एक ओर उग्र शक्ति का स्वरूप है, उसी ओर उनके मुखमंडल पर जो शांति है वह करुणा रूप में दिखाई देती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विश्रुता, यह इनके बारे में शास्त्र में प्रमाण बताया गया है।
0: कथा कहती है कि तब से ही देवी को भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी के स्वरूप में पूजा जाने लगा। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र की तीसरी तिथि पर आपको कैसे करनी है देवी की उपासना। पर ध्यान रखिए कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है।
1: माँ चंद्र घंटा को रक्त पुष्प, लाल रंग का अक्षत, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह पंचोपचार जो पूजन है, यह पूजन हर देवी का करना चाहिए और सायंकाल के समय भी दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ होता है।
0: लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्र घंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्र घंटा की उपासना के लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगकाराय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी की कृपा। नवरात्रि में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली हैं माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान, माँ की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। आगे हम आपको बताएंगे माँ की उपासना के अमोघ मंत्र जिनके जाप से होगा आपकी सभी बाधाओं का निदान। बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का एक सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का हो जाएगा अंत।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के मस्तक पर लगे घंटे की भयानक ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, साथ ही मंत्रों के उच्चारण से वरदान देती हैं माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों में है अद्भुत शक्ति। विधि विधान से करें आदि शक्ति की भक्ति। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा के मंत्रों के जाप से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। भगवती का ये स्वरूप अद्भुत है, जिनके आराधना से भय से मुक्ति और संकट में साहस का वरदान मिलता है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा का मंत्र जाप करने से मन का डर, अज्ञात भय और घबराहट दूर होती है। माँ के विशेष मंत्र का जाप आपके सभी दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है।
1: देवी का कोई भी रूप हो, हम माँ के रूप में मानते हैं और माँ हमेशा अपने संतान को सुखी देखना चाहती है। हमारे यहाँ दुर्गा अर्गला में कहा गया, अर्गला स्तोत्र में, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपन देहि जयन, देहि यशो, देहि दिशो जहि। यह सब जो मंत्र भगवती के हैं, यह लोक और परलोक दोनों बनाने वाले हैं। तो इन सब मंत्रों का जप करने से रोग नाश होता है, शत्रु दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
0: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महयम चंद्रघंटेति विश्रुता।
1: भगवती मंत्र वही रहे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मूल मंत्र है, उसके जगह चंद्रघंटायै नमः, चंद्रघंटा लगा करके, और चंद्रमा का भी एक मंत्र, जो कि चंद्रमा इनके साथ जुड़ा है, तो चंद्रमा के लिए सोम सोमाय नमः, सायंकाल के समय घी का दीपक जला करके सोम सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इन मंत्रों का जप करने से जीवन से भय का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है।
0: तो आप जब भी माँ चंद्रघंटा की उपासना करें तो देवी के मंत्रों का जाप भी करें। माना जाता है कि देवी के पूजन में मंत्रों के जाप से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से माँ की आराधना करें, फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हुआ तो शहर शहर गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम लोग देवी के भजनों पर एक साथ झूमते हैं और माँ की उपासना करते हैं।

0: नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हुए तो देवी माँ की उपासना में भक्तों ने अपना पूरा जोश और उत्साह झोंक दिया है। चाहे माँ के मंदिर हो या जागरण, गरबा हो या तलवार रास, लोगों की एनर्जी देखते बन रही है। गुजरात के जामनगर से आई इस तस्वीर में भी ऐसा ही उत्साह और जोश देखने को मिला। यहाँ नवरात्रि के खास मौके पर पारंपरिक तलवार रास किया गया, जिसमें इन लड़कियों ने हाथों में तलवार लेकर महाकाली तांडव समेत विभिन्न पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 सालों से नवरात्रि महोत्सव की परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। ये तलवार रास इस गरबी मंडल की खास पहचान है। आशापुरा गरबी मंडल का तलवार रास पूरे इलाके में खासा मशहूर है। इस मंडली से जुड़े लोगों का कहना है कि ये परंपरा आज भी नई पीढ़ी को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही है। इनकी ये कला न केवल गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती है, बल्कि नारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संदेश भी देती है।
1: आ गरबी छेला 45 वर्ष थी थाई छे अने आ गरबी बधी बधी छोकरियो एटली खुशी थी रमे छे अने एटली उत्साह थी रमे छे अने आ गरबी मां बहु आ गरबी मां तलवार रास महाकाली तांडव जेवा अनेको रासो थाय छे। तलवार रास में अत्यारे अमे लोको दांडियाना बदले तलवार वापरी छे, जेनाथी अमे लोको नारी शक्ति आगळ वधारी छे अने लोको आ तलवार रास ने दूर दूर थी जोवा आवे छे अने आ अमारो रास बहु फेमस छे।
0: नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबा, डांडिया, नाइट्स और रास का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है, जिनमें बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी खास तैयारी की है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ज्यादा सतर्क है। राजकोट के पंडालों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की एक खास टीम बनाई है। इस शी टीम में महिलाएं पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि गरबा कलाकारों की शक्ल में ही रहेंगी, जो अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और ऐसे आयोजनों में पहुंचने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी।
2: हमारी शी टीम जो है महिला पुलिस स्टेशन में तैनात है और बाकी हर एक पुलिस स्टेशन में शी टीम के महिलाएं आइडेंटिफाइड है, तो वो महिलाएं पारंपरिक गरबा की गणवेश पहन के अलग अलग गरबाओं में जाएंगी और वहां पे नजर रखेंगी कि कोई रोमियो या फिर आवारा तत्व जो है छेड़खानी का प्रयास कर रहा हो या फिर कोई भी बहन बेटी को परेशान कर रहा हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। और इसके अलावा हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की जो टीमें हैं वो गरबा के संपूर्ण आयोजन के दौरान जो है आयोजन स्थल पर हाजिर रहेंगी।
0: गुजरात के इस लोक नृत्य को लोग खासा पसंद भी करते हैं, इसलिए रात रात भर चलने वाले इन आयोजनों में सुरक्षा एक अहम पहलू रहा है। ऐसे में प्रशासन की भी कोशिश यही है कि गरबा में आने वाले सभी लोग बिना किसी परेशानी के गरबा खेल सकें। जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: 5 के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, 5 के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और 5 के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
4: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना, शेर पर सवार माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान, भक्त विधि विधान से करते हैं मां की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में बड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश में रंग कर एक नया एंगल दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे फैक्ट चेक में। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि शिष्य रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि ये वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: क्या प्रेमानंद महाराज अपने शिष्य की मौत से टूट गए, फूट फूट कर रोने लगे? प्रेमानंद महाराज के रोते वीडियो को शिष्य रसिक दुलारी की मौत से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रसिक दुलारी की मौत से प्रेमानंद महाराज इतने आहत हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये खबर हमारे सामने भी आई, हमने इसकी पड़ताल की।
5: मरने का डर है ना, इतने कष्टों का कोई भय है।
6: खूब रोए प्रेमानंद महाराज, शिष्य की मौत के बाद छलके आंसू।
5: एकमात्र भगवान का आश्रय
6: प्रेमानंद महाराज के रोने का वीडियो हुआ वायरल।
5: अब मुझे कोई परवाह नहीं है भगवान ऐसी।
6: ये वीडियो जैसे ही सामने आया लोग चौंक गए, ये क्या हो गया। सत्य मार्ग पर चलने की सीख देने वालों की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे।
5: शरणागति होती है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
6: प्रेमानंद महाराज को चाहने वाले लोग सकते में आ गए, सवाल उठने लगे।
5: न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है किसी भी तरह।
6: सोशल मीडिया पर ये दावा कि प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो उनके शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद का है, जिसमें वो काफी आहत नजर आ रहे हैं।
5: प्रिया जी ने मुझे अपना बना लिया, भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं।
6: जब पहले ये सुनिए आखिर रोते रोते प्रेमानंद महाराज क्या बोल रहे हैं। सुना आपने, प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं। ना मरने का डर है, ना ही किसी कष्ट का कोई भय,
5: ना इतने कष्टों का कोई भय है।
6: कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि हालिया घटनाओं को लेकर वो कितने आहत हुए हैं, ये वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि प्रेमानंद महाराज जी अंदर से टूट गए। अगर प्रेमानंद महाराज जी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वो सभी ट्रोलर्स होंगे, जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सटीक खबर के प्रेमानंद महाराज जी को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर भी किया जा रहा है।
5: डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
7: बता दें कि प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत 25 सितंबर को हुई थी। वृंदावन स्थित श्रीहरि राधा केलीकुंज आश्रम के पास गुरु कृपा कुंज परिसर में उनका शव मिला था। चौथी मंजिल से कूदकर युवा संत रसिक दुलारी ने आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीपक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के रोने वाला वीडियो सामने आया है, और ये इस वक्त खूब सुर्खियों में भी है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद अंदर से टूट गए और इस कदर आहत हुए कि फूट फूट कर रोने लगे। ये वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो के जरिए जो दावा किया गया उसमें पहला तो ये कि प्रेमानंद महाराज के रोने वाला ये वीडियो हाल फिलहाल का है। दूसरा ये बताया गया कि श्रीहरि राधा केलीकुंज से ये वीडियो सामने आया है। हमने इसके बारे में पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि शिष्य की संदिग्ध मौत और उससे जुड़े विवादों के बाद प्रेमानंद महाराज ने तुरंत ही श्रीहरि राधा केलीकुंज आश्रम छोड़ दिया था। अब वो यमुना पार बेलवन स्थित आश्रम में रह रहे हैं। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि श्रीहरि राधा केलीकुंज से इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है। वीडियो में गौर करने वाली बात यह भी नजर आई कि प्रेमानंद महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रम नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। न मरने की का कोई डर है, और न ही किसी कष्ट से कोई मतलब है। मतलब किसी भी संदर्भ में प्रेमानंद महाराज ने ये बातें कहते हुए वो रोने लग गए। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि अगर दावा सच्चा है तो फिर प्रेमानंद महाराज ने यहां पर अपने शिष्य का नाम क्यों नहीं लिया। ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखने को मिला। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये कि ये वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नजर नहीं आया। तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
6: वीडियो को देखने से लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज किसी बात का जिक्र छेड़ने के बाद रोने लगे,
5: तब हृदय में वो शरणागति होती।
6: ऐसे में फैक्ट चेक की टीम दावे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये इसी साल 22 मार्च के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो वृंदावन में हुए हालिया हादसे से संबंधित नहीं है, क्योंकि आश्रम के शिष्य दीपक लोधी और रसिक दुलारी की आत्महत्या की घटना 25 सितंबर को सामने आई थी। इसके बाद हमें प्रेमानंद महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भजन मार्ग पर इसी साल 1 मार्च को अपलोड किया गया इसका लंबा वर्जन मिला। उसी दिन एकांतिक वार्तालाप और दर्शन के दौरान प्रेमानंद महाराज जब प्रवचन दे रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी। करीब 39 मिनट के इस वीडियो में ठीक 7 मिनट 10 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा आता है।
5: भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है।
6: रसिक दुलारी की मौत को लेकर प्रेमानंद महाराज के बयान का कोई वीडियो हमें नहीं मिला, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वृंदावन के राधा कीली कुंज ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रसिक दुलारी के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त किया था और बताया था कि प्रेमानंद महाराज व्यथित हैं। साथ ही घटना की पुलिस जांच पूरी न होने तक किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या अफवाह न फैलाने की अपील की गयी थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि 1 मार्च 2026 का है, जो वो एक प्रवचन के दौरान भावुक हो गए थे। रिदीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है।
7: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है। हमने इस खबर की भी पड़ताल की।
8: नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गोवा में कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें करीब 45 मिनट तक CPR दी गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुणे के डोजे गांव में रात को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर उनकी अंतिम यात्रा का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग एक अर्थी को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही आसपास कई लोग दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, नाना पाटेकर को अंतिम विदाई, 75 की उम्र में दिग्गज अभिनेता का निधन। सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
7: 8 अक्टूबर को 75 वर्ष की आयु में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई। पुणे के डोंजे गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सब के बीच अब ये वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का है और ये वीडियो हमारे सामने भी आया। सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो की जांच में सबसे पहले हमने वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें इस वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। जब नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा के दौरान कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई भी दृश्य सुनने या देखने को नहीं मिला। वीडियो में नजर आ रहा है कि अर्थी को पर्दे से ढक दिया गया है, जबकि नाना पाटेकर की अर्थी को पर्दे से नहीं ढका गया था। वीडियो में एक और बात गौर करने वाली थी, कंधा दे रहे सभी लोग इस्लामिक टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दृश्य तभी सामने आता है जब किसी का जनाजा निकलता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि कहीं किसी और के जनाजे के वीडियो को नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। दूसरा सवाल ये कि दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को पुणे के डोंजे गांव स्थित उनके आवास नानाची वाड़ी में अंतिम विदाई दी गई। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही था कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 25 सितंबर को एक फेसबुक पेज पर अपलोड हुई एक वीडियो रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी देखने को मिले। इसमें यह बताया गया था कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान को मुंबई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके साथ ही 4 दशकों से भी अधिक समय तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाले इस अभिनेता की अंतिम यात्रा संपन्न हो गई। जुमे की नमाज के बाद मुंबई के यारी रोड कब्रिस्तान में अभिनेता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। उनके अंतिम यात्रा के दौरान उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य उनके पार्थिव देह को ले जाते हुए दिखाई दिए। बता दें, फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का लंबी बीमारी के चलते 24 सितंबर को निधन हो गया था। सर्च के दौरान हमें 25 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी नाना पाटेकर की अंतिम विदाई का बताकर शेयर किए गए वीडियो वाले दृश्य मौजूद है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के जनाजे का है, जिन्हें 25 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद यारी रोड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ये वीडियो अभिनेता नाना पाटेकर के अंतिम विदाई का नहीं है। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो अभिनेता मुश्ताक खान के अंतिम जनाजे का है, जिनका 24 सितंबर को निधन हो गया था। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
2: और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
8: मैडम ने जब मासूम बच्चे से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनके जवाब सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किसी ने सलमान खान बनने की बात कही, तो किसी ने ढाबा खोलने और लंदन जाने का सपना बताया। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
10: ढाबा खोलूंगा, आईफोन बांटूंगा।
8: कविता सुनाने का अंदाज अगर थोड़ा अलग हो तो हर किसी का ध्यान खिंच जाता है। इस बच्चे ने भी कविता सुनाने के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा है। बच्चा बांस की दीवार पर चढ़ा हुआ है और नीचे बैठे बच्चों को बड़े उत्साह से कविता सुना रहा है। चेहरे की मासूमियत और अंदाज की बेफिक्री इस पूरे पल को खास बना रही है। वीडियो देखकर लोग बच्चे की क्यूटनेस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। ट्रेन में बैठा बच्चा बड़े आराम से चिप्स खा रहा था, लेकिन नीचे बैठे बंदर को भी पैकेट दिखाकर ललचा रहा था। बच्चे को शायद अंदाजा नहीं था कि बंदर इतनी जल्दी एक्शन में आएगा। तभी बंदर ने छलांग लगाई और जंगल के रास्ते बच्चे के हाथ से चिप्स का पूरा पैकेट छीन लिया। कुछ ही सेकंड में बंदर अपना काम कर चुका था। अब इस मजेदार वीडियो को देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है। कहते हैं कि प्यार जताने के लिए किसी बड़े तोहफे या महंगे सरप्राइज की जरूरत नहीं होती, कई बार छोटी छोटी चीजें भी दिल छू जाती हैं। ऐसा ही ये प्यारा सा पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड रात में बैंक की ड्यूटी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी घर से खाना लेकर पहुंच गई। दोनों ने बैंक के अंदर शटर के बाहर बैठकर साथ में खाना खाया और कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताया। इस साधारण से पल ने लोगों को रिश्तों की असली अहमियत याद दिला दी। प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से जाहिर होता है। उम्र चाहे कोई भी हो, रिश्ता पुराना हो या नया, अगर प्यार सच्चा है तो परवाह हमेशा बनी रहती है। इस वीडियो में पत्नी बीमार होकर बिस्तर पर लेटी है और उन्हें दर्द में देखकर पति उनके पैर दबाने लगते हैं। पति का ये छोटा सा कदम रिश्ते की बड़ी खूबसूरती बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यार और देखभाल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
11: Today, my wife and I are cooking prasad for our family. My dad is outside mowing the lawn right now.
12: Two sabjis, one karela, and rice. So, over here.
8: भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का रंग अब विदेशियों पर भी चढ़ता नजर आ रहा है। विदेशी परिवार के घर हरे कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। परिवार को प्रेम से सात्विक प्रसाद बनाते देख लोग उनकी संस्कृति के प्रति श्रद्धा की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
12: Yes. And then over here, let me take that pot. Okay. Here we got a squash sabji.
8: ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक लड़का समुद्र के रेतीले तट पर खड़ा है और उसके हाथों में एक विशाल पतंग की डोर है। ये पतंग सामान्य पतंगों से बिल्कुल अलग है। इसका अलग हिस्सा खौफनाक ड्रैगन के चेहरे जैसा बना है, जिसके बड़े बड़े दांत और आंखें बेहद जीवंत लगती है। इसके पीछे लंबी पूंछ जैसी संरचना जुड़ी हुई है, जो हवा के थपेड़ों के साथ किसी उड़ते हुए नाक की तरह लहराती है। जब युवक इस विशाल पतंग को संभालने और हवा में लहराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक एक छोटा बच्चा चिप्स का पैकेट हाथ में लिए कैमरे के सामने आ जाता है। एक तरफ जहां हवा में भयानक ड्रैगन मंडरा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इस बच्चे का बेफिक्र अंदाज में चिप्स खाना वीडियो को एक मजेदार ट्विस्ट दे देता है। इंसान हो या जानवर, प्रेम फर्क मिटा देता है। दिखते हैं तो सिर्फ भाव, जो एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देते हैं। देखिए इस वीडियो में खुद साइकिल पर है ये शख्स और डॉगी को कंधे पर ऐसे बिठा रखा है मानो कोई छोटा बच्चा हो। डॉगी के साथ इस शख्स की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आ रही है।

0: खूब दिलचस्पी ले रहा है। भले ही बच्चे का मन रखने की गरज से खेल खेल रहे हों, लेकिन बच्चा भला अपने आप को बच्चा कहाँ समझ रहा है। बछड़े की ये मासूमियत देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। माँ का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, बेजुबान भी अपने बच्चों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। इस वीडियो में एक डॉगी अपने बच्चे के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्चा आगे आगे भागता है तो माँ उसे पकड़कर वापस अपनी ओर ले आती है। कभी प्यार से साथ दौड़ती है तो कभी दांतों से पैर थामकर उसे रोक लेती है। माँ और बच्चे के बीच प्यार भरा ये नजारा देखकर लोग भावुक भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और अब आज शहर शहर सनातन के प्रतीक रामलीला की निभाई जा रही परंपरा की। रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का जीवंत प्रतीक है। अयोध्या में राम जानकी मंदिर की रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से होता है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते ये रामलीला भी श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखती है। इस रामलीला की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान श्री राम, हनुमान जी और दूसरे पात्रों से जुड़ी भूमिका निभाने वाले कलाकार बाहर से नहीं बल्कि स्थानीय लोग ही होते हैं, और बचपन से रामलीला से जुड़ने वाले बच्चे बड़े होकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।

0: दिव्य भव्य राम नगरी, आस्था, अध्यात्म और सनातन परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र अवधपुरी, अद्भुत अलौकिक प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर शारदीय नवरात्रि के दौरान स्वर्णिम वैभव से निखर चुकी है। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के दौरान राम नगरी में जगह जगह रामलीला का भी मंचन हो रहा है। अयोध्या में भगवान के जन्म से लेकर रावण वध और उनके अयोध्या लौटने तक के जीवन चरित्र का मंचन संगीत, संवाद और लोक नृत्य के माध्यम से हो रहा है। माँ सरयू नदी के तट पर विराजमान अवधपुरी आस्था, परंपरा और भारतीय संस्कृति के विराट उत्सव दशहरा के लिए तैयार हो चुकी है। दशरथ नंदन भगवान राम की पवित्र नगरी में बेहद प्राचीन, जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रामायण मंचन हो रहा है। भगवान राम के चरित्र और उनकी लीलाओं के प्रति लोगों का समर्पण ही ऐसा है कि वो पूरी पूरी रात जाग कर मंचन देख रहे हैं। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर की विख्यात रामलीला अपने 151वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। अपनी ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं के चलते यहाँ की रामलीला बहुत मशहूर है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाली इस रामलीला में भगवान श्री राम, हनुमान जी और दूसरे पात्रों की भूमिका निभाने के लिए कलाकार बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि वो स्थानीय ही होते हैं।
1: ये अयोध्या नगरी है भगवान राम की। यहाँ पे मंच जगह जगह सज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकार से मंच पर श्री राम जानकी मंदिर की रामलीला है और राम पथ पर है। लगातार यहाँ से

0: 4 किलोमीटर की दूरी पे राम मंदिर है। तो ये रामलीला की शुरुआत है, जगह जगह से कलाकार आए हैं और ये काफी प्राचीन रामलीला है, 100 वर्षों पुरानी रामलीला है। तो लगातार यहाँ पे लोग बैठे हैं, रामलीला का आनंद उठा रहे हैं और भगवान राम की जो रामायण की गाथा है उसको लगातार सुनते चले आ रहे हैं। तो ये प्रथा है अयोध्या की, भगवान श्री राम की नगरी है।
1: रामलीला के पात्र, संगीत, संवाद और विशेष रूप से कलाकारों के मंचन का अनुभव ऐसा कि लोग घंटों बैठे रहते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि कितनी रात बीत गई।
2: बहुत साल हो रहा है यहाँ पर, बहुत दिन से हो रहा है।
0: बहुत ज्यादा हो गया, मतलब
2: हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है।
0: कितने देख रही है? कितने सालों से देख रही है?
2: अरे हम तो 12-13 साल से देख रहे हैं।
0: 12-13 साल से देख रही है। कितने सालों से रामलीला?
3: हम तो कब से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे
0: हैं। बहुत पुरानी रामलीला।
1: रामनगरी से करीब 160 किलोमीटर दूर संगम नगरी प्रयागराज में दशहरा महोत्सव और रामलीला के आरंभ की पारंपरिक घोषणा हुई। उससे पहले पूरे वैभव, श्रद्धा और उल्लास के साथ ऐतिहासिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो दशहरा महोत्सव और रामलीला मंचन के प्रारंभ का प्रतीक है। पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी की पारंपरिक कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा हीवेट रोड पर मौजूद चमेली बाई धर्मशाला से निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल धार्मिक झांकियां इस पारंपरिक आयोजन से जुड़े आकर्षण के केंद्र में रही। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान राम, माता सीता, भगवान कृष्ण, माँ काली, भगवान गणेश, राम भक्त हनुमान और सूर्य देवता की झांकी की वजह से पूरा माहौल ही भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा में शामिल करीब 20 फीट ऊंचा भव्य और सुसज्जित कर्ण घोड़ा मुख्य आकर्षण रहता है, जिसे मोतियों, आकर्षक लाइट्स और पारंपरिक सजावट से सजाया जाता है। सफेद रंग के कर्ण घोड़े को भगवान श्री राम का दूध भी माना जाता है। यही वजह है कि शोभा यात्रा निकलते ही दशहरा महोत्सव के आधिकारिक शुभारंभ का संदेश फैल जाता है।
4: ये कर्ण घोड़े का कंसेप्ट उत्तर रामायण काल में जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या आ गए तो ये कर्ण घोड़ा राम की कथा को पूरे जो है राम राज्य में, राज्य अयोध्या के राज्य में घूम घूम के सुनाया करता था। तो उसी घोड़े को ये माना जाता है कि अब ये घोड़ा जो है पूरे जनपद के अंदर राममय बना देगा, राम की कथा चारों तरफ बहेगी, लोग आनंद लेंगे, सीता राम की जय बोलेंगे, भरत जी की जय बोलेंगे, लक्ष्मण की जय बोलेंगे और हनुमान जी की जय बोलेंगे। माने पूरा जो रामलीला का कंसेप्ट है, रामायण का कंसेप्ट है, वो चारों तरफ वातावरण में फैलता रहेगा।
5: ये परंपरागत हो रहा है। आज से 150 साल पहले कमेटी के पूर्वज लोगों ने इसका प्रारंभ किया था और मुकुट पूजा से कार्यक्रम प्रारंभ होता है जो राष्ट्रपति तक चलता है। ये राम मंदिर से प्रारंभ होकर के हमारे जो रूप चौकी का है, कोठा पाचा, रामबाग, पदासा मंदिर, लोकनाथ, चांदेशगंज, हीवेट रोड पुनः यहाँ से समाप्त हुआ।
1: इस साल भी शोभा यात्रा में डमरू दल, पारंपरिक ढोल ताशों, डीजे, बैंड बाजा और भक्ति गीतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शारदीय नवरात्र पर शहर शहर लोक कलाकारों की मंडलियां प्रमुख प्रसंगों के जरिए भगवान राम के धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और बलिदान जैसे मूल्यों को राम भक्तों के सामने पेश करते हैं, जिसको देखकर राम भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ चंद्रघंटा की आराधना, शेर पर सवार माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान, भक्त विधि विधान से करते हैं माँ की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में बड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। सरहद पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ, बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की भक्ति करने का महापर्व है नवरात्रा, जहां हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की उपासना का विधान है। सुबह से शाम तक मंदिरों में माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। आज बात करेंगे देवी के स्वरूप की, जिसे नवरात्र में देवी का तीसरा स्वरूप माना जाता है, जो भय से मुक्ति का वरदान देती है और जो बढ़ाती है आपका आत्मविश्वास। मान्यता है कि माँ की पूजा उपासना से दूर होती है मंगल से जुड़ी बाधाएं। हम आपको देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक ज्योतिषीय महाप्रयोग आखिर क्या हैं।

0: साहस, शक्ति और वीरता का भाव देने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। भय का नाश करने वाली और सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। माना जाता है कि असुरों का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धरा था। माँ चंद्रघंटा, जिन्हें माथे पर घंटीनुमा आकार के चंद्रमा धारण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी कवचम में माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है।
1: यह नवरात्र के तीसरे दिन तृतीयम चंद्रघंटेति दुर्गा कवच में ऐसा कहा गया है, तीसरे दिन की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिसके कारण भगवती को चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप जो है चंद्रघंटा का, दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर शक्ति के रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
0: उग्र और तेजस्वी देवी के रूप में चंद्रघंटा भय और बाधाओं को दूर करने की अपार शक्ति रखती हैं और अपने भक्तों पर शक्ति के आवरण की छाया रखती हैं। नवरात्र में शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। आपके जीवन में चाहे ग्रहों का संकट हो या फिर जीवन की बाधाओं ने आपको परेशान कर रखा हो, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना में छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी हैं। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आप निर्भय और अभय हो जाते हैं।
1: जो भगवती का स्वरूप है भिन्न भिन्न स्वरूप है। यह भिन्न स्वरूप है, हमारे यहाँ कहा गया कि जहाँ से घंटा नाद किया जाता है वहाँ से आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं, और चंद्रमा जहाँ पर है तो मन का कारक है। तो जब घंटा इनके नाम में चंद्रमा के और घंटा दोनों का नाम दिया गया है, तो ऐसी देवी का आराधना करने से मनुष्य के मन से, मनुष्य के परिवार से भय डर दूर चला जाता है।
0: नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और से देखिए ये ज्योतिषीय उपाय। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। इनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है।
1: तीसरा दिन है, हमारे यहाँ तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, इनकी आराधना करने से जो तीनों प्रकार के ताप हैं, जिनको कहा गया है दैहिक, दैविक, भौतिक, या तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, इन तापों का समन होता है। क्योंकि भगवती के साथ घंटा भी जुड़ा है, भय का नाश करेगा, और मस्तक पर चंद्रमा है तो मन को निर्मल करेगा। इसलिए इनकी आराधना इस तरह से अगर कोई नवरात्रि में करता है तो विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
0: मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी का यह स्वरूप परम कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है।
1: चंडी जो रूप है नौ रूप भगवती का ही है, तो कलयुग में इनकी साधना जो होती है बहुत फलदायी होती है। साध धन ना, जो साधने में कठिन हो उसी का नाम साधना होता है। तो इन निरंतरता आवश्यक होती है। यह देवी शौर्य की प्रतीक हैं, जीवन में बल देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं। तो इनकी आराधना करने से जीवन से भय की निवृत्ति अवश्य हो जाती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयोग। गौर से देखिए। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवारण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता, पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग, कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है?
1: सफेद पदार्थ में आप कोई भी वस्तु ले लें, आपका जैसा व्रत है, जैसा अनुष्ठान, उस प्रकार का आप नैवेद्य ग्रहण कर लें, और दूध और खीर और जो सात्विक भाव से प्रसाद बने, और उसी सात्विक भाव से हम भगवती को अर्पण करें, तब यह जो उनका नैवेद्य होगा, जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे, वो हमें बल प्रदान करेगा, हमारे शरीर की कांति, हमारे चेहरे के ओज को, कांति को बढ़ाएगा।
0: माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो आप भी माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि, साथ ही जानेंगे माता के उद्भव की वो पौराणिक कथा जिसमें समाहित है त्रिदेव की शक्ति। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: आस्था कहती है कि साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है, तब नवरात्र में मां चंद्रघंटा का पूजन एक वरदान की तरह साबित होता है।

0: माँ चंद्र घंटा की उपासना है परम फलकारी। जीवन से टल जाएगा संकट भारी से भारी। शक्ति की साधना से खुलेगा मुक्ति का द्वार। देवगण मानते हैं माँ चंद्र घंटा की महिमा है अपरंपार। माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार का नाश हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्र घंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। चलिए हम आपको वो पौराणिक कथा भी सुनाते हैं जब मातेश्वरी ने लिया था विश्व के कल्याण के लिए अवतार। देवी पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं और दैत्य राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवगण पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीनकर ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कथा कहती है कि तब इंद्र और देवताओं ने संकट की घड़ी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। कहते हैं कि उनके दुर्दशा से द्रवित होकर त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया जो एक भव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके 10 हाथ थे जो बाद में विभिन्न देवी देवताओं के दिव्य शस्त्रों से सुशोभित हुए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शस्त्र शामिल थे। स्वयं इंद्र ने अपना वज्र और घंटा भेंट किया। सूर्य देव ने उन्हें अपनी तेजस्वी किरणें, एक चमकीली तलवार और एक भयंकर शेर भेंट किया। इन दिव्य वरदानों से परिपूर्ण होकर देवी ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया। कथा है कि दैत्य राजा और उसके कुल का अंत हो गया और देवी चंद्रघंटा ने अपनी अदम्य शक्ति से देवताओं को उनके भय से मुक्त किया।
1: माँ चंद्रघंटा सामान्यतः सिंह पर सवार हैं और अनेक प्रकार के आयुध अपने हाथों में धारण की हुई हैं और एक हाथ इनका अभय मुद्रा में है। उनका स्वरूप जहाँ एक ओर उग्र शक्ति का स्वरूप है, उसी ओर उनके मुखमंडल पर जो शांति है वह करुणा रूप में दिखाई देती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विश्रुता, यह इनके बारे में शास्त्र में प्रमाण बताया गया है।
0: कथा कहती है कि तब से ही देवी को भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी के स्वरूप में पूजा जाने लगा। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र की तीसरी तिथि पर आपको कैसे करनी है देवी की उपासना। पर ध्यान रखिए कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है।
1: माँ चंद्र घंटा को रक्त पुष्प, लाल रंग का अक्षत, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह पंचोपचार जो पूजन है, यह पूजन हर देवी का करना चाहिए और सायंकाल के समय भी दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ होता है।
0: लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्र घंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्र घंटा की उपासना के लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगकाराय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी की कृपा। नवरात्रि में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली हैं माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान, माँ की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। आगे हम आपको बताएंगे माँ की उपासना के अमोघ मंत्र जिनके जाप से होगा आपकी सभी बाधाओं का निदान। बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का एक सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का हो जाएगा अंत।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के मस्तक पर लगे घंटे की भयानक ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, साथ ही मंत्रों के उच्चारण से वरदान देती हैं माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों में है अद्भुत शक्ति। विधि विधान से करें आदि शक्ति की भक्ति। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा के मंत्रों के जाप से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। भगवती का ये स्वरूप अद्भुत है, जिनके आराधना से भय से मुक्ति और संकट में साहस का वरदान मिलता है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा का मंत्र जाप करने से मन का डर, अज्ञात भय और घबराहट दूर होती है। माँ के विशेष मंत्र का जाप आपके सभी दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है।
1: देवी का कोई भी रूप हो, हम माँ के रूप में मानते हैं और माँ हमेशा अपने संतान को सुखी देखना चाहती है। हमारे यहाँ दुर्गा अर्गला में कहा गया, अर्गला स्तोत्र में, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपन देहि जयन, देहि यशो, देहि दिशो जहि। यह सब जो मंत्र भगवती के हैं, यह लोक और परलोक दोनों बनाने वाले हैं। तो इन सब मंत्रों का जप करने से रोग नाश होता है, शत्रु दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
0: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महयम चंद्रघंटेति विश्रुता।
1: भगवती मंत्र वही रहे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मूल मंत्र है, उसके जगह चंद्रघंटायै नमः, चंद्रघंटा लगा करके, और चंद्रमा का भी एक मंत्र, जो कि चंद्रमा इनके साथ जुड़ा है, तो चंद्रमा के लिए सोम सोमाय नमः, सायंकाल के समय घी का दीपक जला करके सोम सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इन मंत्रों का जप करने से जीवन से भय का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है।
0: तो आप जब भी माँ चंद्रघंटा की उपासना करें तो देवी के मंत्रों का जाप भी करें। माना जाता है कि देवी के पूजन में मंत्रों के जाप से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से माँ की आराधना करें, फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हुआ तो शहर शहर गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम लोग देवी के भजनों पर एक साथ झूमते हैं और माँ की उपासना करते हैं।

0: नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हुए तो देवी माँ की उपासना में भक्तों ने अपना पूरा जोश और उत्साह झोंक दिया है। चाहे माँ के मंदिर हो या जागरण, गरबा हो या तलवार रास, लोगों की एनर्जी देखते बन रही है। गुजरात के जामनगर से आई इस तस्वीर में भी ऐसा ही उत्साह और जोश देखने को मिला। यहाँ नवरात्रि के खास मौके पर पारंपरिक तलवार रास किया गया, जिसमें इन लड़कियों ने हाथों में तलवार लेकर महाकाली तांडव समेत विभिन्न पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 सालों से नवरात्रि महोत्सव की परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। ये तलवार रास इस गरबी मंडल की खास पहचान है। आशापुरा गरबी मंडल का तलवार रास पूरे इलाके में खासा मशहूर है। इस मंडली से जुड़े लोगों का कहना है कि ये परंपरा आज भी नई पीढ़ी को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही है। इनकी ये कला न केवल गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती है, बल्कि नारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संदेश भी देती है।
1: आ गरबी छेल्ला 45 वर्ष थी थाई छे अने आ गरबी बधी बधी छोकरियो एटली खुशी थी रमे छे अने एटली उत्साह थी रमे छे अने आ गरबी मां बहु आ गरबी मां तलवार रास महाकाल तांडव जेवा अनेक रासो थाई छे। तलवार रास में अत्यारे अमे लोको दांडियाना बदले तलवार वापरी छे, जेनाथी अमे लोको नारी शक्ति आगळ वधारी छे अने लोको आ तलवार रास ने दूर दूर थी जोवा आवे छे अने आ अमारो रास बहु फेमस छे।
0: नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबा, डांडिया, नाइट्स और रास का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है, जिनमें बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी खास तैयारी की है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ज्यादा सतर्क है। राजकोट के पंडालों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की एक खास टीम बनाई है। इस शी टीम में महिलाएं पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि गरबा कलाकारों की शक्ल में ही रहेंगी, जो अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और ऐसे आयोजनों में पहुंचने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी।
2: हमारी शी टीम जो है महिला पुलिस स्टेशन में तैनात है और बाकी हर एक पुलिस स्टेशन में शी टीम के महिलाएं आइडेंटिफाइड है, तो वो महिलाएं पारंपरिक गरबा की गणवेश पहन के अलग अलग गरबाओं में जाएंगी और वहां पे नजर रखेंगे कि कोई रोमियो या फिर आवारा तत्व जो है छेड़खानी का प्रयास कर रहा हो या फिर कोई भी बहन बेटी को परेशान कर रहा हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। और इसके अलावा हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की जो टीमें हैं वो गरबा के संपूर्ण आयोजन के दौरान जो है आयोजन रहेंगी।
0: गुजरात के इस लोक नृत्य को लोग खासा पसंद भी करते हैं, इसलिए रात रात भर चलने वाले इन आयोजनों में सुरक्षा एक अहम पहलू रहा है। ऐसे में प्रशासन की भी कोशिश यही है कि गरबा में आने वाले सभी लोग बिना किसी परेशानी के गरबा खेल सकें। जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़